ओम शांति। बाबा ने आकर हमें माया को जीतने की शक्ति प्रदान की है और साथ साथ टाइटल भी दिया, बच्चे तुम माया जीत हो। तो हमें काम को जीतने का जज्बा अंदर में होना चाहिए। काम वासना चाहे कितनी भी प्रबल हो, लेकिन हमारे साथ ईश्वरीय शक्ति है, हमें उस शक्ति के बल से इस माया को हराना ही है। इसलिए पहली चीज है, स्वयं से दृढ़ प्रतिज्ञा कर ले, मुझे पवित्र बनना है। इस काम महावैरी ने मेरा सब कुछ छीन लिया है, मेरा राजभाग्य नष्ट कर दिया है, अब मैं इसे नष्ट करूंगा। ये संकल्प, ये प्रतिज्ञा हमें बल प्रदान करेगी। हम जानते हैं कि केवल प्रतिज्ञा करने से काम वासना को नहीं जीता जा सकता। दूसरी प्रैक्टिस हम रखेंगे, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, मैं पवित्रता का देवता हूँ, देवी हूँ, पवित्रता का सूर्य हूँ, मैं देव कुल की पवित्र आत्मा हूँ। अपने देव स्वरूप को याद करेंगे, पवित्र संस्कार जागृत होते जाएंगे। तीसरी प्रैक्टिस, बहुत अच्छा योग अभ्यास, क्योंकि बिना योग बल के माया को जीतना संभव नहीं है। फिर भी हम याद रखेंगे कि माया को एक दिन में नहीं जीता जाता। काम के कोई भी संकल्प आपको आए, उसे दूर करते चले और आगे बढ़ते चले। निराश होने की आवश्यकता नहीं कि ये संकल्प हमें क्यों आ रहे हैं, क्योंकि काम को संपूर्ण रूप से जीतना ये एक लंबी यात्रा है। कुछ भी डिस्टरबेंस नींद में भी होता है, उसको जल्दी से जल्दी समाप्त करके आगे बढ़ें। तो हमें माया जीत बनना है, और जिन्हें इस माया को जीतने का दृढ़ संकल्प होता है, बाबा की बहुत ज्यादा मदद उन्हें मिलती है। इसी के लिए बाबा कहते हैं, जो हिम्मत रखते हैं उनको बाबा की बहुत मदद मिलती है। लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखनी है, वासनाओं से जुड़े हुई जो चीजें हैं उनका हमें पूरी तरह त्याग कर देना है। चाहे खान पान, चाहे गंदी चीजें देखना, पिक्चर्स देखना, गंदे चित्र देखना, उसके बारे में चिंतन करना, उसको एंजॉय करना। कोई सोचे हम कर्म थोड़ा ही करते, हम तो केवल संकल्पों में एंजॉय करते हैं, ये भी काम वासना से हार है और इससे भी ये वासनाएं जागृत हो जाती हैं। इसलिए आओ हम सभी पवित्रता को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करें। हमारा महान कर्तव्य है इस संपूर्ण प्रकृति को भी पावन बनाना। इस समय चारों ओर दूषित वायुमंडल फैला हुआ है, हमारा ये मूल कर्तव्य है, हम इस वायुमंडल को पावन करेंगे। अन्यथा क्या हो रहा है, बच्चे, युवक और बूढ़े सभी के अंदर वासनाएं बढ़ती जा रही हैं। इससे संसार में अनैतिकता का भयानक दौर चल रहा है, मानव ने मानवता खो दी है, कोई कुछ भी करने पर उतारू है। अनेक जगह ऐसे केस आप सुनते ही होंगे जिसमें मनुष्य अपनी वासनाओं के अधीन होकर अपने बच्चों से भी गलत कार्य कर लेते हैं। तो हमें इस वातावरण को योग बल से समाप्त करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। साथ साथ हम ये भी याद रखेंगे, हम आधार मूर्त हैं, हमारी प्योरिटी इस संसार को पावन बनाएगी। हमारी स्थिति सृष्टि की स्थिति उत्पन्न करती है, जैसी हमारी स्थिति वैसी ही सृष्टि की स्थिति होती है। तो आइए हम माया जीत बनने का दृढ़ संकल्प करें। हम माया को नहीं जीतेंगे तो भला कौन जीतेगा। चलते चलते माया से हार खानी नहीं है, प्रतिज्ञा में अपने को बांध लेना है, कुछ नियमों में अपने को बांध लेना है। नियमों में बंधा हुआ मनुष्य काफी सुरक्षित हो जाता है, जो नियम नहीं बनाते वो ढीले रहते हैं, अपने को लूज कर देते हैं। तो हम सभी आज बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, मैं पवित्रता का देवता हूँ, पवित्रता का सूर्य हूँ, और परम धाम में पवित्रता के सागर बाबा, हम आत्मा बनकर उड़कर चलेंगे परम धाम, पवित्रता के सागर की पवित्र किरणों के नीचे बैठेंगे, उनसे पवित्र किरणें रिसीव करेंगे कुछ देर,
स्वयं में पवित्र किरणें भरकर वापिस आएंगे देह में चार ओर फैलाने के लिए। मस्तक सिंहासन पर बैठेंगे और फील करेंगे मुझसे चार ओर पवित्रता की सफेद किरणें फैल रही हैं। फिर ऊपर चलेंगे, बाबा से पवित्र किरणें भरेंगे, नीचे आएंगे फैलाएंगे। ये अभ्यास आज सारा दिन चालू रखेंगे। ओम शांति।

सुनेगा ये जहां कहेंगे जो हम, सुनेगा ये जहां मिलकर जो

सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। आज हमारा एक प्रश्न है आपसे, भाग्य बड़ा कि कर्म? इस प्रश्न का यही उत्तर है कि भाग्य नहीं, कर्म बड़ा है। कर्म के बल पर आदमी अपने भाग्य को भी बदल सकता है, इसीलिए हमेशा कर्म पर विश्वास रखें। जब तक आप कर्म न करेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। कर्म की दुनिया है, इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों कर्म करो। संपत्ति मुफ्त में नहीं आती, आपको कर्म करने से ही कुछ मिल सकता है, और वह भी कठोर कर्म। जब तक अपने पर नियंत्रण रख आप कठोर कर्म नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं मिल सकता। कठोर परिश्रम में बड़ा सुख है। जो कठोर परिश्रम से घबराते हैं वह मूर्ख हैं। श्रम में बड़ा आनंद है। कठोर श्रम करने वाला बड़े ही सुख की नींद सोता है। कम श्रम करने वाले को देर से नींद आती है। कठोर श्रम से आपका मन पूर्ण रूप से खुश भी होता है। एक बार आप ऐसा करके तो देखें। खूब मेहनत करिए और सुख पाइए। रॉबर्ट मैकाले का कहना है कि सप्ताह के 6 दिन सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनिवार मैं कसकर मेहनत करता हूँ, रविवार जमकर आराम करता हूँ। इस प्रकार आराम का भी वास्तविक सुख पाता हूँ। 6 दिन कठोर परिश्रम, 7वें दिन आराम। करके तो देखें, आपको मजा आ जाएगा। साथ ही साथ पूरे सप्ताह के लिए आपको काम करने की शारीरिक शक्ति भी प्राप्त होगी। इस प्रकार की दिनचर्या अपनाएं। रॉबर्ट मैकाले की बात पर आप अमल करके तो देखें। बड़ा आनंद है जीवन में। संपत्ति ही क्यों, दुनिया की प्रत्येक वस्तु आप प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ आपको मिल सकता है। अपना हर सपना पूरा कर सकते हैं। आप एक बार संकल्प तो कर लें और करके देखें। अपनी परिश्रम शक्ति में कंजूसी ना करें, भावनाओं के उफान में न बहें। इस प्रकार आप अपना नुकसान करेंगे। कुछ लोग भावना के उफान में बह जाया करते हैं। शुरू शुरू में उनका जोश दूध में आए उबाल के समान खत्म हो जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति तब कहीं के नहीं रहते। इसीलिए दूध में आए उबाल के समान आप कभी भी कार्य न करें। पहले संकल्प कर लें खूब दृढ़ता के साथ, तब काम में लगें। अगर बाद में चलकर ठंडे ही पड़ना है तो बेहतर है आप काम ही न करें। काम में

नमस्कार, मैं हूं गौरव आसुदानी टेक ईगल से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

भावना में बहकर काम करना हमेशा नुकसानदायक होता है, इसलिए पहले कुछ बातों पर खूब विचार कर ले, जिसमें से एक है दृढ़ संकल्प, दूसरा अटूट इच्छा शक्ति, तीसरा अनवरत कार्य और चौथा निरंतर सतर्कता। कोई भी कार्य करने से पहले दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। अपने मन को अच्छी तरह ठोक बजाकर देखें, फिर दृढ़ संकल्प कर लें और जब आपको पूरा विश्वास हो जाए तो फिर आगे कदम बढ़ाएं। इसके साथ साथ आप में अटूट इच्छा शक्ति भी आवश्यक है। संपत्ति अर्जन के लिए अटूट इच्छा शक्ति, पैसे से पैसे की हिफाजत और उसको संभाले रखना, संपत्ति की भूख बनाए रखना, निरंतर उस पर ध्यान रखना आवश्यक है। अटूट इच्छा शक्ति के ही बल पर आपका दृढ़ संकल्प कायम रहेगा। अपने कार्य में अधिक से अधिक समय दें, व्यर्थ समय न गंवाएं। जितना ही ज्यादा समय आप अपने कार्य में देंगे, उतनी ही शीघ्र आपके कदम सफलता की ओर बढ़ेंगे। आज का कोई भी काम आप कल पर बाकी न रखें, हर दशा में उसको निपटा डालें। मन भावन कार्य आपकी मंजिल सरल बनाएगा। इसके बाद आप निरंतर सतर्कता से काम लें, जल्दबाजी में आकर कोई काम न करें, अनावश्यक पूंजी न लगाएं। कोई भी कार्य करते समय आप उस पर सोच लें, अच्छी तरह विचार कर लें, इसके बाद निर्णय लें। अपने कार्य में निरंतर सतर्कता बरतें। एक छोटी सी भूल भी आपका बना बनाया खेल बिगाड़ सकती है, इसीलिए सावधानी बराबर बरतें। वाहन चालकों के लिए एक नारा है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यह नारा वास्तव में जीवन के हर क्षेत्र में बड़ा सार्थक है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर लागू होता है। आपकी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दुर्घटना से आशय केवल शारीरिक चोट से ही नहीं है, वरन अन्य प्रकार की हानि से भी है, आर्थिक हानि, मानसिक हानि, एक प्रकार की दुर्घटनाएं ही मानी जाएंगी। इसीलिए सतर्कता आवश्यक है। प्रत्येक कार्य सतर्कता से करने वाला धोखा नहीं खाता, यह एक निश्चित प्रमाणित बात है। कम से कम संपत्ति, व्यापार, लेन देन के मामले में सतर्कता बरती जानी चाहिए। अगर आप सावधानी से काम न लेंगे तो आपको हानि हो सकती है, अर्थात दुर्घटना घट सकती है।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

संपत्ति का बचाव सतर्कता से होता है। जब तक आप सतर्क न रहेंगे, आपकी संपत्ति सुरक्षित रूप से आपके पास न रहेगी। पैसा आता बड़ी कठिनता से है और चला जाता है बड़ी सरलता से। आने में समय लगता है और जाने में पल की देर नहीं। इसीलिए आपने सतर्कता न बरती तो एकत्रित संपत्ति फुर से उड़ जाएगी। संपत्ति पिंजरे में बंद चिड़िया के समान होती है, जरा सा मौका मिला कि पिंजरे से फुर। इसलिए जब तक आप बहेलिए के समान चालक ना होंगे, संपत्ति रूपी चिड़िया को हमेशा अपने जाल में नहीं रख सकते। इस कारण सतर्कता से काम लेना आवश्यक है। यही बातें अपना महत्व रखती हैं। संपत्ति कौन नहीं प्राप्त करना चाहता? पैसा किसे प्यारा नहीं है? जेब में सैकड़ों रुपया रखने पर भी राह चलते पड़ा एक छोटा सा सिक्का भी आदमी उठा लेता है। यह उसकी संपत्ति लोलुपता का प्रतीक है। संपत्ति प्राप्त करना वास्तव में एक तपस्या है। इस तपस्या को करने के लिए बड़ा साहस, बड़ी हिम्मत चाहिए। जब तक दृढ़ संकल्प, कठोर श्रम न होगा, संपत्ति पास नहीं आ सकती। इसीलिए आप अगर संपत्ति चाहते हैं तो इस नियम का पालन करें। आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप सब कुछ पा सकते हैं। अपना एक उद्देश्य बना लीजिए, उसका मनन करिए, फिर इस पर अमल करिए, बराबर लगे रहिए। बूंद बूंद कर आपका घड़ा भर जाएगा। संपत्ति प्राप्त करना कोई बड़ी बात, चमत्कार या भाग्य का खेल नहीं है, वरन सीधा सादा यही फॉर्मूला है। हर आदमी इसको प्राप्त कर सकता है। इसके लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। अनपढ़, अंगूठा छाप आदमी भी करोड़पति बन जाते हैं। इस प्रकार के भी धनवान इस संसार में भरे पड़े हैं कि जिन्होंने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, क ख ग भी नहीं पढ़ा। अतएव अगर आप में यह कमजोरी है तो पीछे न हटें। शिक्षा, स्कूली योग्यता केवल सामान्य सहारा है। संपत्ति प्राप्त करने के लिए जो वास्तविक योग्यता चाहिए, वह आपके ही क्यों, हर आदमी के भीतर है। वास्तविक योग्यता, दृढ़ संकल्प, निरंतर श्रम, सतर्कता, जिनकी चर्चा की जा चुकी है, यह गुण हर एक में है। प्रत्येक मनुष्य में इस प्रकार के गुण जन्मजात हुआ करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इन पर अमल करें, अपने भीतर की छिपी शक्ति को पहचानें। भाग्य के नाम पर एक बहुत बड़ा वर्ग गुमराह कर दिया गया। मनुष्य को कुछ नहीं करने देता है, उसे अकर्मण्य बना देता है। किसी कार्य में हाथ डालने की असफलता के कारण वह इस बात को मान लेता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है। फिर उस असफलता के बावजूद उस काम में हाथ लगाए रखने पर सफलता निश्चित न हो, यहीं पर आदमी सबसे बड़ा धोखा खाता है। हीरे की खोज के लिए एक आदमी ने थोड़ी सी जमीन ली। जब काफी खुदाई के बाद कुछ हाथ न लगा, उसने छोड़ दी, दूसरे ने ली। थोड़ा सा और खोदने पर दूसरे को एक बड़ा हीरा मिल गया। क्या कहोगे इसे आप, भाग्य? पहले वाला ठेकेदार अपने आलस्य, अपनी अकर्मण्यता, अपनी हड़बड़ी पर इसे भाग्य की संज्ञा दे पर्दा डाल देगा। तकदीर में नहीं था, मिलता कैसे? जिसकी तकदीर में था उसे मिला। इस प्रकार की धारणाएं केवल निर्बल मन और श्रम तथा संकल्प से डरने वाले लोग किया करते हैं। भाग्य वास्तव में एक धोखा और अपनी असफलता पर पर्दा डालने का एक बहाना मात्र है। इसीलिए भाग्य की बात पर विश्वास करने की सलाह हम कभी नहीं दे सकते हैं। हीरे वाले मामले में पहले का निराश हो जाना, असफलता को सत्य मान लेना, अपने श्रम से मुंह चुराना ही उसकी हानि का कारण बन गया। अगर वह थोड़ी मेहनत और कर लेता तो शायद उसे हीरा प्राप्त करने में सफलता

0: रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक बिना पिए मेरे को चलाओ, और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है, तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो अब, और हाँ हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
2: एक प्रश्न आप स्वयं से करें, आपका भाग्य विधाता कौन है? जब आप इस प्रश्न पर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे तो आपके अलावा दूसरा व्यक्ति न होगा, तब इसका अर्थ यह रहा कि आप अपना भाग्य स्वयं बना या बिगाड़ सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है, और इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि हम जो कुछ भी हैं या जिस किसी भी दशा से गुजर रहे हैं, वह सब हमारे कार्यों का ही परिणाम है। सोचिएगा जरा, आप स्वयं अपनी वर्तमान दशा या हालत के लिए जिम्मेदार हैं। इसका दोष या श्रेय ईश्वर अथवा भाग्य पर रखकर आप अपनी कमजोरियां छिपाते हैं, स्वयं को ही धोखा देते हैं। इस बात को आप मानेंगे तब ईश्वर क्या है? एक बार यही प्रश्न एक व्यक्ति ने बर्ट्रेंड रसेल से पूछा था। रसेल का जवाब था, मन को शक्ति देने वाली एक आध्यात्मिक कल्पना का नाम ईश्वर है। ईश्वर का नाम लेकर उस पर विश्वास कर हम मन में शक्ति का एकीकरण कर कार्यरत होते हैं। हमारा विश्वास मजबूत होता है कि हमारे साथ ईश्वर है, हम इस कार्य में सफल होंगे। आत्मविश्वास को दृढ़ बनाने के लिए ईश्वर का अस्तित्व बनाया गया है। इसके ही साथ साथ ईश्वर की कल्पना मनुष्य को भयभीत भी करती है। एकांत में भी मनुष्य कोई पाप या गलत काम न कर सके, इसी आधार पर उसे सर्वव्यापी सर्वदृष्टा बतलाया गया है। वास्तव में वह सर्वव्यापी नहीं है, कण कण में ईश्वर कैसे हो सकता है? मनुष्य नितांत अकेला है, कोई पाप कर रहा है, अपने एकांत पर उसे पूरा विश्वास है कि कोई नहीं देख रहा है। ठीक इसी मौके के लिए ईश्वर का अस्तित्व बनाया गया है कि सावधान, वह देख रहा है, वह सर्वव्यापी है, तुम्हारे इस पाप को देख रहा है। मनुष्य को एकांत में भी सुमार्ग पर जाने से रोकने के लिए यह सिद्धांत है, लेकिन वास्तव में ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। मनुष्य पर नियंत्रण रखने के लिए किसी न किसी शक्ति की आवश्यकता तो है ही। इसी आधार पर ईश्वर का निर्माण किया गया, और इसी प्रकार असफलताओं को रोकने के लिए, अपने दोष पर पर्दा डालने के लिए भाग्य का भी निर्माण कर दिया गया। इस प्रश्न का यही उत्तर सही है, हम स्वयं अपने भाग्य विधाता हैं। जैसा कार्य हम करेंगे वैसा फल पाएंगे, इसीलिए भाग्य को आप दोष न दे। चींटी को देखें, वह कितनी बार चढ़ती गिरती है, अगर वह भाग्यवादी होती तो फिर चढ़ ही न पाती। निरंतर प्रयास करती है, सफल हो जाती है, वह भाग्य नहीं कर्म करके दिखलाती है। इस कारण बराबर कार्य में लगे रहें। सफलता हाथ आए या फिर असफलता, सफलता पर प्रसन्न होकर अपनी प्रगति को धीमी न करें। असफलता पर घबराकर या निराश होकर मैदान छोड़कर न भागें। अपना कार्य बराबर आगे बढ़ाते रहें। जो उद्यम करते हैं परिश्रमरत रहते हैं, निरंतर अपने कदम का ध्यान रखते हैं, वह अवश्य जो भी इच्छा करते हैं सब पा जाया करते हैं। आप भी अपने को ऐसा ही बनाएं। सचमुच जब एक बार आप सफलता प्राप्त कर लेंगे तो आप इसका मतलब समझ सकेंगे, और फिर आप बराबर प्रगति पथ पर बढ़ सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM और यह है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। दोस्तों, स्वास्थ्य को सहज स्वास्थ्य ये कहते ही लोग कहते हैं कि स्वास्थ्य सहज कैसा है। स्वास्थ्य को तो हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखो, लोग जिम जा रहे हैं, अस्पताल जाना पड़ता है, विटामिन की सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, इतनी मशक्कतें कर रहे हैं, तब जाके व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। मगर क्या ये सही में स्वास्थ्य का डेफिनेशन है? क्या स्वास्थ्य के लिए इतनी मशक्कत करने की जरूरत है कि हम कहीं और से दुकान से खरीद के ले आ रहे हैं, हम डॉक्टर की दुकान पे, दवाई की दुकान पे, जिम एक्सरसाइज की दुकान पे इत्यादि से क्या ये स्वास्थ्य सहजता से हमें हासिल हो सकता है? व्यक्ति आसानी से अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए क्या कर सकता है, इस बारे में बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं जाता। ऐसे में जब हम प्रकृति से चिकित्सा की ओर रुख करते हैं तो पता चलता है कि प्रकृति ने हमें नेचुरली प्राकृतिक रूप से स्वस्थ बनाए रखा है, और हम प्रकृति के दिए हुए नियमों से या प्राकृतिक जीवन शैली से जब दूर होते जाते हैं तो हमारे शरीर में बीमारियां आने लगती हैं। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम बिना खर्चे के, बिना ज्यादा मेहनत किए बगैर अपने आप को स्वस्थ रख सकें? और ये बिल्कुल सहजता से संभव है। आइए आज की बातचीत में कुछ ऐसे ही विषयों पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट के रूप में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं और भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं और वहीं से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो ये बात समझी जाए कि लोग ये जो समझते हैं कि स्वास्थ्य दुकानों से खरीदने वाली चीजें, लोग सोचते हैं तबीयत बिगड़ी तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमारा स्वास्थ्य वापस लौटाएंगे। स्वास्थ्य के लिए दवाई की दुकान, विटामिन सप्लीमेंट्स, ये वो, आजकल तो बहुत सारे लोग बहुत सारी दवाइयों की दुकान अपने घर में ही रख लेते हैं। वो जितनी दवाइयां खाते हुए देखते हैं उनको देख के हैरानी होती है, बाप रे, स्वस्थ रहने के लिए इतनी दवाइयां खानी पड़ रही हैं, ऐसा भी लगता है। और कुछ लोग स्वस्थ रहने के लिए जिम मेंबरशिप, ये मेंबरशिप, योगा क्लास, लाफ्टर क्लब और न जाने ऐसे अलग अलग आयामों में अपना पैसा खर्च कर रहे हैं कि स्वास्थ्य बनाए रखें या स्वास्थ्य को वापस ले आया जाए। तो आप क्या इसे स्वास्थ्य का डेफिनेशन समझते हैं कि ऐसे हम दुकानों से हम स्वास्थ्य खरीदें?
1: कुछ भी चीज खरीद के नहीं मिलती है भैया, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत खुद को करनी पड़ती है, खासकर स्वास्थ्य के लिए। ये नहीं हो सकता कि कोई जिम में एक्सरसाइज करे उसका बेनिफिट हमको मिले, ये नहीं हो सकता कि कोई किलोमीटर मैराथन दौड़े और उसके शरीर की जो ताकत है वो हमें मिल जाए, ये हमें खुद करना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य पाने के लिए हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद अपने भोजन पे कंट्रोल करना पड़ेगा और खुद एक्सरसाइज करनी पड़ेगी।
0: तो दोस्तों, ये बात आपने समझ लिया है कि स्वास्थ्य के आसान तरीके स्वयं पर कार्य करने पर है। स्व पर अनुशासन से अगर हम उस सेल्फ डिसिप्लिन से काम करना शुरू करें, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है उस डिसिप्लिन को फॉलो करें, हर दिन एक्सरसाइज करना है, शारीरिक व्यायाम करना है, इत्यादि विषयों पर ध्यान रखने से ये चीज संभव। डॉक्टर साहब, कल की बातचीत में हम ये बात कर रहे थे कि फैट को लेकर, वसा की आवश्यकता को लेकर हम अनेक चीजों के बारे में बातचीत कर रहे थे। प्रायः लोग फैट कहते ही घबरा जाते हैं, अरे नहीं, फैट से तो बचने की जरूरत है, इन चीजों से तो बचाव करने की जरूरत है। तो बहुत सारे लोग फैट नहीं खाने के बारे में आज कॉन्शियस होके जा रहे हैं कि भाई नहीं, ये नहीं खाना, इसमें बहुत तेल की मात्रा है, इसमें तो बहुत घी पड़ा हुआ है, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसा लोग कहते आ रहे हैं। और आपने ये भी समझाया था कि नहीं, शरीर के लिए वसा आवश्यक है, कितनी मात्रा में आवश्यक है उस चीज को समझा जाए। आजकल ये भी चीज देखने को मिलती है, क्योंकि आजकल हर कोई साल में एक आध बार ब्लड टेस्ट तो करा ही लेता है, हेल्थ चेकअप्स के लिए लोग जागरूक होने लगे हैं और सोचते हैं कि भाई हाँ हाँ, ये कराने से हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं। उसमें अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। फिर लोग ये भी चीजें सुनने लगे हैं कि एक गुड फैट होता है, एक बैड फैट होता है। अब इन सब चीजों को समझा जाए कि अच्छा फैट क्या है, ये क्या है?
1: फैट को हम जब भी मतलब डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको या तो एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स के रूप में करते हैं या फिर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स में। तो जो सबसे कॉमन तरीका है उसको हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के रूप में अगर हम डिवाइड करें तो सैचुरेटेड फैट वो है जो सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर, मतलब कोई भी चीज जिसको आप समझते हैं कि जिससे मोटापा आपका बढ़ सकता है और आपके कमरे के टेम्परेचर पे वो अगर सॉलिड है तो वो आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें सबसे कॉमन है बटर, चीज, आपका रेड मीट के सारे अवतरण, पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल। इस समय, आज के समय में सबसे खराब जो तेल है वो पाम ऑयल है, क्योंकि हम आप मैं सभी बच्चे जो मेरे कांटेक्ट में आ रहे हैं और आपके सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि पाम ऑयल इस समय हमारे आइसक्रीम से लेकर, सोचिए हमें अभी चिप्स पे पहुंचा नहीं हूं, आइसक्रीम, चॉकलेट, डोनट, आप जिसमें ढूंढिए उसमें पाम ऑयल मिल रहा है। अगर आप मोटापे से और मोटापे की वजह से होने वाली बीमारियों से बचना चाहते हैं तो प्लीज आप जो इंग्रेडिएंट्स में अगर आपको पाम ऑयल दिखता है तो प्लीज उस चीज को छोड़ दीजिए। ये इतना ज्यादा हमारे यहाँ भोजन में इस्तेमाल हो रहा है और हर ये इसकी एक खासियत है, ये सस्ता है इसीलिए इसका प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है जो हमारे शरीर में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको LDL बोलते हैं, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसको ये बहुत बुरी तरीके से बढ़ाता है और इसी की वजह से सारी हार्ट डिजीजेस होती हैं। तो प्लीज जितनी भी आप देखिए आपकी नजर अच्छी है, जो भी तेल जमा हुआ है उसका प्रयोग कम करिए और भोजन में जो भी सामान आप देख रहे हैं कि वो पाम ऑयल है उसके अंदर, प्लीज उसका प्रयोग कम करिए। दूसरा, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में बात की, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो लिक्विड्स होते हैं, मतलब वो तरल होते हैं आपके नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे और इनका प्रयोग भी कुकिंग के लिए होता है और ये जो है ये आपके हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन मतलब HDL जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाते हैं। तो इनका प्रयोग यदि हम भोजन में करेंगे तो ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। इसमें सबसे कॉमन जो एग्जांपल लिया जाता है, मैं वेजिटेरियन सोर्सेस की पहले बात करूंगा, वो है ऑलिव ऑयल का। और जिस फल के बारे में इस समय सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं पूरे विश्व भर में वो है एवोकाडो। एक हरे रंग का फल जो पहले सिर्फ विदेशों में मेक्सिको और कोलंबिया, इन लैटिन अमेरिका कंट्रीज में बहुत ज्यादा मिलता था, अब वो पूरी दुनिया में मिल रहा है, हमारे आपके शहर में भी मिल रहा है और पहले महंगा था और हमारे भारतीय किसानों ने उसे अपने देश में उगाना भी शुरू किया है और ये बहुत अच्छा फल है। इसका चटनी के रूप में, इसका डिप बना के लोग खाते हैं, इसको रोटी में लगा के खा रहे हैं, आप खा सकते हैं, कुछ नहीं, कच्चा फल उसको निकाल लीजिए, उसमें थोड़ा नींबू डाल दीजिए, टमाटर डाल दीजिए, उसको मिला लीजिए, हल्का सा नमक डाल लीजिए, वो एक अच्छा खासा चटनी के रूप में तैयार हो जाता है। ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जा रहा है एवोकाडो, और एवोकाडो आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ाता है और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को कम करता है। तो ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। वॉलनट, अखरोट और चिया सीड और फ्लेक्स सीड, जो हमारे, इसके बारे में हम लोग और आगे बात करेंगे, ये तीन चीजें, या सोयाबीन से बना हुआ टोफू, इसके लिए भी बहुत लोग लिख रहे हैं। भारतीयों के लिए मैं हमेशा मानूंगा कि वो अखरोट का प्रयोग करें, वो अपने देसी ऑयल जो है आपके सरसों हुआ उसका प्रयोग करें, आप अगर अफोर्ड करें थोड़ा बहुत ऑलिव ऑयल का प्रयोग करें। इवन भैया ये तक कहा जा रहा है कि आपके घर का जो घी है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपने जो मलाई निकाली है उससे जो घी बनाया है वो सबसे अच्छा है आपके शरीर के लिए, तो इसका प्रयोग करिए, ये आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा और अच्छा रखेगा।
0: जैसे आपने कहा कि ये फैट के दो कैटेगरीज हैं, गुड फैट, बैड फैट, LDL, HDL, ये चीज हम समझते हैं। हम दिनों दिन ये भी देखते जा रहे हैं कि लोग इन सभी चीजों के बारे में जागरूक भी हो रहे हैं, ज्यादा चीजें आजकल मीडिया, सोशल मीडिया की वजह से भी लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहीं ना कहीं किसी ने व्हाट्सएप पे वीडियो भेज दिया तो लोग कहते हैं अच्छा अच्छा मैंने आज वीडियो में ये चीज सुना था और उसके हिसाब से मैं ये चीज करना चाहता हूँ। अब फैट के इस्तेमाल में सबसे ज्यादा जो चीजें आती हैं, बेसिक से अगर हम शुरू करें तो लोग भोजन बनाने के लिए जो तेल का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में समझा जाए। आपने कहा पाम ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, उससे बचने की जरूरत है, हालांकि वो सस्ता है मगर वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये तो एक बहुत बड़ी चीज है जो हम इस बातचीत से उठा रहे हैं। मगर जो भोजन बनाने के लिए हम रेगुलरली तेल का इस्तेमाल करते हैं, खासकर हमारी माताएं बहनें या हमारे भाई जो भोजन बनाते भी हैं घर में, तो उनको क्या ध्यान रखना है कि कितना तेल लिया जाए, कौन सा तेल लिया जाए। लोग ये भी कहते हैं कि घर में एक प्रकार का तेल नहीं होना चाहिए, अलग अलग प्रकार के तेल भी बदलने चाहिए, अनेक चीजें ऐसे सुनने को मिलते हैं। ये बताएं कि कौन सा तेल इस्तेमाल किया जाए, कितनी मात्रा में उसका इस्तेमाल हुआ जाना किया जाना आवश्यक है।
1: इसका उत्तर ये होगा कि जो तेल आपके लोकल आपको मिल रहे हैं उसका सबसे ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। घर का निकाला हुआ देसी घी से अच्छा कोई घी नहीं, आपके एरिया में सरसों के तेल से अच्छा कोई सरसों का तेल नहीं,

0: तो मैं सबको ये बोलता हूं कि अगर आपको भोजन बनाने में जो तेल है उसका जरूर प्रयोग करिए, मगर आप अननेसेसरी भोजन को तलना बंद करिए। जैसे आप आलू परवल की अगर सब्जी खा रहे हैं तो प्लीज उसको भाप में या प्रेशर कुकर में उसको बना लीजिए, या कढ़ाई में उसको बर्तन उसका ढक्कन बंद करके बना लीजिए, बनस्पत उसको तेल में तल कर उसको बनाने में आप उसका प्रयोग करें। एक चीज और देखी गई है, जहां ज्यादा भोजन बनता है और जल्दी भोजन बनाना होता है वहां सब चीज को तल दिया जाता है। हमारे घर में जनसंख्या 3-4 की है इसलिए रोटी बनती है, शादी ब्याह में जब 200-300 आदमी खाने आ रहे हैं तो तुरंत पूरी तल दी जाती है। तो ट्राइंग कुक्स द फूड फास्टर, तो इसीलिए आप कहीं भी बाहर जाएंगे खाना खाने तो वहां पर आपको तली और चीजें ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि वो जल्दी उनको बनाना है और वहां कंसंट्रेशन न्यूट्रिशन पे नहीं होता है, वहां कंसंट्रेशन टेस्ट पे होता है। और फ्राइंग ऑलवेज इंक्रीजेस टेस्ट, तली हुई चीज हमारी जो जिह्वा है उसको ज्यादा अच्छी लगती है। जो हमारा बर्गर है उसकी जो बीच की पैटीज है वो तली हुई होती है, वो बड़ी अच्छी लगती है। जो फ्रेंच फ्राइज है, जो तला हुआ आलू है, वो तलने के वजह से अच्छा लगता है। आप एक आलू को तल के खाइए और एक आलू को उबाल के खाइए, जो तला हुआ आलू है वो ज्यादा आपकी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसीलिए मैं सबको ये बोलूंगा कि जो आपका लोकली प्रोड्यूस्ड ऑयल हो उसका प्रयोग करिए, और आप घर का बना हुआ, घर का तला हुआ वो भोजन भी करिएगा तो आपके शरीर के लिए अच्छा होगा।
1: जब आप ये बात कह रहे थे डॉक्टर साहब, मुझे सहसा ये बात याद आई, मैं अक्सर ये चीज कहता था और अभी भी कहता हूं कि जब गरम गरम समोसा तेल से तला हुआ निकलकर सामने आता है तो उसके प्रति जो आकर्षण है और उसके प्रति जो भाव है, अगर उसी के साथ साथ थाली में एक एप्पल ले आया जाए, या आजकल तो आम का सीजन है तो आम भी अगर ले आया जाए, तो भी व्यक्ति का हाथ सीधे समोसे पर जाता है, आम या एप्पल पर नहीं जाता।
0: भैया अगर आप एप्पल कहेंगे तो मेरा हाथ नहीं जाएगा, पर अगर आम कहेंगे तो पक्का मेरा हाथ आम पे चला जाएगा।
1: समझता हूँ कि आम पर हाथ भी इसलिए जाता है क्योंकि वो साल में कुछ ही महीने नसीब होता है।
0: कुछ ही महीने, यस यस यस।
1: तो ये बात समझ में आती है कि तेल में तली हुई चीजें ज्यादा स्वादिष्ट कर महसूस होती हैं, इसलिए व्यक्ति उसकी तरफ खींचा चला जाता है, मगर ये चीजें स्वास्थ्य के लिए इतनी लाभप्रद नहीं है। इसलिए किसी भी चीज का, बहुत ज्यादा तली हुई चीजों का खाना ये अच्छी चीज नहीं है। अगर आप बाहर खाते हो तो बाहर के तले हुए चीजों को खाने से अच्छा घर में उन चीजों को तल कर खाना है। अब बात समझ में आती है कि तले हुए भोजन के प्रति तेल को कम करने के लिए क्या जरूरत है, ये बात समझ में आ रही है। आप ये बात कह रहे थे कि आजकल लोग फ्लैक्स सीड्स की बात करते हैं कि भाई फ्लैक्स सीड्स खाना चाहिए, उसको रोस्ट करके खा लेते हैं, कई उन्हें डब्बे में भर के रख भी लेते हैं कि भाई आते जाते इसको खा लेंगे। आजकल गर्मियों के दिन है तो लोग चिया सीड्स का भी प्रचलन बढ़ गया है, लोग इंटरनेट पे चिया सीड्स के ड्रिंक्स और स्मूदी बनाने के और फ्रूट जूसेस में से डालने के अनेक चीजों के बारे में बात करते हैं। ये क्या नई चीजें हैं?
0: ये बहुत पुरानी चीजें हैं। फ्लैक्स सीड को हिंदी में अलसी का बीज बोलते हैं और चिया को सब्जा बोलते हैं, और चिया का तो एक दूसरा नाम है तुलसी के बीज। और चिया सीड्स या सब्जे के बिया को सुपर फूड कहा गया है। आप कोई भी फालूदा खाएंगे जो राजस्थान या गुजरात में बहुत प्रचलित है, उसमें वो इस बिये को जरूर डालते हैं। और ये कहा जाता है कि सब्जे का जो बिया है वो ठंडी तासीर है, उसको पेट को ठंडा करता है। उसमें फाइबर बहुत है, वो एक छोटा सा बिया जिसको पानी में डालते हुए फूल जाता है, इसलिए वो बड़ा साइज उसका हो जाता है, तो वो हमारे पेट को भरने में भी उसका प्रयोग होता है। और इसमें भैया ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत जरूरी है।

0: भैया ओमेगा थ्री, ओमेगा सिक्स, ओमेगा नाइन जो है, ये तीन तरह के फैटी एसिड्स कॉमनली इनके बारे में बात होती है, और इसको ये गुड फैटी एसिड्स हैं, ये हमारे हृदय की। अच्छा, फैट दो चीज सबसे बुरा दो दो जगह करता है। एक हमारे हृदय की धमनियों में ये जमा हो जाता है और वो हमारे हृदय को ब्लॉक कर देता है, तो एक उससे हमें हार्ट की समस्या होती है, और जब वो ब्लॉक करता है तो एक जगह खून हमारे हृदय को नहीं मिल पाता है, तो उस वो जो पेन होता है उसको एंजाइना पेन या हृदय का दर्द बोलते हैं, और फिर वहां पे जब रक्त संचार नहीं हो पाता है तो हृदय काम नहीं कर पाता, तो वो हार्ट अटैक जो कॉमन भाषा में कहा जाता है वो होता है, और आदमी की अगर उसको सही समय पर इलाज नहीं मिले तो मृत्यु हो सकती है। दूसरा मोटापा, जो फैट है, एक तो हृदय को हमारे खराब करता है, दूसरा हमारे शरीर को खराब करता है। जब ज्यादा हम मोटे हो जाते हैं हमारे जगह जगह फैट डिपॉजिट हो जाता है, जितने भी जोड़ हैं उनको ज्यादा वजन उठाना पड़ता है, तो हर जगह हर जोड़ में दर्द होने लगता है, एड़ी में दर्द होने लगता है, हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। तो फैट का जो दो जगह जो सबसे बड़ा नुकसान, वो हृदय पर है और हमारे पूरे शरीर के हर अंग पर है। अगर हम अच्छा फैट खाएं, अच्छा फैट मतलब हम ओमेगा थ्री सिक्स नाइन ये खाएं, तो हमारे हृदय को बहुत अच्छा लगता है। ये जो हमारे हृदय की धमनियों में जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा होता है उसको ये निकालने का भी काम करता है, और हमें जो हमें ताकत भी देता है। मेजरली ये सारी चीजें हमें फ्लेक्स सीड से, चिया सीड से, अखरोट से, बादाम से, एवोकाडो से और सनफ्लावर ऑयल से, इन सब चीजों, ऑलिव ऑयल से, इनसे मिलती है। तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम गुड फैट का प्रयोग करें और बैड फैट का प्रयोग नहीं करें। और बैड फैट वो चीज हो गई जो बहुत बुरी तरीके से तली हुई है, जितनी भी रेड मीट्स हैं उनको उनको अब सब बुरा माना जा रहा है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छा और सही भोजन करें।
1: दोस्तों, ये बात स्पष्ट हो रही है कि हम कई चीजें तो परंपरागत तरीकों से करते आए हैं, जैसे अलसी के दानों की बात हुई, या जैसे डॉक्टर साहब अभी चिया सीड्स की बात कर रहे थे, सब्जी को हम फालूदा गर्मी के दिनों में पेट को ठंडक करने के लिए पानी में मिलाकर अनेक शिकंजियों में डाल के हम पीते आए हैं। अब इन सब चीजों का स्वास्थ्य के लिए कितना फायदा है, कितना लाभ है, वो हम चीज समझते आए हैं। आज हमें सिर्फ उन्हीं चीजों को समझकर वापस जीवन में उन चीजों को शामिल करना है जो हानिकारक चीजें हैं, जैसे बहुत ज्यादा तली हुई चीजें हैं, या रेड मीट है, यानी मांसाहार में कुछ ऐसी चीजें हैं तो लाल मांस है, वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है, और वो आपके शरीर के लिए, खासकर आपके हृदय के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए इन चीजों से बचने की जरूरत है। आलू के चिप्स या पाम ऑयल का इस्तेमाल, आजकल जो आइसक्रीम्स में भी पाम ऑयल और चॉकलेट्स में पाम ऑयल इत्यादि का इस्तेमाल हो रहा है, उन सब से बचने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ भोजन आप अपने घर में बनाएं, घर में जो गुड फैट के लिए आज डॉक्टर साहब ने बात कही, जैसे हमारे यहाँ लोकल मिलने वाले जो तेल हैं, जैसे सरसों का तेल है, जैसे सूरजमुखी के सीड्स का, उनके बीजों का तेल है, या घर में ही बनाई हुई घी, इनका इस्तेमाल करना बहुत लाभप्रद है। और साथ साथ मात्रा के बारे में ध्यान रखना है, और जो चीज हम खा रहे हैं वो अच्छा भी खा रहे हैं तो भी शारीरिक व्यायाम, कसरत, विहार, इसका भी ध्यान रखना आवश्यक है। फैट से जुड़े हुए अनेक विषयों पर आज नई जानकारियां हासिल हुई हैं। मैं समझता हूँ आप सबके लिए भी ये फायदेमंद होगा। अगर आपके घर में कहीं पर अलसी के दाने आपने रखे हुए हैं, अलसी के बीज रखे हुए हैं, तो वापस निकालिए, उनका हर दिन इस्तेमाल करना आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि ये गुड फैट देने वाली चीजें हैं। दोस्तों, आज की बातचीत में यहीं विराम लेना होगा, समय इशारा करता है, मगर डॉक्टर साहब आज हमारे साथ जुड़े और इन विषयों पर इतनी अच्छी जानकारियां दी जो हम सबके स्वास्थ्य को सहज वापस लौटाने में लाभप्रद होगा। डॉक्टर साहब, हमारे सभी श्रोता मित्रों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद। ओम शांति।
1: दोस्तों, आज की बातचीत में बस इतना ही। सहज स्वास्थ्य में क्या करना है, आज ये बात समझ में आई है। आशा करते हैं कि आप जो कुछ भी सुन रहे हैं उन सबको समझकर जीवन में अपनाएं और तुरंत परिवर्तन करके देखें कि आपको क्या फायदा हो रहा है। आपको जो भी महसूस हो रहा है, जो फायदे आप गिनाए जा रहे हैं वो आपके जीवन में देखने को मिल रहे हैं या नहीं, ये भी आप रेडियो के नंबर्स पर फोन करके या व्हाट्सएप के जरिए या मैसेज करके बता सकते हैं 94-14-14-15 पर। रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम जारी रहेंगे, फिर होगी मुलाकात, तब तक सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। जहाँ खुशी की बात कर रहे थे, तो एक बात जो हमारे सामने आई थी वो ये कि जब तक अपनी सही पहचान नहीं होगी, जहाँ तक मैं ये शरीर थी तब तक मेरी सारी चीज़ें इससे जुड़ गई थी, चाहे वो परफेक्शन की बात थी, चाहे मेरी खुशी की बात थी, चाहे मेरी अचीवमेंट्स की बात थी। लेकिन यहाँ जहाँ मैंने थोड़ा सा माइंडसेट शिफ्ट किया, अगर हम आपको पिछली कड़ी याद दिलाएं, तो बात यहाँ तक आई थी कि क्या मैं दिन भर ये मान के चल सकता हूँ कि जो ड्रेस मैंने पहनी है वो मैं हूँ। अगर ये ड्रेस जो मैं हूँ ये मैं बन जाऊँगा, तो फिर मेरी पूरी की पूरी जो एनर्जी थी, जो कॉन्सेंट्रेशन थी, वो इस ड्रेस पर थी। तो बात यहाँ पर आई थी असली पहचान की, कि मैं वो चैतन्य शक्ति, वो कॉन्शियंट बींग हूँ, ये पता चल जाए और कंटिन्यूस रिमेम्बरेंस रहे तो आगे बात बढ़ाएंगे। पता चल गया, समझ में भी आ रही है, और जब हम बार बार ये कह रहे थे कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी दिखा। अब कंटिन्यूस रिमेम्बर कैसे करना है, लगातार याद कैसे रखना है, इस पर भी बात करेंगे। और हमारा सौभाग्य हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। जहाँ हम बात यहाँ पर आए थे कि मैं वो चैतन्य शक्ति हूँ, हमने ये कहा था कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम ये भी मान लें कि मैं यही हूँ। तो जिस तरह की बात की थी उसका थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब इस कड़ी में यहाँ बैठकर बात करते हैं बिल्कुल क्लियर लगता है, लेकिन बाहर निकलते ही वो सारी बातें जो हैं, जो जिन पर मैं अभी तक जी रहा था, वो फिर लौटती हैं। तो ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? जस्ट वॉन्ट टू रिवाइव दैट।
1: सी द प्रायोरिटी गेट्स सेट। मैं कौन, मेरा क्या क्या, जैसे हमने शुरू में भी देखा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज औरों के प्रति, परिवार के प्रति, काम के प्रति, लेकिन मेरे प्रति। तो जब हम कह रहे थे मेरे प्रति, तब हमने देखा कि कई बार आया, हाँ मेरे प्रति भी तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करता ना, मैं अपने शरीर का ध्यान रखता, बट आई लुक आफ्टर द बॉडी। सो आई थॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंडेड विद लुकिंग आफ्टर द बॉडी, बिकॉज आई थॉट हु एम आई, आई एम द बॉडी। बट बिकॉज आई डिडंट नो कि मैं ये चैतन्य शक्ति, आई एम दिस कॉन्शियंट बींग, आई नेवर पुट दैट इन द लिस्ट ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, द माइंड, द इंटेलेक्ट, आई हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, ये नहीं सोचा सारा। जैसे हमने देखो कितनी सारी बातें चेंज होंगे, मैं एनर्जी हूँ तो मृत्यु किसकी होगी, हु विल डाई, शरीर की डाई, फियर ऑफ डेथ विल फिनिश। You know, this is just a thought right now. हमें सिर्फ लग रहा है, हाँ fear of death finished. लेकिन जिस आत्मा से fear of death निकल जाता है, उनको जीवन में कोई और बात का डर नहीं लगता है. When you're talking of निर्भय जीवन, fearless life, वो वही experience कर सकता है जिसको death का डर नहीं हो. और death का डर, अपनी death का डर नहीं है, family की किसी की
0: death. एक बात मैं जोड़ना चाहूँगी कि आज जिस स्थिति में है ना लोग, वो डेथ को आत्मसात करने को तैयार है, यू नो, मे बी पेन के कारण, बट देन राइट नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल, बिकॉज इवन लाइक फॉरगेट अबाउट द एज, ये नहीं कह रही मैं कि बुजुर्ग ही ये मान रहे हैं, आज बहुत कम एज से भी लोग अपने जीवन की इम्पोर्टेंस को खत्म ही करते जा रहे हैं।
1: लेकिन वो क्योंकि अपने आप को ही नहीं जानते, हाँ। तो अपनी इम्पोर्टेंस क्या जानेंगे? अगर अपने आप को सिर्फ क्वालिफिकेशन और पोजीशन ही समझा, तब तो मार्क्स के लिए सुसाइड किया ना, क्यों किया? जस्ट बिकॉज मेरे मार्क्स उतने नहीं आए, आई हैड नो वैल्यू फॉर माई लाइफ, बिकॉज आई थॉट लाइफ वॉज ऑल अबाउट ओनली परफॉर्मेंस, अचीवमेंट, फिजिकल लुक्स, पोजेशन। तो वो सारे क्राइटेरिया जहाँ फुलफिल थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो रहे थे, so what happened, we said I don't want to live. Relationships mein maine samjha main kaun. Aaj bahut sare log emails likhte to wo kehte, you know, mera ye relationship workout nahi hua, I don't want to live. So death is still not you know, accepted ke haan bhale kabhi bhi, to wo lagta hai kyunki we are fed up of life, ke you know nothing is working out, success nahi aa rahi hai. Lekin ye sari cheezon ka perspective change ho jayega jab success bhi samajh mein aa jayega, meri success, not मेरी success. वो definition change हो जाएगी, my whole purpose of life will change. जब मैंने ये समझा कि I am the body, तब मैंने समझा जीवन कितना है, यहाँ से
0: the day I was born, of course,
1: तो इतने span में मुझे सब कुछ अचीव कर लेना है और जल्दी जल्दी करना है. That's where the belief came कि life is a competition. Everyone is in the race, क्योंकि हर एक ने सोचा इतने से इतना time है, सभी ने race में भागना है, जो करना है अभी कर लो।
0: और क्योंकि जगह भी उतनी है, उतने ही लोग हैं, तो मुझे मतलब जो ज्यादा यू नो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला जो थ्योरी,
1: तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी जब हमने बोला तो फिटेस्ट क्या, क्योंकि हमने सोचा दिस इज हु आई एम, पोजीशन इज हु आई एम, तो फिटेस्ट कौन है, जो ज्यादा फिजिकली हेल्दी है, जिसके पास ज्यादा धन है, पोजीशन है, वो फिटेस्ट है, भले वो इमोशनली बिल्कुल कमजोर हो, वो फिटेस्ट। तो उसको फिटेस्ट बनाने के लिए, सक्सेस को उस मात्रा में अचीव करने के लिए, हम गलत भी करने के लिए तैयार हो गए, हम अनएथिकल मेजर्स भी यूज करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि हमने सोचा इतने स्पैन में सब कुछ अचीव करना है। फिर हमने अपने आप को ये समझा तो हमने एक दूसरे के साथ कंपेयर करना शुरू किया कि बेटर वो है जिसके पास ज्यादा
0: चीजें हैं,
1: जो ज्यादा शारीरिक सुंदर है, बेटर वो है, ये फर्क नहीं पड़ता कि वैल्यूज किसके पास ज्यादा है। तो सारा पर्सपेक्टिव ही तो चेंज हो गया, क्योंकि मैं कौन हूँ की डेफिनेशन चेंज हो गई, सारा कुछ चेंज हो गया।
0: वैल्यूज की वैल्यू ही नहीं है।
1: आई डिड अ प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रन एंड वो इतने स्वीट से छोटे छोटे बच्चे, और हमने टॉपिक लिया, दे गेव द टॉपिक, हाँ, डज ऑनेस्टी वर्क इन टूडेज टाइम, एंड द क्वेश्चन फ्रॉम द चिल्ड्रन वॉज कैन अ ऑनेस्ट पर्सन बी सक्सेसफुल, मतलब वो भी एक क्वेश्चन मार्क था कि कैन अ ऑनेस्ट पर्सन बी सक्सेसफुल,
0: सब्जेक्ट वी आर कवरिंग,
1: और ये सब्जेक्ट उन्होंने ही दिया, तो लेकिन बहुत छोटे छोटे, एंड चिल्ड्रन कैन बी मोल्डेड वेरी इजिली, तो हमने उनसे ऐसे करते गए, आधे पौने घंटे के अंदर दे सेड यस वी प्रॉमिस वी विल बी ऑनेस्ट इन ऑल दोस थिंग्स, वो चले गए अपनी क्लास में। टीचर्स आकर बाद में बोलते हैं क्या फ़ायदा है ये सब उनको सिखाने का, बट ऑनेस्टी रियली डजंट वर्क इन डे टू डे लाइफ। आई सेड देन लेट्स गो बैक टू देम एंड टेल देम दैट, यू नो, लेट्स गो एंड टेल देम कि ऑनेस्टी डजंट वर्क, डिसऑनेस्टी चलती है। फिर देन दे से वो थोड़ी कर सकते हैं, उनको तो यही बोलना, आई मीन वी डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग, एंड यही आप सोचो कि जो हम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे हम पेरेंट्स हैं, चाहे हम टीचर्स हैं, जो हम बच्चों को वैल्यू सिखा रहे हैं, अगर एट द बैक ऑफ माई माइंड आई डोंट बिलीव इन इट, व्हाट विल आई टीच?
0: इट्स ऑफ नो यूज।
1: आई शेयर्ड विद दोस टीचर्स, आई सेड अगर आप क्लास में जाकर बोल भी रहे हो, बिलीव इट बिफोर, व्हाई नॉट बिलीव इट? दे सेड नहीं जी, प्रैक्टिकल में तो नहीं चलता है। और फिर अगर आपकी अंदर की सोच है कि प्रैक्टिकल में ऑनेस्टी वर्क नहीं करती, आप कितना भी जाकर वो बच्चों को समझाओ, एक तो आपकी सोच की वो वाइब्रेशन, सी दैट्स वेयर वाइब्रेशन प्लेज सच अ बिग रोल, आपकी वो कन्विक्शन ही नहीं जाएगी, आपकी वाइब्रेशन नहीं जाएगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देगी।
0: तो बच्चे डिसऑनेस्ट होके फिर आते हैं, फिर हम कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, आप डिसऑनेस्ट हो।
1: दैट वाज द थिंग, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एंड व्हाई इज ऑल दिस हैपनिंग, क्योंकि आई डोंट माइंड कि मैं झूठ बोल लूं, लेकिन मुझे मटेरियलिस्टिकली अचीव करना है। और फिर वो यही कहते, सभी का एक कॉमन बिलीफ था कि जो ऑनेस्ट होता है उसको लाइफ में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, जो दूसरे तरह के मेजर्स यूज करते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी सक्सेस। तो सक्सेस क्या? मटेरियलिस्टिक। क्यों? मैं कौन हूँ? मैं शरीर, शरीर को जितने कंफर्ट्स मिले उतना मैं कंफर्टेबल। व्हाट वी डिडंट अंडरस्टैंड कि हम जितनी बार झूठ बोलेंगे, जितनी बार हम अनएथिकल मेजर्स यूज करेंगे, हम अपने लिए यहाँ पीसलेसनेस क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए शांति ढूंढनी पड़ रही है।
0: यू नो अनदर वेरी स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम इट जस्ट कम टू मी, केम टू माय माइंड इज कि झूठ बोल दो, डिसऑनेस्ट हो जाओ, पकड़े नहीं जाना चाहिए। यू नो वो आपकी एक्सपर्टीज है, यू नो समवेयर ये एक बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम है।
1: झूठ बोलना दूसरे ने नहीं पकड़ना है, पकड़े पहले हम यहाँ जाते हैं, जो हम कितनी बार बोलते ना कि यहाँ क्यों वो क्लटर हो रहा है, क्यों वो ब्लॉकेज हो रहा है, हम यहाँ पकड़े जाते हैं। जैसे ही वी हैव डन समथिंग विच इज अगेंस्ट माय ओरिजिनल नेचर ऑफ ऑनेस्टी, यहाँ आई हैव क्रिएटेड, भले हम उसको दबा देते हैं वो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ क्रिएट हो गया। और जब एनर्जी गलत गई, रिजल्ट उसका कभी पॉजिटिव, हाँ वो वाला रिजल्ट आ जाएगा, आप जो ढूंढ रहे हैं वो वाला रिजल्ट आएगा, लेकिन साथ साथ ये भी आएगा। अब जब मुझे ये पर्सपेक्टिव मिला कि ये सब कुछ मेरा है, ये मैं हूँ, तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा? किसका ध्यान रखना? अपना ध्यान रखना। तो फिर मैं ये प्राप्त करने के लिए इसको यहाँ तकलीफ नहीं दूंगा, एंड दैट्स व्हेन एवरीथिंग विल चेंज। आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन माय वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स टू गेट मटेरियलिस्टिक सक्सेस,
0: बिकॉज़ दैट्स मी। यू नो वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड,
1: क्या आपको अगर आज पता चले कि आपको ये अचीव करना है, उसके लिए आपको अपने हाथ पैर काट के देने पड़ेंगे, आप दे देंगे? कि हाँ कोई बात नहीं, मुझे मर्सिडीज तो मिल जाए, मुझे एक बड़ा सा बंगलो मिल जाए, कोई बात नहीं, मैं अपना एक हाथ काट के दे दूंगा, आप देंगे अपना हाथ? नहीं, ये मैं हूँ, यू नो ये मैं हूँ, तो ये नहीं कटना चाहिए। यहाँ कुछ काट के देना, ओ एक मिनट भी नहीं लगेगा झूठ बोल, क्योंकि ये मैं हूँ. एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दिस वन इल्यूजन. और ये एक बिलीफ सिस्टम जिस दिन रियली आपको समझ में आया और आपने इसको चेंज किया, आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है. कई बार कई लोग कहते हैं उस टाइम सोचना पड़ता है, सच बोले या झूठ बोले, यू नो दैट इज ऑल्सो अ कॉन्फ्लिक्ट. बट जहाँ फोकस राइट है कि ये मैं हूँ, आपके पास दो थॉट नहीं आते हैं कि ये बोलूँ या ये बोलूँ, ये ही बोलना है सच, चाहे उसका कोई भी रेपरकशन होने वाला है. बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू डर्टी माई सेल्फ,
0: आई नीड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ. यू नो माई इननेट वैल्यूज जो हैं, जो मैं हूँ वो तो. और एक्चुअली अगर हमें ये रियलाइजेशन, बेसिकली वही बात है, जिस दिन हमारे अंदर ये रियलाइजेशन हो गया, ये रिमेम्बरेंस रह गई, तब मैं उसको प्रोटेक्ट करूँगा.
1: बिल्कुल, क्योंकि आपको जब समझ में आ गया, देखो हमें पता है, हमें आज तक ये सोच के चल रहे थे कि मैं शरीर हूँ, तो इसका ध्यान रखते हैं ना, रखते हैं ना हमेशा हर चीज़ क्या हो रही. एक्चुअली सब कुछ हो किस लिए रहा है, सारा कुछ जो अर्न करना है, प्राप्त करना है, वो किसके लिए है, इसके कंफर्ट के लिए है. नेवर माइंड कि मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ.
0: आई थिंक देन हमें अपने आदर्शों पर चलने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी.
1: वही बोल रही हूँ ना, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्वेश्चन नहीं है उसमें कोई भी. इट्स नेचुरल, इट इज ना, आई मीन व्हाई वुड वी नीड टू स्टॉप एंड थिंक कि ये करूँ या नहीं करूँ. मेरा सारा धन चला जाए, मेरी सारी प्रॉपर्टी चली जाए, जो जाना
0: है जाए. नॉट इम्पोर्टेंट, यू नो दैट विल नॉट रिमेन इम्पोर्टेंट. एक्चुअली
1: प्रायोरिटी राइट हो जाएगी.
0: आज जो बहुत बार लोग अपने आदर्शों पर खड़े हुए हैं, वो पेन में इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं सक्सेसफुल हुआ तो हूँ नहीं, मैं खड़ा रहा अपने आदर्शों पर.
1: लेकिन ये सोच भी तो क्वेश्चन मार्क है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो. मैं बोलती हूँ आई पर्सनली फील कि जो अपने वैल्यूज पर खड़ा हुआ, दैट इटसेल्फ इज सक्सेस. एंड उसकी सक्सेस की रिजल्ट वो ये है कि दैट सोल विल ऑलवेज बी पीसफुल, काम एंड कम्फर्टेबल. एंड जहाँ तक मटीरियलिस्टिक सक्सेस की बात आती, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल कि आप एथिक्स पर चलें और आपको मटीरियलिस्टिक सक्सेस नहीं मिलेगा. ये भी एक बिलीफ सिस्टम है, ये भी हमने कहीं ना कहीं जोड़ दिया है. हाँ, ये हो सकता है बहुत फास्ट और बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं मिले, लेकिन फाइनली ये नहीं होगा कि यू नो यू आर टोटली गॉन एंड आपके पास कुछ नहीं.
0: हम अवेयरनेस में यही है. आज मैं अपने आदर्शों पर चलने वाली बनूं भी कि मैं सत्यता, मैं ऑनेस्टी, मैं इस पे रहूंगी, लेकिन मेरा ये बिलीफ सिस्टम तो है कि मैं हूं तो ये बॉडी ही, तो वहां कॉन्फ्लिक्ट जरूर आता है कि मुझे सत्यता पर चलना है, लेकिन मेरी नीड तो इन्हीं को फुलफिल करने
1: की, सक्सेस की डेफिनेशन
0: यही थी. तो जहां जिस दिन मेरा ये बिलीफ सिस्टम आ गया मेरे पास कि मैं वही हूँ जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, आई थिंक देन मेरा पेन खत्म हो जाएगा.
1: नेचुरल, क्योंकि फिर आप अभी पेन क्यों हो रहा है कि मैं ऑनेस्टली चला
0: लेकिन मुझे चाहिए तो वही.
1: हाँ, मेरी प्रमोशन रुक गई या ये हो गया, यू नो ये सारी चीजें पर जहाँ ऑब्स्टेकल, या मेरी ट्रांसफर हो गई, तो फिर मैं वैल्यूज पर था लेकिन मुझे सफर करना पड़ा. यू नो सफर किसको करना पड़ा? आपकी पोजिशन को सफर करना पड़ा, आपको सफर नहीं करना पड़ा. हाँ, आपको तब सफर करना पड़ता जब आपको फिर ये बात हर्ट होती जाती कि मेरी प्रमोशन रुक गई, वो मेरे से आगे निकल गए, क्योंकि अब हमने अपनी वैल्यू को छोड़कर हमने जेलसी क्रिएट करनी शुरू कर दिया. एंड दैट्स व्हाई वी सेड एवरीथिंग इज हैपनिंग हियर, एवरीथिंग. तो सारा पर्सपेक्टिव नहीं चेंज हो जाएगा.
0: वेरी ट्रू. कुछ यू नो, अच्छा, और होगा ये, उससे क्या होगा, जिस टाइम मैंने ये सोच लिया, एक तरफ अभी तक मैं ये सोच रहा था कि मैं सच्चाई पे खड़ा हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, हाँ, और दूसरी तरफ ये हुआ तो जेलसी तो हुई डेफिनेटली, क्योंकि मैंने सोचा यही मुझे चाहिए था. जहाँ आई थिंक दिस वे, नाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल ऑल्सो वर्क. द मोमेंट आई से आई जस्ट वॉन्टेड दिस मच, प्रमोशन विल ऑल्सो कम
1: ऑटोमेटिकली.
0: जहाँ मेरा ध्यान उस तरफ गया ही नहीं,
1: जहाँ हर्ट नहीं क्रिएट हुआ ना, तो आपकी पॉजिटिविटी मेंटेन रही, और वही चाहिए था, पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स. सक्सेस जो भी चाहिए, मतलब जिसके लिए आप वो क्रिएट कर रहे थे, दैट विल हैपन ऑटोमेटिकली. तो फिर सारा दिन में याद रखना इम्पोर्टेंट है कि नहीं, कि
0: एंड देन नाउ लेट्स ट्राई टू वेट एंड वॉच, यू नो, कि अगर हम इस अवेयरनेस में रहते हैं, लेट्स सी हाउ आवर लाइफ चेंजेस.
1: एवरीथिंग विल चेंज, एवरीथिंग. एंड इसलिए आज दिन तक भी फिलोसफी में, रिलीजन में, हर एक ने यही कहा कि हु एम आई अगर आंसर हो गया, तो लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स आंसर हो जाएंगे. सिर्फ छोटी सी जो बात हुई वो कहा कि हु एम आई आंसर होना बहुत मुश्किल है.
0: मैं इस पे एक्चुअली आना चाहती थी. आई जस्ट हैड अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन विद समबडी, और उन्होंने मुझे इतनी लंबी बात ये कही कि मैंने बोला कि मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ. ही सेड, ये अगर इतना आसान होता ना, तुम ये आज यू नो सोच रही हो कि ये हो, बट ट्रुथ इज एब्सोल्यूट. यू नो इट वॉज सो कन्फ्यूजिंग सिस्टर शिवानी, एंड आई थिंक ही वॉज ऑल्सो नॉट वेरी क्लियर. तो ही सेड इट विल नेवर गेट आंसर, इट इज द ओनली क्वेश्चन विच डजंट गेट आंसर. So that's what I'm saying. Ki kyun itna confusion?
1: Who am I is the only question who doesn't get answered. Even just look at the statement. Matlab hum puri apni jeevan jeene wale hain without knowing ki main kaun hoon. Ye jeevan kaise hoge? Ye to jaise you know movies mein dikhate hain ki actor ko bhool gaya ki wo kaun hai. To uski jeevan kaise hoti hai? Confused, lost, without purpose. That's why our life is like that. Aur isliye fir hum beech beech mein ruk kar kehte, why am I here?
0: Main kya kar rahi hoon?
1: Because why am I here? तो I कौन है? अभी हम I का आंसर देते mother. बच्चे तो बड़े हो गए, set हो गए. Why am I here? You know that's why this identity crisis comes. अब तो मैं retire हो गया. मेरे जीवन का purpose क्या है? क्योंकि मैं कौन था? Profession. वो तो खत्म हो गया.
0: तो फिर वो एक major depression set in होता है. Yes.
1: So many things are going up and down only because of not knowing. Who am I?
0: You know, जिस दिन आपके हाथ से जॉब चला जाता है, जिस दिन कोई लव्ड वन चला जाता है, जिसको जिसको अपने अपनी पूरा फोकस बनाया हुआ है, मतलब कितना कुछ अगर ऐसे चला जाता है, देन आपकी लाइफ का यू नो देन वी से कि हमें जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा.
1: That कोई उद्देश्य नहीं बचा. हाँ. क्योंकि जब हमारे ये अक्वायर्ड चीजों में कोई ना कोई चीज पर कुछ ऊपर नीचे होता पोजिशन पर, तो हम कहते मेरे जीने का कोई.
0: पर अगर ये इतना आसान है तो हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया हुआ ऐसे?
1: That I don't have an answer कि हमने उसको को कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया, लेकिन ये आंसर है कि अब जब ज्ञान मिल जाता है कि ये इतना सिंपल है, तो अब तो एटलीस्ट उसको हम स्टडी कर सकते. इतना कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता कि इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आई एम अ सोल, वी से माई सोल, मेरी आत्मा. यू नो इतना इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि जैसे ही मैंने सोचा मैं शरीर हो, तो हमने आत्मा को क्या कहा? मेरी आत्मा. तो इट वेंट ऑल अप एंड डाउन. इट्स लाइक सेइंग मैं ड्रेस हूँ, ये मेरी बॉडी है. दैट्स हाउ मच वी आर कन्फ्यूज्ड. और फिर जब अगर आत्मा के बारे में सोचा, तो वी कनेक्टेड इट ओनली विद यू नो भूत प्रेत स्पिरिट्स ईरी, या जब कोई फ्यूनरल पर गए तो वील थिंक ऑफ आत्मा, सत्संग में गए आत्मा ओके समझ में आया, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आए फिर मैं कौन हूँ? It was everything else. सारा दिन में अगर हम चेक करें सब कुछ याद है except for remembering
0: कि मैं कौन हूँ.
1: मैं वो आत्मा हूँ. मैं कौन हूँ सारी लिस्ट याद आएगी, लेकिन मैं आत्मा हूँ वो नहीं याद आएगा. तो फिर जीवन कैसी होगी? तो जो हम हर एक घंटे के बाद एक मिनट करते हैं, वो एक्चुअली ये याद दिलाने के लिए करते अपने आप को. क्योंकि भले अभी समझ में आ गया है, नॉलेज भी है, लेकिन वो बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत डीप रूटेड संस्कार है. तो हर थोड़ी देर के बाद रुक के अपने आप को फिर से रिमाइंड करते इस शरीर का मालिक मैं वो आत्मा हूँ. इससे एक और चीज़ भी होती, मैं मालिक हूँ तो ये जो सेंस ऑर्गन्स है, दिस ऑल कम्स बैक अंडर माय कंट्रोल. इट्स लाइक द ड्राइवर इज वेकिंग अप. यू नो एक गाड़ी चल रही है, ड्राइवर अंदर सो गया है, तो गाड़ी कैसे चलेगी? गाड़ी तो फिर भी चल रही है. गाड़ी चल रही है और वही हमारे जीवन की गाड़ी का हिसाब है. यात्रा पर चल रही है, ड्राइवर अंदर सोया हुआ है. एंड दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस प्रोग्राम इज अवेकनिंग. अवेकन दिस ड्राइवर विद इन, कि उठे और अपनी गाड़ी को संभाले, नहीं तो सारी गाड़ियां ऐसे चल रही हैं विद ड्राइवर्स ऑल
0: स्लीपिंग
1: एंड देन वी गो लाइक दिस. तो दिस जो कॉन्शंट एनर्जी है, ये समझने में क्योंकि थोड़ा सा हमें यू नो लगता कि ये बहुत पता नहीं किस बारे में बात करे, तो ये बहुत सिंपल है कि जब मैं सोचने का काम करती हूँ, आई थिंक, डज एनीबडी नीड प्रूफ कि मन है या नहीं है? एवरी वन नोज, एक बच्चे को भी पता है कि मन सोचता है. तो मैं आत्मा जब सोचने का काम करती हूँ, इट्स द माइंड. वेन आई क्रिएट थॉट्स आई टेक अ डिसीशन ऑन इट, इंटेलेक्ट. एंड जो डिसीशन मैंने लिया कर्म में आया, कोई भी कर्म बार बार रिपीट हुआ, हैबिट, संस्कार. तो हम क्या कहते हैं? ये संस्कार, बहुत अच्छे संस्कारों वाली आत्मा है. कभी नहीं कहेंगे बहुत अच्छे संस्कारों वाला शरीर है. तो संस्कार किसके हैं? आत्मा के. तो मन बुद्धि संस्कार, ये मैं आत्मा हूँ. कुछ और अजीब सी चीज तो है ही.
0: आई नो सो मेनी टाइम्स जब हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं, बड़े बूढ़े बहुत बार बोल रहे होते हैं कि ये बहुत संस्कारी आत्मा है. तो हमें, मैं ये सोचती हूँ, जब भी मैं बच्चे को उसको देखती थी पहले, तो मैं कहती थी अच्छा कोई और चीज है, मतलब कोई एक ऐसा पोटली है जिसमें वो संस्कार भरे हुए हैं.
1: इट इज दिस एनर्जी कि मैं क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स क्रिएट करती हूँ, कार्य करती हूँ, ये मैं आत्मा हूँ। क्यों वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो जब ये सब कुछ पीछे रह जाएगा तो फाइनली साथ में क्या जाएगा? सिर्फ कर्म, और वो कर्म से क्रिएट किए गए संस्कार। तो जीवन में चलते हुए कम से कम ये तो याद रखना पड़ेगा कि क्या पीछे रह जाएगा और क्या साथ में जाने वाले हैं। अब ये सारी बातें हम सुनते तो हैं, कब करते हैं, लेकिन जब हम किसी के फ्यूनरल पर जाते तो हमें तब याद आता कि और जिसको हम कहते हैं शमशानी वैराग्य, कि उस टाइम वैराग्य आता है कि क्या सब कुछ तो रह जाएगा, यही लेकर जाना है। तो वैराग्य इन चीजों से नहीं करो, सब कुछ यूज करो, लेकिन सब कुछ यूज करते हुए ये तो याद रखना है कि क्या साथ में लेकर जाना है। उस टाइम याद नहीं है, फिर जब कोई कर्म का हिसाब किताब सामने आता तो कहेंगे हमें क्या याद, हाँ। पास्ट में मैंने क्या किया है। इट्स अ कनेक्टेड
0: साइकल, यू नो, एंड सो मेनी टाइम्स वी से मैं ये नहीं जानना चाहता, मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं देखा ना पास्ट, तो मेरे साथ अब ये क्यों हो रहा है।
1: तो अवेयरनेस के साथ चलेंगे, प्रेजेंट पर ध्यान देंगे, तो प्रेजेंट अच्छा बनेगा ही बनेगा, और प्रेजेंट जहाँ अच्छा होगा वहाँ फ्यूचर अच्छा ही अच्छा है। और जब ये समझ में आता कि मैं ये कॉन्शेंट एनर्जी हूँ, तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये कॉन्शेंट एनर्जी की नेचर क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। हमारे आज बहुत सारे संस्कार बन चुके हैं, अक्वायर्ड हैं, क्योंकि कुछ संस्कार फैमिली से, पेरेंट्स से मिलते, कुछ संस्कार एनवायरनमेंट से बन जाते, हमारी नेशनैलिटी, कास्ट, किस स्कूल में हम जाते। कुछ संस्कार हम अपने विल पावर से क्रिएट कर सकते, यू नो, हमने आज डिसाइड किया कि नहीं ऐसा नहीं, आई विल बी ऑनेस्ट, वी कैन डू इट। हम अपने झूठ के संस्कार को कट करके ऑनेस्टी का संस्कार क्रिएट करते, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे अपने ओरिजिनल संस्कार, व्हाट इज द ओरिजिनल नेचर ऑफ दिस एनर्जी। तो आज हर एक को क्या चाहिए, हम इस पूरी सीरीज में भी क्या ढूंढते आए हैं, खुशी, हैप्पीनेस। सो एवरीबडी वॉन्ट्स हैप्पीनेस, लव, पीस, नॉलेज, पावर, प्योरिटी, ये चीज़ें चाहिए, शांति, खुशी, प्रेम। क्यों चाहिए? क्योंकि ये मेरे संस्कार हैं, दिस इज माई ओरिजिनल नेचर, लेकिन आई एम नॉट बीइंग एबल टू एक्सपीरियंस इट टुडे। तो मुझे ये नहीं पता कि कहाँ ढूंढूं, बिकॉज मुझे नहीं ये पता कि मैं ये हूँ, तो मैंने उनको कहाँ ढूंढना शुरू कर दिया,
0: चीजों में ना, बेसिकली। अच्छा, ये भी कह रहे हैं हम, यू नो, हम इतने मटेरियलिस्टिक, बेसिकली अगर ये पूरे सेंटेंस को भी देखें, हम कह रहे हैं हमें चाहिए, तो चाहिए में ऐसा लगता है कि मेरे को कोई पर्टिकुलर चीज पकड़ूंगी मैं जिससे मुझे खुशी मिल जाएगी।
1: एग्जैक्टली, क्योंकि मैं बॉडी हूँ ना, मैं बॉडी हूँ, स्थूल। खुशी किसको चाहिए? इसको चाहिए। इसको खुशी कब मिलेगी? जब इसको एक अच्छी गाड़ी मिलेगी, जब इसको एक अच्छा, तब इसको खुशी मिलेगी। लेकिन फिर हमने रियलाइज किया, गाड़ी तो आ गई, कंफर्ट मिला इसको, लेकिन खुशी नहीं मिली, क्योंकि खुशी इसको नहीं चाहिए थी, इसको कंफर्ट चाहिए। बॉडी नीड्स कंफर्ट, लेकिन इसको खुशी नहीं चाहिए, क्योंकि डजंट फील। खुशी किसको चाहिए थी? यहाँ, वो हमें पता नहीं था, तो हमने कहाँ ढूंढा? बाहर ढूंढा। अब राजयोग हमें ये सिखाता कि ढूंढना नहीं है, इट इज माय ओरिजिनल नेचर, आई एम अ पीसफुल बीइंग। ओम शांति, हमारा जो ग्रीटिंग है, दैट इटसेल्फ मींस आई एम अ पीसफुल बीइंग, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम अ लवफुल बीइंग, आई एम अ हैप्पी बीइंग, अ ब्लिसफुल बीइंग। हैप्पीनेस बाहर नहीं ढूंढनी है, कहीं से, किसी में, लोगों में नहीं। आई एम अ हैप्पी बीइंग, प्योर बीइंग, पावरफुल बीइंग। अब कल इस कॉन्शियसनेस के साथ काम पर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, अपने बारे में भी यही कॉन्शियसनेस, एंड
0: कि दूसरे के भी अपना इननेट उसका जो है संस्कार है उसका। इनफैक्ट अभी तक हम ये कहते थे कि जब हमें बड़े बूढ़े कहते थे कि बाहर नहीं मिलेगी, अंदर तलाशो, तो अमेजिंग थिंग था कि मैं ये सोचती थी कि अंदर कैसे तलाशूं, कहाँ मैं, यू नो, क्योंकि अंदर भी तो कोई चीज ही तो मुझे देगी हैप्पीनेस।
1: एब्सोल्युटली,
0: यू नो, लाइक बिकॉज़ आई वाज थिंकिंग, वी ऑल वर थिंकिंग दिस वे, कि अंदर ही कोई चीज, मुझे अपने अंदर ही शांति को ढूंढना है, तो वो कहाँ ढूंढूं मैं अपने अंदर?
1: और तब नहीं पता चला, तब फिर कहाँ ढूंढना शुरू कर दिया, फिर हमने
0: फिर बाहर गए, ऑफ कोर्स,
1: राइट। सो नाउ लेट्स चेंज आवर वोकैबुलरी, देयर इज नो फाइंडिंग पीस, हमने फाइंड नहीं करनी है पीस, पीस ऑलरेडी है, आई एम अ पीसफुल बीइंग। तो कुछ समय उसके ऊपर करके देख
0: कर सकते हैं,
1: बिकॉज दिस इज समथिंग जो हम रोज सुबह कर सकते हैं, अपने आप को फिर से याद दिलाएं। यू नो, इट्स लाइक समवन जिसकी याददाश्त चली गई है, तो जब मेमोरी चली जाती तो उनको क्या कराया जाता? धीरे धीरे धीरे धीरे याद करो तुम कौन हो। तो राजयोग भी यही है, धीरे धीरे हमें याद दिलाता कि तुम कौन हो। You are a peaceful being. I have to remind this to myself. So let's sit comfortably. Relax karke apne aap ko dekhe. Aaj shayad pehli baar apne aap ko dekhenge. Aaj din tak apne baare mein socha to shareer tak hi simit reh gaye. Ye shareer mera hai. Aaj apne ko dekhte शरीर को चलाने वाली शक्ति क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट एंड फीलिंग आई द कॉन्शियंट बीइंग द एनर्जी विच रन्स दिस बॉडी ऑफ मैटर इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड एक सुंदर चमकता हुआ सितारा पॉइंट ऑफ लाइट दिस इज मी Eternal, immortal, peaceful, and pure. Shanti, prem, aur khushi. Main bahar dhoond rahi thi. Ye to meri apni nature hai. I am a peaceful being. As I go out today, with family and work, I just need to remember. I am a peaceful being interacting with other peaceful and pure beings. Om Shanti.
0: Om Shanti. Sister Shivani, thank you so much.
1: Om Shanti.
0: Agar hum apne liye dekhe zindagi mein to kahin na kahin ye belief system bahut important ho jata hai ki use change kare ki main hoon kaun. Yahi se base hai, yahi se shuruaat hoti hai. रिफ्लेक्ट ज़रूर करें इसे अपना हिस्सा बनाएं ज़िंदगी का सुबह का हिस्सा और जैसे याददाश्त की बात की है कि वो याद अपने आप को हर पल दिलाएं कि मैं हूँ कौन उम्मीद करते हैं आज जो हमने बात की है उसे हम ज़रूर आत्मसात करेंगे आपसे विदा लेते हैं ओम शांति

क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। 16 जून 2026 आज का तारीख है और मंगल दिवस की मंगल कामनाओं के साथ बात करते हैं आज के दिन विशेष के बारे में। राष्ट्रीय शके 1948, शके 26, गते 2 शुद्ध ज्येष्ठ मंगलवार आज है। विक्रम संवत 2083 शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रतिपादा मंगलवार अद्रा आज है। और इस्लामी हिजरी 1447-29 जिलहिज मंगल अद्रा आज है। इसके साथ ही आज विशेष दिन है, तो विशेष दिन की विशेष खुशियों के साथ आइए एक दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनसे भी बातें करते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
1: वाले जी नमस्कार, वाले जी नमस्कार जी, नई किरण में सबको प्रणाम
0: प्रणाम प्रणाम।
1: मेरा एक भजन है सर
0: जी,
1: राम
0: जी
1: मन लागे, ये भजन है सर, ये हो जाएगा तो आनंद हो जाएगा। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। राम धुन लागी ये सुनना चाहते हैं आप, और चलिए मैं आपको सुनाता हूँ आपको ये सुंदर सा भजन आपके नाम अभी करते हैं। और आज मंगल दिवस है तो आनंद ही आनंद आएगा, तो आइए रविंद्र जैन साहब की संगीत से सजाइए खूबसूरत भजन, आपकी सुबह मंगलवार की सुबह को महका देगा।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं और बड़ा ही आनंद आ रहा होगा आपको कि किस तरह से राम धुन का अगर नशा चढ़ जाए तो जीवन बेहतर बेहतर बेहतर बनते जाए और आनंद आनंद होता जाए। तो जनिए आपके जीवन में आनंद और खुशियों का बहार बना रहे ऐसे शुभ आशा के साथ आइए आज हेमंत कुमार जी की जीवन कहानी से आपको जोड़ना चाहूँगा और उनके कुछ सदाबहार गीत भी आपको सुनाने वाला हूँ मैं आज। और गायकी तथा संगीत निर्माण में इनकी बड़ी सफलता है और बहुत सारे खूबसूरत गाने याद उनके जो है बनाए उन्होंने, और मैं कुछ खूबसूरत गाने भी सुनाऊंगा और उनकी कहानी सबसे पहले आपके लिए। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।
1: बोली आवाज के मालिक बड़े ही हुनरमंद कलाकार हेमंत मुखर्जी की, जिन्हें हम हेमंत कुमार के नाम से जानते हैं। इनका जन्म हुआ 16 जून 1920 में शहर वाराणसी। हालांकि इनका परिवार दरअसल बाहरू इलाके से है, लेकिन बाद में कोलकाता चला आया। कोलकाता में इन्होंने आगे की पढ़ाई की। उसके बाद भवानीपुर के मित्र इंस्टीट्यूशन स्कूल में इन्होंने आगे की पढ़ाई की। यहीं पे इनकी मुलाकात हुई सुभाष मुखोपाध्याय से। सुभाष मुखोपाध्याय भी आगे जाकर एक बहुत बड़े बंगाली कवि बने।
2: गानन आया बजानन आया, दिल पर को अपना बनानन आया। हाँ।
1: आगे जाकर हेमंत कुमार साहब ने सोचा कि ये जादवपुर के बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनेंगे और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे। लेकिन ये बात समझ में आ गई थी, है तो मन में कलाकारी तो फिर इंजीनियरिंग कैसे पूरी होगी। लिहाजा इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और फिर संगीत में ही अपना पूरा मन लगा दिया। हालांकि इनके पिता की तरफ से जरा मुखालफत तो थी, लेकिन फिर भी इन्होंने संगीत का दामन न छोड़ा।

0: जमाना।
1: इन्होंने कुछ लघु कथाएं और भी लिखी जो कि उस जमाने की बांग्ला पत्रिका देश में प्रकाशित हुई। हेमंत कुमार ने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया ऑल इंडिया रेडियो के लिए सन 1935 में। अपने जमाने के मशहूर साजिंदे शैलेश दत्ता गुप्ता का भी असर इन पे रहा। इनके ऊपर एक बहुत बड़े गायक पंकज मलिक का भी गहरा असर था। लेकिन इस बात में भी कोई दोराय नहीं कि इन्होंने शास्त्रीय संगीत का विधिवत प्रशिक्षण लिया फणी भूषण बैनर्जी से।

0: से ना डरे उमा।
1: एक तरफ संगीत की शिक्षा चल रही थी तो दूसरी तरफ इन्होंने कोलंबिया लेबल के लिए कुछ गाने रिकॉर्ड किए और उसके बाद ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया के लिए भी। इनका पहला हिंदी गाना था कितना दुख भुलाया तुमने और ओ प्रीत निभाने वाली, जो कि सन 1940 में दुनिया के सामने आया था।

इनकी पहली बंगाली फिल्म थी निमाय संन्यास, जिसका संगीत हरि प्रसन्ना दास ने दिया था। पर अभी भी यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि हेमंत कुमार महानतम गायकों में से एक बनेंगे और सबसे जबरदस्त संगीतकारों की फहरिस्त में इनका नाम शामिल होगा। बतौर संगीतकार इनकी पहली बांग्ला फिल्म रही अभियात्री, जो कि सन 1947 में आई। ये 40 की दहाई तक आते आते इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन का हिस्सा बन गए और जमाने में इप्टा के एक और बड़े जबरदस्त मेंबर सलिल चौधरी के साथ इनकी गहरी दोस्ती हुई और सलिल चौधरी भी आगे जाकर महानतम संगीतकारों में से एक बने। इन दोनों ने साथ में काफी काम किया, पर धीरे धीरे गायकी के साथ हेमंत कुमार साहब के संगीत निर्देशन की भी खूब चर्चा होने लगी। इनके एक डायरेक्टर मित्र रहे हेमेन गुप्ता, उन्होंने जब मुंबई की तरफ रुख किया तो हेमंत कुमार को भी बुला लिया। हेमंत मुखर्जी ने फिल्म आनंद मठ के लिए संगीत दिया। आनंद मठ का संगीत बड़ा मकबूल हुआ।

उसमें गाया लता मंगेशकर जी का गाना वंदे मातरम आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर है, पर अभी भी बतौर प्लेबैक सिंगर इन्हें बड़ी मकबूलियत हासिल नहीं हुई थी। और तब महान संगीतकार एस डी बर्मन ने इन्हें मौका दिया फिल्म जाल में। गाना था ये रात ये चांदनी फिर कहां। हाउस नंबर 44 का गाना चुप है धरती चुप है चांद सितारे और 16 साल फिल्म का है अपना दिल तो आवारा। इन गानों ने हेमंत कुमार को सबसे मुख्तलिफ प्लेबैक सिंगर बना दिया।

इन्होंने फिल्म नागिन का संगीत दिया और नागिन की बीन आज भी बड़ी मशहूर है। इसी बीच इनके असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए रविशंकर शर्मा, जो आगे जाकर बहुत बड़े संगीतकार बने, जिन्हें हम रवि के नाम से जानते हैं। नागिन फिल्म के लिए इन्हें फिल्मफेयर की तरफ से बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी दिया गया। इन्होंने गुरुदत्त के लिए प्लेबैक सिंगिंग की, तो बंगाली सिनेमा के महानायक उत्तम कुमार

50 की दहाई आते आते इन्होंने हेमंत बेला प्रोडक्शंस के नाम से एक मूवी प्रोडक्शन कंपनी शुरू की और फिल्म बनाई नील आकाशेर नीचे। इस फिल्म को प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल से नवाजा गया। उसके बाद 20 साल बाद कोहरा, बीवी और मकान, फरार, राहगीर और खामोशी बड़ी जबरदस्त फिल्में साबित हुई। एक तरफ बांग्ला सिनेमा तो दूसरी तरफ हिंदी सिनेमा, दोनों ही जगह इनका खूब नाम हुआ।

इनके परिवार की तरफ रुख करें तो पता चलता है ये तीन भाई और एक बहन रहे। बहन का नाम नीलिमा, इनके बड़े भाई का नाम तारा ज्योति जो कि बांग्ला के लघु कथा लेखक रहे। इनके सबसे छोटे भाई अमल मुखर्जी जो गाना भी गाया करते थे और संगीत निर्देशन भी दिया करते थे। हेमंत कुमार साहब का विवाह हुआ बेला मुखर्जी से जो कि एक बड़ी जबरदस्त बंगाली गायिका रही। पर शादी के बाद बेला मुखर्जी ने परिवार को संभाला। इस शादी से इन्हें दो बच्चे हुए, बेटा जयंत और बेटी रानू। आगे जाकर बहुत ही जबरदस्त हीरोइन मौसमी चटर्जी इनकी बहू बनी। इन्होंने एक तरफ फिल्में प्रोड्यूस करी, फिल्मों का संगीत भी दिया और बतौर प्लेबैक सिंगर भी बड़ी ख्याति प्राप्त करी।

0: ये 80 की दहाई की शुरुआत तक गाना गाते रहे, पर 80 की दहाई की शुरुआत में ही इन्हें दिल का दौरा भी पड़ा था, जिस वजह से इनकी गायकी पे गहरा असर आया था। ये बात भी गौर करने लायक है कि इन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जाना था, लेकिन इन्होंने ये दोनों ही अवार्ड स्वीकार न किए। इन्हें बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बुलाया गया, जहां पे माइकल मधुसूदन अवार्ड से इन्हें नवाजा गया। वहां से वापस आने के बाद हेमंत कुमार साहब को दिल का दौरा पड़ा, तारीख 26 सितंबर साल सन 1989, और तब इनका इंतकाल हो गया। इन्हें फिल्मफेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड से नवाजा गया, तो नेशनल फिल्म अवार्ड से भी। भारतीय सिनेमा के इतिहास में हेमंत मुखर्जी यानी कि हेमंत कुमार साहब का नाम सदैव गर्व से लिया जाएगा।
1: कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या।
0: माँ बाप ने नाम रखा प्रबोध चंद्र डे। फिल्म इंडस्ट्री
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, हेमंत दा की खूबसूरत जो बायोग्राफी है वो आपने सुनी, और निश्चित तौर पे आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। पुराने दिनों में जो उनके खूबसूरत गाने चलते थे, लोग जो है दीवाने होकर सुना करते थे। तो आइए, हिंदी फिल्म जगत के महान पार्श्व गायक और संगीतकार हेमंत कुमार के बारे में बातें चल रही हैं। उन्हें हेमंत दा के नाम से बहुत फेमस हुए, जिनके गीत आज भी श्रोताओं को, हम सबको मंत्रमुग्ध कर देते हैं। बंगाल और हिंदी फिल्म संगीत की जानी मानी खासियत शख्सियत रहे हेमंत कुमार ने। न सिर्फ मौसिकी के माहिर थे बल्कि बेहतरीन फिल्म निर्माता भी थे। बंगाल भाषा के अनेक गैर फिल्मी एल्बम को सुर देने वाले हेमंत कुमार ने कई मशहूर हिंदी गीतों को अपनी मधुर आवाज़ दी है, और इसके साथ ही उन्होंने एक ऐसी फिल्म का निर्माण भी किया है जिसे राष्ट्रपति स्वर्ण पदक से नवाजा। फिल्म समीक्षक ज्योति वेंकटेश के मुताबिक हेमंत कुमार अपने दौर के सबसे प्रतिभाशाली फनकारों में से एक थे। संगीत की नब्ज का मिजाज समझने में दक्ष और कलाकार को रविंद्र संगीत का विशेषज्ञ भी माना जाता है। तो आइए, ऐसे हेमंत कुमार की खूबसूरत गानों से आपको आज लयबद्ध करने के लिए हमारे साथ कमलेश जी आई हैं। उनसे एक बहुत ही खूबसूरत गीत हेमंत दा का सुनाने वाले हैं। कमलेश जी
3: जी,
2: अब मैं चाहूँगा कि आप सुनाइए गीत।
3: जी रमेश भाई जी, ओम शांति,
2: ओम शांति, नमस्ते।
3: सुनने वालों को भी बहुत ही प्यार भरा नमस्कार
2: जी, नमस्कार।
3: और ओम शांति। जैसा कि हेमंत दा के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो एक बहुत ही अच्छे संगीतकार, फिल्म निर्माता और गायक। उनकी जो आवाज़ है, जो उनके गीत हैं, हमारे सुनने वाले इस बात से ज़रूर सहमत होंगे कि वो दिल को छू जाती है, रूह की आवाज़ हम कह सकते हैं। इतने प्यारे गीत उन्होंने गाए हैं कि जब भी उनका कोई गीत गुनगुनाओ तो हमें ऐसे लगता है कि हमारी मेडिटेशन हो गई है ना। तो मेडिटेशन का तो महत्व हमारे सुनने वाले समझते ही हैं। हेमंत दा का एक गीत है जो मुझे बहुत ही प्रिय है, और ये गीत मुझे लगता है सुनने वालों को भी बहुत ज़रूर पसंद आएगा। गीत है

0: नमस्कार कमलेश जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया। आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा आनंद आ रहा होगा कि कितना खूबसूरत गीत हेमंदा का आपने सुनाया, बहुत ही खूबसूरत आवाज में। तो हेमंदा की कुछ और बातें अगर आपको याद हो, क्योंकि आप भी रेडियो में उनके बारे में जरूर बताया होगा कभी ना कभी, तो
1: बिल्कुल वैसे तो रमेश भाई जी ज्यादा अब एज के अकॉर्डिंग कुछ याद नहीं रहता है, लेकिन हेमंदा की आवाज, हेमंदा का अंदाज, उनका जो फिल्म निर्माता के तौर पर उन्होंने फिल्में बनाई वो
0: जी,
1: हमेशा हमें आकर्षित करती रहेंगी। और हेमंदा ने साहित्य जगत में अपनी जो पहचान बनाई है और उन्होंने जो है गाने का मौका अच्छे अच्छे गायकों को दिया, खुद भी गाया। और वैसे अगर हेमंदा की बात करें, जैसे कि बंगाल के लोग हैं ना, जो उनको उनके ब्लड में संगीत
0: है बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो उनके पूरे परिवार में आप देखिए, उनके घरों में आप जाएंगे तो जैसे हम लोग पंजाबी लोग या भारतीय लोग अपनी बाकी चीजों पे वेस्ट करते हैं पैसा, है ना, वो ऐसे वेस्टेज नहीं करते हैं, वो अपना जो भी उनका फाइनेंस है वो संगीत में लगाते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को संगीत सिखाते हैं। जैसे मुझे याद आया रमेश जी, एक कॉलर हमारे आ चुके हैं। हेलो,
2: नमस्ते,
1: गुड मॉर्निंग, ओम शांति,
2: गुजरात से।
1: हाँ जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
0: सुरेश जी।
1: सुरेश जी,
2: सुरेश भाई, कमलेश जैन बोल रहे हैं?
1: हाँ जी, हाँ जी।
2: कमलेश जैन कैसे हो?
1: बहुत बढ़िया, आपसे बात करके तो और अच्छा हो जाता है।
2: हमको भी आपको हर रोज मौका मिल जाता है आपसे बात करने का। जी, हमारे सोमनाथ भाई जी के साथ हुई थी बात, आपसे हमारे रमेश भाई हैं।
1: बस मैंने तो कल ही बोला था कि मेरे तो
2: हमारा खास है।
1: हाँ जी, हाँ जी, मेरे मधुबन में आने पर ना
2: ये हमारा नहीं किरण अच्छा हो ही नहीं सकता। रमेश भाई है हमारा, सोमनाथ भाई है, और आप भी हमारे आरजे हैं।
1: जी जी जी,
2: आपको भी हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: देखो सुरेश भाई, जैसे ना ये हम लोग मधुबन आते हैं ना, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं अपने मायके में आ गई हूँ, अपने माता पिता के घर आ गई हूँ। तो यहाँ पे रमेश भाई जी और सोमनाथ भाई जी, भानु भाई जी, ये तीनों मेरे भाई हैं। तो इनको मिलके, हाँ बिल्कुल
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: हम भी आपके, आप ही हमारे बहन हैं।
1: बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत।
2: तो बस हम जैसे हमारे आज के सभी बहन बहन आपके भाई बहन है, आपके आप भी हैं।
1: जी जी,
2: तो हमको भी बहुत खुशी रहती है आपसे बात करने की, क्योंकि आपका जो गाना, आपका जो, आपकी जो बातें, आपकी जो बोलने का जो अदा है, हमको बहुत अच्छा लगता है।
0: क्या बात,
1: ठीक है, ये सब आपने सिखाया हमें। ये सब आपने सिखाया, मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों ने ही सिखाया हमें बोलना।
2: वो तो आपने हमको सिखाया, हमने आपको सिखाया है, तो एक दूसरे पे चलता है, वरना अकेले अकेले बोलने से कोई बोलता है कि तो क्या पागल है क्या।
0: जी जी जी,
2: लेकिन
0: अच्छा है सुरेश जी, जी सुरेश जी, हेमंदा के कोई फिल्म या गीत आपको याद हो तो बताइए, फिल्म का नाम याद हो तो।
2: अभी तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी मैं पैदल जा रहा हूँ, हमारे रामदेव पीर बाबा का मंदिर है हमारे से 2 किलोमीटर दूरी पर।
0: अच्छा अच्छा,
2: तो हर मैं बीज के दिन पैदल जाता हूँ, आज बीज है रामदेव पीर की, तो पैदल जाता हूँ।
0: ठीक है, ठीक है,
2: तभी रास्ते में हूँ, रास्ते में आपसे बात कर रहा हूँ।
0: ठीक है, आप यात्रा करिए, फिर हम लोग बातें करते हैं, है ना।
2: जी जी,
0: ओके जी, ओके, धन्यवाद, शुक्रिया आपका सुरेश जी, थैंक यू सो मच। और आप रामदेव पीर के लिए पैदल जा रहे हैं, तो आपकी यात्रा मंगलमय हो और आपको ईश्वर जो है शक्ति दे। तो दर्शन करने के बाद फिर हमें कल बताइएगा कि कैसा अनुभव रहा आपका। आइए बात करते हैं हम लोग हेमंत कुमार जी के, कुछ खूबसूरत फिल्में हैं जैसे कि जिनके बारे में जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। अनारकली एक फिल्म हो गया, अगर आप इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा, ये नाम ही आपको जो है बताएगा कि ये फिल्म कितनी खूबसूरत बनी थी और इसके लिए कितनी मेहनत भी लगी थी। तो आइए इसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। कमलेश जी, अनारकली फिल्म आपने सुना होगा नाम ज़रूर।
1: हाँ जी, मैंने ये फिल्म देखी भी है कई बार।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: और अनारकली फिल्म के गीत और उसमें जो है कलाकार थे, उनके नाम तो मुझे अब शायद नहीं याद होंगे, लेकिन
0: बिल्कुल
1: बहुत ही प्यारी फिल्म थी।
0: जी जी जी जी, हेलो जी, नमस्कार।
3: हेलो, नमस्कार, ओम शांति, रमेश भाई जी और हमारी प्यारी बहन कमलेश बहन जी जो स्टूडियो में पधारी है।
0: जी जी जी जी, बिल्कुल,
3: अभिनंदन है, स्वागत है।
1: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, आपको भी नमस्कार।
3: नमस्कार बहन जी, मैं दयाराम भाई बोल रहा हूँ
0: जी,
3: भारत पाकिस्तान सीमावर्ती जिले बाड़मेर से, राजस्थान से।
1: वाह वाह वाह, बहुत दूर से बात कर रहे हैं आप।
3: जी जी जी बिल्कुल, मैं तो वैसे बहुत सालों से रेडियो मधुबन परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और कई बार अपने मधुबन आ चुका हूँ और रेडियो मधुबन के जन्म दिवस पर भी मैं 2-3 बार आया हूँ।
1: बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
3: और मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बाबा का घर मुझे ऐसा लगा बहुत ही, कहीं अपने घर जाने का मन ही नहीं कह रहा
0: जी,
3: है
0: जी,
3: तो
0: जी,
3: वहाँ
0: जी।
3: की सभी बहनी है, सभी भाई है, सभी राजकुमार है और हमारी दादियों का प्यार तो उतना ही गहरा है जैसे हमको बार बार खींच के वहाँ ले आ सकता है।
1: जी जी जी, सभी के साथ ऐसा ही होता है, कोई भी यहाँ पे जो आ जाए ना तो उनका जाने को मन नहीं होता है।
3: जी जी, और हमारा एक रेडियो के माध्यम से हमारा जो सबसे बड़ा गुरु है वो तो हमारा रमेश भाई जी है
1: जी,
3: और
1: जी,
3: हमारी उषा बहन जी है और सोमनाथ भाई है और जैसे आप दीदी आप भी है और कृष्णा बहन है और हमारे श्रीनिधि जी है और हमारे जो सबसे पहले आरजे आया करते थे उसका मैं नाम भूल रहा, अरे विशाल भाई जी, और हमारे हर पल रेडियो पर जो एक्टिव रहते हैं हमारे रोहित भाई, जैसे हमारे रेडियो कुछ हमारे यहाँ सुनाई नहीं देता है हम तुरंत कॉल कर देती है रोहित भैया को, वो तुरंत तकनीक की जो कहीं कमी होती है तो वो ठीक कर देते हैं और मुझे सुनने को मिलता है। मैं इंटरनेशनल बॉर्डर भारत पाकिस्तान के 0 पॉइंट से अपने रेडियो मधुबन एप्लीकेशन के माध्यम से सुनता हूँ, बहुत ही क्लियर आ रहा है और रेडियो सुनने वाले सभी मेरे प्यारे मित्र हमारे सुरेश भाई है, सुरेश भाई 3 भाई है मेरे, भाई कानेरा है, एक पिंडवाड़ा है, एक कंचन भाई है और हमारी बहन है तो बहुत सारी है, मैं उसका नाम सबका नाम लो समय बहुत है। और दीदी आपको और रमेश भाई को सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार है। और हेमंत भाई, हेमंत कुमार की बात तो चल रही है तो बहुत ही, मैंने हेमंत कुमार के पहले मेरे पास रेडियो हुआ करता था जो ऑल इंडिया रेडियो
0: जी जी जी,
3: उसमें बहुत ही हेमंत भाई के गाने में सुनता था और हेमंत कुमार है, जसूदास है, किशोर कुमार है, मोहम्मद रफी है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
3: लता मंगेश है
0: जी जी जी,
3: कभी कलाकार को भी जानता हूँ, इसकी आवाज को मैं पहचान लेता हूँ और कौन सा गाना है और कौन सी धुन।
0: अभी हेमंत कुमार के बारे में हेमंत जी का कोई गाना हो तो बताइए, फिर हम लोग सुनाएंगे भी आपको।
3: जी जी जी जी, हेमंत कुमार का तो आप गुरु सुना देना, और मुझे तो अभी बहुत सारा, मैं पहले सुना करता था लेकिन अब तो मैं
0: कोई कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है,
3: लेकिन ढूंढने पड़ेंगे।
0: हाँ हाँ हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत सारी बातें आपने बताई, धन्यवाद आपका। तो आइए आगे बढ़ते हैं जी।
1: रमेश भाई जी, आप जी। फिल्म अनारकली की बात कर
0: जी,
1: रहे
0: जी,
1: थे
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो हिंदी सिनेमा में अगर बात करें तो अनारकली की, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ना मधुबाला जी का नाम आता है। मुगले आजम में जो अनारकली का किरदार उन्होंने निभाया था, एक मिसाल था। और इसके बाद अगर बात करें अनारकली फिल्म की, तो उसमें बीना राय ने बहुत ही बढ़िया रोल निभाया अनारकली का। तो आगे बढ़ेंगे, पहले एक फोन कॉल जो अटेंड कर लेते हैं। हेलो
4: हेलो, नमस्ते, ओम शांति।
0: ओम शांति, शुभना बहन बोलिए।
4: हाँ ओम शांति, हमारी दीदी जी को भी ओम शांति।
1: ओम शांति जी, ओम शांति।
4: हाँ, हमारे रेडियो मधुबन में पधारने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और ऐसे ही आते रहिए,
1: जी जी
4: मिलते रहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और आपका प्यार ही हमें खींच के ले आता है रेडियो मधुबन में। तो बाबा के घर तो आते ही हैं हम लोग, लेकिन रेडियो मधुबन का एक अपना जो अट्रैक्शन है हमारे लिए, है ना। हाँ जी बोलिए, आप क्या सुनाना चाहती हैं आज?
4: कल भी आपका कार्यक्रम सुना था, लेकिन हम महिलाओं को तो क्या होता है सुबह में काम बहुत होता है
1: जी जी,
4: तो सुबह में देखो चिड़िया को दाना डालते है, फिर गाय कुत्ते के लिए पानी बाहर रखते है और पेड़ में सब जो घर पे लगाते हैं ना पेड़, उसमें सब पानी डालते हैं, वो सब काम छोटे छोटे रहते तो आपसे दूसरा नहीं होता। आज तो मैं जुड़ी जाऊँ,
1: बहुत जरूरी।
4: कल आपने गाना जो सुनाया था जब दीप जले आना, निशान ढले आना, बहुत
5: जी जी गाने का कोई भी शौक है ना, कोई शौक है जब भी आप फ्री बैठते हैं। वैसे तो हम लोगों को घरों में बहुत काम होते हैं छोटे छोटे। मुझे ना एक बात मैं आपको बड़ी खुशी वाली बताऊंगी। जैसे मेरे घर में ना मैंने पक्षियों को दाना डालने के लिए एक जगह बना रखी है बालकनी में, तो वहाँ पे ना एक वाइट कबूतर आता है, बहुत दिनों से आ रहा है वो। तो कभी कभी मैं उसको दाना डालना जैसे थोड़ा लेट हो जाती हूँ या किसी काम में व्यस्त हो जाती हूँ, तो वो पूरा फड़फड़ा के मुझे आवाजें कर करके बुलाता है कि भैया पहले मेरे को दाने डाल दो, बाद में बाकी काम कर लेना। तो ऐसे तो ही
4: हाँ दीदी, मेरे भी ऐसा होता है, देखो थोड़ा लेट हो गए होते हैं ना तो सामने आते,
5: बिल्कुल वो बार बार आएगा।
4: हाँ फिर मैं दाना डालती हूँ ना तो सब आते ना, तो मैं उसको देख के मेरे से बहुत खुशी होती है।
5: बहुत कुदरत का बड़ा तोहफा है।
4: हाँ ऐसे ही खड़ी रहती हुई देखने के लिए तो मुझे बहुत बहुत बहुत आनंद आता है।
5: जी जी जी
4: हाँ, मेरे घर के सामने ही मैं तो डालती हूँ, बाहर के नहीं जाती हूँ।
5: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी।
4: तो मतलब बहुत खुशी होती है।
5: तो पक्षियों को
4: तो करना ही है।
5: जी जी
4: यही सब साथ में आने वाला है।
5: बिल्कुल, और जो ये जीव जंतु परमात्मा ने हमें दिए हैं ना, इनका कोई मकसद है। आप देखिए अगर दुनिया में पक्षी ना हो तो हमें कैसा लगेगा, है ना। हम आकाश की तरफ देखते हैं, उड़ते हुए पक्षियों को देखते हैं, तो हमें हमारी उड़ान भी ऊंची हो जाती है, हमारे इरादे भी जो वो हाइट पकड़ लेते हैं कि हमने भी कुछ जीवन में ऐसा करना है जिससे हमें भी खुशी मिले और दूसरों का भला हो।
4: यही काम करना।
5: जी जी, तो चलिए कोई कुछ सुनाना चाहती हैं आप। हेमंत दा का जन्मदिन है तो बहुत ही बड़े संगीतकार, फिल्म निर्माता। चलिए कोई बात नहीं, आप प्रोग्राम सुनिए, हम बात कर रहे हैं। सुरेश रमेश भाई आप कुछ कहना चाहते हैं इनसे?
0: जी जी सुगना बहन बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका अपनी भावनाएं विचार साझा करने का। ओम शांति, ओम शांति। तो चलिए सुगना बहन, सुरेश जी, दयाराम जी, सभी ने बड़े प्यार से हमें याद किया है।
1: अनारकली फिल्म में रमेश भाई जो बीना राय ने अपनी अभिनय का लोहा मनवाया।
0: अच्छा अच्छा।
1: और इस जमाने की जितनी भी अभिनेत्रियां रही वो सब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म होती थी, उनकी खूबसूरती, उनकी अदाकारी, उनका किरदार पूरी तरह उस फिल्म में रंग भर देता था।
0: बिल्कुल।
1: और बीना राय की अगर बात करें तो उनका असली नाम कृष्ण सरीन था, और बीना राय का परिवार कानपुर में बस गया था बंटवारे के बाद, और उन्होंने कॉलेज में नाटकों के मंचन में भाग लिया, अखबारों में टैलेंट कंटेंट कांस्टेंट इसका मुकाबले का विज्ञापन देखने के बाद उन्होंने फिल्मों में जाने का मन बना लिया। तो अनारकली फिल्म जैसे हेमंत दा के लिए उनका नाम रोशन करती है, उसी तरह बीना राय की अदाकारी को भी अच्छी तरह से हमारे तक पहुंचाती है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो अभी ये कॉलर शायद आए थे, वापस चले गए क्या?
0: हाँ हाँ कॉलर चले गए। अब जैसे कि आपने बताया अनारकली के बारे में,
1: जी,
0: जो हेमंत दा की फिल्म थी शुरुआत में, इसमें नादिरा ने बड़ा अच्छा रोल निभाया था अनारकली का।
1: जी,
0: स्टोरी बड़ा सुंदर है, जैसे कि एक बड़े पहले महल होते थे, महल में नृत्य करने वाले नर्तकियां आती थी, तो ऐसे ही राजकुमार जो सलीम था उनको एक नर्तकी से प्यार हो गया।
1: जी, जी,
0: अब ये जब उनको अकबर को पता चलता है तो वो इस बात को कभी भी मानने से
1: बिल्कुल क्रोधित हो जाते हैं
0: कि एक तवायफ कैसे मेरे बेटे की हो सकती है, और आने वाले समय में वो मालकिन की तरह रहेगी ना।
1: बिल्कुल।
0: तो इस वजह से यहाँ पर एक विद्रोह शुरू हो जाता है, और इसके लिए बाप और बेटे के बीच में जंग शुरू हो जाती
1: है। बिल्कुल। वो कुदरती चीजें, क्योंकि वो एक राजा है और महाराजा है, और वो चाहता है कि मेरे बेटे को ऐसी नायिका मिले जो उनके खानदान को आगे लेके जाए, नर्तकी को वो मंजूर नहीं कर पाए, है ना।
0: बिल्कुल।
1: तो इसके लिए जो है बहुत विरोध हुआ बाप बेटे का। आखिरकार जो राजा तो राजा ही होता है, वो अन्याय भी नहीं कर सकता।
0: बिल्कुल।
1: तो उन्होंने क्लोजिंग जो है ना फिल्म की बहुत अच्छी हुई है, अनारकली फिल्म के, है ना। तो ये सब हमें सिखाता है कि हमारे समाज में जो ये चीजें होती हैं उनको कैसे हैंडल करना है, और इन चीजों को, क्योंकि सामाजिक फिल्में जो बनती हैं वो इसी तरह हमें शिक्षा देती हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी फिल्म का एक गीत आपको सुनाते हैं अभी, पुराना जो है, और अनारकली इस फिल्म का जो है प्रदीप कुमार और हेमंत कुमार और बीना राय पर पिक्चराइज किया गया।
1: मैं गुनगुना दूं ये गीत थोड़ा सा?
0: जी बिल्कुल।
1: जिंदगी

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बड़ा प्यारा सा अनारकली का गीत आपने सुना। और जब पुराने गीत सुनते हैं तो मन जो है खुशियों से भर जाता है, और एक पुरानी यादें और उसमें जो मिठास है गानों में, एक जो सात्विकता है, वो चीज़ शायद अभी के गानों में, अभी के इसमें शायद समय के साथ साथ चीज़ें बदलती जाती हैं और आज के समय में जो ज़रूरत है वो चीज़ें हमारे बीच में आ जाती हैं। उस समय जो चीज़ों की ज़रूरत थी वो चीज़ें हमने देखी। तो आइए आगे बढ़ते हुए कमलेश जी, आप क्या बताना चाहेंगे?
1: देखिए, हेमंता की बात चल रही है,
0: जी,
1: उन्होंने फिल्मों में संगीत में योगदान दिया उसका कोई मुकाबला नहीं है। और उनकी योग्यता के मुताबिक, अपनी योग्यता से बढ़ के उन्होंने फिल्मों में, जैसे फिल्म है 20 साल बाद, और जिसमें एक और फिल्म थी लव आजकल, 2009 में उन्होंने संगीत दिया इसमें। इसी तरह बहुत सारी फिल्में जिनमें हेमंत दा ने संगीत दे के ये साबित कर दिया कि संगीत जो है हमारी रूह की, हमारी आत्मा की गजा है। और उनकी आवाज में जो मिठास थी ना, वो हर गाने में भरपूर जो है एक भावना भर देती थी। और सुनने वाले जो आज तक, आज की पीढ़ी उनको सुनना पसंद करती है, यही उनके जीवन की जो हासिल है जो उन्होंने संगीत में दिया। और संगीत में जो उन्होंने संगीतकार के तौर पर और फिल्म निर्माता के तौर पर जो उन्होंने दे दिया भारत को, विदेशों में भी उन्होंने बहुत सारे शो किए, बहुत सारे अवार्ड उनको दिए गए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, एक गाना जो है अभी मुझे लगता है कि आपको भी बहुत पसंद आएगा, और ये गाना जो है बहुत पॉपुलर रहा, इसका संगीत भी जो है इतना क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा, नागिन फिल्म का मन डोली।
1: वाह जी वाह, सबसे बढ़िया फिल्म। नागिन के संगीतकार ही वो थे, और उसी की वजह से उनकी जो बीन आज नागिन फिल्म की आज भी बजती है तो
0: मजा आ जाता
1: है।

0: चलिए, नागिन का बीन सुनते सुनते आपके कान जो है मधुर हो गए होंगे और आपको भी लग रहा होगा कि कहीं से ये बीन वापस सुनने को मिल जाए। बिल्कुल सुनाएंगे।
1: रमेश भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतना सुंदर गीत सुनाने के लिए। पुरानी यादें आपने ताजा कर दी। जैसे कि नागिन फिल्म 1954 में बनी हिंदी भाषा की वो ऐसी फिल्म थी जिसमें वैजयंती माला और प्रदीप कुमार जो मुख्य स्टार थे।
0: बिल्कुल,
1: और
0: बिल्कुल।
1: सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म माना गया इसको उस समय
0: उस समय के। बिल्कुल,
1: बिल्कुल। हेमंत दा का संगीत जो बेहद सफल रहा और उन्हें इस साल में इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर
0: अवार्ड भी मिला। हाँ।
1: मिला, सम्मानित किया गया उनको। तो सलाम है उनकी इस संगीत की प्रतिभावना, प्रेम, प्यार और लगन।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और संगीत तो लगन के बगैर
0: हो ही नहीं सकता। सही बात।
1: और अगर आप संगीत के साथ जुड़ जाते हैं तो जीवन के प्रति जो आपने काम करने हैं, जिम्मेवारियां निभानी है,
0: वो बिल्कुल कर सकते
1: हैं। वो बड़े अच्छे से कर सकते हैं। तो अपने बच्चों को संगीत से जोड़ना बहुत जरूरी है। और एक इस फिल्म का एक गीत हम और सुनेंगे
0: जी।
1: बाद में सुनते हैं, इससे पहले आप क्या कहना चाहते हैं?
0: जी जी जी, बस अभी समाचारों का समय हो गया है, सीधे दिल्ली से अभी हमारे श्रोताओं को समाचार सुनाते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं।
2: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दी की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
3: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले विवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
2: फ्रांस के एवियो शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रूपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रूपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हुरमुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर दिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय LNG टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन LNG है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यास का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हुरमुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक हाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
4: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्करे तैयबा, जैश-ए- मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
5: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
6: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
5: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
4: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
7: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मुजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में हुरमुज जल डमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
9: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है

0: बंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा, वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मॉनसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा। टेकनेस सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। और 9:19 हो रहे हैं, आप हो हमारे साथ नई किरण इस कार्यक्रम में। और हेमंत कुमार जी के बारे में बातें हो रही थी, अनारकली, नागिन, ऐसे खूबसूरत फिल्मों के बारे में बातचीत हो रही थी। और अनारकली फिल्म का या फिर आप देखेंगे उनकी कहानी को, तो काफ़ी अच्छा जो है यही सेम कहानी फिर मुगले आजम के साथ भी
1: जी मधुबाला ने बहुत अच्छा
0: रोल किया। और फिल्म की कहानी सेम रही मेरे ख्याल से
1: बिल्कुल, और जिसमें मधुबाला का जो वो उसका कोई मुकाबला नहीं उस रोल का ना।
0: जी जी,
1: मधुबाला को याद किया जाता है अनारकली के लिए और अनारकली में बीना राय को याद किया जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: अनारकली के दोनों
0: नहीं, मधुबाला को मुगले आजम के लिए,
1: मुगले आजम के लिए। तो ये दोनों फिल्में बड़ी यादगार फिल्में रही।
0: लेकिन आपको कैसा वो स्टोरी, दोनों की सेम है लेकिन मुगले आजम भी उतनी पॉपुलर रही आने के बाद।
1: जी जी,
0: और उस जमाने में अनारकली भी पॉपुलर रही।
1: बिल्कुल, एक्चुअली उसमें मधुबाला का जो अट्रैक्शन था ना, लोगों को मधुबाला बहुत पसंद थी।
0: अच्छा अच्छा,
1: और मुगले आजम जो है वो सेमी कलर हो गई थी उसमें, कलर
0: ब्लैक एंड व्हाइट,
1: ब्लैक एंड व्हाइट से कलर में चले गए थे वो लोग, है ना। कुछ फिल्म में
0: नहीं, ये तो बहुत टाइम के बाद मुगले आजम को कलर में, ईस्टमैन कलर में,
1: इसीलिए इतना चल गई वो फिल्म। और उसमें वो जो उन्होंने सेट बनाया था जिसमें शीशे का सेट बनाया था, तो वो भी एक अट्रैक्शन था फिल्म के लिए, लोगों के लिए देखने के लिए।
0: हेलो जी, नमस्कार।
2: हेलो,
0: हाँ जी,
1: नमस्कार जी, नमस्कार।
2: बहुत बहुत राम, कमलेश बहन जी को भी मेरा राम।

0: राम राम राम
1: राम
0: राम
1: बहन भाइयों को, मैं सब मधु बहन भाइयों को मेरा राम राम। और मैं बोला मैं सुबह सुबह आपको राम राम तो कर दूं,
0: जी जी जी
1: फोन किया आपको।
2: बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: ओके ओके थैंक यू।
2: हाँ जी बताइए।
0: ठीक है बुरा राम जी, आपका तबीयत ठीक है?
1: ठीक है, थोड़ी थोड़ी तकलीफ मिली।
0: अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, खुशी हुई आपने बात की। आइए आगे बढ़ते हैं, और आप सभी को बातें चल रही थी हमारी हेमंत दा की और फिल्मों की, और मुझे लगता है जितनी फिल्में हेमंत दा ने बनाई है उन सभी का रीमेक हो गया उसी समय कुछ सालों के बाद।
2: जी जी।
0: नागिन फिल्म को भी देखिए कितने बार आ गए उसके अलग अलग
2: वर्जन आ गए, अलग हो गए लेकिन स्टोरी थोड़ी मिलती
0: जुलती उनको जो है रीमेक किया गया था
2: बिल्कुल। और जो है फिल्म अगर मुगले आजम की बात करें तो बड़ी हिट और फिल्म रही अपने समय की, और उसमें जो सम्राट अकबर है ऐतिहासिक वो एक राजा माने गए जिन्होंने अनारकली के की उसकी जो चाहे वो एक ऐसे घराने सी थी जिन वो उसको बहू बनाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उसके साथ जो उन्होंने न्याय किया, अन्याय नहीं किया, बहू तो नहीं बना सकते थे लेकिन उसको जीने का हक भी दिया उन्होंने। तो ये चीजें हमें सिखाती हैं कि कहीं किसी भी आप जगह पे हो तो आपको न्याय और अन्याय दोनों का फर्क पता होना चाहिए, है ना। और इसको बनाने में मुगले आजम फिल्म को बनाने में 16 साल लगे रमेश भाई जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और जो कोई भी राजा अपने बेटे की शादी ऐसे घराने में नहीं करना चाहेगा, चाहे दिलीप कुमार ने बहुत अच्छा रोल, बहुत बढ़िया रोल, और ऐसे ऐसे सीन जो लोग उनको याद करते हैं उन सीन्स को जिसमें मधुबाला और दिलीप कुमार साहब का, हालांकि उस समय कुछ ऐसा उनके जीवन में चल रहा था ऊपर नीचे कि दोनों की आपस में थोड़ी खटपट थी किसी वजह से, है ना, लेकिन फिल्म में ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। और क्लास सीन वो जो है उसमें दिखाए गए हैं और लोग अब आज तक उसको याद करते हैं, और उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए मुगले आजम फिल्म ने थिएटर में, और देखने वालों की लगातार आज भी आज की जो पीढ़ी अगर उसको देखती है तो वो उनकी अदाकारी उनकी कलाकारी और निर्माता को याद करती है, और पृथ्वीराज कपूर को बहुत लोग पसंद करते हैं कि हर रोल में उन्होंने अपना लोहा मनवाया हर फिल्म में।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो ये सब चीजें जो है किसी भी फिल्म को कामयाब करने के लिए उसमें कलाकार का निर्माता का बहुत बड़ा रोल होता है।
0: चलिए हेमंत दा का एक और खूबसूरत गीत जैसे सुनेंगे आपके दिल से आवाज निकलेगा गाने के लिरिक्स।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और आशा करूंगा हेमंत दाखा और आशा भोसले लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गाने आप सुन रहे हैं, निश्चित तौर पे आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ। हेमंता के बारे में हम लोग बातें कर रहे थे, जैसे कि उनकी फिल्में बनाने का जो अंदाज है वो बहुत ही अलग था। और अनारकली की बातें हमने सुनी, नागिन की बातें, फिर प्यासा एक फिल्म उनका था, प्यासा में भी उन्होंने बहुत अच्छा से जो है उस फिल्म को पिक्चराइज किया गया था और उसके गाने भी बहुत हिट हुए थे। हेलो,
1: हाँ जी सर, नमस्ते, सूरज भाई बोलता हूँ जताना से।
0: बोलिए बोलिए सूरज जी।
1: बस हम जहाँ वहाँ दिखते थे राम देवी बाबा मंदिर, तो बस जाके आ गए, हमारी दूरी नहीं थी, तो जाके अभी थोड़ी देर पहले है और बात चल रही थी, तो मैंने सोचा हेलो, एक जो हेमंत कुमार का गाना है सर, तो मुझे बहुत पसंद है, वो सीमा फिल्म का गाना है, इसमें जो बंदा सहानी मेरे हिसाब से और नितिन का जो सुना गाना है, तू प्यारे का सागर है, तू प्यारे का सागर है,

0: जी सर,
1: बहुत बढ़िया,
2: बहुत बढ़िया,
0: अच्छा गाना है। कमल प्रिया जी, हम भी गुनगुना लेते हैं कभी कभी,
1: समझ में आ रहा है।
0: नहीं, हम जो सिलाई काम करते हैं तो जब गाने चलते हैं तो साथ साथ हम भी गुनगुना लेते हैं।
2: बिल्कुल, मैं वही बोलने वाली थी कि हमारे सुनने वाले भी गाने का भी शौक रखते हैं ना, ये पता चल गया।
0: काम करते करते हमको भी खुशी रहती है गाने गाने
2: की। बहुत बढ़िया, संगीत तो बहुत बढ़िया साथी है, इसको साथ रखिए अपने हमेशा, सुबह से शुरू कीजिए और रात तक
0: के गाने का।
2: देखिए संगीत में ना जो हर राग का अपना महत्व है, सुबह का राग और दोपहर के राग, शाम का, जो आपके दिमाग पर बहुत अच्छा असर डालते हैं ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है, बिल्कुल। इसलिए तो हम टेंशन फ्री रहते हैं, हम इसके लिए कोई टेंशन नहीं, आए तो चले जाएंगे ऐसे।
2: जी जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो रेडियो मधुबन जो है वो भी आपके साथ है हमेशा, अच्छे अच्छे गाने गीत लेते
0: हैं ना, कि जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी रहेगा।
2: जी बिल्कुल,
1: LIC हो गया रेडियो के साथ,
2: बीमा हो गया पक्का है, खुशियों का बीमा रेडियो मधुबन है।
1: जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया याद करने के लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। चलिए आप बात करते हैं प्यासा फिल्म के बारे में। हेमंत दा का ही ये निर्मित फिल्म है और इसमें भी खूबसूरत गाने हैं और एक से बढ़कर एक गाने हैं, और एक गाना तो बहुत ही मशहूर है इस फिल्म का जो हम लोग सुनाएंगे भी। और
2: हिंदी फिल्म की बिल्कुल जी, बात जी, करें जी, तो गुरुदत्त की जो ये फिल्म थी ना जी, जी बहुत ही बढ़िया फिल्म, और एक ऐसी नारी के ऊपर उन्होंने फिल्म बनाई जिसको समाज अच्छी नजर से नहीं देखता है, और उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी मुश्किलें है ना, उसकी मजबूरियां। और गुरुदत्त साहब तो एक ऐसे डायरेक्टर थे जो बड़े सेंसिटिव थे और हर चीज को बड़ी बारीकी से पर्दे पर लिया थे।
1: और इस फिल्म में भी इन्होंने लगभग एक कहानी जो है कवि का जो है स्टोरी बताई गई है। लगभग ये फिल्म 10 वर्ष 1957 में रिलीज हुई, 10 साल लगे इनको बनाने में, आजादी के 10 वर्ष बाद, 1947 से 57 तक। कवि विजय जो है वो उस किरदार को निभा रहे थे गुरुदत्त जी, और इसमें फिल्माया गया था। श्रेष्ठ होते हुए भी अपनी कृति को स्थान नहीं दिला पाए। विजय की रचनाएं अमीरों के अत्याचारों का विरोध व गरीबों के समर्थन में वो लिखते थे। ये प्रकाशन जो है बहुत अच्छी तरह से होने के बावजूद भी उसको उतनी तवज्जो नहीं मिल पाते थे, तथा उनकी रचनाओं को एक कबाड़ी को बेच दिया जाता था। तो इसी पर उन्होंने ये फिल्म बनाई जिसमें वहीदा रहमान को उन्होंने,
2: और माला सिन्हा दोनों का बहुत ही बढ़िया रोल था।
1: जी जी।
2: और वो जो विजय है वो
1: गुरुदत्त,
2: मतलब ऐसा, हाँ जी, गुरुदत्त के किरदार में, गुरुदत्त जो विजय के किरदार में थे, तो उन्होंने इस चीज को ऐसे फिल्माया कि एक ऐसी औरत जो चाहती है कि अच्छा जीवन जीना, लेकिन एक ऐसी औरत जो अच्छा जीवन जी रही है ना, दोनों का उन्होंने एक पूरा कॉम्बिनेशन दिखाया। और ये फिल्म चाहे इसमें ना जॉनी वॉकर का बहुत अच्छा रोल था, उन्होंने बड़ा उसको लाइट किया फिल्म को अपने गाने सुनाकर, क्योंकि कभी कभी फिल्म बहुत संजीदा हो जाती है ना, सुन देखने वाले जो है बहुत ज्यादा उनके मानसिक प्रभाव पड़ता है, तो उन्होंने साथ में जॉनी वॉकर को लिया
1: जो
2: फिल्म को उनके मूड को थोड़ा
1: लाइट करके और फिर टर्निंग पॉइंट के लिए उनको रखा गया। तो इसमें जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात, विजय का किरदार जो है एक लेखक के रूप में है, और फिर वो उनके जो चीजें हैं वो कबाड़ी में फेंका जाता है, उनको कहीं तवज्जो नहीं मिल पाता, तो ऐसे में इनकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है और ये हॉस्पिटल में चला जाते हैं। वहाँ पर एक नर्स जो है इनकी प्रकाशित रचना को सुनकर, अपनी प्रसिद्धि का समाचार जानकर, वो लोगों को अच्छा लग रहा है ये जानकर, विजय जो है हॉस्पिटल में सामान्य हो जाता है। लेकिन फिर उनके परिवार वाले बोलते हैं ये अच्छा हो गया तो हमारे लिए मुसीबत करेगा, इसीलिए उसको जो है पागल ही बनाए रखने के लिए सब मिलकर एक रचना रचते हैं, और जो इस फिल्म के लिए एक बहुत बड़ा खूबसूरती भी दिखाती है और स्टोरी को बनाए रखने में एक कामयाबी हासिल कराती है। हेलो जी, नमस्कार।
3: शांति, गुड मॉर्निंग रमेश जी।
1: जी जी, नमस्ते
3: जी, कमलेश जी कैसे हो?
2: नमस्कार,
1: बहुत अच्छे,
2: शांति
3: में आपकी, अच्छा प्रोग्राम हमेशा की तरह चल रहा है, और रमेश जी का भी क्या कहना, हमेशा सेवा में नई नई जानकारी देने में व्यस्त और मस्त रहते हैं और हमको भी बहुत ही खुशी होती है सभी प्रोग्राम सुन के। और कल बातें मुलाकातें प्रोग्राम भी सुना, बहुत ही अच्छा लगा। और आपका ये प्रोग्राम
1: जी, जी.
3: 2000 के लगभग अभी पूरा होगा थोड़े दिनों में, तो ये सभी फील्ड पर जानकारी देने वाला प्रोग्राम और सभी जो गेस्ट आते आप बुलाते वो जानकारी देते, आप अच्छी प्रस्तावना करते, बहुत ही अच्छा लगा। और दीदी आपकी भी जानकारी और गीते ओल्ड इज गोल्ड बहुत ही अच्छा लगा। और सभी श्रोताओं को आपको सभी को नमस्कार और ओम शांति, ओम शांति,
1: ओम शांति। सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कॉल करने के लिए, ढेर सारी खुशियाँ। अपना ख्याल रखिए, आप तबीयत ठीक रखिए जी। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, ये थे सुभाष जी जो अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा कर रहे थे। और विजय जी की कहानी यानी पैसा फिल्म की कहानी मैं सुना रहा था, जिसमें फिर उनको पागल करार करके हॉस्पिटल में ही रखते हैं, परंतु विजय को अब मुश्किल ये आती है कि कैसे, मैं मानसिक रूप से बीमार नहीं हूँ, मैं एक अच्छा राइटर हूँ, मैं समाज को समझता हूँ, मैं दूसरों की ज़िंदगी को सुधारने के लिए लिखता हूँ, ये उनको सिद्ध करना था।
2: जी जी जी।
1: तो दूसरी ओर विजय को एक दुर्घटना में चोट लगती है और वह संयोगवश मृत समझ लिया जाता है। और जो नर्स है गुलाबो अपने कुछ अन्य प्रभावशाली परिचितों की सहायता से विजय की रचनाएं प्रकाशित करा देती है।
2: जी, जी,
1: ये कविताएं घोष इस आशा से प्रकाशित करता है,
2: राइटर को एक नया जीवन मिल जाता है।
1: विजय की मृत्यु से उपजी सहानुभूति का लाभ उठाकर धन कमा लेगा, पर उसके भाई महमूद घोष के पास जाते हैं और वो पैसा हथियाने के लिए प्रयास करते हैं, परंतु विजय जीवित है और उसका इलाज एक मानसिक रोग हॉस्पिटल में चल रहा है। एक दिन नर्स से अपनी ही प्रकाशित रचना सुनकर तथा अपनी प्रसिद्धि का समाचार जानकर विजय बहुत सामान्य हो जाता है और वो ठीक होने लग जाता है। तो इस तरह की कहानी ये है। और मुझे लगता है कि इसका एक खूबसूरत गाना शायद कमलेश जी अभी और गुलाटी साहब भी गुनगुना रहे थे, वो गीत मैं आपको अभी
2: वो गीत सुनाने से पहले मैं एक बात और आपको अपने सुनने वालों को जानकारी देना चाहती हूँ कि जो प्यासा फिल्म है, गुरुदत्त साहब ने 1947 या 48 के आसपास जब वे 22 वर्ष के थे ना, तब उन्होंने एक कहानी लिखी थी कश्मकश, उस पर आधारित थी ये फिल्म। और फिल्म का विषय और दर्शन उनके शुरुआती करियर के संघर्षों में उनके अनुभवों को जो है हमें हमारे तक जानकारी पहुंचाता है। बहुत उन्होंने संघर्ष भी किया और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में भी बनाई, बड़े संजीदा डायरेक्टर थे वो। और ये गीत सुनते हैं हम।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। 9:41 हो रहे हैं और हेमंत कुमार साहब का बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना और प्यासा फिल्म का ये खूबसूरत गाना जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। तो साथियों, आज भी ये गाना जब हम लोग सुनेंगे या अपने जीवन की तरफ एक बार देख लेंगे तो निश्चित तौर पर ये गाना जितना खूबसूरती से उस समय लिखा गया था उतनी खूबसूरती इसकी सच्चाई आपको आज के जीवन में भी पता चल जाता है कि हम लोग जिनको बहुत प्यार करते हैं शायद वो उतना प्यार हमसे नहीं करते। तो ये चीज़ें हमेशा बनी रही हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसे समय में आपको इस तरह के गीत सुनते हैं तो मन आपका जो है प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कमलेश जी, बताइए प्यासा फिल्म का जो कहानी है वो आपको बहुत पसंद आया, उसके बाद हेमंत कुमार का एक और फिल्म जिसके बारे में आप बात करना चाहेंगे।
1: जी,
0: एक जो फिल्म था साहेब बीबी और गुलाम।
1: जी, बहुत बढ़िया। ये भी इसमें गुरदत्त साहब डायरेक्टर थे।
0: जी,
1: बहुत प्यारी फिल्म रही ये अपने समय की। साहब बीवी और गुलाम, मीना कुमारी जी का इसमें काम और रहमान साहब का, मतलब सभी मजे हुए कलाकार इसमें। 1962 में बनी ये फिल्म और इसके गीत और इसका जो अदाकारी सभी की बहुत बढ़िया।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: मीना कुमारी जी तो आपको पता ही है कि इसकी खास जानकारी ये है कि एक अमीर आदमी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोठी पर जाता है, इस कारण उसकी पत्नी मानसिक रूप से परेशान हो जाती है और धीरे धीरे उनके अपने पड़ोसी भूतनाथ के साथ के वो करीब हो जाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी। और समाज में ये चीजें होती रही है,
0: होती रही है। हेलो जी, नमस्कार।
2: नमस्कार
0: नमस्कार
1: नमस्कार
0: जी,
1: जी प्रणाम। नमस्कार
2: नमस्कार,
1: बहुत बहुत।
2: हेमंत कुमार जी का गाना है ना, गंगा आई कहा से गई कहा, पानी में बैठ कर गाया जो गाना है सर हेमंत कुमार जी का।
0: कल बिल्कुल आपको सुनाते हैं गुड़ीलाल जी, धन्यवाद, शुक्रिया याद करने के लिए हेमंता को। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। साहब बीबी और गुलाम की बातें हो रही थी। जी वंदना,
1: और आपको वंदना जी की याद आ रही है?
0: नहीं, उनके साथ भी कार्यक्रम किया तो मेरे को ऐसे बोलने की आदत हो गई।
1: और 1962 में बनी फिल्म भारतीय हिंदी भाषा की एक ड्रामा फिल्म रही।
0: हाँ।
1: जिसका निर्देशन अबरार अलवी ने किया और निर्माण एवं सह निर्देशक थे गुरुदत्त साहब। गुरुदत्त जी ने मीना कुमारी, रहमान, वहीदा रहमान के साथ फिल्म जो अभिनय किया वो मिसाल था। और ये 1956 की बंगाली फिल्म साहब बीवी गुलाम का रीमेक और विमल मित्रा के 1953 के इसी नाम से उपन्यास पर ये आधारित फिल्म थी। और फिल्म की कहानी 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज के दौरान की और भूतनाथ दत्त जो गुरुदत्त साहब ने रोल अदा किया उस पर केंद्रित है, जो कि एक जमींदार रहमान की अकेली पत्नी छोटी बहू कुमारी से मिलता है। और फिल्म में छोटी बहू अपने पति को, जिसे शराब पीना, तवाइफों का प्रदर्शन देखना पसंद है, और घर पर रखने के लिए उसके साथ शराब पीने के प्रयासों को दिखाया गया। वह शराब के आदी हो जाता है और इसमें दोनों जिसमें वो दिवालिया हो जाते हैं। तो जो जैसे चौदहवीं का चांद इन्हीं दिनों फिल्म बनी 1960 में, कागज के फूल गुरदत्त साहब की है ना। और जब वो मीना कुमारी इसके करीब जाती है, गुरदत्त साहब जो उसमें अदाकारी में थे तो भूतनाथ जिनका नाम था, तो उन्होंने आखिरी मोमेंट तक उसे उनकी भावनाओं को समझा। हालांकि वो एक नौकर है, नौकर की हैसियत के हिसाब से तो बड़ा मुश्किल था उसके लिए, लेकिन उनकी भावनाओं को देखते हुए वो उन्होंने पूरा उनका साथ दिया, उनकी भावनाओं की कदर करते हुए आखिरी मोमेंट तक जो है इस फिल्म में जो दिखाया गया कि भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना और भावनाओं को सहेज कर रखना, उनको समझना कितना जरूरी है, तो ये फिल्में हमें सिखाती हैं। और शुरुआत उसकी हुई थी कि जो एक कब्र में, मीना कुमारी की कब्र है, उसमें उनकी चूड़ियां और ये पूरे गहने हैं ना, जब वो मर जाती हैं तो उनको दबाया जाता है, तो सारे गहने उसमें उठाते हैं गुरदत्त साहब, वहां से शुरू होती है ये स्टोरी। कहने का मतलब कि पारिवारिक जो मसले होते हैं उनमें बहुत सा ऊपर नीचे कभी कभी हो जाता है, जिसको संभालना समय से बहुत जरूरी होता है। ये चीजें हमें बहुत गुरदत्त साहब ने अपनी फिल्मों में हमें दिखाया, बहुत अच्छी अदाकारी करके और बहुत अच्छा, वो एक बहुत अच्छे राइटर भी थे. तो ये सब उन दिनों की फिल्में पारिवारिक फिल्में हुआ करती थी रमेश भाई, जिसमें हम अपने पूरे परिवार के साथ बैठ के उनको देख सकते थे और अपने में सुधार कर सकते थे.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: तो ऐसे
0: इसी फिल्म का एक गीत है साहेब बीबी, वो बहुत ही पॉपुलर रहा, भावरा बड़ा नादान.

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: बिल्कुल रमेश जी, जैसा कि मेरे युगल भी साथ आए हुए हैं,
0: जी,
1: हर
0: जी,
1: बार
0: जी।
1: वो प्रोग्राम में शामिल होते हैं। एक हेमंत दा का गीत सुनाने के लिए बहुत देर से वो आतुर है, तो उनको लेके आते हैं माइक पे। मेरा सबको नमस्कार, बहुत ही प्यार भरा, ऐसी मुलाकात होती रहेगी जब तक मधुबन रेडियो में है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपका भी शुक्रिया रमेश भाई
0: जी। चलिए, अभी गुलाटी जी भी अपना जो है हेमंत दा का एक बहुत ही खूबसूरत गीत लेकर आ रहे हैं, तो उनसे भी हम लोग रूबरू होंगे और एक गीत भी सुनेंगे। तो हेमंत दा के बारे में हमने काफ़ी कुछ बातें सुनी, निर्माता रहे और उनको पुरस्कार के रूप में हेमंत दा को जो है अपने सफल करियर में कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें बंगाल फिल्म नील आकाश और नीचे, नील आकाश नीचे, इसके लिए प्रेसिडेंट गोल्डन अवार्ड मिला और 1990 में बंगाल देश के ढाका में माइकल मधुसूदन अवार्ड भी उनको दिया गया। जी गुलाटी सर, बोलिए कौन सा गीत सुनाएंगे हेमंत दा का आप?
2: ये गाना है जी, है अपना दिल तो आवारा,
0: हाँ
2: ना जाने किस पे आएगा।
0: क्या बात है, किस पे आ रहा है आज?
2: वैसे तो सभी गाने उन्होंने सीरियस बोले हैं।
0: हाँ सुनाएंगे
2: ये गाना देवानंद जी ने फिल्म 16 साल में हुआ।
0: क्या बात, क्या बात, सुनाइए।

वाह साहब वाह, बहुत बढ़िया गुलाटी जी, बहुत ही प्यारा सा हेमंदा का गीत आपने सुना। चलिए मित्रों, वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, और जाते जाते हेमंदा की एक बात मैं बताना चाहूँगा। 1979 में जब वो 40 और 50 के दशक में सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में गाए, अपने गानों को दोबारा रिकॉर्ड भी कराया और उसे लेजेंड ऑफ ग्लोरी 2 का सम्मान मिल गया। और फिर उसके बाद जैसे मैंने पहले भी बताया था, मधुसूदन अवार्ड इनको मिला ढाका में। वो विदेश में गए 1990 में और वहाँ से अवार्ड लेके जब आए, संगीत समारोह में हिस्सा लेने के बाद समारोह समाप्त हो गया, उसके बाद वो भारत लौटे। तब उन्हें लौटते ही दिल का दौरा पड़ा। लगभग 5 दशक तक अपने संगीत, मधुर संगीत से श्रोताओं को परम आनंद प्रदान करने वाले इस महान संगीतकार और पार्श्व गायक का 26 सितंबर 1990 को निधन हो गया। तो ऐसे विशेष हेमंदा के बारे में हम सुन रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। तो हेमंदा की कहानी आपको अच्छा लगे तो उनके गीत सुनकर आज भी उतना ही आनंद ले सकते हैं आप। तो इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अचानक के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणेशा। सही मायने में जो हम कमाते हैं वही तो हमारे साथ जाता है, जो हम कमा करके पुण्य का कार्य करते हैं वही हमारे साथ जाता है। कैसे जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, पाइनएप्पल कौन सी बीमारियाँ ठीक करता है, कैसे स्वास्थ्य के लिए हेल्दी है ज़रूर जानेंगे। खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे, तो व्यंजन भला कैसे भूल सकते हैं। आप क्या सीखना चाहते हैं भाई, आप जो सीखना चाहते हैं बोलिएगा। अगर आप नहीं सिखा सकते तो फरमाइश तो कर ही सकते, नहीं तो फिर हम अपनी पसंद की तो सिखाने ही वाले हैं। और आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर रहेगा, तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: ये हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन।
2: गुड मॉर्निंग, आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार है कि जो हम अपने हाथों के द्वारा पुण्य करते हैं वो ही सही मायने में हमारी सच्ची कमाई है और वो ही साथ चलेगा, बाकी कुछ नहीं। कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूँगी। एक बार एक सेठ जी थे, वो बड़े साधु सेवी थे। जो भी संत महात्मा नगर में आते वह उन्हें अपने घर बुला करके उनकी सेवा करता। एक बार एक महात्मा जी सेठ जी के घर पर आए। सेठानी महात्मा जी को भोजन कराने लगी। सेठ जी उस समय किसी काम से बाजार चले गए। भोजन करते करते महात्मा जी ने स्वाभाविक ही सेठानी जी से कुछ प्रश्न किए। पहला प्रश्न यह था कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं? सेठानी जी ने उत्तर दिया कि ईश्वर की कृपा से 4 बच्चे हैं। महात्मा जी ने दूसरा प्रश्न किया कि तुम्हारा धन कितना है? उत्तर मिला कि महाराज, ईश्वर की अति कृपा है, लोग हमें लखपति कहते हैं। महात्मा जी जब भोजन कर चुके तो सेठ जी भी बाजार से वापस आ गए और सेठ जी महात्मा जी को विदा करने के लिए साथ चल दिए। मार्ग में महात्मा जी ने वही प्रश्न सेठ जी से भी किए जो उन्होंने सेठानी जी से किए थे। पहला प्रश्न था कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? सेठ जी ने कहा, महाराज मेरा 1 पुत्र है। महात्मा जी दिल में सोचने लगे कि ऐसा लगता है सेठ जी झूठ बोल रहे हैं। इसकी पत्नी तो कहती थी कि हमारे 4 बच्चे हैं और हमने स्वयं भी 3-4 बच्चे को आते जाते देखा और यह कहता है कि मेरा 1 ही पुत्र है। महात्मा जी ने दोबारा वही प्रश्न किया, सेठ जी तुम्हारा धन कितना है? सेठ जी ने उत्तर दिया कि मेरा धन 25,000 रुपया है। महात्मा जी फिर चकित हुए। इसकी सेठानी कहती थी कि लोग हमें लखपति कहते हैं, जो हमने अपनी आंखों से भी देखा, इनके इतने कारखाने और इतना कारोबार जो चल रहा है और ये कहता है मेरा धन 25,000 रुपये है। महात्मा जी ने तीसरा प्रश्न किया, सेठ जी तुम्हारी आयु कितनी है? सेठ जी ने कहा, महात्मा जी मेरी आयु 40 वर्ष की है। महात्मा जी ये उत्तर सुनकर के हैरान हुए। सफ़ेद बाल है इसके, देखने में 70-75 वर्ष का वृद्ध प्रतीत होता है और ये अपनी आयु 40 वर्ष बताता है। सोचने लगे कि सेठ अपने बच्चों और धन को छुपाना चाहते हैं, परंतु आयु को कैसे छुपा सकता है भला? महात्मा जी रह न सके और बोले, सेठ जी ऐसा लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। सेठ जी ने हाथ जोड़कर विनय के स्वर में कहा, महाराज झूठ बोलना तो वैसे ही पाप है और विशेषकर संतों के साथ झूठ बोलना और भी बड़ा पाप है। आपका पहला प्रश्न मेरे बच्चों के विषय में था। वस्तुतः मेरे 4 पुत्र हैं, किंतु मेरा आज्ञाकारी पुत्र 1 ही है। भक्ति भाव पूजा पाठ में लगा हुआ है। मैं उसी 1 को अपना पुत्र मानता हूँ। जो मेरी आज्ञा में नहीं रहते, कुसंग के साथ रहते, वे मेरे पुत्र कैसे भला? दूसरा प्रश्न आपका मेरा धन के विषय में था। महाराज मैं उसी को अपना धन समझता हूँ जो परमार्थ की राह में लगे। मैंने जीवन भर में 25,000 रुपये ही परमार्थ की राह में साधु सेवा गो सेवा में लगाए है, वही मेरी असली पूंजी है। जो धन मेरे मरने के बाद मेरे पुत्र बंधु संबंधी ले जावेंगे, वे मेरा भला कैसे? तीसरे प्रश्न में आपने मेरी आयु पूछी है। 40 वर्ष पूर्व मेरा मिलाप एक संत जी से हुआ था। उनकी सेवा चरण शरण ग्रहण करके गुरु धारण किए। मैं तब से भजन अभ्यास और साधु सेवा कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसी 40 वर्ष की अवधि को ही अपनी आयु समझता हूँ। वो कहते हैं, कबीर संगत साध की

संस्कार, इसलिए कहा जाता है कि भाई जो हम अपने हाथों से श्रेष्ठ कर्म कर लेते हैं वो ही असली हमारी कमाई है, असली पूंजी है, असली पुण्य है, बाकी तो सब निरर्थक है। ये हुआ आज का सुंदर सा विचार। और आइए फिर से सुन लेते हैं गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण मंगल, शूद्र का चरना, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय। तो आइए, अनानास किस तरह फायदा करता है हमारे स्वास्थ्य के लिए वो आप जानेंगे, ठीक है। तो पाइनएप्पल देखिए, अभी सीजन है पाइनएप्पल के भी, इतना महंगा नहीं है मार्केट में, आप ला सकते हैं और आराम से इसको खा सकते हैं। तो क्या है, रोहिणी रोग होता है ना, जैसे कि रोहिणी की झिल्ली को काट कर गले को साफ करने का प्रमुख गुण अनानास के रस में होता है। अतः इस व्याधि से मुक्ति पाने के लिए मेरे प्यारे श्रोता बंधु इसके रस का सेवन करिएगा। साथ ही शरीर के समस्त अस्वस्थ तंतुओं को स्वस्थ करने की क्षमता अनानास के रस में होती है, तो बहुत ही फायदेमंद है। रोहिणी की झिल्ली को काट करके गले को साफ करने का प्रमुख गुण अनानास के रस में होता है, तो इस व्याधि से मुक्ति पाने के लिए इसके रस का सेवन करिएगा आप। साथ ही साथ शरीर के समस्त अस्वस्थ तंतुओं को स्वस्थ करने की क्षमता अनानास के रस में होती है। अगला उपाय भी बहुत ही सुंदर है, अगर गले की सूजन है, टॉन्सिल है, तो अनानास खाइएगा, काफ़ी फायदा करेगा। गले में सूजन है, टॉन्सिल बढ़ गए हैं, तो आप अनानास खाइएगा, काफ़ी हितकारी होगा। और देखिए, अगर फुंसिया हो गई है, भाई गर्मी चल रही है, सीजन तो गर्मी का है और गर्मी में तो यही समस्या सबसे ज़्यादा होती है, तो आप सेवन के समान ही राय प्रयोग में भी अनानास, वो कहते हैं ना कि कम गुण नहीं है इसमें, इसके गुदे को फुंसियों पर लगाइए, इससे वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो जिस तरह हम कोई भी चीज़ खाते हैं अंदरूनी अंदर जाता है और वो बीमारियों को ख़त्म करता है, उसी तरह अनानास के गुदे को, ठीक है, इसके पल्प को निकाल करके आप फुंसियों पर लगाइए, वो ठीक हो जाएगी। तो इस तरह पाइनएप्पल हमारे हेल्थ के लिए कौन कौन सी बीमारियां ठीक करता है और कैसे ठीक है वो आपने जाना है। आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न भी बहुत सुंदर है। देखिए, योगा डे शुरू हो गया कल से, एक सप्ताह योगा डे का रहेगा, ठीक है, 15 तारीख से योगा डे शुरू हो गया है। तो सूर्य नमस्कार के कितने चरण होते हैं, इसका जवाब आपको देना है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। आप चाहे तो ऑन एयर जुड़िए, आप चाहे तो ऑफलाइन दे सकते हैं, आप चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो आइए यहीं पर फिर से एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटते हैं, बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं। हेलो,
2: हाँ जी, नमस्ते सुरेश भाई, बोलता हूँ जटाना से।
1: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हो आप?
2: बस अच्छे हैं, जवाब देना था लेकिन लाइन शुरू हो गई।
1: अच्छा हाँ, तो, कोई बात नहीं, आप जवाब इनडायरेक्टली भी दे सकते हैं, ठीक है? आप उल्टे बोलोगे तो मैं उसका सही समझ जाऊंगी।
2: चलो उल्टा तो मैं सुन लो।
1: हाँ
2: हाँ, कि अब युगादि आ रहा है तारीख को।
1: जी ओके, ठीक है। हाँ जी, अच्छा, आज का विषय है गुणों के सहारे ही व्यक्ति सफल हो पाता है, मगर विनय और विवेक साथ हो तो शिखर छू जाता है। क्या कहेंगे आप?
2: बिल्कुल सही बात बताया दीदी, क्योंकि देखो विवेक नहीं होगा, वर्तन अच्छा नहीं होगा, तो कैसे हम अच्छे हो सकते हैं? क्योंकि कहते हैं कि कोई कई कभी कभी लोग कहते हैं कि इसके में बिल्कुल विवेक नहीं है, इसके बोलने का ढंग नहीं है। चाहे अच्छे दोस्त हो, अच्छे कोई भाई हो, लेकिन दीदी अच्छे होने का मतलब ये नहीं, अच्छे होना यानी कि अच्छे विवेक से अच्छा होना। देखो आज कोई हमारे घर पे आता है और तरह से कोई चरण स्पर्श करते हैं, नमस्कार करते हैं, हाथ मिलाते हैं, इसको विवेक कहते हैं दीदी। कोई आते हैं तो अच्छी तरह से बुलाते हैं
1: जी,
2: कभी कभी तो कोई ऐसा जाता है तो कोई सामने जाता है तो बोलते भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं कहते चलो आइए हमारे घर आओ, हमारे घर पे आओ, तो कोई ऐसा व्यक्त भी चलता है कि भाई आइए
1: जी,
2: तो ये विवेक नहीं होता दीदी। विवेक तो जो विवेक होता है उसको अच्छे इंसान माना जाता है
1: जी।
2: हेलो,
1: हाँ जी, हाँ जी सुन रही हूँ।
2: लेकिन किसी के बोलने का अच्छा ढंग नहीं है, बोलने का तरीका नहीं है
1: जी,
2: तो ये इंसान दीदी दिखने में तो अच्छे, क्या करना, दिखने में अच्छे हो लेकिन गुण नहीं हो तो क्या करे?
1: वो रूप तो चार दिन का होता है पर हाँ, फिर जमीन पर उतरते हैं तब गुणों की आवश्यकता रहती है।
2: कैसा भी हो लेकिन अच्छा मान सम्मान जहाँ मिलता है, और देखो पहले जमाने में तो दीदी क्या था, हमारे घर पे कोई आता था तो इतने आनंद से प्यार से दो दो तीन तीन दिन रुकता था, नहीं जाने देते थे, इतने विवेक करते थे, नहीं भाई आज नहीं कल जाना, कल नहीं परसों जाना, कल जाना, कल जाने में दो तीन दिन निकाल देते थे, इतना आनंद था, कितना एक भाव था इसमें। लेकिन आज वो नहीं है, आज तो कोई हमारे घर पर आते हैं तो चलो आइए, आया चला जाया, बस ऐसा रहता है, कोई ऐसे विवेक नहीं करते, कोई सब बहुत वो मान सम्मान ऐसे पहले जैसा नहीं मिल रहा है दीदी अभी
1: जी। बिल्कुल,
2: नमस्ते दी।
1: हाँ जी नमस्ते, बहुत बहुत आभार। तो ये थे सुरेश भाई झोटाना से, आपने विषय को स्पष्ट करने की अच्छी कोशिश की है। अब आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। आज का प्रश्न है सूर्य नमस्कार के कितने स्टेप है, ठीक है, संख्या बतानी है आपको, और विषय बहुत ही सुंदर है गुणों के सहारे ही व्यक्ति सफल हो पाता है, मगर विनय और विवेक साथ हो तो शिखर छू जाता है। क्या कहेंगे आप? बहुत ही सुंदर विषय है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, प्रैक्टिकल विषय है, जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। वो मारवाड़ी में कहावत है भणिया कोनी पर गुणिया जरूर, ये कहावत अक्सर कभी की प्रचलित है और आज भी ये कहावत चलती है। बहुत जनों को आप देखोगे कि वो पढ़ाई में कोई ऐसे खास नहीं है, 10वीं 12वीं पढ़ करके व्यापार में लग गए, लेकिन आज उनको देखो आप, आसमान छू लिया उन्होंने, और उनका व्यवहार देखो आप, ओहो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत पढ़े लिखे हैं। कोई कोई की पर्सनालिटी ऐसी होती है और कोई कोई का व्यवहार ही ऐसा होता है कि लोग विश्वास ही नहीं कर पाते कि अच्छा आपने 12वीं तक ही पढ़ाई की, नहीं नहीं आप में तो सर्वगुण दिखाई देते हैं, ऐसे बोलते हैं, है ना? तो गुणों के आधार पर इंसान की पहचान होती है, न कि सुंदरता के आधार पर। हेलो, हेलो नमस्कार। चलिए जो भी जुड़ते हैं कोशिश करिएगा कि आपकी आवाज़ हमारे तक पहुँचे। तो बहुत ही सुंदर विषय है कि गुण जो होता है व्यक्ति में तो सचमुच वो जीवन में सफल हो जाता है, क्योंकि अधिकांश लोगों को हम देखते हैं कि वो गुणों के आधार पर आगे बढ़ते हैं। और जिन्होंने अपने पैसे का दम या फिर कोई अन्य दम भरा हो वो निश्चित रूप से पतन की ओर चले जाते हैं। हेलो,
2: हाँ भूरा राम बोल रहा हूँ दीदी।
1: हाँ भूरा राम जी, राम राम, कैसे हो?
2: राम राम है, सब मधुबन भाइयों को और सबको मेरा राम राम है। बस बैठ के आपके सुन रहा था, वो फोन लगाने में मेरे को थोड़ा टाइम लगा, वो अभी लगाया फोन।
1: जी जी कोई बात नहीं, अभी तो विषय चल रहा है। तो आज का प्रश्न है सूर्य नमस्कार के कितने चरण होते हैं, यह आज का प्रश्न है। और विषय है गुणों के सहारे ही व्यक्ति सफल हो पाता है, मगर विनय और विवेक साथ हो तो शिखर छू जाता है, क्या कहेंगे?
2: बहुत बढ़िया ये प्रश्न आपने किया है। वो सूर्य तो इतना मेरे को नॉलेज नहीं है और इसके बारे में तो बता दो, जो आदमी में गुण है और हर चीज का विवेक है तो वो आदमी कोई भी बोले तो आके अपने बाजू में बैठते और सुनते और अपना बोले तो सम्मान करते। और अपने अंदर गुण होते हैं तो लोग बोले तो सुनते कि इनके पास में क्या जाना है, उनके बातें सुन के बोले तो बोर हो जाते ऐसे जाते। और अपने में गुण है तो आजू बाजू वाले भी सुनते कि चलो 5 मिनट उधर राम जी के पास में जाके बैठेंगे तो थोड़ी अच्छी बातें सुनेंगे, अच्छी ये करेंगे। तो ऐसा तो आदमी में गुण होता है तो अपने को पूछते, और अवगुण है तो कोई अपने को पूछता नहीं है दुनिया में
1: जी।
2: तो ऐसी बातें तो हर चीज विवेक भी चाहिए, हर चीज आदमी को बोले तो विवेक होता है तो सब पूरा अपना सम्मान होता है। और तो क्या बताओ दीदी।
1: जी कोई बात नहीं, इतना बता दिया, बहुत बहुत आभार आपका। और
2: okay,
1: हाँ जी, और आज के प्रश्न का जवाब देंगे आप?
2: कौन सा
1: आज के प्रश्न है? सूर्य नमस्कार के कितने स्टेप होते हैं, कितने चरण होते हैं?
2: सूर्य नमस्कार के तो कितने, अपने को इतना ज्ञान नहीं है।
1: अच्छा चलिए कोई बात नहीं,
2: मैं नहीं बता सकता। Okay,
1: कोई बात नहीं, बहुत बहुत आभार आपका।
2: Okay.
1: तो ये थे भूरा राम जी ओर से, आपने भी विषय को अच्छा स्पष्ट किया है। और अब आप भी जुड़ सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। प्रैक्टिकल विषय है, गुणों के सहारा ही व्यक्ति सफल हो पाता है, मगर हाँ साथ ही साथ विनय और विवेक होना तो वो शिखर छू जाता है। गुणवान होना अच्छी बात है, गुणवान होना भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में विनय हो, ठीक है, नम्रता हो और हमारी विवेक शक्ति मजबूत हो तो सचमुच इंसान फिर जो चाहे कर सकता है, उसका जो भी श्रेष्ठ संकल्प है उसको पूरा कर सकता है। तो वो कहते हैं ना, गुणवान तो बहुत होते हैं लेकिन साथ ही साथ विनय और विवेकशील बनना ये मुश्किल होता है। लेकिन जो गुणवान है और साथ ही साथ ये लॉटरी भी उसको मिली हुई है कि वो मतलब उसका नेचर विनय पूर्ण है और वो विवेक शक्ति से काम लेता है, तब तो निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ना ही है, फिर जीवन में उसको कोई पीछे हटा नहीं सकते। बहुत जनों को देखते हैं कम पढ़े लिखे होते हैं लेकिन इतने वाकपटु होते हैं, इतने व्यावहारिक होते हैं कि मुझे एक दुकानदार के बात याद आ रही है।

0: जो मैंने देखा है कि वो दुकानदार कोई खास पढ़ा लिखा नहीं है, अच्छी सी दुकान है, ग्राहक को एक को भी नहीं जाने देता है। हमारे सामने देखा कोई गए तो नए थे, पहली बार उस दुकान पर चढ़े तो अरे आइए आइए बहन जी आइए आइए, अरे बैठिए, अरे वो अपने जो वर्कर लोग हैं उनको बोल रहे अरे देखता क्या है, एक चेयर लेके आ मैडम के लिए, चेयर लेके आ, चेयर लेके आए, मैडम को बिठाया, फिर अरे गर्मी से तप करके आए, पानी लाओ, ठंडा पानी लाओ, पानी ला करके पिलाया, बहन जी आप आराम से बैठिए, पंखा की हवा खाइए, फिर आपको जो चाहिए बोलिए हम आपको दे देंगे। देखिए आप पसीने से तरबतर हो गए हैं। अब बहन जी को लगा कि वास्तव में दुकानदार कितना अच्छा है, कौन इतना भाव देता है। फिर बहन ने बहुत सारा सामान खरीदा और वो परमानेंट कस्टमर बन गई। तो ये भाई वो कहते ना कि गुणवान तो है ही है, उसके गुण उससे दिखाई दिए व्यवहार के, और उसकी वाणी में मिठास थी, नम्रता थी और विवेकशील तो था ही। तभी पता है कि कस्टमर को प्यार देना जरूरी है और इंसान प्यार में ही हारता है। वो कहते ना कि अगर हम किसी से सच्चे दिल से, जैसे उस दुकानदार का व्यवहार देखा तो उसके अंदर भी लगा कि कितना प्यार से पेश आ रहा है, तो अब मुझे कहीं नहीं जाना, सामान यहीं से लेंगे। और ऐसे नहीं कि नए ग्राहक का ही भाव पूछता है, पुराने वालों को भी तुरंत पूछेगा, जैसे ही पसीने से तरबतर देखेंगे तो अरे आपको सामान की जल्दबाजी नहीं है तो आप बैठिए थोड़ी देर, फिर आप आराम से लिस्ट दीजिए, उस अनुसार हम सामान निकाल देंगे। तो कस्टमर बड़े खुश हो जाते हैं कि ये बंदा पानी का भी भाव पूछता है और पंखे में बिठाता है, नहीं तो आजकल तो दुकानों पर बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे बैठने के लिए एक स्टूल भी वहाँ से हटा देते हैं, कि खामखा कस्टमर एक आदि, क्योंकि भीड़ लगती है ना कस्टमर की, कोई कोई फेमस दुकानें होती है तो बैठने का कुछ नहीं रखते हैं, कि कम से कम एक कस्टमर दो कस्टमर ज़्यादा खड़े रह सकते हैं, अपनी दुकान पर ज़्यादा आएंगे, भीड़ देखेंगे तो बाहर से ही चले जाएंगे, तो ऐसा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपने नसीब का सबको मिलता है, वो दुकानदार ने 3-4 ऐसे चेयर रख रखी है जो थोड़े से दुकान के बाहर की साइड में बिठाते हैं, बाहर भी फैन लगा हुआ है और एकदम आड़ है, छाँव है, तो न उनके दुकान को डिस्टर्ब होता है, आने वाले भी बड़े खुश हो जाते हैं, और एक जने को हाजिरी में ही रखता है कस्टमर के, कि भाई कस्टमर आवे तो उनको पानी का भाव जरूर पूछो। पानी पिलाने से वो कहते हैं ना ऐसी गर्मी में पानी पिला दो तो बस और क्या, सब कुछ मिल गया। तो गुणों के साथ साथ विवेकशील होना भी बहुत जरूरी है, विनय बनना भी बहुत जरूरी है, फिर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अब वो दुकानदार है, देखा देखते देखते एक छोटी सी दुकान से उसने शुरुआत की, आज बड़े से शोरूम की तरह उसके अच्छी सी दुकान है, और दुकान मतलब शोरूम की तरह तो नहीं है, शोरूम तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन फिर भी वो दुकान बड़ी है, और बड़ी होने के साथ ही साथ उसकी दुकान इतनी अच्छी चलती है कि कस्टमर भले घंटों घंटों इंतज़ार करेगा लेकिन दूसरी शॉप पर नहीं जाएगा, बैठेंगे हम, कोई बात नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है। और उन्होंने अपने काम करने वाले 3-4 भाई बहनों को रख रखा है कि भाई कस्टमर का कोई बाहर बैठे है तो पहले उनको पूछो, अंदर वाले तो पता है कि बाहर निकलेंगे तो हमारे क्लाइंट पहुँच जाएंगे और वापस ले आएंगे, एक भी ग्राहक को वो नहीं जाने देते। कभी कभी कोई ऐसे सोचते हैं कि चलो बहुत टाइम लग जाएगा, चलते हैं, तो बाहर से वो इशारा करते कि जाओ उनको बुला के लाओ, फिर उनका काम पहले कर देंगे, अच्छा आपको जल्दी है लाइए आपकी लिस्ट दीजिए, पहले सोचते हैं कि भाई जो पहले आए उनको दे देते हैं, लेकिन जिनको जल्दबाजी देखते हैं कि ये जल्दी में जा रहा है, निकल ही गया है, तो तुरंत उसको बुला करके सामान पकड़ा करके ही भेजते हैं और खुश होकर के कस्टमर ले जाते हैं। देखिए ये भी अपने अपने एक वो कहते हैं ना कि गुणवान के साथ साथ विवेकशील है और विनयी है, तो सब कुछ उसका हो रहा है, हमने खुद देखा है हमारी आंखों के सामने, आज अच्छे से उसके फ्लैट है और परिवार को प्यार से पाल रहा है और दुकान भी धनाधन चल रही है और हाय हाय भी नहीं है। दान पुण्य करना ये भी उनके ये है, जल्दी उठना, वही पंछी पक्षियों को पानी देना जैसे हमारे सुरेश भाई जोटाना वाले करते हैं, ऐसे उनका नियम है। तो ऐसे लोग कभी पीछे हट ही नहीं सकते और वो कभी पीछे पड़ ही नहीं सकते, ठीक है, वो घिर नहीं सकते, वो जो चाहे जैसा संकल्प चाहे वो पूरा कर सकते हैं, क्योंकि मेहनत उनके हाथ में है और मेहनत करने वालों की कभी हार ही नहीं होती है, है ना। तो चलिए इस विषय पर और भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन समय हो चला एक गीत सुनने का, तो एक गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं, बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: ओए रुको रुको ओए रुको ओए त्रिदेव त्रिमूर्ति एक बाइक पे तीन हैं और तुम लोगों को शर्म नहीं आती और बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो और तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे मालूम नहीं तुमको ओए अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी तीन के बोझ की मारी
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज
0: ओए तुम्हारे मैच की तो ओए एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्लीन बोल्ड हो जाओगे ओए जिंदगी के स्टंप उखड़ जाएंगे ओए ये ट्रैफिक है भाई यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती ठोको ताली ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार सड़क
2: याद रखें एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं यह एक दंडनीय अपराध है सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी सुनते रहो मुस्कुराते रहो
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है गुणों के सहारे व्यक्ति सफल हो पाता है मगर विवेक और विनय साथ में हो तो शिखर छू जाता है जब हम अकेले हो ना मेरे प्यारे श्रोता बंधु तब अपने विचारों को संभालिए और जब हम सबके बीच हो तब अपने शब्दों को संभालना बहुत जरूरी होता है तो बहुत ही सुंदर विषय आपके समक्ष रख चुकी हूँ आप जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है सूर्य नमस्कार के कितने स्टेप होते हैं भाई योगा डे शुरू हो गया है और 7 दिन योगा रहेगा और 7वें दिन लास्ट रहेगा 21 जून वो तो फिर बहुत ही धूमधाम से होगा हर जगह होगा है ना लेकिन 1 सप्ताह का है योगा डे तो देखते हैं आपका कितना नॉलेज है और ज़रूर करिएगा सूर्य नमस्कार हेलो
4: हाँ नमस्कार दीदी ओम शांति सुरेश भाई आपको और सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार
3: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई ओम शांति और कैसे हो आप
4: बस अच्छे हैं दीदी और अच्छा बहुत अच्छा विषय है दीदी आज भी और आज का विचार भी बहुत सुंदर था जो कहानी आपने बताई बिल्कुल दिल छूने वाली कहानी थी और दीदी मैं विषय के बारे में बताऊं कि बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आपके विवेकशील होना बिल्कुल जरूरी है तो उससे मुझे एक बात याद आई कि एक लकड़हारा लकड़ी काटने गया तो सूखा पेड़ था तो वो काटा भी लेकिन उनको भूख लगी प्यास भी लगी और धूप भी लग रही थी तो कहीं जाकर बैठ रहा था तो बहुत बड़ा पेड़ था आम का पेड़ था उन्होंने आम खाए विश्राम भी किया और साथ में जो हरा भरा वृक्ष होता है उसके पास नदी वगैरह भी रहती है तो वो पानी पिया तो ये कहानी समझ कर मुझे ये समझ में आया कि हमेशा अकड़ कर नहीं रहना वो एक और पेड़ था जो सूखा अकड़ कर रहता था तो उनको काट के ये थी और एक हरा भरा पेड़ वो हमेशा झुका रहता था विवेकशील से तो लोग आश्रय भी लेते हैं तो ये बात है दीदी मेरा कहने का मतलब आप समझ रही होगी
3: जी जी बिल्कुल
4: तो मैं बस यही कहूंगा कि कोई फायदा नहीं है कि जो ज्यादा बुरे होना या कोई अपने आप पर ही बस मैं ही मैं हूँ हमेशा विवेकशील रहे और दूसरों के प्रति अच्छे भाव व्यक्त रखे जैसे कि आपने जो दुकानदार जो होता है ग्राहक वाली बात बताई ये भी बिल्कुल सही बात है अच्छे मन स्वभाव रखेंगे ना दीदी तो लोग हमारा भी विश्वास करेंगे और हम लोगों पर भी विश्वास करेंगे
3: जी
4: ये बात है दीदी
3: बिल्कुल
4: जी जी
3: बहुत सुंदर जी
4: नमस्ते दीदी हाँ
3: जी नमस्ते
4: प्रश्न का जवाब भेज दिया
3: हाँ जी बहुत बहुत आभार आपका तो ये थे सुरेश भाई धानेराव से आपने भी विषय को बहुत ही अच्छा स्पष्ट किया है और वास्तव में आज का विषय बहुत ही सुंदर है वो कहते हैं ना कि गुणवान बनना जरूरी है गुण के साथ अगर विनय और विवेकशील है फिर तो क्या कहना तो जैसे कि मैं वो दुकानदार की बात बता रही थी कि अपने स्वभाव की वजह से उसकी दुकान अच्छी चल रही थी एक जगह मैंने देखा कि मतलब बेटी उनकी बहुत ही सुंदर थी गुणवान थी रूपवान थी तो माता पिता की इच्छा थी कि हमें जमाई भी ऐसा मिले जो रूपवान हो, हमारी बेटी के साथ सेट हो सके, भाई घूमने जाए तो लगे कि हाँ ये जोड़ी राम जी और सीता जी जैसी है। हेलो
5: हेलो, नमस्ते, ओम शांति।
3: हाँ जी नमस्ते सगुना बहन, कैसे हो आप?
5: बहुत अच्छे हैं आपकी दुआ से।
3: जी ईश्वर की कृपा से।
5: हाँ,
3: बस हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।
5: आप भी हमेशा खुश रहिए।
3: जी थैंक यू। तो सगुना
5: का जवाब?
3: हाँ जी, आप कुछ भी घुमा फिरा कर दीजिएगा। जी
5: और विषय भी क्या है?
3: विषय है गुणवान बनना, अच्छी बात है। गुणवान के साथ साथ विनय और विवेक है तो इंसान आगे बढ़ सकता है, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आसमान छू सकता है।
5: तो गुणवान बनना तो अच्छा ही है, उसके अंदर संस्कार अच्छे होंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। संस्कार अच्छे नहीं होंगे हमारे में, गुण नहीं होगा, अच्छे गुण नहीं होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं।
3: जी
5: हमारा स्वभाव किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा।
3: जी
5: सरलता भी होना जरूरी है, सहनशीलता भी होना जरूरी है हमारे में।
3: जी
5: सभी गुण अच्छे होना जरूरी है। हमारे गुजराती में बोलते हैं कि खोटो सिक्को तो आगर जाए नहीं, ऐसे हमारे गुजराती में बोलते हैं। तो हमारे में गुण अच्छे होंगे तो रास्ते चलते भी हमको कोई बुलाएगा भाई ये इंसान अच्छा है। और जो अच्छे गुण नहीं होंगे, स्वभाव संस्कार अच्छे नहीं होंगे तो मतलब जान से बुलाना नहीं।
3: जी
5: गुण अच्छा होना बहुत जरूरी है।
3: जी बहुत अच्छी बात है।
5: घुमा फिरा के नहीं देते दे।
3: हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी ओम शांति। तो ये थे सगुना बहन झोटाना से, और आज का विषय बहुत ही सुंदर है। हमारे श्रोता बंधु जुड़ करके अच्छी तरह इसको स्पष्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी, देखा था कि एक परिवार में इस तरह बेटी बहुत ही सुंदर थी, तो उनको एक सुंदर से लड़के की तलाश थी जो उनको बहुत ही नज़दीक रिश्तेदार में ही मिल गया। अब परिवार जाना पहचाना है, लेकिन आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं होता है ना। माता पिता का नाम होता है कि भाई हाँ पिताजी इस पोस्ट पर है, या इस तरह का इनका परिवार है, ठीक है, अच्छा है, पैसा से संपन्न है, बेटी को यहाँ कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी, बेटे को खूबसूरत देखा तो पसंद आ गया कि ये हमारी बेटी के साथ बहुत ही अच्छा सेट होगा। और एक ही बार में दोनों तरफ से हाँ हो गई, क्योंकि उनको भी बहू अच्छी चाहिए थी, खूबसूरत भी चाहिए थी, और साथ ही साथ गुणवान, तो उन्होंने तो देख लिया कि गुणवान है इनकी बेटी, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा है कि भाई इनका बेटा तो बड़ा सुंदर है लेकिन रूप के साथ गुणवान है, एक नहीं है, नहीं देखा, शादी करवा दी। शादी करवा दी तो पता चला कि बेरोज़गार, बेरोज़गार के साथ साथ थोड़े से मतलब संग भी खराब और खान पान भी शुद्ध नहीं, तो बेटी बड़ी परेशान होने लगी, क्योंकि जो नशे के आदि होते हैं वो कभी न कभी तो वो कहते हैं अपनी जात पर आ ही जाते हैं, वो बता ही देते हैं कि हाँ मैं नशेड़ी हूँ, मारपीट करना या फिर गाली गलौज करना, जोर जोर से चिल्लाना। तब रहते रहते पता चला कि अरे ये तो देखने में सुंदर है, बाकी सारे अवगुण ही अवगुण है। बेटी को परेशान करना, बेटी को मारना पीटना शुरू कर दिया, ये नहीं करती है वो नहीं करती और कमाता नहीं है। तो अब माँ बाप देखे, जब तक लड़का कुमारा होता है तब तक तो माँ बाप फिर भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और उसको मतलब उसका ध्यान रखते हैं, क्या चाहिए क्या नहीं हर बात का। लेकिन जब शादी हो जाती है तो वो भी धीरे धीरे उधर से हट जाते हैं कि बस अब अपना करें। तो देखे ऐसे माता पिता को यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि आप ये सोच करके शादी करवाते हैं क्या बच्चों की, क्या आने वाली संभाल लेगी? कैसे संभालेगी? जब माता पिता से बच्चा नहीं संभला तो आप दूसरों पर क्यों छोड़ते हो कि आने वाली संभालेगी? उसकी क्या ताकत और उसकी कोई सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो या तो आप बताइए उनको कि भाई हमारा बेटा इस तरह का है, फिर आप देख लीजिए, करना हो तो, नहीं करना हो तो आपकी मर्जी। अरे क्यों छुपाते हो? बहुत सारे रिश्तों में देखा है छुपाते हुए, कि छुपा देते हैं सारी गलतियाँ कि बेटा या बेटी कैसे है, फिर जब जाते हैं, जब शादी होती है और ठोस जमीन पर उतरते तब पता चलता है कि कौन किस स्वभाव संस्कार का है, तब कुछ नहीं रहता बर्बादी के अलावा। तो ऐसा ही हुआ, वो बेटी को परेशान करने लग गए। अब बेटी इतनी खूबसूरत माता पिता के, वो भी इकलौती बेटी थी, दो भाई और बहन, तो बहुत ही प्यार से उसको रखा। अब उसके हालत देखी, थोड़े दिन तो उसने छुपाया, कुछ नहीं बताया माता पिता को, लेकिन जब देखा कि सास ससुर का प्यार ही नहीं मिल रहा और पति भी गाली गलौच और एक रुपये की कमाई नहीं, और जो बेटी को मायके से मिला उसमें से भी सारे केस पति ने नशे में उड़ा दिया, मीठा बोल बोल के प्यार से ले जाता कि भाई दे दो, मैं देखो कुछ न कुछ काम जरूर करूँगा और फिर देखो तुम्हें कैसे हाथों पर रखता हूँ। ऐसे करके उसने 2 साल गुजारे। उसने कहा बस हो गया, इनफ। कैसे भी करके थोड़े बहुत माता पिता को भी पता चला, लेकिन वो कहते हैं ना कि थोड़े बहुत में माता पिता हमेशा यही चाहते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा नए नए हैं, फिर सेट हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार 2 साल जब बहुत ही मतलब पैसे तो सारे ले लिए थे, अब गहनों तक बात आई कि तुम्हारा फैलाना गहना दे दो, मैं कोशिश कर रहा हूँ नौकरी के लिए, मिलते ही तुम्हारे बनवा दूंगा, तो उसने मना कर दिया कि एक भी गहना नहीं मिलेगा। तो मारपीट हुई तो उसने फोन करके अपने माता पिता को बुला लिया कि बस आपको अभी के अभी आना है। माता पिता बड़े घबरा गए, बेचारे आए, देखे ऐसे तो है नहीं कि एक ही गांव में जो फटाक से आ जाए, तो फिर भी वो जैसी कंडीशन में थे निकल गए। 3 घंटे बाद पहुंचे, तब तक उसका मार भी पड़ी, जो भी है उसने तो सास ससुर को भी उठा दिया कि बस अब या तो आर या पार, अब मैं क्यों मार खाऊं, तो उठा भी दिया था। माँ बाप ने कहा कि क्यों फ़ोन किया पियर पर, हमें पहले बताती, तो उसने कहा कि आपको तो पता ही है ना रोज ही मारपीट हो रही, नहीं पता है। फिर माँ बाप आए, माँ बाप को सारी बातें बताई कि न तो कमाता है न धमाता है, सारे केस जितने आपने दिए सब ले गए और अब गहनों तक बात आ गई, तो अब मैं एक भी गहना क्यों उड़ाऊँ, ये तो नशे में उड़ा रहा है। तब जाकर के माँ बाप अपनी बेटी को ले आए, सारे गहना तो वैसे ही लेके आ गए क्योंकि बेटी के पास ही था, जो फिर कह दिया कि या तो कमाई करके मेरी बेटी को अच्छा रखना है तो ठीक है, नहीं तो डिवोर्स के पेपर भिजवा देंगे, साइन कर देना, बात ही ख़त्म, हमें कुछ नहीं चाहिए भरण पोषण का और हम नहीं भेजेंगे। फिर लेकर के आए, वो बेटा नहीं सुधरा, तलाक हो गया। साल भर का उसको चांस दिया था कि साल भर में कमा करके बता और तो अपना कुछ अपनी अच्छी पोजीशन बता, लेकिन नशे वालों को कहा होश होता है, तो उसने कुछ नहीं किया और वो तलाक हो गया। और इतनी सुंदर बेटी, इतने गुणवान बेटी बिना कारण 2-3 साल परेशान हुई। और भाई शादी होना ये कोई छोटी बात थोड़े, शादी के बाद रिश्ते टूटना ये भी कोई छोटी बात थोड़े, गुड्डे गुड्डी का खेल थोड़ा होता है, लेकिन क्या करें। लेकिन वो माता पिता समझदार थे, जो अच्छा रहा कि उन्होंने बेटी को नहीं भेजा, नहीं तो आजकल हम देखते हैं कि इसी तरह बेटियों को कब मार देते पता ही नहीं चलता। आजकल तो कानून का भी डर नहीं रहा कि भाई हम मारेंगे सामने वाले को तो कल पुलिस भी तो हमें पकड़ के ले जाएगी, जेल में डालेगी, तब क्या होगा, पता नहीं आगे पीछे का सब भूल जाते हैं और फिर इस तरह का अपराध करते हैं, ऐसा सुनने को मिलता है। तो माता पिता ने समझदारी से काम लिया और बेटी तो पढ़ी लिखी थी, तो बेटी को कहा कि अब आप जो करना चाहो करो, जॉब करना चाहो जॉब करो, नहीं करना चाहो घर में कोई कमी नहीं है। लेकिन बेटी समझदार थी, उसने जॉब करना शुरू कर दिया। हेलो,
6: कैसे हो उषा बेन?
3: हाँ जी नमस्ते, हम अच्छे हैं, आप सुनाइए।
6: हाँ बच्ची बात करते हो, बहुत बनता है गीता।
3: अच्छा हाँ, आज के बहुत बन रहा है, सही है।
6: ये देवी जैसी लड़कियों की परेशान बहुत होती है, आप बोला ना कि वो पहले के ईसा कमाता है, ऐसा कमाता है, बजे बाद में वो शराब पीता है
3: जी, जी
6: मन करता है वो
3: जी
6: सब वो गिरना होता वो बेच देते
3: जी।
6: आपने बहुत अच्छा उसको सुझाव दिया
3: जी जी।

0: थैंक यू. आपका शुभ नाम बताएंगे
1: क्या?
0: आपका शुभ नाम बताएंगे?
1: दयाराम भाई.
0: अच्छा अच्छा, इकबालगढ़ वाले. हाँ जी, कैसे हो दयाराम भाई?
1: बस बस, सुन रहा था अभी, अभी चालू किया. अभी तो बहुत अच्छी बात करते हैं, बहुत किस्सा बनता है, दिखरी से जिंदगी बर्बाद होती है.
0: जी जी जी जी, बिल्कुल.
1: शराब ऐसा राक्षस है, वो एक बार घुस गया तो निकलना बहुत मुश्किल होता है.
0: सही है,
1: अपने तो उच्च कक्षा में कम है, लेकिन दूसरे में इतनी होती है ने परेशानी दिखरियों की, देवी जैसी दिखरी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है.
0: जी जी जी, वो कहते ना कि
1: बहुत अच्छा सुधा भी, आपको धन्यवाद है.
0: अच्छा, ऊपर वाले को धन्यवाद. आज के प्रश्न का जवाब देंगे.
1: कौन सा? मैं भी सुना नहीं, अभी चालू किया था.
0: जी, आज का प्रश्न है, जो हम योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसमें सूर्य नमस्कार करते हैं, उसके कितने चरण है?
1: मैं करता हूँ.
0: ठीक है,
1: सूर्य नमस्कार मैं करता हूँ.
0: अच्छा, तो फिर कितने स्टेप बता सकते हैं आप? तो आराम से
1: वो बार होता है, बार नाम ने बार होता है.
0: अच्छा, तो ठीक है दयाराम भाई.
1: नमो खटाय, नमो मित्राय, नमो नमो सूर्याय, नमो बार मंत्र है, बार करते है.
0: ठीक है,
1: उम्र होगी थोड़ी धीमे से करता हूँ, उम्र होगी आस्ते आस्ते करता हूँ.
0: नहीं, अच्छी बात है ना, स्लोली स्लोली करना है, धीरे धीरे.
1: उसके तो बहुत अच्छा, आपका शरीर को, उसके आपका शरीर को अच्छा रहता है.
0: जी, अगर आपने 101 सूर्य नमस्कार कर लिए तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं फिर बाद में.
1: सही बात है.
0: और एकदम उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे करनी चाहिए. एक किया, पांच किया, दस किया, ऐसे.
1: मेरे छोटे भाई वो जल्दी से करता है, वो तो 100 कर देता तो, वो उसकी हाइट है ना, वो बहुत पतली है.
0: जी जी जी. अच्छा,
1: ये सूर्य नमस्कार जरूरी है जी, मोदी करते हैं तो अपने नहीं करना चाहिए
0: जी.
1: मैं तो पहले से करता है, इसके लिए तो मेरी तबीयत अच्छी रहती है.
0: बहुत बढ़िया, क्या बात है.
1: मेरी उम्र ज्यादा होगी फिर वो सूर्य नमस्कार से शरीर तक आऊंगा.
0: कितने साल के होंगे आप?
1: मेरी कितने साल होगी मैं बताऊं? 76.
0: ओहो, तो काफी एज है आपकी. लेकिन आपकी आपकी आवाज से नहीं लगता कि आपकी इतनी एज है. और
1: मैं भी 100 किलो की गुण आती है, लौटा को फेंक देते हूँ.
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत है. क्या बात है.
1: जी जाएगा.
0: जी जी जी, बहुत जरूरी है एक्सरसाइज जीवन में. बहुत अच्छी बात है, तभी तो आप टिके हुए हैं. और इतने 100 किलो का एक बोरा होता है, उसको उठाना क्या.
1: दूसरी बात मैं करता हूँ, आपकी उम्र कितनी बड़ी, लेकिन आप बात करते कैसे करते, तेजस्वी करते अर्जुन जैसी.
0: अच्छा,
1: आपकी उम्र कितनी है? मन लगता है कि मेरे जितनी होगी आपकी.
0: नहीं नहीं भाई जी, आपसे तो बहुत छोटी हूँ मैं.
1: नहीं, आपने बताया था क्यों?
0: आपसे तो बहुत छोटी हूँ मैं तो, 55. देखिए, वैसे तो अपनी एज नहीं बतानी चाहिए, लेकिन आपने बताई, हमने भी बता दी. ठीक है, जग जाहिर हो गया.
1: आपकी 70 हो गया होगा.
0: अरे भाई जी, 55. 55. हाँ, आपसे बहुत छोटे हैं.
1: अच्छा सुधा जी, आप बताओ बात. अच्छी बात सुनिए. जय श्री कृष्ण, राम राम.
0: जी राम राम, आभार आपका. तो ये थे दयाराम जी इकबालगढ़ से. और बस अब इस विषय को यही समाप्त करते हैं. कहने का भाव यही है कि गुणों को धारण करिए और गुणों के साथ विनय बनाए रखिए और विवेकशील रहिए, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता. और आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर है. सूर्य नमस्कार के कितने स्टेप होते हैं? यह आज का प्रश्न है. जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15. और यहीं पर एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में. सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM.

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। अभी देखिए कच्ची केरी का सीजन चल रहा है तो सोचा कि आपको छुंदा बनाना सिखा देवे। केरी का छुंदा, ठीक है सभी सीखने को तैयार हो ना? तो चलिए, वो कहते हैं ना गर्मियों का मौसम और कच्चे आम का स्वाद ना मिले ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो आइए गुजरात की मशहूर रेसिपी छुंदा आपको राजस्थान में सिखाएंगे। तो आप ले लीजिए कच्चे आम 1 किलो, मतलब कच्ची केरी लीजिएगा 1 किलो। अब आप चीनी लीजिएगा 750 ग्राम, ज़्यादा ही खट्टे हो तो बरोबर ले लीजिए बाकी 750 ग्राम। नमक 1 छोटा चम्मच लेना है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लीजिएगा, 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर लीजिएगा और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी लेनी है, ठीक है। तो क्या लेना है सामग्री में, कच्ची केरी 1 किलो, चीनी 750 ग्राम, अगर ज़्यादा खट्टी है और आप थोड़ा सा मीठा ज़्यादा खाते तो 1 किलो ले लीजिए, बरोबर ले लीजिए, ठीक है। और 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच ही हल्दी पाउडर नहीं लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच ही सिका हुआ जीरा पाउडर, ठीक है, और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। बनाने का तरीका भी आपको साथ ही साथ सिखा रही हूँ। कच्ची जो केरी ली है इसके धुलाई करिएगा, धुलाई करके छील लीजिए, छील करके अब इसको कद्दूकस कर लीजिएगा। कद्दूकस करने के बाद अब इसको आप थोड़ा सा निचोड़ लीजिए ताकि थोड़ा सा पानी होगा वो निकल जाएगा, पर इस पानी को फेंकना नहीं। इसका आप केरी का पन्ना बना करके पी सकते हैं, केरी का शरबत बना करके पी सकते हैं, ठीक है। तो अतिरिक्त पानी को दबा दबा कर निकालिए, फिर इसमें चीनी और नमक मिला करके आप हिलाइए और हिलाने के बाद कांच के बर्तन में भर दीजिए। फिर इसे 5-7 दिन तक रोज़ धूप में रखिए और दिन में 1 बार 7 चम्मच से इसको हिला दीजिए। जब चीनी पूरी तरह मिक्स हो जाए, घुल जाए और मिश्रण गाढ़ा होने लगे तब उसमें लाल मिर्च, हल्दी और जीरा पाउडर डाल करके मिला दीजिए। फिर ये छुंदा तैयार हो चुका है, इसको सूखे कांच के जार में भरकर रख दीजिए। तो ये बन गया छुंदा। तो कैसे बनाया हमने, केरी की धुलाई करनी है, धुलाई करने के बाद इसके छिलके निकालने हैं, फिर कद्दूकस कर लेना है, कद्दूकस करके इसको दबा करके थोड़ा पानी निकले उतना निकाल देना है। फिर इसमें कद्दूकस किए हुए केरी में चीनी डालिएगा, मतलब शक्कर डालिएगा, नमक डालिएगा और एक कांच के बर्तन में भरकर रखिएगा, ठीक है, थोड़े से चौड़े बर्तन में। फिर इसे 5-7 दिन तक रोज़ धूप में रखिए, ऊपर से कपड़ा बांध दीजिए कांच के बर्तन में, ठीक है। कपड़ा बांध करके फिर आप रोज़ धूप में रखिए और बीच में रोज़ 1 बार हिलाना है 7 चम्मच से। जब ये मिश्रण गाढ़ा होने लगे तब इसमें थोड़े लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर डाल करके हिला कर रख दीजिएगा। अब छुंदा तैयार हो चुका है, इसको आप अच्छे से साफ स्वच्छ कांच की बर्नी में भर करके रख सकते हैं, चीनी की बर्नी में भर के रख सकते हैं और बस जब चाहे तब आप छुंदे का आनंद ले सकते हैं। 1-2 साल इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। और फिर तो देखिए वो कहते हैं ना कि जितना डालो मसाला उतना ही स्वाद बढ़ता है। तो ड्राई फ्रूट्स भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं आप, काजू डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, और नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, सिंपल भी बहुत अच्छा लगेगा। विशेष करके आप थेपला के साथ खाएंगे तो बहुत स्वादिष्ट लगेगा। लेकिन जो भी हम सात्विक चीज़ बनाते हैं अपने इष्ट देव को भोग लगा करके ही खाइएगा। और अब साथ ही साथ समय भी हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज का कार्यक्रम तो आपने सुना ही है, काफ़ी अच्छा रहा है, सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर ज़रूर गौर करेंगे और उसके भी बहुत ही अच्छे दिए है। पाइनएप्पल खाने के क्या फ़ायदे है वो आप सभी ने जाना है और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई। तो रेसिपी में जो आपको केरी का छुंदा बनाना सिखाया है ज़रूर बना करके खाइएगा। और आज का

प्रश्न बहुत ही सुंदर था कि सूर्य नमस्कार के कितने चरण होते हैं, कितने स्टेप होते हैं। तो आज हमारे सभी श्रोता बंधुओं ने लगभग सही जवाब दिया है, तो हम सबसे पहले तो सभी श्रोता बंधुओं के लिए ढेर सारी तालियां बजाना चाहेंगे। अब नाम लेना चाहूंगी, सुरेश भाई जोटाना से जुड़े हैं, और फिर जुड़े हैं अलका जी काबरा कप्पासन से, सुभाष भाई महाराष्ट्र से, सुरेश भाई धानेराव से, ज्ञानेंद्र जी मध्य प्रदेश से, भोराराम जी ओर से, दीपा कप्पासन से, शोभा कप्पासन से, सुरेश भाई का नाम बोल दिया है, मदन भाई मेहसाना से, सगुना बहन जोटाना से, दयाराम जी इकबालगढ़ से, जिनमें से जवाब नहीं दिया है मदन भाई मेहसाना से, बाकी सभी ने जवाब दिया है। तो सभी का जवाब सही है और विषय में भी जुड़े हैं, इसके लिए भी ढेर सारी तालियां। आज का मीठा मोती है, ईश्वर के कार्य में तन मन धन लगाना एवं औरा का तन मन धन ईश्वर के कार्य में लगाना सच्ची और सबसे बड़ी सेवा है। अब मैं आपको एक प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घनी खम्मा सा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। अब जिंदगी से प्यार ना हो तो भाई जिंदगी जीने का आनंद कैसे आएगा, मजा कैसे आएगा। और ना जाने जिंदगी के ऊपर कितने गाने सुने हैं, कितने गाने बने हैं, लिखे जाते हैं, गाए जाते हैं, और बड़ा मजा आता है कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो चलिए जिंदगी को तो नहीं लेकिन खुद को जानने की कोशिश करते हैं लव यू जिंदगी में। और आज हमारे साथ हैं दो स्पेशल गेस्ट। जी हाँ, हमारे साथ वो एक्सपर्ट्स हैं जो आपको खुद से मिलाएंगे। आज हमारे साथ हैं कल्पना जी जो कि स्पिरिचुअल काउंसलर हैं, ग्लोबल अस्पताल से सीधा जुड़ गई हैं हमारे साथ। बहुत लंबा अनुभव है उनका यूथ के साथ, बच्चों के साथ, बहुत लोगों को उन्होंने मदद की है जिंदगी से प्यार करने में। और हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीनिधि जी भी जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आरजे भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार आरुषि जी।
2: नमस्कार। नमस्कार आरुषि जी, बहुत अच्छा लग रहा है फिर से एक बार आपके साथ जुड़कर।
0: मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आज आप दोनों की आवाज सुनकर, और ये जानकर और खुशी हो रही है कि बड़ा ही टॉपिक इंटरेस्टिंग है आज का, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो फॉरगिव और फॉरगेट की बात करता है। खुद को माफ करना, दूसरों को माफ करना। कई बार मुझे तो ऐसा लगता है कि दूसरों को माफ करना फिर भी आसान होता है, पर खुद को माफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरों को माफ करना भी छोटी छोटी चीजों के लिए भी कभी कभी मुश्किल हो ही जाता है वैसे, लेकिन क्या ये इम्पोर्टेंट है, क्या जरूरी है माफ करना, और माफ करना कैसे होता है? मतलब कह दिया माफ कर दिया तो क्या सच में माफ कर दिया, या वो अंदर वो रह जाता है कुछ बाकी, तो जानेंगे ये सब। कल्पना जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। सबसे पहले आपको कितना रेलिवेंट लगता है ये टॉपिक?
2: ये टॉपिक मेरे दिल के करीब है, क्योंकि हमेशा से मेरा ये अभ्यास रहा है कि मैं किसी को माफ नहीं कर पाती थी बचपन से लेकर बड़े होने तक। लेकिन जब मुझे थोड़ा समझ आई और मुझसे ऐसी कोई गलती हुई जिसके लिए मैं चाहती थी कि मुझे कोई माफ करे, और जब उनकी तरफ से मुझे माफी नहीं मिली, तो उस समय जो मुझे तकलीफ हुई, उसके बाद मैंने ये सोचा कि आज से आगे से चाहे जो कुछ भी हो जाए मुझे सबको माफ करने की आदत डालनी है। और जिस दिन से मैंने ये ठान लिया, मेरे अंदर पता नहीं क्यों बहुत बहुत सुंदर एक एहसास उत्पन्न हुआ, जिसको हम सुकून कह सकते हैं, शांति कह सकते हैं, जिसको हम रिलैक्सेशन कह सकते हैं, हल्कापन कह सकते हैं, वो एहसास मेरे में जागा। और जब मैंने माफ करना शुरू किया तब मैंने देखा कि मेरे पांव जमीन पर नहीं, मैं कहीं दूसरी दुनिया में, मतलब मैं इतना हल्का महसूस कर रही थी अपने आप में। उस दिन मैंने जाना कि माफ करना किसी और के लिए नहीं होता है, ये तो खुद को आजाद करने का, नेगेटिव फीलिंग से, नेगेटिव इमोशन से ये आजाद करने का एक तरीका है। हम जितनी देर तक अलग अलग प्रकार से मिले हुए दर्द को पकड़ के रखते हैं, उतनी ही गहराई से वो दर्द हमें पकड़ के रखता है, और उसके कारण जो लाइटनेस है, इजीनेस है, हल्कापन है, क्रिएटिविटी है इवन, वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाती है। सो माफ करना मेरी जिंदगी का बहुत अच्छी शिक्षा मेरे लिए मिली, जो कि मैंने अपने जीवन में अच्छी तरह से उसको धारण कर लिया।
0: मतलब माफ करने से हम लाइट हो जाते हैं और हमारी क्रिएटिविटी पे भी असर पड़ता है, बहुत चीजों पे असर पड़ता है आपने बताया। श्री जी, आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगी, इतना रेलिवेंट है आपके लिए टॉपिक, क्या आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है माफ करने से जुड़ा हुआ?
1: मैं शुरुआत ही एक शेर से करना चाहूंगा। रूठने का हक है तुझे मगर वजह बताया कर, रूठने का हक है तुझे मगर वजह बताया कर, नाराज होना गलत नहीं तो खता बताया कर।
0: क्या बात।
1: कहने का भाव ये है कि बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि हम कभी किसी से माफी चाहते हैं, या कभी कभार हमें खुद ऐसा लगता है कि सामने वाला मुझे माफ करे या मैं किसी को माफ करूं, मगर बिना ये जाने कि वजह क्या है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है। अगर हम किसी से खफा भी हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, तो उसके भी पीछे कोई वजह है। और अक्सर ये बात कही जाती है कि हम उन्हीं लोगों से नाराज होते हैं, उन्हीं लोगों से खफा होते हैं जो अपने होते हैं। वरना सड़क चलते कोई टक्कर लग गई, किसी का हाथ लग गया, तो हम कहते हैं चलो जाने दो यार, गाँव को हम ये सब कुछ करेगा। मगर अपने ही लोगों से अगर कभी कभी कभार दुख होता है तो ऐसी सूरतों में हमें मुश्किलात ज्यादा लगने लगती हैं, पेन या हर्ट ज्यादा होने लगता है, तो इसलिए जानना जरूरी है।
0: कहते हैं बहुत से लोग जहाँ प्यार होता है वही नाराजगी होती है, वही गुस्सा होता है, या वही उनसे ही मुश्किल होता है लेकिन माफ करना उन्हीं को जिनसे सबसे ज्यादा प्यार होता है।
1: जी, और मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी चीज है कि हम वजह जाने, और पहली वजह ही ये है कि हम उनसे नाराज इसलिए हैं क्योंकि उनसे हमने ये उम्मीद नहीं की थी, हमने ये सोचा था कि वो हमारे अपने हैं और उनसे हर्ट या उनसे किसी प्रकार की तकलीफ या उनसे इस प्रकार का व्यवहार मैंने अपेक्षा ही नहीं की थी, एक्सपेक्ट नहीं किया था। और एक ऐसे क्वार्टर से जब मुझे वो पेन मिला या मुझे वो वैसा व्यवहार मिला तो हम नाराज हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि वो हमसे माफी मांगे। और कभी कभार हमसे जब गलतियां होती हैं तो हमें भी लगता है कि हमें माफी मांगनी चाहिए, मगर वो नाराज इतने होते हैं तो लगता है कि माफी मांगे तो किस मुंह से मांगे, कि माफी मांगेंगे तो ऐसा लगता है माफी मिलेगी नहीं, हमें और चार बातें खरी खरी सुनने को मिलेंगी, इसलिए भी हम संकोच करने लगते हैं। और मैं समझता हूँ हर व्यक्ति के पास ऐसी घटनाएं हैं, जीवन के ऐसे अनेक किस्से हैं जहां पर या हमने गलती की है या किसी और ने हमारे साथ कुछ गलत किया है, इसकी वजह से या तो हम माफी के तलबगार हैं या हम खुद माफी मांगने के इंतजार में हैं, हम उस सही मौके की खोज में हैं। और मैं समझता हूँ ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं समझना, कि हर इंसान गलतियां करता है, हर एक को माफी मांगने की और माफ करने की जरूरत है, और ये कैसे किया जाता है ये सीखना जरूरी है।
0: लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ आप दोनों से कि माफ खुद को करना ज्यादा आसान है या दूसरों को करना।
2: एक किस्सा याद आता है, एक 15 साल का लड़का मेरे पास आया और अपनी कहानी उसने सुनाई। उसने कहा मैं जब 2 साल का था, मेरा भाई 4 साल का था, तब हमारी मम्मी बिना किसी वजह के, बिना कुछ बताए हमें छोड़कर चली गई। वो अपनी कहानी बता रहा था और मेरी आंखों में आंसू थे कि मैं अब इस बच्चे को क्या जवाब दूं और कैसे इसका दर्द को समझूं। हम दोनों ने एक कोशिश की कि चलो हम ये पॉजिटिव सोचते हैं कि अगले 6 महीने में आपकी मम्मी आपके घर आ जाएगी। हम दोनों ने ये मिलके सोचा और वो पॉजिटिव एनर्जी का असर देखिए कि उनकी मम्मी 6 महीने के भीतर घर आ गई। बहुत बड़ी उपलब्धि हुई, बट उसको पता नहीं चल रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे, उनको क्या बोले। वो माफ करने के लिए तैयार नहीं था मन से, उसके मन में बहुत सारी शिकायतें थी कि आप हमें क्यों छोड़ के गए, 2 साल से लेकर 15 साल तक का मेरा जीवन मैंने कैसे बिताया मुझे पता नहीं। और वो माफ नहीं कर पा रहा था, परंतु जब उसने मुझे पूछा कि अब क्या करना चाहिए, तब हमने कहा कि नहीं, अब सोचते हैं कि वो 2 साल से 15 साल का समय आया ही नहीं, और अभी अभी मतलब कि पुरानी सारी बातें भूल कर माफ करके दोनों एक दूसरे से गले लग जाएं और एक सेकंड में भूल जाएं। जब उसने ऐसा किया तब उसे महसूस हुआ कि माफ करना और भूल जाना इतना मुश्किल भी नहीं था जितना वो सोच रहा था। इस घटना से हमें कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलता है। अक्सर बच्चे अपने माँ बाप से कुछ न कुछ सीखते हैं और अक्सर माँ बाप भी अपने बच्चों से कुछ न कुछ सीखते हैं। कभी माता पिता की गलती हो सकती है, कभी बच्चों की गलती हो सकती है, और दोनों जब एक दूसरे की गलतियों को माफ करना सीख जाते हैं तब वो एक दूसरे के साथ उम्र भर के लिए रहने के आदि हो जाते हैं। वो जो प्यार है, अपनापन है, सुरक्षा की भावना है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, वो हर रिलेशनशिप की आवश्यकता होती है। इसलिए वक्त रहते माफ करना और भूल जाने की आदत जल्दी हमें सीख लेनी चाहिए।
0: ये बहुत बहुत टफ सिचुएशन है, बहुत बड़ी सिचुएशन है जिसमें वो बच्चे ने माफ कर दिया, मगर हम तो छोटी छोटी बात में भी कई बार माफ नहीं कर पाते और वेट करते कोई माफी मांगे तो मैं माफ करूं। बिना माफी मांगे माफ करने का भी मन नहीं करता कि भाई अपनी गलती रियलाइज तो करो, कम से कम बोलो तो सॉरी आके, फिर तो चलो मैं माफ कर दूं। पर सामने वाला भी बोल नहीं रहा होता, हम भी माफ कर नहीं रहे होते। तो दूसरों को माफ करने के लिए अपॉलॉजी इम्पोर्टेंट है बहुत, या फिर बिना उसके भी माफ किया जा सकता है?
1: मैं समझता हूँ बहुत बार ये चीज भी एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि भाई सामने वाला माफी मांगे तब मैं माफी दूंगा, और इसके इंतजार में हम बहुत सारी गलत फहमियां पाल लेते हैं। हम इंतजार में रहते हैं कि मौका आने दो, उसके इंतजार में होते हैं। जैसे अभी कल्पना जी वो कहानी सुना रहे थे, बिल्कुल ये बात भी है कि हम सामने वाले को रियलाइज कराना चाहते हैं कि उनसे क्या गलती हुई है। और कभी कभार गलतियां, मुझे याद आता है मैंने एक बहुत ही सुंदर प्रवचन सुना था दादी जानकी जी से, उन्होंने ये कहा था कि गलती, भूल, गुनाह, खता, ये कितने सारे अलग अलग लफ्ज हैं, और इसके एवजे में जो चीजें माफी देने वाली चीजें हैं उसमें भी अलग अलग चीजें हैं। अंग्रेजी में हम उसको कहते हैं फॉरगिवनेस, मर्सी। अगर आप इन शब्दों को देखते ही चले जाएंगे फॉरगिवनेस के लिए जो शब्द बने हुए हैं, तो आपको बहुत ही मजा आएगा कि कितनी गहरी बातें हैं ये। खैर, मैं उस गहराई में न जाते हुए मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि छोटी मोटी भूलों को हम भी भूल जाते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, शायद हम उसे दिल पे भी नहीं रखते। उससे भी थोड़ी बड़ी अगर गलतियां होती हैं, भूल नहीं है, कोई गलती हुई है, तो फिर हम कहते हैं कि चलो गलती हो गई ना, कोई बात नहीं, ये भी कह देते हैं। फिर कभी कभार इसके बाद जो आप अभी बात कर रहे हैं कि हम इस उम्मीद में है कि वो हमसे माफी मांगे तब माफी दी जाएगी, और ये अक्सर देखा जाता है कि छोटे बच्चे जब गलतियां करते हैं तो छोटे बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जितने छोटे होंगे बच्चे उतना उनकी गलतियों को और ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। जब बच्चे गिर भी जाते हैं या कहीं उनको भी चोट लगती है तो उनको ये बताया जाता है अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हालांकि उस बच्चे की गलती की वजह से कोई चीज टूटी हो सकती है या उसे चोट लगी हो सकती है। तो ये चीजें करते हैं, हम सबको माफ करना सिखाया गया, हम सीखते आए हैं, मगर जैसे जैसे हम बढ़ती उम्र के साथ ये एक उम्मीद लगाने बैठ जाते हैं कि हम अपने लोगों से, जैसे मैं कह रहा था कि जो हमारे अपने स्वजन हैं, अपने दोस्त हैं, अपने परिवार के नजदीकी लोग हैं, हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि तुमसे तो ये गलती अपेक्षित नहीं थी, तो इसलिए हम उन्हें उस कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, उनको उस गलती का एहसास दिलाना चाहते हैं, रियलाइज कराना चाहते हैं कि देखो भाई तुमसे गलती हुई है, और जब वो माफी मांगे तब हम माफी देना चाहते हैं, तब तक हम उस चीज को पाल के रखते हैं और वो भी बोझ की तरह बन जाता है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि पहले ये कल्टिवेट करना, ये एक अभ्यास डाल लेना चाहिए कि कोई माफी मांगे या ना मांगे, मैं माफ करने के लिए इंतजार नहीं करता। अगर मुझे समझ में आया है कि गलती हुई है तो उसे तुरंत माफ कर देना चाहिए। कॉर्पोरेट में हम लोग इस चीज को समझते हैं कि एक बहुत ही सुंदर मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ये, डू नॉट आस्क हु मेड द मिस्टेक, आस्क व्हाट वेंट रॉन्ग। ये मत पूछो कि ये गलती किसने की, ये पूछो कि क्या गलती हुई है, ताकि उसे सुधारा जा सके। अगर हम ये पकड़ के बैठ जाएं कि इसने गलती की है, इसको इसकी सजा मिलनी चाहिए या इसे माफी मांगने की जरूरत है, तो शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और उसमें बहुत वक्त जाया हो जाता है। और इसीलिए ये बात शायरों ने बहुत खूबसूरती से कही है। मुजफ्फर रजमी का यह शेर बहुत ही मशहूर है, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। और अक्सर यही चीज होती है कि वो लम्हे होते हैं जहां पर गलतियां होती हैं, वो खता एक लम्हे भर की होती है, कोई चूक हो जाती, कोई भूल हो जाती, ना चाहते हुए भी कभी कभार चाह के, और बहुत बार ना चाहते हुए भी वो गलतियां हो जाती हैं। अगर आप उस घड़ी उसको माफ नहीं करते, तुरंत तुरंत माफ नहीं करते, तो फिर वो जो लम्हों की खता है उसकी सजा सदियां पाती हैं, और लंबे समय तक वो फॉरगिव न करने की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग सफर करते हुए आए हैं, उनको मुश्किलों का सामना करते आना पड़ा है, किसी और की गलती के लिए आज की पीढ़ियां तक उसकी भरपाई कर रही होती हैं। तो ये चीजें समझने की जरूरत है कि जैसे गलती हुई तब माफ करना, सिर्फ इसलिए नहीं कि सामने वाले को माफ करने की जरूरत है, इसलिए ताकि मेरे ऊपर वो बोझ ना हो, इसलिए भी करना बहुत आवश्यक है।
0: कल्पना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे माफ करना जरूरी है ये हम समझ गए, कोई हमसे माफी मांगे या ना मांगे, और वो सिर्फ उनके लिए नहीं अपने लिए जरूरी है, मगर अब करूं कैसे? क्योंकि मुझे तो गुस्सा आ रहा है, मुझे तो बुरा लग रहा है, मुझे हर्ट हुआ है, किसी ने गलती करी है, एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने ये वो करेंगे, उनसे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वो ऐसा कर सकते हैं, बहुत विश्वास किया था, अब वो विश्वास भी डोल रहा है और बहुत सारी यादें भी है पुरानी की, लग रहा है अरे ऐसा बोला, वो भी बार बार चल रहा है मन में, ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, तो माफ करना चाहती हूँ लेकिन नहीं हो पाता, तो क्या हुआ?
2: जी बिल्कुल आपने सही कहा, मैं अक्सर अपने आप से पूछती हूँ, जब भी मेरी लाइफ में कुछ होता है तो मैं खुद के पास लौट आती हूँ और अपने आप से पूछती हूँ कि मुझे क्या करना है। तो जब कोई व्यक्ति खता करता है, गलती करता है और माफी भी नहीं मांगता, तब ऐसे लगता है कि शायद इनको रियलाइज नहीं हुआ है, या इनका मुख सॉरी कहने के लिए रेडी नहीं है, या इनका माइंड वो सॉरी शब्द कह नहीं पाता है। इसमें कई सारी भी चीजें बैकग्राउंड में काम करती है, ईगो रहता है, बॉडी कॉन्शियस है, मतलब अपने बारे में वो आदत ही नहीं है माफी मांगने की। पति पत्नी के बीच में, भाई बहन के बीच में ऐसा कई बार होता है, तब मैं क्या करती हूँ? सबसे पहले तो मैं माफी मांगना शुरू कर देती हूँ, मतलब उनसे नहीं जिनसे गलती हुई है, परंतु मैंने ये देखा है कि जब आप सॉरी कहना शुरू कर देते हैं किसी छोटी सी गलती के लिए, उस व्यक्ति के सामने जो सॉरी कहने के लिए जिनको दिक्कत हो रही है, तो उस व्यक्ति को एक लेसन अपने आप मिल जाता है कि देखो छोटी सी बात के लिए इन्होंने सॉरी किया। जैसे कल की बात है, किसी को मैंने टाइम दिया था और मैं थोड़ा 5 मिनट लेट पहुंची, तो आते ही मैंने कहा कि सॉरी मुझे 5 मिनट देर हुआ, ये कारण था। उनको रियलाइज हुआ कि वो कई बार लेट आए थे पर मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा था। अब उनसे एक्सपेक्ट तो इतना तो किया जा सकता है कि वो एटलीस्ट कारण बताएं या फिर लेट आने पर सॉरी कहें, तो वो कह नहीं पाए थे क्योंकि उनको वो गलती या वो कुछ गलत है ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। तो जब मैंने अपनी ये छोटी सी भूल नहीं कहेंगे, गलती नहीं कहेंगे, लेकिन एक लेट आने की बात को सॉरी कहा, तो उन्होंने रियलाइज किया कि अरे उनको तो कितनी बार कहना चाहिए था। देन उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मैं कई बार लेट आया, लेकिन आपने बहुत पेशेंटली उस चीज को हैंडल किया। ये एक छोटी सी बात है। हम कुछ करके सिखाते हैं तो वो सामने वाले को ईजी लगता है कि अगर वो सॉरी कह सकते तो हम भी कह सकते हैं। तो इस तरह से सॉरी कहने के लिए पहला कदम हमें उठाना चाहिए।
3: थी आपने जैसे अपनी बात करी, आपने कि मैं कैसे करती हूँ, या एक ये तरीका आपने डेवलप किया जो हम लव यू जिंदगी, जो हमारा टाइटल है प्रोग्राम का, अगर हम जिंदगी से थोड़ा सा प्यार और बढ़ाना चाहें, और उसमें जरूरी है कि बोझ को कम किया जाए, वरना बोझ के साथ प्यार करना जरा मुश्किल होता है, तो हम क्या तरीका डेवलप करें और आज क्या शुरुआत करें, या कोई ऐसी चीजें हैं जो नो लिख के रख ले अपने पास या याद कर ले कि हाँ कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो अब कहाँ जाना है मुझे, क्या करना है मुझे?
2: बिल्कुल। हम अपने आप को सिखा सकते हैं, माफ करना कोई कमजोरी नहीं है, ये मेरी ताकत है। अगर मैं किसी को माफ कर पाता हूँ और कह पाता हूँ कि मैंने गलती की और मुझे माफ कीजिए, तो ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है, जिसके कारण मेरे दिल पर जो बोझ हमेशा के लिए बना रहेगा, अगर कोई व्यक्ति रियलाइज करता है अपनी मिस्टेक को, तो उसको बोझ महसूस होगा। एंड एक छोटे से सॉरी कहने से, तो आज से हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं सभी मिलकर कि ऐसा नहीं कि हर बार सॉरी सॉरी ही कहे, कुछ और तरीके भी होते हैं सॉरी कहने के, या सामने वाले को बताने के कि मैंने फील किया, मैंने रियलाइज किया। कई बार लोग बार बार सॉरी सॉरी सॉरी कहते हैं तो वो भी कई बार अच्छा नहीं लगता है। तो क्या तरीका हो सकता है कि हम सामने वाले को ये रियलाइज भी करवाए कि हमने सॉरी फील किया है? तो जाकर उनसे बात करना, नॉर्मल वे में बात करना, उनके साथ मुस्कुराना, उनके किसी काम में उनको मदद करना, उनका रिस्पेक्ट रखना। सॉरी कहने के अलावा भी हम उनके पास जाकर उनके दिल की बात सुनने का प्रयास कर सकते हैं। और हल्के से कभी कह सकते हैं कि अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे पता चला, रियलाइज हुआ। तो एक नहीं कई अनेक तरीके हैं कि हम अपने महसूस कराएं सामने वाले को कि हमने सॉरी फील किया है।
3: ओके, जेन्युइनली फील करें और फिर वो महसूस करवाएं। ओके ग्रेट। श्री जी आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, अगर माफ करना हो किसी को, मान लीजिए कैसे, क्या थॉट्स मैं क्रिएट करूं या क्या मैं सोचूं जो मैं माफ कर पाऊं?
1: जब माफी की बात कही जाती है तो ये समझना जरूरी है कि माफ करने के तरीके, जैसे कल्पना जी कह रहे थे, बहुत सारे हैं। हम कुछ लोगों को देखते हैं और मुझे, जैसे कल्पना जी कह रही थी, मेरे सामने कुछ ऐसे लोग आए जो घड़ी घड़ी सॉरी बोलते हुए सुनाई देते हैं कि हर चीज के लिए सॉरी सॉरी सॉरी, और कभी कभार उनका सॉरी कहने का अंदाज इतना कैजुअल हो जाता है कि उनकी सॉरी का कोई मतलब नहीं हो। सॉरी लग गया तो क्या हुआ, वो मतलब बिल्कुल है, हमने सॉरी तो कह दिया, ऐसा वो बात होता है। वो चीज एक हार्टफेल्ट चीज नहीं लगती, एक अपोलोजेटिक एटीट्यूड नहीं है उसमें, वो चीज समझ में आता है। और मैं समझता हूँ यहाँ पर माफी देने या माफी मांगने के तरीके में जो दिल की गहराई है वो बहुत जरूरी है, ये समझ में आता है कि जब तक मैं उस चीज को महसूस करते हुए नहीं कह रहा हूँ तो शायद सामने वाले तक वो चीज टच भी नहीं होती, वो उनके दिल तक भी जाती नहीं है। इसलिए माफी, आजकल हम ये कहते हैं कि हम देखते हैं हवाई जहाज में, अगर आप यात्रा करते होंगे तो वहां पर गगन सखिया होते हैं या फ्लाइट का क्रू होता है, और वो लोग आप अंदर जाते ही आपको मुस्कुराते हुए वेलकम करते हैं। कई सारे होटल्स पे भी लोग स्माइल करते हुए आपको वेलकम करते हैं रिसेप्शन पर, और आपको लगता है कि आह कितना अच्छे लोग मुस्कुरा रहे हैं, इतने सारे लोग, 200 पैसेंजर अंदर चढ़े हवाई जहाज में और 200 के लिए वो मुस्कुरा रहे हैं। तो बाद में पता चलता है कि मुस्कुराहट एक्चुअल मुस्कुराहट नहीं है, ये प्लास्टिक स्माइल है, ये सिर्फ दिखाने के लिए कहा जा रहा है, उनको प्रोफेशन में जरूरी है करने के लिए इसलिए वो कर रहे हैं, मगर अंदर से वो चीज नहीं आ रही है, वो एक रूखा स्माइल होता है। तो ऐसे ही सॉरी कहने के लिए भी, ओ सॉरी ये कर देना सही नहीं है, एक्चुअल में जब वो चीज अंदर से महसूस करते हुए सॉरी मेरे से गलती हुई है, अगर वो विचार मन के अंदर आते हैं तब जो शब्द मुंह से निकलते हैं तब वो भावनाएं सामने तक पहुंचती है और सामने वाला व्यक्ति महसूस करता है कि हाँ इनको इस बात का एहसास है कि उनसे कोई गलती हुई है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर मन में वो अपोलॉजी उत्पन्न होना पहले आवश्यक है, इससे पहले कि मैं शब्दों में सॉरी कहने को एक आदत मात्र बना लूं, मन के अंदर से वो चीज निकलना बहुत आवश्यक है। और एज अ कल्चर अगर आप देखेंगे तो भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत में हमारे पास क्षमा प्रार्थनाएं हैं। अगर आप देखेंगे तो व्यक्ति रात को सोने से पहले, एक कल्चर रहा है कि लोग सोने से पहले क्षमा मांगते हैं, ये कहते हैं कि कर चरण कृतम वा कायजम कर्म जम वा श्रवण नयन जम वा मानसम वा विहितम अभिहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्दे महादेव शंभु। ये प्रार्थना है जिसमें हम कह रहे हैं कि अगर जाने अनजाने में मेरे मन से, मेरी वाणी से, मेरे कर्म से, मेरे व्यवहार से, सोचकर या न सोचकर या जाने अनजाने में भी गलतियां हुई हो तो उन सभी के लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये सिर्फ ये नहीं है कि मतलब उस घड़ी गलती हुई और उसी घड़ी मुझे रियलाइजेशन हो जाए और मैं माफी मांगूं, कभी कभार उस घड़ी रियलाइजेशन नहीं होता, देर से होता है, पर तब तक वो व्यक्ति आपके सामने नहीं है, वो आगे चला गया है। तो उस समय पर भी माफी मांगना, उस व्यक्ति के इन एब्सेंशिया आप माफी मांग रहे हैं कि वो व्यक्ति फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, तब भी आपके मन के अंदर वो क्षमा प्रार्थना का भाव उत्पन्न हो रहा है कि आप मन से उस व्यक्ति के प्रति ईश्वर को साक्षी मानकर ये कह रहे हैं कि मेरे से गलती हो गई भगवान, उनको मैंने जाने अनजाने तकलीफ पहुंचाई, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। तो ये जो मन से उठने वाली बात है वो बहुत आवश्यक है, शब्दों में सिर्फ कह देने से शायद वो काम नहीं होगी। और माफी मांगने के बारे में मैं समझता हूँ बहुत सारी चीजें हैं, एक पुराना जमाना तो नहीं कहूंगा मगर लोग बहुत थॉटफुली अपोलॉजी के लेटर्स लिखा करते थे, लोग सॉरी के कार्ड्स भेजते थे कि जब उनसे गलतियां होती थी तो सॉरी के लिए भी ग्रीटिंग कार्ड होता था। आप सोचिए सॉरी का ग्रीटिंग कार्ड आज लोग हैरान होंगे ये सोच। और ये जो शेर और शायरियां मैंने कुछ एक के सामने प्रस्तुत किया, ऐसी कितनी चीजें हैं जो कवियों ने लिखी हैं और उनकी जुबान से हम अपने दिल के उद्गार प्रस्तुत करते हैं।
3: और सच में माफी मांगना जब दिल से होता है तो वो बात पहुंचती भी है, वो कैजुअली सॉरी बोल दिया और फिर हमने सोचा अरे हो गया सॉरी। अब बहुत सारी और भी बातें हैं दूसरों को माफ करने के बारे में, तो हमने बात करी है, खुद को माफ करने के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। अभी फिलहाल जैसा आप दोनों ने बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बताया, दूसरों को माफ करना और माफी मांगना दोनों का तरीका, क्या हम कुछ 2 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं, जो अभी तक हमारे जीवन में न जाने कितने किस्से हुए होंगे, हमारे अंतर मन में, हमारे सबकॉन्शियस में फिट होंगे, वो हमें आज भी कोई व्यक्ति सामने आता है तो वो गलती याद आती है, वो व्यक्ति से मिलने से पहले ही कई बार उससे मिलना होता है तब भी याद आता है पहले वाला इंसिडेंट, उसको लेट गो कर सके, अपनी स्लेट को क्लीन कर सके, क्या कुछ ऐसा मेडिटेशन हम कर सकते हैं कि वो भार को, जो बोझ लिए हम चल रहे हैं, उसको थोड़ा कम कर सके आज?
4: बिल्कुल, बहुत जरूरी है उस भार को उतारना, खत्म करना। कुछ मिनटों के लिए हम थोड़ा सा अपने भीतर की ओर चले जाएं, बाहर की दुनिया से अपने ध्यान को बटोर कर अपने भीतर की दुनिया में। एक ऐसी जगह है जहां बिल्कुल शांति है, सुकून का एहसास है। उस जगह पर जाएं और कुछ बातों को अपने आप को याद दिलाएं। क्षमा और छोड़ना, क्षमा करना और भूल जाना मेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, ये मेरी ताकत है। रिपीट करें इस बात को अपने मन में और उस शक्ति को महसूस करें, याद दिलाएं अपने आप को, मैं अपने दिल से सारी कड़वाहट को रिहा कर रही हूं, आजाद कर रही हूं। मैं दूसरों को माफ करती हूं क्योंकि मैं अपने जीवन में सुकून और शांति की अधिकारी हूं। दोहराएं अपने मन में, मैं दूसरों को माफ करती हूं क्योंकि मैं सुकून और शांति की अधिकारी हूं। गहरी लंबी सांस लेते हुए महसूस करें अपने भीतर के भावों को, दिल में जो सुकून का एहसास हो रहा है क्योंकि मैंने बोझ को रिहा कर दिया, मैं आजाद हूं। याद दिलाएं अपने आप को, मैं अपने अतीत को स्वीकार करती हूं और उससे मुक्त हो रही। अतीत में मेरे से या किसी और से कोई खता हुई, मैं सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ती हूं, खुद को आजाद करते हुए। और लास्ट, मेरे दिल में अब सिर्फ हल्कापन और सुकून है, मेरे दिल में अब सिर्फ हल्कापन और सुकून है। धन्यवाद।
3: थैंक यू सो मच कल्पना जी, बहुत ही सुंदर, बहुत पीसफुल महसूस हुई ये करते वक्त, और मुझे लगता है ये हम रोज करेंगे तो हमारे जो बोझ हैं, जो हम दूसरों को माफ नहीं कर पाए हैं, खुद को माफ नहीं कर पाए हैं, उसमें जरूर बहुत बहुत बड़ी मदद मिलेगी। क्योंकि ये तो हम समझ गए हैं कि माफ दूसरों के लिए ही नहीं, खुद के लिए भी जरूरी है, दूसरों को माफ कर देना, तभी हम जिंदगी बेहतर जी पाएंगे। तो चलिए इस प्रयास को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, इसलिए ये इजाजत लेना नहीं है दोस्तों, ये पॉजिटिव नोट पर आपको छोड़ कर जा रहे हैं ताकि आपकी जिंदगी से और बेहतर मुलाकात हो पाए और प्यार थोड़ा बढ़ जाए और आप दिल से कह पाए लव यू जिंदगी। फिलहाल दोस्तों वक्त हो गया इजाजत लेने का। थैंक यू सो मच कल्पना जी, थैंक यू सो मच श्रीनिधि जी, हमसे जुड़ने के लिए, समय देने के लिए और थोड़ा सा और जिंदगी से प्यार करना सिखाने के लिए।
4: धन्यवाद,
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
3: दोस्तों लेते हैं इजाजत, मुलाकात होगी लव जिंदगी के अगले एपिसोड में, तब तक रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
5: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
6: जी आई माँ जी।
5: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
6: जी माँ जी आ गई, चलिए।
5: नमस्ते डॉक्टर नी जी।
7: नमस्ते नमस्ते, बैठिए, जच्चा बच्चा दोनों ठीक है।
5: डॉक्टर नी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
7: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
5: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
7: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू, क्या तुम भी यही चाहती हो?
5: जी वो न, न, अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
7: देखिए, भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है। इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
8: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।

0: ख्वाबों की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज आपको मिलवाएंगे आबू के रहने वाले प्रवीणा जी राणा, जिनकी उम्र है 52 साल और जीवन के काफी अनुभवी है। आपने घर घर में काम किया है, झाड़ू पोछा लगाना, लेकिन अपने बच्चों को अच्छा जीवन दिया है। तो ऐसी मातृशक्ति से आज आपको मिलवाएंगे। प्रवीणा जी नमस्कार।
1: हाँ नमस्कार।
0: प्रवीणा जी कैसे हो आप?
1: बस मजे में।
0: आपके चेहरे की स्माइल देख करके बता रहे कि आप बहुत खुश हो।
1: हाँ दीदी।
0: अच्छा प्रवीणा जी, चलिए अभी वर्तमान के बारे में हम जरूर जानेंगे आपसे, लेकिन थोड़े समय के लिए आप अपने बचपन को याद कर लीजिए। आपका बचपन कहाँ पर बीता?
1: मेरा बचपन गुजरात में।
0: गुजरात में कहाँ पर?
1: पालनपुर।
0: ओ तो तमे गुजराती छो एम ने?
1: गुजराती छो।
0: शुभ बात छे। तो पालनपुर तो अपने आबू के पास में ही है।
1: हाँ पास में ही तो है पालनपुर।
0: अच्छा तो पालनपुर में आप कितने भाई बहन, किस तरह आपका बचपन बीता थोड़ा बताएंगे?
1: मेरे 3 भाई थे और 5 बहनें थे। हम पिताजी ऐसे दारू वारू पीते थे, शराब वराब, फिर हम भी दुख से ही भाई बड़े हुए हैं। ससुराल में आए तो ससुराल में ही ऐसा ही हमारे को देखने को मिला।
0: जी जी, ससुराल की बात जरूर करेंगे, थोड़े से बचपन की खट्टी मीठी बातें याद कर लेते हैं। कि आप बता रहे थे आप 8 भाई बहनों।
1: 8 भाई।
0: आपका नंबर कौन सा बनता है?
1: मैं तो लास्ट में हूँ।
0: अरे वाह क्या बात है, आप सबसे छोटे हैं, तब तो आपको सभी का प्यार मिला होगा।
1: नहीं नहीं, मेरे से छोटी और बहन थी, इससे बड़ी हूँ। 3 बहनें बड़ी थी हमारे से।
0: अच्छा तो आपका नंबर 7वें नंबर पर, 8 भाई बहनों में आपका 7वां नंबर।
1: 7वां नंबर। हाँ 3 भाई ऑफ हो गए मेरे
0: बचपन में ही।
1: नहीं बड़े होके, शादी शुदा होके, बच्चे बच्चे है इनके।
0: सॉरी, बात करेंगे आपसे इस बारे में भी, लेकिन पहले मैं पूछना चाहूंगी आपने पढ़ाई कहाँ तक की?
1: मैंने नहीं पढ़ाई करी दीदी।
0: आप 8 भाई बहन में आपका 7वां नंबर बनता है, तो कहते हैं कि भाई बहनों को भी रहता है ना, खुद पढ़ाई नहीं करते लेकिन छोटे भाई बहनों के प्रति रुचि रखते हैं कि हमारे छोटी बहन छोटे भाई पढ़ाई करे।
1: हाँ, तो बहुत करा इन्होंने पढ़ाने का, पर हम खेलने कूदने में रहे। ऐसा समझ में नहीं था कि हमारे को पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी।
0: कोई नॉलेज देने वाला नहीं मिला?
1: नॉलेज देने वाला नहीं मिला। और मम्मी भी बिचारी, ये भी हमारे छोटे छोटे थे, खूब दुख सुख करके इन्होंने बड़े किए, वो हमारे तरफ ध्यान नहीं दे पा रही थी। हमारी मस्ती में मस्त थे। ऐसे जब पता नहीं था कि हमारे को कभी जरूरत पड़ेगी हमारे को पढ़ने लिखने की, इसीलिए हमने नहीं पढ़ाई करी। बहुत भेजा पर हमने पढ़ाई नहीं करी।
0: अच्छा तो मम्मी रुचि रखते थे पढ़ाई में?
1: हाँ ध्यान नहीं दे पा रही थी मम्मी, क्योंकि
0: 8 भाई बहन इसलिए।
1: हाँ इसीलिए नहीं दे पा रही थी ध्यान। ये दुकान थी हमारे सब्जी की, तो मम्मी तो वहाँ पे व्यस्त रहती थी।
0: अच्छा मम्मी सब्जी बेचते थे। और पिताजी?
1: पिताजी सर्विस करते थे, पर बाकी वो शराब पीते थे।
0: सर्विस किसमें करते थे?
1: ये चपरासी की।
0: स्कूल में?
1: नहीं नहीं, ये हॉस्पिटल के अंदर चपरासी थे।
0: अच्छा तो आप 8 भाई बहनों ने मिलकर के आपके पिताजी को समझाया नहीं शराब के लिए कि भाई नहीं पीना चाहिए?
1: छोटे छोटे थे, क्या समझावे, बड़े भी नहीं समझा पा रहे थे इनको, तो हम तो बहुत छोटे थे इनसे।
0: तो शराब पी करके घर में तो मारपीट नहीं करते थे?
1: नहीं ऐसे झगड़े टंटे होते थे, तो मम्मी बिचारी कहाँ कहाँ ध्यान देवे। ओ मजदूरी करके दुकान चला के सब्जी बेच के हमारा पेट भरने का लावे के हमारे में ध्यान देवे।
0: तो आपके पिताजी सारा पैसा शराब में उड़ा देते थे?
1: सारे पैसा उड़ा देते थे। तो फिर माँ को तो करना है कुछ न कुछ काम।
0: तो आपकी मम्मी को कोई मदद करते थे?
1: नहीं कौन करने वाला है मदद आजकल।
0: नहीं जैसे आपके भाई बहन, जैसे बड़े भाई बहन?
1: बड़े था भाई, पर भाई भी ऐसा ही था, झगड़ा हो एक नंबर का, ऐसा ही था व्यसन वाला।
0: पिताजी तो व्यसनी थे लेकिन भाई कैसे व्यसनी बने? आपके मम्मी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया?
1: भाई ने फिर थोड़े घड़ी पढ़ाई करी, फिर इसने नौकरी करी सरकारी, बड़ा साफ बन गया था ये तो। पर इसने फिर कोई हमारी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया था। इसने, हम 5 बहनें थी, 3 भाई थे, तो फिर शादी शुदा हो गया, तो फिर इनका अलग से करने लग गया। फिर पिताजी ऑफ हो गए, रिटायरमेंट हुए, तो फिर इनकी पेंसिल वेंसिल आती थी तो मम्मी इन सबका टेका लेके सहारा लेके हमार को शादी करवाई। घर गृहस्थी वैसा ही हमारी।
0: अच्छा, आप सभी भाई बहन कैसे रहते थे? आपस में कभी झगड़ते थे या फिर खेल खेल में बचपन बीता?
1: बहुत अच्छे से रहे, बहुत अच्छी लाइफ जी हमने, पर पढ़ाई नहीं करी। हंसना खेलना कूदना खाना पीना बहुत अच्छे से खेल कूद करके हम बड़े हुए, कभी झगड़ा बगड़ा नहीं करा हमने कभी किसी से नहीं।
0: अच्छा, आपके मम्मी सब्जी का काम करते थे तो घर का काम कौन संभालते थे?
1: बहने थी और हमारे से बड़े, हमारी दीदिया संभालती थी सारा काम। फिर ये शादी शुदा होके गए घर पे ससुराल, फिर हम लोग ने करा, हम छोटे थे तो हमने फिर संभाला। फिर मेरी शादी करी गई तो फिर मेरी और छोटी बहन थी, फिर इसने संभाल लिया काम। तो विधवा हो गई शादी करके ससुराल जाते ही, तो इसकी पेंसिल वेंसिल मिली, पैसे वैसे इसके सर्विस करता था आदमी, तो बैंक का ऑडिटर था, तो इसके पैसे वैसे केस बेस करा हम लोगों ने। फिर पैसे थोड़े घने मिले तब मम्मी के पास में ही है।
0: अच्छा, अभी भी आपके मम्मी के पास ही रहते हैं?
1: हाँ, मम्मी के पास में ही है। फिर मेरे भाई और मेरे भाभी जो आदिपुर में रहते थे, फिर वो भी जल के मर गए, तो इसके बच्चे इसके हवाले आ गए, तीन लड़कियां एक लड़का।
0: जल के मर गए?
1: तो फिर
0: कुछ हादसा हुआ क्या?
1: हाँ, ऐसे चक्कर आए, आग लग गई थी तो अंदर ही थे कमरे में, तो ये जल गए। फिर भाई भी टेंशन टेंशन में, ऐसा भाई को अटक आ गए। फिर तीन बच्चियां और एक लड़का, ये मेरी छोटी वाली बहन ने शादी करी, तीन लड़कियों की, अब भतीजे की शादी करके आई। सारा हमारे पियर में वही संभालती, भाभिया नहीं संभालती, हमारी छोटी वाली ही संभालती
0: है। अच्छा, बहुत देखो, कहते हैं कि कहाँ से कहाँ नसीब लेके जाता है। तो प्रवीणा जी, ये सब बातें हुई तब आप वही थे या आपकी भी शादी हो चुकी थी?
1: नहीं, मेरी शादी हो चुकी थी, मैं ससुराल में थी, मेरे बच्चे थे, दो लड़कियां थी मेरे पास में।
0: अच्छा अच्छा, चलिए। और आपकी बहन जैसे बहुत कम एज में उनके हस्बैंड ने शरीर छोड़ दिया था, उनकी डेथ हो गई थी, तो दूसरी शादी नहीं करवाई?
1: नहीं, वो कहे के नहीं, मेरे को गिफ्ट दे के गए बोले भगवान। भाभी ऐसे ही बोलती थी के बोले ये बच्चे तुम्हारे को ही दे के जाऊंगा मैं, पर ऐसा मालूम नहीं था कि भाभी ऑफ हो जाएंगे, तो इसके ही हवाले आ गए सारे बच्चे। तो सबकी शादी कर ली इसने बहुत अच्छे से, जैसे माँ नहीं निभावे ऐसा इसने कार्य करा है, माँ से भी बढ़कर इसने करा है।
0: बच्चे भी रिस्पेक्ट देते?
1: हाँ, इसको ही मम्मी बोलते, मेरी बहन को बुआ को ही मम्मी बोलते, माँ को और सबको। घर गृहस्थी संभाल रही है हमारे पियर में, बहुत अच्छे से जिंदगी बिता।
0: वो कहते ना, त्याग उन्होंने भी किया ना,
1: इसने जीवन त्याग कर दिया। इसने शादी था, घनी शादी करने वाले तो आए इसके जीवन में, पर इसने मना कर दिया कि मेरा सुख संपत्ति यही है बच्चे। तो बच्चे बहुत इज्जत करते हैं इनकी, हमारे सारी पांचों ही बुआओं की इज्जत बच्चे बहुत करते कि नहीं हमारे मम्मी पापा यही है बोले।
0: जी जी, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि चलिए बड़े अपना फर्ज निभाते हैं लेकिन छोटे भी उस बात को महसूस करते हैं, तब जा करके मजा आता है रिलेशन में, कि रिलेशन मधुर बनते हैं। तो चलिए प्रवीणा जी, आपसे और भी बातचीत करेंगे, और भी अनुभव सुनेंगे, परंतु अभी ले लेते हैं एक ब्रेक। बने रहिएगा मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, वंदे मातरम कार्यक्रम अभी बाकी है, प्रवीणा जी हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे और भी जानकारी लेंगे। लेकिन सुन लेते हैं गीत, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो
0: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आप

0: बढ़िया लग रही है मेरे को। ये बचपन अभी भी याद आ रहा है मेरे को।
1: सही कहा, बचपन में लौट आए हैं तो बचपन लगता है कि जैसे बचपन ही बना रहा है, बड़े होवे ही नहीं।
0: बड़े होके तो और जिम्मेदारियां पड़ जाती है अपने सिर पे, घर गृहस्थी की, सगे संबंधी की, सबकी।
1: जी, तो आप बता रहे थे कि 8 भाई बहनों, आपके मम्मी ने काफी स्ट्रगल किया और आपको बड़ा किया साग भाजी बेच बेच करके, तो और भी आपके परिवार में किसी का सहयोग मिलता था या आपके मम्मी सभी कुछ करते थे?
0: नहीं, ऐसे मेरे मम्मी करते थे, थोड़ा घना देते थे पापा, थोड़े घने पैसे बचा बचा के ऐसे थोड़े घने लेके आ जाती थी मम्मी झगड़े करके बच्चों को संभालने के लिए। थोड़ा घना मम्मी ने करा, फिर भाई ने नौ सर्विस करी, कुछ भाई ने थोड़े घने पैसे दिए, ऐसे करके हमारा गुजारा। फिर सब बहनों की शादियां कर दी मम्मी ने।
1: तो आपने पढ़ाई तो की नहीं, तो पूरे दिन क्या करते थे?
0: ऐसे खेल कूद करना, फिर सब ससुराल चले गए शादी कर करके, तो सारा घर गृहस्थी की, माँ के घर की, पियर की सारी जिम्मेदारी हमारे सिर पे आ गई थी काम काज करने के लिए।
1: लेकिन जैसे कि पढ़ाई नहीं की तो ऐसे कढ़ाई बुनाई सिलाई गीत संगीत इनमें रुचि थी आपको?
0: नहीं दीदी, ऐसा टाइम ही नहीं मिला इतना हमारे को, काम ज्यादा था, खाना पीना बनाना करना वो सब कुछ करना था, तो फिर हमने पढ़ाई भी नहीं करी, ना कोई कढ़ाई बुनाई करी, कुछ भी नहीं करा।
1: अच्छा, और आप कितने साल के थे और आपकी शादी हुई?
0: 15-16 साल की थी।
1: 15-16 साल की एज में आपकी शादी करवा दी।
0: तो
1: शादी करके आप सीधे आबू आए,
0: सीधे आबू आए।
1: तो शादी के बाद आपके जीवन में किस तरह के परिवर्तन आए?
0: बहुत झेलना पड़ा मेरे को, बहुत संकट का सामना करना पड़ा, पढ़ करके रही।
1: मतलब कैसे, जैसे आपके पियर में बहुत बड़ा परिवार था, ससुराल में कितना परिवार था?
0: ससुराल में थे पण कम परिवार था, पण धंधा रोजी नहीं थी। फिर मैंने काम धंधा चालू करा, मैं बंगलो घर घर में काम करती थी, झाड़ू पोछे बर्तन ऐसे करके मेरे बच्चों को बड़े करे मैंने।
1: तो आप शादी करके अपने ससुराल में आए, उस समय सभी साथ में रहते थे परिवार वाले?
0: नहीं, जेठ जेठानी अलग रहते थे, मेरा देवर मेरा ससुर ये हमारे साथ में रहते थे, ननद बनद वो दोनों मियाँ बीवी अलग रहते थे। नहीं,
1: और आपके हस्बैंड कुछ नहीं करते थे?
0: दुकान थी किराने की, पर कहते हैं कि एक जना कमाने वाला होते, 100 जने खाने वाले होते तो कहाँ से चले। फिर जैसे तैसे करके इन्होंने फिर सप्लाई करी, माल करा, धंधा करा, अमूल्य के पे अहमदाबाद जाके पैकेट लेके आते थे, करा इन्होंने भी, पर मैंने भी डट के सामना करा।
1: तो आप जैसे झाड़ू पोछा करने के लिए जाते थे, कभी पियर में भी किया आपने झाड़ू पोछा?
0: नहीं, वहां की बहुत अच्छी जिंदगी जी थी मैंने, बहुत बहुत अच्छे से जीवन जिया मैंने वहां पर। तो
1: जी, तो यहाँ पर आप झाड़ू पोछा के आपको मतलब अंदर से आपको आई कि मुझे कुछ करना चाहिए या परिवार वालों का दबाव था?
0: नहीं, मेरे को अंदर से कि मैं मेरे आदमी के साथ में कंधा मिला के चलो, ऐसे ही झोपड़ा था घर, मकान नहीं था हमारे, झोपड़ा था ससुर का दिया हुआ, फिर इन्हों को मैंने बनवाया। बहुत ऐसे मैंने संकट से झेला है।
1: तो आपके जैसे पियर वालों ने देखा नहीं था आपका ससुराल?
0: नहीं देखा था इन्होंने, देखा था क्या, मतलब गरीब लोग हैं, मेरी बच्ची को रखेंगे ये लोग अच्छे से, पर मैं अबे पियर वालों को हम नहीं बताते थे कभी क्या मेरे को ये तकलीफें पड़ी, ये तकलीफें से सामना करना पड़ा। पियर वाले हमारे में हेल्प करते थे, मम्मी फिर मम्मी को दिखा कुछ कि बेटी मेरी तकलीफ में, तो फिर ये हेल्प करते थे थोड़ा घनी हमारे को, थोड़ी घनी कोई भी मेरी जरूरत के सामान थोड़ा घना देते थे, करते थे।
1: जी, तो इधर आपके कितना बड़ा परिवार था, जैसे आप कह रहे थे ना ननन देर सास ससुर सभी?
0: सास नहीं थे, ससुर थे, फिर ननद थी दो, फिर मेरा आदमी ने घर वाला ने सारा करा।
1: अच्छा, और किराने की दुकान अकेले आपके घर वाले चलाते थे, दुकान अच्छी
0: हाँ,
1: चलती थी?
0: नहीं चलती थी, फिर वो लॉस में आ गए थे, दुकान बंद पड़ी गई, लॉस में आ गए, फिर ऐसे ही छूटी मजूरी करी, धंधा करा, पेट पालने के लिए तो कुछ तो करना ही पड़ता है, इतने पैसे ही नहीं थे कि हम सामान डलवावे किराने के और दुकान खोले वापस, इतना कुछ था ही नहीं। बच्चे थे छोटे छोटे थे, मैं भी काम पे जाती थी, वो भी इनके काम करते थे, जैसे तैसे करके थोड़ी घनी बचत करके फिर ये मकान करवाया बनाया मैंने।
1: जी।

0: तो जैसे आप फर्स्ट बार झाड़ू पोछा करने, तो शादी के कितने समय बाद आपने ये काम चालू किया?
1: मैंने 5-6 साल बाद।
0: अच्छा, 5-6 साल के बाद आपने ये झाड़ू पोछे का काम चालू किया। तो 5-6 साल आपने क्या किया, घर के कामकाज?
1: छोटे बच्चे थे, वो घर का ही काम करके बैठी रहती थी।
0: और कहते हैं ना कि जैसे घर में कमाई नहीं आती है तो अक्सर तू मैं में होती है, क्योंकि कुछ न कुछ तो घर में चाहिए होता है रोज ही। तो कभी आपके साथ भी ऐसा होता था, आपके हस्बैंड के साथ कभी झगड़ा?
1: हाँ, होता था, बहुत होता था। कोई सगे वाले आते थे, करते थे, मैं बहुत तकलीफें सहन करती थी। फिर किसी को कुछ अच्छा से इनकी सेवा नहीं कर पाती थी तो मैं गुस्से होती थी, झगड़े करती थी कि भाई तुम ऐसा ला के नहीं देते। फिर मैंने किसी ने, आप जैसे किसी ने मेरे को बताया कि ये बैठने से तो कुछ नहीं होगा, बोले काम धंधा पकड़ लो, बोले। फिर मेरे को ऐसा लगा, फिर एक घर लिए, दो घर लिए, ऐसे करके मेरा भी कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता ही गया। करती होंगी 4-5 हजार का काम, 10-12 घरों में काम करती थी तो 4-5 हजार रुपये आते थे।
0: कितने रुपये से आपने शुरुआत की, फर्स्ट काम आपने क्या किया और कितने रुपए लिए मंथली?
1: 250 रुपये में झाड़ू पोछे बर्तन कपड़े करे मैंने।
0: ये कितने साल पहले की बात होगी?
1: ये होगी दीदी, ज्यादा टाइम के।
0: पर 250 रुपये में सारा ही काम?
1: फिर 550 रुपये ऊपर नीचे के झाड़ू पोछे बर्तन कपड़े सारे करती थी मैं, 550।
0: घर का सारा काम करना, उसके बाद बाहर का करने जाना?
1: फिर बाहर का करने जाती, बच्चों को रात को तैयार करके सोती करती। 1:30-2 बजे तक तो मैं रात का घर का काम करती थी मैं। वो काम करके बच्चों को सुला के, फिर बच्चों को ब्रश करवा के, चाय पिला के, फिर बच्चों को स्कूल भेजती, फिर मैं काम पे जाती। तो शाम को 4:30-5 बजे घर पे आती तो बच्चे मेरे घर में ही खेलते रहते, बंद करके मैं काम करके आती।
0: जी, और परिवार में आपके अन्य सदस्य भी थे ना, ननंद, दियर, फिर इनको कौन?
1: हाँ, तो शादी होगी थी दीदी, पर वो आते जाते रहते थे। इसके आदमी तकलीफे देते थे तो भाई के घर पे आवे ना, कहने का जा रहे। माँ बाप तो थे नहीं, तो भाई भाभी हम समझदार थे तो हमारे को ही रखना पड़ता था सबको। जेठ जेठानी ने कभी नहीं रखा इनका, मैं अभी भी मैं ही संभालती हूँ इनको। कोई भी तकलीफ आती करती तो मैं ही जाती हूँ, मैं संभालती दोनों बहनों को।
0: बहुत अच्छी बात है प्रवीणा जी, कहते हैं कि अगर हमारा व्यवहार अच्छा होता है तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। और आज आपकी काफी स्थिति चेंज हो चुकी है, इस पर भी जरूर हम गौर करेंगे। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक गीत, तो आइए और भी सुनेंगे आपके अनुभव। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: जी की जय।
1: ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ बहुत पुराना हमारा रिश्ता है, मेरे ख्याल से 25 साल से भी ज्यादा हो रहे होंगे, और बहुत अच्छा लगता है। इतने सिंपल लोग हैं, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। इतनी शांत प्रकृति के लोग हैं, इतनी दुनिया में शांतता हो सकती है ये उनको देख के महसूस होता है और अच्छा लगता है। उनकी सीख में सबसे बड़ी बात है कि अपने अंदर किस तरह शांति पैदा की जाए, इसलिए उनका लोगो भी है ओम शांति। जब भी किसी को मिलते तो ओम शांति बोलते हैं। और सबसे बड़ा दुनिया का वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, और मैं फिर से बहुत बहुत बधाइयां देता हूं इस संस्था को।
2: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम, और प्रवीणा जी राणा हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीणा जी, जैसे आपने अपने जीवन के काफी अनुभव सुनाए हैं, आपने बताया कि आप पालनपुर से शादी करके यहाँ आए, तो देखिए गुजरात के कल्चर और राजस्थान के कल्चर में काफी भिन्नता है, तो यहाँ आकर आपको अच्छा लगा या एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगा?
3: समय लगा था दीदी, मेरे को बहुत समय लगा था। ये हिंदी बोलना नहीं आता था और राजस्थान बोली नहीं आती थी मेरे को। अब मैं सारों में सेट हो गई हूँ।
2: जी जी, अब तो इतने साल हो गए। जो
3: मेरे को हिंदी बोलना नहीं आता था, मैं गुजराती में बातें करती थी, ये हिंदी क्या बोलते हैं क्या समझ में नहीं आ रही था मेरे को कि कैसे बोलते हैं हिंदी ये लोग। अब सब समझ गई हूँ।
2: वो कहते हैं कि एक पत्थर को भी पीट पीट करके मूर्ति बना देते हैं, उसको भी ठोक बजा गए तो इंसान तो फिर एक्टिव हो ही जाता है। लेकिन जब आप पहली बार इधर आए तो मतलब आपके पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया कि हमारी बच्ची गुजराती, मतलब हम गुजरात के रहने वाले राजस्थान में देंगे तो ये कैसे उस कल्चर को अपनाएगी, क्या करेगी, क्योंकि भाषा का ही ज्ञान नहीं है तो कौन क्या कह रहा है समझ में ही नहीं आता।
3: नहीं, मेरे पियर वालों ने ऐसा ही सोचा था कि धीरे धीरे सीख जाएंगे, अच्छे घर में जा रही मेरी बच्ची, तो बोले धीरे धीरे सीख। फिर पिताजी सरफ बरफ पीते थे करते थे, तो फिर मम्मी कहे कि मेरी इज्जत रह जावे, आजकल टाइम खराब है, बोले बच्चिया, बोले मेरे 5 लड़कियां है, इसे करके मम्मी ने फिर जानता दे दी थी बेटियों को, देखा नहीं के बोले हमारी कास्ट में ही दी सब जगह 5 बहनों के।
2: जी जी, वहाँ सब यही सोचते ना, पहले इतना ध्यान नहीं देते थे कि वहाँ चलो अपने आप जाएगी तो घर में सब ठीक हो जाएगा, यही सोचा होगा।
3: तो हम अच्छे से ही रह रहे, पर तकलीफें तो घनी हैं।
2: जी जी, पर जैसे आप इधर आए है ना, तो फिर आप कैसे समझते थे, आपको हिंदी नहीं आती थी, आपको राजस्थानी नहीं आती थी, तो कोई कुछ कहता तो आप कैसे समझ पाते थे?
3: समझ आती थी, थोड़ी घनी आती थी, मैं ज्यादा जवाब नहीं देती थी इन लोगों को, ऐसे ही घूंघट में रहना करना, मान सम्मान से रहना, ये राजस्थान में बहुत मैंने देखा है यहाँ पर।
2: तो उस समय आपके हस्बैंड साथ देते थे आपका?
3: बिल्कुल साथ देते थे मेरे को।
2: तो कोई चीज अगर समझानी हो तो आपके हस्बैंड समझाते थे कि इसको ये बोलते? गुजराती आती थी उनको?
3: नहीं, वो थोड़ी घनी समझ में आती थी इनको, दुकान थी वहाँ पे, कोई गुजराती रहते थे थोड़े घने, तो उनकी लैंग्वेज इनको समझ में आती थी, फिर वो मेरी भी लैंग्वेज समझते थे कि मेरे घर वाली वो कहना चाहती है। फिर धीरे धीरे ऐसे करके मैं भी समझी, मेरे को समझे, मैं इनको समझी।
2: चलिए, आपके पारिवारिक तंगी थी, पैसों की तंगी थी, बाकी घर में शांति थी?
3: पैसों की तंगी थी पर घर में शांति थी। फिर मेरे हस्बैंड के साथ में मैंने भी काम धंधा खूब करा।
2: तो जैसे आपने झाड़ू पोछा करने की सोची तो आपके हस्बैंड ने मना तो किया होगा कि नहीं करना है?
3: हाँ, मना करते थे, पर कहते हैं कि एक बार इंसान को पैसे हाथ में आ जाते तो फिर इंसान को लालच सी पड़ जाती। मैं मेरे काम काज में इतनी मस्त थी कि किसी के सामने ध्यान नहीं देती थी, खाली मेरे बच्चों के अलावा, कि भाई मेरे बच्चे पढ़ लिखे करे, इसके अंदर ही ध्यान देती थी, ज्यादा नहीं।
2: तो आप अपने बच्चों को छोड़ करके फिर इस तरह आपने शुरुआत की, तो आपके ससुर जी ने मना नहीं किया कि ये काम नहीं करना है, कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाया?
3: हाँ, ऑब्जेक्शन तो उठाए थे इन्होंने के बोले नहीं करना है ऐसा काम, बंगलों का काम तो इसमें क्या हो गया, कोई चोरी चिनाली तो कोई खराब धंधे तो करने जाते नहीं, करते अच्छे लोगों के मुंह ही लगते, अच्छे घर में जाते, अच्छे संस्कार पाते अपन, अच्छों के मुंह लगते, तो तो इसीलिए फिर हमने मैंने काम धंधा जारी रखा।
2: नहीं, कहते हैं ना कि भाई चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, लेकिन काम करना पाप नहीं है। काम छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता है, काम काम ही होता है।
3: काम काम ही होता है दीदी, इसीलिए मैंने काम को खूब अहमियत दी।
2: जी जी, मेहनत की आपने और मेहनत का फल तो मीठा ही होता है। तो आप मतलब पूरे दिन आप बाहर का काम करते थे, घर का भी काम करना, फिर बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, फिर आप रेस्ट कब करते थे?
3: 2-3 बज जाते थे सोते करते। सुबह फटाफट 7 बजे तो उठ जाना पड़ता था मेरे को, फिर बच्चों को नाश्ता वास्ता करवा के फिर स्कूल भेज के फिर 9 बजे मैं थोड़ा घर का काम करके फिर 9 बजे काम पे जाती।
2: सुबह 9 बजे?
3: सुबह 9 बजे तक तो मैं फ्री हो जाती थी घर का करके, तो 15-16 घर के काम करती थी।
2: बहुत काम करते थे। तो कहते हैं कि भाई काम करने जाते हैं तो कोई किसी के यहाँ पर कोई फंक्शन है या फिर भोजन बनाया बच गया, वो भी हेल्प मिल जाती है, बच्चों के कपड़ों की भी हेल्प मिल जाती है। तो आपने इस तरह की हेल्प ली कभी?
3: नहीं दीदी, मैंने पैसों की अहमियत दी, मैंने ऐसी हेल्प में कभी लेती नहीं थी। मैंने मेरे घर की मिर्ची रोटी खिलाई होगी, पर मेरे घर की खिलाई है मेरे बच्चों को।
2: खुददारी से जीवन जिया,
3: दूसरे कोई देते बेचारे बापड़े करके मैंने जीवन नहीं जिया। मैंने सामना करा, काम धंधा करा, मेरे बच्चों को अच्छा खिलाया पिलाया, भले थोड़ा लाके खाते थे पर अच्छा खाते थे।
2: जी जी बिल्कुल, कहते ना ये भी अपना अपना स्वाभिमान होता है। काम करना गुनाह नहीं है, लेकिन स्वाभिमान में रहना ये एक विशेषता है।
3: बस यही मेरा बड़पन है कि मैं मेरे ही स्वाभिमान में रही हूँ।
2: जी जी, तो आपके जैसे बेटियाँ भी है, तो आप अपने बेटियों से क्या अपेक्षाएं रखती है, मतलब किस तरह की अपेक्षाएं रखते हैं? जैसे आपके तो पेरेंट्स में मतलब पिताजी तो शराब पीते थे, माँ बेचारे सब्जी का काम, इतने भाई बहनों की पालना करना, तो उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन आप क्या चाहते हैं, आपकी बेटियाँ पढ़ रही है?
3: नहीं, मेरी 2 बेटियाँ ससुराल है और एक छोटी वाली ये मेरे पास है।
2: तो आपने अपने बच्चों को पढ़ाया? आपने तो पढ़ाई नहीं की, पर आपके बच्चों को तो पढ़ाया, बेटियों को?
3: हाँ, 1 7वीं क्लास पढ़ी, फिर वो तकलीफें घर के अंदर, वो मकान बना दिया, फिर तकलीफें बहुत आई हमारे को, फिर बच्चियों ने दोनों बहनों ने स्कूल छोड़ दी। फिर
2: घर के अंदर मकान बना दिया बोले तो?
3: नहीं, झोपड़ा था, मैंने मकान बनाया, थोड़ा कर्जा हो गया था, फिर बेटियों ने पढ़ाई छोड़ दी, फिर घर में तकलीफ देख रहे थे, तो फिर इन्होंने बिचारी ने काम करा दोनों बहनों ने।
2: देखिए, पढ़ाई का तो अभी गवर्नमेंट के इतने सारे नियम है कि गवर्नमेंट फ्री में पढ़ाई कराती है, तो बेटियों के तो शुरू से मेरे ख्याल से सरकारी स्कूलों में फीस नहीं लगती है।
3: नहीं, सरकारी स्कूल थी पर दीदी फिर पूरा नहीं जाता था घर में, सरकार इतना तो नहीं देती थी हमारे को कि हमारा पेट भरे, इसीलिए फिर बच्चियों ने फिर मम्मी कहे तुम्हारे साथ में लगूंगी काम धंधे पे, फिर ये हमारे साथ में हम तीनों माँ बेटियां काम करते।
2: अच्छा, बेटियां भी हेल्प कराने आते थे आपके?
3: छोटी थी तो ये मेरे हेल्प करवाने आते, फिर दिखने जैसी हुई, फिर सगाई करी, शादी करी, इनका घर गृहस्थी ये संभाल रही है। और छोटी वाली थी, इसने 8वीं पास करी है, इसने छोटी वाली ने, वो भी फिर बहने शादी करके गई, तो फिर इन्हों को भी ऐसा लगा के भाई मम्मी अकेले बेचारे करते थे, इसने स्कूल छोड़ दी, फिर तो फिर घर पे बैठ के एग्जाम दे रही थी, फिर वो दे ही नहीं पाई बापड़ी, काम धंधे के आगे पढ़ाई नहीं कर सकी।
2: अच्छा, तो अभी छोटी वाली बेटी भी मतलब पढ़ाई 8वीं तक पढ़ाई करके छोड़ दी और आपके साथ हेल्प करते?
3: हेल्प करती मेरे साथ।
2: तो अभी आप क्या करते हो काम?
3: अब बेटा कमाता है, थोड़ा घना चलता रहता है जैसे तैसे। बेटी अभी जाती थी काम पे, फिर इसने छोड़ दिया, छोरी कपड़ों की दुकान पे जाती, इसने छोड़ दिया अभी।
2: अच्छा, कपड़े की दुकान पर जॉब करते?
3: जॉब करती थी तो उसने छोड़ दिया, तो अभी ये अभी करने सोच रहे हैं भाई कहाँ कहीं अच्छा मिल जावे तो वापस लग जाऊं।
2: जी जी बिल्कुल। तो प्रवीणा जी, और भी आपसे हम आपके अनुभव सुनेंगे, परंतु समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो ले लेते हैं एक ब्रेक। बने रहिएगा मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं वंदे मातरम कार्यक्रम में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: Hi, this is Ravina Tandon, and I take this opportunity to wish Brahma Kumaris with all the success in their love that they've been giving to the world and the social service that they have been spreading all over our planet. I wish you all the best, and I wish that more and more people become aware and follow this true path of what Brahma Kumari teaches of only love and peace. God bless humanity. God bless the Brahma Kumari.
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम. प्रवीणा जी हमारे साथ बने हुए हैं. प्रवीणा जी, अपने जीवन के उतार चढ़ाव सारी बातें आपने बताई है कि किस तरह आपने स्ट्रगल किया है, बच्चों को बड़ा किया है. बच्चे बड़े होने के बाद आपको काम करने देते थे या फिर आपने काम छोड़ दिया?
2: नहीं, बच्चों ने मना करा कि मम्मी आपने बहुत संघट करा है. बोले अपनी अब मम्मी हम जाएंगे, तुम खाओगे बैठ के, घर को संभालो. और काम धंधे करने में कोई खराब नहीं है काम.
1: तो आपके हस्बैंड के बिजनेस सेट हुआ या नहीं हुआ?
2: नहीं, मेरा हस्बैंड तो ऐसा ही धंधा करता है, यही खुली मजदूरी ऐसे ही करते है. तो ऐसे कुछ मांगते हैं तो दे देते हैं, बाकी मैं जरूरी नहीं समझती. अभी बच्चे संभाल रहे तो मैं इनके पास ये इनका छोकरते है, इसीलिए मैंने काम धंधा बहुत करा, पर इज्जत की रोटी खाई है मैंने. मैंने शान से जी, उन शान से ही वही रहना है मेरे को. इसीलिए मेरे बच्चे कह रहे हैं कि बोले नहीं काम धंधा, बोले मम्मी आपने खूब करा, अब मत काम करो.
1: जी जी बिल्कुल, कहते हैं कि काम करने की शर्म नहीं है लेकिन इज्जत से रहना ये बहुत बड़ी बात है. तो आप बहुत सारे घरों में जाते थे काम करने के लिए, कभी आपके काम से किसी ने नाराजगी जताई?
2: नहीं, सब खुश थे, मेरे को देख के बहुत खुश हो जाते थे कि हमारे हंसमुख आ गई. मैंने कभी ऐसा दुख कभी मन पे ही नहीं लाई कि मेरे को इतनी तकलीफ है, मैं इतनी दुखी चल रही हूँ. सबके सामने हंस के सामने आई हूँ. तो सब काम वाले, सब बंगलों वाली, सब सेठानियां खुशी थी मेरे को, प्रवीणा प्रवीणा करके करती. ऐसे नहीं कि मैंने इज्जत की रोटी खाई है वहां पे भी. पूरा घर बार मेरे भरोसे छोड़ के जाते थे, कभी वहां से वहां नहीं हुई चीजें इनकी.
1: कहते खुश रहना सबसे बड़ा गुण है और हंसता हुआ चेहरा सभी को पसंद आता है. तो ये बहुत बड़ी विशेषता है आपकी कि सारे दुखों को अंदर दबा करके हमेशा चेहरे पर स्माइल रखी है, और यही होना चाहिए सही मायने में. तो जैसा कि आपने बताया कि आपके बेटियों को सातवीं तक पढ़ाया और सबसे छोटी वाली को आठवीं तक पढ़ाया है ना, और बेटे को?
2: बेटा वो भी नौवीं तक पढ़ा है, और एक बेटा अभी छोटा वाला है नौवीं में आया है. तो बस इसका एडमिशन कहाँ करावे, कैसे करे, अभी सोच रहे. इसकी फीस बीस जमा करनी है और सोच रहे वहां तक हाथ पैर मारेंगे भाई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बन जाएगा बंदोबस्त, फिर काम धंधा करके इनको चुप्त कर देंगे.
1: जी जी बिल्कुल, देखिए पढ़ना बहुत जरूरी है ना. आज आपको अफसोस होता है आपने पढ़ाई नहीं की जो?
2: बहुत अफसोस होता है, बहुत, कि खेल कूद में हम लगे रहे, पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया. मम्मी ने तो बापड़ी ने रिश्वत खिला के भी हमारे को पढ़ाने को भेजा, पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि पढ़ाई के ऊपर, कि पढ़ाई क्या चीज है. खेल कूद करने में खूब ध्यान दिया हमने.
1: इसलिए आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए. बेटियां तो अब आपने छुड़वा दी, बाकी सबसे छोटी बेटी उसको तो आप पढ़ा सकते हो.
2: हाँ दीदी, तो दे रही है अभी, कह रही कि मम्मी देखती हूँ मैं एग्जाम दूंगी घर बैठ के. तो ऐसा थोड़ा घर में सही चल रहा है तो बोले मम्मी मैं करती हूँ, बोले एग्जाम दूंगी, लड़की कह रही है.
1: जी जी, और अभी आप वर्तमान में अपने घर के मकान में हो?
2: हाँ, अभी तो मेरे घर के मकान में ही हूँ मैं, मेरे घर के मकान में ही हूँ, मेरे बच्चों के साथ में हूँ. मैं मेरे बच्चों को लेके बहुत खुश हूँ.
1: बच्चे आपका कहना मानते?
2: बिल्कुल मेरा कहना मानते हैं. मेरे बच्चों के अंदर मेरी सारी खुशी मेरे बच्चों में ही है, इसीलिए मैं मेरे बच्चों के अंदर बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चों के अंदर भी बहुत खुश हूँ. इसीलिए मेरे को भगवान से कुछ नहीं चाहिए, बस एक इज्जत दे देवे, एक रोटी देवे दो टाइम इज्जत की, बस वही मेरे लिए काफी है.
1: जी जी, तो प्रवीणा जी आपके जीवन में काफी उतार चढ़ाव आए, आपको इससे क्या सीखने को मिला?
2: मैंने हर चीज को हंस के सामना करा, डट के कर रहा सामने, कभी हार नहीं खाई मैंने. अभी तक की भी टक्कर ले रही हूँ उससे ही, पर कभी दुख ऐसे नहीं समझा कि मेरे को तकलीफ हुई है, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, मैंने कभी सोचा ही नहीं ऐसा.
1: तो हमारी जो बहनें सुन रही है उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
2: बस वही कि डट के सामना करो किसी भी चीज का, ऐसे नहीं समझने का कि छोटा बड़ा काम काज ही है, इसको छोटा बड़ा मत समझा करो, ऐसे डट के सामना करो, भगवान चाहेगा तो सब अच्छा ही होगा, मालिक चाहेगा तो।
1: जी जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम ही होता है, बस उसमें आप कहते हैं कि लगन से काम करते रहो और हमेशा खुद को खुश रखो, ये सबसे बड़ा गुण है। जैसा कि प्रवीणा जी के अंदर है कि कितने भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन आज भी इनके चेहरे पर हम भी देख रहे हैं, अभी जो इतना अनुभव इनका सुना है कि लगातार इनके चेहरे पर स्माइल ही रही, कहीं शिकन की बात ही नहीं। तो सचमुच जीवन में तो उतार चढ़ाव सभी के आता है, लेकिन स्वयं को दूसरों के सामने मुस्कुराहट के साथ पेश करना, ये सबसे बड़ा गुण है। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृशक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और इस तरह आप अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हो। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

दीन जिंदगी में आइए सुर भर लें, अंधकार युक्त जीवन में उजाले को भर दें, अंधकार युक्त जीवन में उजाले भर दें, अस्वच्छ मलिन हृदय को स्वच्छ कर दें। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर शुरू हो चुका है आपका मनपसंद कार्यक्रम गीत जो दिल को भाए, गीत जो दिल को उड़ाए, गीत जो दिल को पसंद आ जाए और दिल में ही बस जाए। ऐसे ही गीतों को लेकर और बातों को लेकर आ गई हूँ मैं आपकी वही हम सफर स्वर्णलता। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आज आप सभी उमंग और उल्लास के साथ ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ कहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सबसे बड़ा ज्ञान स्वयं को जानना है। मन का मंथन करें, विचारों को शुद्ध करें और आत्मा की शांति का अनुभव करें। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: जैसे ही वीकेंड अप्रोच करता है, दिल में एक छोटा सा ही शब्द होता है, गुलदस्ता। और गुलदस्ता कार्यक्रम में आपके लिए मैं क्या गीत बजाऊंगी, क्या बातें करूंगी। छोटी सी बात है, एक तेरी आश है, एक तेरी ही याद है ना। आप भी हमें याद करते हैं, हम भी आपको याद करते हैं। और आज हम याद कर रहे हैं एक ऐसी आवाज की मल्लिका को, जिसे आप में से विरला ही कोई जानते हैं, क्योंकि हमने ही उनको पिछले 5 साल से जाना है और 5 साल से उन्हें हम सुन रहे हैं। आज एक अलग सी खुशी है, एक अलग सी मस्ती है दिल में, एक अलग सी खुमारी है, क्योंकि आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है इस आवाज़ की मल्लिका को आप तक पहुंचाने के लिए। आपको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज हम इनकी आवाज़ में सुनेंगे गीत, गज़ल, भजन और बहुत सारे गीत जो आपने सुने हैं कई अन्य आर्टिस्ट की आवाज़ में। तो बने रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: हमारी मन की क्वालिटी कैसे है, और अक्सर करके डॉक्टर्स कहते हैं मोर देन 85% डिजीजेस है वो साइकोसोमैटिक है, मन से आरंभ होता है। और अक्सर करके जो तनाव भी होता है इट इज देयर इन द माइंड। और अक्सर करके देखते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति इतनी शुभ भावना होती है कि जब बच्चों का एग्जाम्स होता ना तो उस समय मम्मी डैडी का प्यार बच्चों के प्रति कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। और एग्जाम के दिन में मम्मी डैडी आकर कहेंगे बच्चा आज तेरा एग्जाम है तो है ना हॉर्लिक्स भी पी, बॉर्नविटा भी खा, ये भी कर, वो भी कर, है ना, उसको बहुत जबरदस्ती खिलाएंगे। शरीर को तो हमने बहुत भोजन दिया, जरूरत है उसको मन को अच्छा भोजन देने के लिए। और मन का भोजन क्या है? विचार। मन का भोजन है विचार। बहुत पुराने विचार, बासी विचार अगर उसको बार बार हम अपने मन में लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मन जो है वो कमजोर हो जाता है, धीरे धीरे द माइंड विल ऑल्सो बिकम वीक। तो फ्रेंड्स इस बात को चेक करना कि सारे दिन में हमने अपने मन में जो विचार आ रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। देखिए सोचने की बात है, आज हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है और हम बहुत ध्यान रखते हैं कि मोबाइल को चार्ज करना है। और जिस दिन रात को सोए और मोबाइल चार्ज करना भूल गए तो रात के 2 बजे उठेंगे और उसको चार्ज करेंगे, क्योंकि हमको ये बात महसूस होती है कि अगर हमने मोबाइल को चार्ज नहीं किया तो शायद दूसरे दिन हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगा। तो उसी तरह हमें अपने मन को भी अच्छे विचार से सुबह सुबह चार्ज करना बहुत।
2: सुरों की बारीकियों को बहुत ही आकर्षक अंदाज में आप तक पहुंचा रही हैं गायत्री अशोकन। साथियों जिंदगी एक खोज है, एक होता है सर्च, एक होता है रिसर्च। जैसे ही ढूंढते ढूंढते हमें यह आवाज मिली उसके बाद हमारा रिसर्च शुरू हो गया। सर्च से रिसर्च का सफर है कार्यक्रम गुलदस्ता। गायत्री अशोकन कौन है? इन्होंने केरला फिल्म इंडस्ट्री से अपनी शुरुआत की। उन्होंने केरला फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई और उसके बाद गजल की दुनिया में कदम रखा। और हमने सबसे पहले इनकी आवाज में गजल ही सुनी थी। और पता है कौन सी गजल हमने सुनी? हरिहरन जी का गाया हुआ वह गजल झूम ले हंस बोल ले। उस गजल को भी सुनवाऊंगी क्योंकि वो मेरा फेवरेट है, वो आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। लेकिन फिलहाल हम सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर गजल उनकी आवाज में।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो। कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सब की गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी के पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: सागर की लहरों में तुम हो, गिरते हुए बूंदों में तुम हो, और आपकी आवाज में महीनता है, इमोशंस है, लाजवाब वैरायटी है। फ्रेंड्स, लाजवाब कॉम्पोजिशन आप सुन रहे थे पूर्वायन चटर्जी जी की, और इस गजल को लिखा है अमरभ बैनर्जी ने। गायत्री अशोकन और अमरभ बैनर्जी की आवाज में आपने सुनी यह बेहतरीन गजल। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता, और गुलदस्ता कार्यक्रम में हम एक ऐसी प्रतिभावान गजल गायिका को सुन रहे हैं जो एक प्रमुख भारतीय पार्श्व गायिका हैं, जो मुख्य रूप से मलयालम फिल्मों में अपने गायन के लिए जानी जाती हैं। इसके साथ ही उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और गजल गायन में भी गहरी पहचान बनाई है। तो इनके बारे में और भी बातें होंगी, तो अभी सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में जो गजल हमने बहुत बार सुनी है, वही गजल हम सुनेंगे, जी हाँ, गायत्री जी की आवाज में।

0: आप हबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हम सुन रहे हैं एक ऐसी आवाज को जो दिल को दस्तक दे रही है, जो दिल को खुशी भी दे रही है और हीलिंग भी कर रही है। एक ऐसी आवाज जो जख्म को भर सकती है, है ना। मलयालम सिनेमा की आप एक प्रमुख पार्श्व गायिका हैं। आपका जन्म 1978 में 2 मार्च में हुआ था केरल राज्य में। आपके पिताजी अशोकन जी हैं और आपकी माता जी सुनिधि जी हैं। आप ने इन दोनों से प्रोत्साहित होकर गीत गाना शुरू किया। दोस्तों, आप भी सुन रहे हैं ना इस आवाज को, है ना, बहुत नवीनता। और आपने देखा कैसे जगजीत सिंह की गाई हुई गजल में इन्होंने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। इसमें उन्होंने वेरिएशन को दिखाया, है ना। इस कॉम्पोजिशन को गाना कितना मुश्किल है, पर आपने यानी गायत्री जी ने इसे बखूबी निभाया। आइए अब सुनते हैं एक ऐसी गजल को जिसे मैं बार बार सुनकर आप तक पहुंचा रही हूं। रेडियो मधुबन पर छाए रहिए और इस नवीन आवाज को सुनते रहिए।

0: तो ये गीत तो आप लोगों ने सुना होगा।
1: क्या आप जानते हैं कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है?
0: इसीलिए अपनी बच्चे की कम उम्र में शादी ना कराएं।
1: उनके स्वास्थ्य और उनके अच्छे भविष्य के लिए उन्हें खूब पढ़ाएं। बेटी कुदरत का है उपहार, नहीं करो उसका तिरस्कार। जो बेटी को दे पहचान माता पिता।
2: हम सब भी यही कहना चाहेंगे आपके लिए कि आपकी इस महीन आवाज को हम भी अपने दिलों में कैद कर रखने वाले हैं, रखेंगे आपकी इस आवाज को दिल में भर कर। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं गायत्री जी को, जो बहुत सारे ऐसे गीत गा चुकी हैं जिनके लिए उन्हें पुरस्कार भी मिले हैं। उन्हें 2003 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का प्रतिष्ठित केरल राज्य फिल्म पुरस्कार मिला। फिल्म संगीत के अलावा गायत्री ने उस्ताद इलयराजा और शंकर महादेवन जैसे दिग्गजों के साथ काम किया है। उन्होंने कई आध्यात्मिक एल्बम भी निकाले हैं और वे एक बेहतरीन गजल गायिका भी हैं, जो हमें अभी पता चल गया कि कितना खूबसूरत गाती हैं, है ना। अभी बहुत सारी गजलें सुनी, गीत सुने हम सभी ने, तो आइए ना अब उस गजल को सुनते हैं जिसे हमने कई बार हरिहरन जी के आवाज में सुनी है। वो गजल है झूम ले हंस बोल ले, और इस गजल को आज हम सुनेंगे गायत्री जी की वॉइस में।

0: बेस्ट राइटर अवार्ड गोज टू मिस सुरेखा।
1: अरे ये तो देख भी नहीं सकते, फिर भी उसको अवार्ड मिल गया।
0: प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस सुरेखा, दो शब्द हमारे बीच रखें। आपको कैसा लग रहा है?
2: मैंने मन की आंखों से देखा है इस दुनिया को। मेरी आंखों में रोशनी ना सही, परंतु जीवन में उजाला ही उजाला है। दिव्यांगता मेरी पहचान नहीं, मेरी काबिलियत ही मेरी पहचान है।
3: रेडियो मधुबन की कोशिश है दिव्यांग लोगों के प्रति हो सही दृष्टिकोण, काबिलियत से बनाए अपनी पहचान, पिछड़ी सोच का खत्म करे नामो निशान।
4: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।
5: दिल की दिशा को पलटाने वाली गजल, झूम ले हंस बोल ले, प्यारी अगर है जिंदगी, दिल में एक नया जोश भर देता है, है ना। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता, और कार्यक्रम गुलदस्ता में अभी हम पहुंच चुके हैं अंतिम छोर पर। इस अंतिम छोर में आइए, उनके बारे में, गायत्री जी के बारे में कुछ और बातें हो जाएं। जैसा कि हमने आपको बताया कि पार्श्व गायन के अलावा गायत्री ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, भजनों और विदेशों में प्रस्तुतियों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और फिल्मी गीतों में अपनी विशेषज्ञता का अनूठा संगम प्रस्तुत किया। 2017 में गायत्री ने फिल्म संगीत उद्योग से हटकर गजलों पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति को एक नई दिशा दी। वाकई आपकी आवाज में वेरिएशन है, इमोशन है और खूबसूरत एक्सप्रेशन है। जिनकी आवाज में 3-in-1 कॉम्बिनेशन है, उनकी आवाज जरूर नई दिशा देती है सभी की लाइफ में। तो हम सब अपने जीवन को एक नया मोड़ दें इनकी आवाज को सुनकर, क्योंकि कहते हैं कि कलाकार की आवाज भी हमारे जीवन को मोड़ देती है। तो आइए हम एक सुनहरे सफर पर, फिर से एक नए सफर पर हम चल पड़े इस कार्यक्रम के माध्यम से। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जाते जाते आपके लिए आ रहे हैं दो गीत बैक टू बैक, और ये दोनों ही आध्यात्मिक गीत हैं गायत्री जी की वॉइस में। तो बने रहिए और फिर से मिलेंगे अगले सप्ताह।

0: आप होबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM होबरता रेजियो ने मुस्कुराता रेजियो.
1: So this is a beautiful bhajan which was requested and I learnt. I hope I can do a good job. If you all know it, please sing with me. हर देश में तू हर भेष में तू.

0: नमस्ते दोस्तों, कितना मजा आता है ना जब स्कूल की छुट्टियां होने वाली होती है। अपनी मीना के स्कूल की छुट्टियां भी होने वाली है अब से बस 4 दिन के बाद। लेकिन मीना और उसकी सहेलियां इतनी उदास क्यों लग रही हैं? आओ जरा देखे तो।
1: मीना, 4 दिन बाद स्कूल की छुट्टियां होने वाली है और हमने अभी तक ये भी नहीं सोचा कि आखिरी दिन हम लड़कियां स्कूल में कौन सा कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी।
2: सुमी ठीक कह रही है मीना, हमारी क्लास के लड़के तो संगीत का एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन हम लड़कियां क्या करें?
3: हाँ रीना, इस बार तो सरपंच जी ने जीतने वाली टीम को एक इनाम देने की घोषणा भी की है। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो इनाम हम लड़कियों की टीम को ही मिले। कुछ तो कहो मीना।
1: रीना, सुमी, रानो, मैं सोच रही हूँ कि इस बार हमें कोई नया और अलग कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहिए।
4: लेकिन वो नया और अलग कार्यक्रम होगा क्या?
2: सुमी, याद है पिछले हफ्ते तुम और मैं कठपुतली का खेल देखने गए थे? क्यों ना इस बार हम स्कूल में भी वैसा ही कठपुतली का खेल प्रस्तुत करें?
3: वाह रीना, क्या बात कही है, रंग बिरंगी कठपुतलियाँ
2: मटक मटक के नाचती हुई।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो फिर इस बार हम कठपुतली का खेल ही प्रस्तुत करेंगे।
3: मीना, उसके लिए तो हमें बहुत तैयारी करनी होगी।
1: मैं भी वही सोच रही हूँ रानो। रीना, सुमी, तुम दोनों अलग अलग तरह की कठपुतलियाँ तैयार करो। मैं उनके लिए कपड़े ले आऊंगी और रानो तुम।
4: मैं उन्हें चलाने के लिए रंग बिरंगे धागे लाऊंगी।
5: धागे लाऊंगी, कठपुतलियों को नचाऊंगी।
1: लेकिन हम में से किसी को कठपुतलियाँ चलाना तो आता ही नहीं।
2: मुझे आता है मीना।
3: सच रीना?
2: हाँ सुमी, सच। मेरे चाचा जी शहर में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, उन्हीं ने मुझे सिखाया था।
1: तो फिर ठीक है, कल से हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं।
3: हाँ मीना, कल रविवार है यानी कि स्कूल की छुट्टी।
1: रीना, तुम सुबह 9 बजे मेरे घर आ जाना, हम दोनों मिलके कठपुतलियों पे रंग कर देंगे।
2: ठीक है सुमी।
1: सुमी, मैं और रानो भी 11 बजे तक तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, रंग बिरंगे कपड़े और धागे लेकर।
0: और जब अगले दिन मीना और रानो सुमी के घर पहुंची।
3: ये क्या सुमी, अभी तक तुमने और रीना ने सिर्फ एक ही कठपुतली पे रंग किया है।
1: क्या हुआ सुमी, तुम उदास क्यों लग रही हो? और रीना कहाँ है?
3: मीना, हमारी टीम में या तो रीना रहेगी या मैं।
1: हुआ क्या है सुमी, तुम और रीना तो बहुत अच्छे दोस्त हो।
3: दोस्त है नहीं, दोस्त है। अब मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। मुझे ऐसी आलसी दोस्त की कोई जरूरत नहीं।
0: मीना और रानो वहाँ से रीना के घर पहुँची।
2: मीना, रानो, मुझे सुमी के बारे में कोई बात नहीं करनी।
1: आखिर हुआ क्या है रीना, कुछ तो बताओ।
2: क्या बताओ मीना, सुमी सारा काम अकेले ही करना चाहती है। अगर मेरी जरूरत ही नहीं थी तो मुझे बुलाया ही क्यों था अपने घर।
3: चलो गुस्सा छोड़ दो रीना, हमारे साथ सुमी के घर चलो।
2: नहीं रानो, अब तो हमारी टीम में या मैं रहूंगी या सुमी।
0: मीना और रानो बहुत उदास होके रीना के घर से चली।
3: अब क्या करें मीना, अब हमारे कार्यक्रम का क्या होगा?
1: चलो रानो।
3: कहाँ?
1: बहन जी के घर।
0: मीना और रानो भागी भागी बहन जी के घर गईं और सारी बात बताई। बहन जी ने उन्हें सुमी और रीना को ले के आने को कहा और जब चारों सहेलियां बहन जी के पास पहुंची, बहन जी ने सबको प्यार से अपने पास बिठाया और पूछा,
6: सुमी पहले तुम बताओ क्या हुआ था?
3: बहन जी, कल हम सब ने ये फैसला किया था कि रीना आज ठीक 9 बजे मेरे घर पहुंच जाएगी, लेकिन।
6: हाँ हाँ सुमी बोलो।
3: लेकिन ये मेरे घर पहुंची 10 बजे, पूरे 1 घंटे बाद। तब तक मैं कठपुतली पे रंग कर चुकी थी। बस रीना को ये देख के गुस्सा आ गया और ये वहाँ से चली गई।
6: अच्छा रीना, तुम्हें सुमी के घर पहुंचने में देर कैसे हो गई थी?
2: बहन जी, मैं तो इसके घर 9 बजे से पहले ही पहुंच जाती, लेकिन माँ ने मुझे पारो को संभालने के लिए कह दिया क्योंकि उन्हें बाजार जाना था। अब मैं अपनी छोटी बहन को घर पे अकेली छोड़ के कैसे जाती?
6: लेकिन सुमी के घर पहुंचकर तुम्हें गुस्सा क्यों आया?
2: बहन जी, हम दोनों ने कठपुतलियों पे एक साथ मिलके रंग करना था, लेकिन इसने मेरे बिना ही उन पे रंग करना शुरू कर दिया था।
3: बहन जी, मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि हमारा काम समय पे खत्म हो सके।
6: मैं सब समझ गई बच्चों, देखो मैं जानती हूँ कि तुम सब बहुत अच्छे दोस्त हो और दोस्ती में ये छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती हैं, लेकिन दोस्ती हो या कोई और रिश्ता, तीन चीजें याद रखना बहुत जरूरी है।
7: तीन चीजें?
6: हाँ, सबसे पहली चीज अपने आप को दूसरों की जगह पर रखकर स्थिति को समझने की कोशिश करना। सुमी तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हें ये पहले से पता होता कि रीना को अपनी छोटी बहन पारो का ध्यान रखना था इसीलिए उसे देर हुई, तो क्या तब भी तुम उसे आलसी कहती?
1: नहीं बहन जी।
6: रीना अगर तुम्हें ये बात पहले से पता होती कि सुमी ने कठपुतली पे रंग इसलिए किया था क्योंकि वो सही समय पे काम खत्म करना चाहती थी, तो क्या तुम तब भी यही समझती कि सुमी सारे काम का श्रेय अकेले लेना चाहती है?
2: नहीं बहन जी।
6: देखा, अगर एक दूसरे की जगह खड़े होकर देखोगे तो पूरी स्थिति को समझने में आसानी होगी। हमें हमेशा दूसरे व्यक्ति की परेशानी और मजबूरी समझने की कोशिश करनी चाहिए, है ना?
7: जी बहन जी।
6: सुमी, रीना, अब जब तुमने अपने आप को एक दूसरे की जगह रख के देखा, अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें सुबह क्या करना चाहिए था?
1: बहन जी, मुझे रीना की परेशानी को समझना चाहिए था।
6: शाबाश। और तुम्हें रीना?
2: बहन जी, मुझे भी समझना चाहिए था कि सुमी हमारी टीम की भलाई के बारे में ही सोच रही थी।
6: बिल्कुल ठीक, यही है दूसरी चीज, यानी स्थिति को समझते हुए अपने सोचने के तरीके को बदलना, और किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए तीसरी और सबसे जरूरी चीज होती है अपने और सामने वाले की सोच के अंतर को पहचानना।
4: मैं समझी नहीं बहन जी।
6: मैं समझाती हूँ। देखो, हम सब एक दूसरे से बहुत अलग हैं, है ना? बोलने चालने में, सोचने में, व्यवहार में, बस हमें इस अंतर को अच्छी तरह समझते हुए एक दूसरे के साथ अच्छा और मजबूत रिश्ता बनाए रखना चाहिए।
2: मुझे माफ कर दो सुमी।
1: तुम भी मुझे माफ कर दो रीना।
6: रीना, सुमी, शाबाश। ऐसे ही एक दूसरे को समझते हुए साथ मिलकर काम करने से कोई भी काम आसानी से हो जाता है। चलो अब तुम सब जाओ और कठपुतलियाँ बनाओ।
5: कठपुतलियाँ बनाओ, इनाम लेके आओ।
0: लड़कियों की टीम ने लड़कों की टीम को हरा दिया। क्यों दोस्तों, मजा आया ना मीना से मिलके? चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की एक प्यारी सी कविता।
5: बात समझना तुम दूजे की, अपनी भी समझाना।
4: रिश्ते बहुत ही नाजुक होते, ध्यान से उन्हें निभाना।
0: भाई वाह, बातों बातों में क्या पते की बात बता गए अपने मीना और मिट्ठू। चलो अब एक मजेदार गीत भी सुन लिया जाए।

0: भाई वाह, गाना सुन के तो मजा आ गया। अब कहाँ चलना है सोचो सोचो। बिल्कुल ठीक कहा, अब हमें चलना है मीना की क्लास में एक नया खेल खेलने।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे कड़ियाँ जोड़
2: पहेली तोड़।
1: हाँ, मैं तुम्हें तीन कड़ियाँ बता के एक पहेली पूछूंगी और तुम्हें पूछना है उस पहेली का
2: सही जवाब।
1: तो सुनो पहली कड़ी, मेहनत करना मुझसे सीखो, मुझसे सीखो हरदम चलना।
3: समझ गया बहन जी, सही जवाब है पहलवान चाचा।
1: वो कैसे दीपू?
3: क्योंकि पहलवान चाचा खूब मेहनत करते हैं।
1: और क्या पहलवान चाचा हरदम चलते रहते हैं? मेहनत करना मुझसे सीखो हरदम चलना, मुझसे सीखो मिलके रहना, मुझसे सीखो आगे बढ़ना।
4: तो क्या हो सकता है?
5: क्या हो सकता है? क्या होगा?
1: सोचो सोचो सोचो।
6: दूसरी कड़ी बताइए ना बहन जी।
1: ठीक है रानो। बच्चों अब सुनो दूसरी कड़ी, यूं तो हूँ मैं बहुत ही छोटी, फिर भी कभी न थकती, एक बार चलने की ठानी फिर मैं कभी न रुकती।
7: मैं समझ गया बहन जी, सही जवाब है
8: समझ नहीं आ रहा बहन जी।
1: अच्छा अच्छा, अब सुनो तीसरी कड़ी, नहीं अकेली रहती, साथ में हरदम मेरे साथी, खाने में मुझको चावल और चीनी बहुत ही भाती।
9: मैं समझ गई बहन जी, सही जवाब है चींटी।
1: बिल्कुल ठीक मीना, शाबाश। तो मजा आया ना बच्चों?
2: जी बहन जी।
0: आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक चटपटी कहानी, गुदगुदाते गीत और मजेदार खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
10: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
1: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखे।
0: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली, टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा, ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकती हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा, ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
1: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन कुछ बातें याद रखने लायक होती हैं।
1: भगवान के साथ संबंध, the relationship with God. And friends, believe me, शायद हमने भगवान को सही अर्थ में नहीं पहचाना। Two good reasons. एक तरफ भगवान को कहते वो प्रेम का सागर है, और दूसरे तरफ आज हम उस प्रेम के सागर से सबसे ज्यादा डरते हैं। We have become God fearing rather than God loving. आप कहेंगे सर, नो, वी डोंट फियर गॉड। देन देयर इज अ सेकंड गुड रीजन व्हाई वी हैव नॉट अंडरस्टूड गॉड, बिकॉज़ फ्रेंड्स, मोर देन 80% ऑफ द वॉर दैट इज फॉट टुडे इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द नेम ऑफ गॉड। चाहे वो अमेरिका अफगानिस्तान वार हो, अमेरिका इराक वार हो, जम्मू कश्मीर प्रॉब्लम हो, गुजरात प्रॉब्लम हो, दिल्ली ब्लास्ट हो, हैव वी रियली अंडरस्टूड गॉड? किसी ने क्या खूब कहा है, काबा है घर रहीम का, काशी है घर राम का, दोनों ही बात तो एक है, झगड़ा है बस नाम का। We are fighting in the name of God and we call ourselves intellectuals. Friends, let's understand the name very clearly. Hindus मनाते हैं दिवाली और हमारे इस्लाम भाई बहने मनाते हैं रमजान, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस तो हम समझ सकते हैं। अरे दिवाली में है अली ALI तो रमजान में है राम RAM। दिवाली में है अली, रमजान में है राम। दिवाली में है दिल DIL तो रमजान में है जान ZAN। अरे उस प्रेम के सागर को दिल व जान, सिख व प्रेम से याद करना है, ना कि उसके नाम पर युद्ध करना है। वो परमात्मा के साथ वो संबंध जोड़ना जरूरी है। हमें ये समझ होनी चाहिए कि हम सभी जो आत्माएं हैं उस एक परमात्मा के संतान हैं। And that is a beautiful relationship that we can establish with the Almighty God. And this is what is very, very important. और उस परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय भी होना बहुत बहुत जरूरी है। और जब हम परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लेते हैं तो उनका जो स्नेह है, क्योंकि परमात्मा को कहते हैं वो स्नेह और प्रेम का सागर है, तो ऑटोमेटिकली वो स्नेह और प्रेम हमारे में आने लगती है और हमारा जीवन फिर से प्रेममय, सुखमय और शांतिमय बन जाता है। तो हम सबको एक ऐसा कार्य करना है जिससे समाज जो है फिर से ऐसे सुखमय बन जाए।
2: हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप त्रिवेदी, जैसा कि आई हैव टोल्ड, मैंने बताया था, द बुक गोल्डन रेज हैज बीन कंप्लीटेड। हमारी जो गोल्डन रेज की बुक है वो तो हो गई पूरी, और अब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीन लेसन के तो क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे। फोर्थ लेसन से हम आज क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है बुक के अंदर। तो इसमें सी सेक्शन है जिसमें लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30-40 वर्ड्स, और लेसन का नाम है द टेल ऑफ द विष्णुइज, लेसन नंबर 4 फ्रॉम द बुक गोल्डन रेज। ठीक है, तो सी में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 30-40 वर्ड्स। सी, वर्ड लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें वर्ड लिमिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स वर फाउंड इन द डेजर्ट ऑफ मारवाड़। मारवाड़ के रेगिस्तान में किस तरह के पेड़ और पशु पाए जाते थे? तो अब इसका आंसर हम बुक में से ही देखते हैं, क्योंकि बुक में ही सब कुछ दिया हुआ है हमारे लिए। तो ये इसका आंसर कहाँ मिल सकता है? क्वेश्चन में आई रिपीट इट अगेन, क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स वर फाउंड इन द डेजर्ट ऑफ मारवाड़। तो फर्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं सबसे पहले हम, और फर्स्ट पैराग्राफ में ओके, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है द ओनली ग्रोइंग थिंग्स आर थॉर्नी श्रब्स, अ फ्यू टप्स ऑफ शॉर्ट रफ ग्रास एंड एन ऑकेजनल स्टंटेड बेर और बबूल ट्री, बट इन क्रेडिबली यू कैन इवन इन दिस डेजर्ट कम अक्रॉस द ऑड विलेज विद ग्रूव्स ऑफ वेल ग्रोन खेजड़ी trees, this certain of the babool is the kalp वृक्ष द ट्री. ओके, ये तो अगला हिस्सा हो गया. तो ये तो यहां से तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका. और इसके अलावा यहाँ पे उसके आंसर में लिखा हुआ है एनिमल्स के लिए फुल ग्रोन कैमल कैन एंजॉय अ मिड डे सिएस्टा. यानी कैमल हो गया एक, तो इट्स शेड इट्स फॉलिएज नरिशेस. गोट हो गया, शीप हो गया, कैटल एंड कैमल. इट्स पॉड्स कैन बी मेड इनटू अ डिलीशियस करी एंड इट्स थॉर्न्स गार्ड. तो कुल मिला के ये फर्स्ट पैराग्राफ में आपका आंसर है बेर, केर, बबूल, सांगरी, कैमल और गोट, शीप, ये सब इसके आंसर यहाँ पर हो सकते हैं. तो अब अगर हम इसको जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम आंसर लिखें तो व्हाट वुड बी द आंसर. व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स ओके वर फाउंड. तो इसमें लिख सकते हैं बेर, केर, बबूल, सांगरी और सांगरी हो गया और कैमल, गोट, शीप, ब्लैक बक, चिंकारा. Kind of trees and animals were found in the desert of Marwar. ये आंसर हो जाएगा. दूसरा क्वेश्चन, who were the original residents of Marwar? देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप who को हटा करके सीधा आंसर लिख दीजिए इसमें. तो अब दूसरे पैराग्राफ में हम देखते हैं once upon a time the desert of Marwar had not yet conquered the vast territory over which it holds sway today, even though the climate was the same as it is today, the land was covered by thousands of thousands scaly trees and there was plenty of bear care. Or isme dekhte hain these plains were home by thousands of antelopes, black buck. Isme dusre paragraph mein bhi nahi hai. About 3000 years ago, holds of cattle keepers began to pour into India from West Central Asia. Some of them spread into Marwar. The Bhils resisted their encroachment, but the Tukulnakar hum kya keh sakte hain? Bhils. To answer mein aa jayega. The Bhils were the हम क्वेश्चन के साथ ही आंसर को लिखेंगे यानी हु को हम हटा देंगे एंड द आंसर वुड बी द व्हील्स वर द ओरिजिनल रेजिडेंट्स ऑफ मारवाड़. ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर हाउ वाज द वेजिटेशन ऑफ मारवाड़ अफेक्टेड. मारवाड़ की जो वनस्पति है वो किस प्रकार प्रभावित हुई. तो इसका आंसर देखते हैं हम यहाँ पे. लैंड अपीयर्ड बाउंडलेस एंड भील्स रिट्रीटेड अपवर्ड्स द अरावलीज द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं बट एज सेंचुरीज पास द लार्ज हर्ड्स वर कैटल बिगेन टू अफेक्ट द वेजिटेशन. ओके, क्या हुआ कि एज सेंचुरीज पास्ट द लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल बिगेन टू अफेक्ट द vegetation of Marwar. The seedlings and saplings were grazed down and had little chance to grow. Invaders and tribal beings found less and less to sustain themselves. ये यहाँ तक आंसर हो जाएगा आपका. फोर्थ पैराग्राफ में शुरू में दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो the question is who conquered the Bhils finally and became the ruler of whole Marwar. Isme bhi who ko hata ke hum answer likh denge. To third paragraph mein bhi kuch tha iske bare mein and told me but the invaders had horses and superior weapons and plenty pretty soon took care of the Bhils. In any case the land appeared boundless, boundless. And okay, आगे देखते हैं हम. AD saw the final conquest of the Bhils by the Rathors of Kannauj. The Rajputs now ruled the whole of Marwad. तो कह सकते हैं राठौड़ ऑफ कन्नौज या राजपूत. तो आंसर हम लिखेंगे इसका राठौड़ ऑफ कन्नौज एंड राजपूत कॉन्कर्ड द भील्स फाइनली एंड बिकेम द रूलर ऑफ द होल मारवाड़. अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट वर द नेम्स ऑफ पेरेंट्स ऑफ जंबाजी. इट वेरी इजी है. तो इसका आंसर हम शुरू करेंगे, शुरू के दो शब्द हटा देंगे. डब्ल्यू एस से क्वेश्चन शुरू होता है तो उसमें शुरू के दो वर्ड्स हटा देते हैं, व्हाट और वर. तो ये हमने हटा दिया, हमारे पास आंसर बच गया. द नेम ऑफ द नेम्स ऑफ द पेरेंट्स ऑफ जंबाजी, द नेम्स ऑफ द पेरेंट्स ऑफ जंबाजी वर. अब यहाँ पे नाम लिख देंगे हम दोनों, क्या नाम थे. एक तो फादर का नाम था वर ठाकुर लोहत एंड हिज मदर वाज हमसा देवी. ओके, तो ये इसका आंसर हो गया. सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं अभी हम. व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग एंड एनथ्रिलिंग फॉर जंबाजी. द इसमें भी दो शब्द हटा देंगे शुरू के. द मोस्ट फैसिनेटिंग एंड एनथ्रिलिंग थिंग फॉर जंबाजी वाज, यहां से आंसर आ जाएगा, वाज टू सी द फाइट बिटवीन टू वेल ग्रोन स्टैक्स. ठीक है, ये आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम, सेवेंथ क्वेश्चन. व्हाट वर द टू मेजर कमांडमेंट्स ऑफ जंबाजीज मैसेज. ठीक है, ये भी आंसर मिल जाएगा अभी हमको इजीली. तो जंबाजी के दो उपदेश क्या थे. हाँ ठीक है, ये देखिए सीधा सीधा आंसर मिल गया हमें. द टू मेजर कमांडमेंट्स ऑफ जंबाजी वर अ प्रोहिबिशन अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री और द किलिंग ऑफ एनी एनिमल. ठीक है, ये दोनों इनके मैसेजेस थे. तो ये भी हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम, विच इज सेवेंथ क्वेश्चन. 30-40 वर्ड्स में से Why were Bishnois called by this name? Okay, तो अब why का आंसर आता है because से. जहां भी why से क्वेश्चन हो कोशिश करिए कि उसका आंसर because से देना है, यानी क्यों और क्योंकि. Bishnois were called by this name because देखिए यहाँ सीधा सीधा दिखा हुआ है, because they adhered to Jambaji's 29 precepts. ठीक है, दे प्रिजर्व द ट्रीज अराउंड देयर विलेजेस एंड प्रोटेक्टेड ब्लैक बग्स चिंकारास पी फाउल एंड ऑल अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स. ठीक है, तो ये यहाँ तक आंसर हो जाएगा. लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, व्हाट इज द यूज ऑफ लाइम किलन. ये हमें लास्ट में मिलेगा. व्हाट इज द यूज ऑफ लाइम किलन, तो हम बिल्कुल लास्ट में देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है द महाराजाज मैन हु हैड नेवर इमेजिन. ओके नहीं, इससे भी पहले देखना पड़ेगा हमें. बट व्हेन द वर्कर्स गॉट, ये भी नहीं, यहाँ से हम देखते हैं. इन द सिक्स्थ ईयर ऑफ हिज रेन महाराजा अभय सिंह साजिश चुकाम टेल्स फॉर हिमसेल्फ अ ब्यूटीफुल फेमस रेड स्टोन फॉर जोधपुर. दिस नीड अ लॉट ऑफ लाइम. लाइम स्टोन इज ऑफ कोर्स ऑफ अबंडेंट इन दिस ट्रैक्स बट इट हैड टू बी क्योर्ड एंड द लाइम किलन्स वुड नीडेड अ लॉट ऑफ यू. It was not an easy, but as so, इसका आंसर अभी हम देखते हैं. आंसर है, what is the use of lime kilns is to clean the lime stone. ये इसका आंसर हो सकता है. ओके तो अब हम इसका नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया इसका सी, और अब है ओके टेंथ क्वेश्चन भी है इसमें। तो व्हाई डिड दीवान सेंड हिज मैन टू खेजड़ली। तो दीवान, अब व्हाई डिड, देखिए ये पास्ट सिंपल में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर भी पास्ट सिंपल में हो गया होगा, और व्हाई डिड हटा देंगे हम। वर्ब यहां पर सेंड है, तो सेंड की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, सेंड मतलब होता है भेजना ना, तो सेंड की सेकंड फॉर्म होती है सेंट, और थर्ड फॉर्म होती है सेंट। तो दीवान, इसका आंसर कैसे शुरू करेंगे हम, देखिए दीवान सेंट हिज मैन टू खेजड़ली बिकॉज, अभी देखते हैं हम इसका आंसर, अभी अभी अभी अभी हम देख लेते हैं यहां पर। दीवान फ्रॉम एंड ऑर्डर दैट ऑल फोर, इट वॉज नॉट एन ईजी बट वेन द वर्कर्स गॉट रेडी टू द लाइन किलन्स बी स्टार्टेड नियर खेजड़ली टू बिगिन द कंस्ट्रक्शन। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, देखिए दीवान सेंट हिज मैन टू खेजड़ली, अब इसको बिकॉज की बजाय हम ऐसे भी दे सकते हैं, टू कट डाउन द खेजड़ी ट्रीज फॉर लाइम किलन्स। ओके ये भी इसका आंसर हो सकता है। 11 क्वेश्चन भी है यहाँ पे। व्हाट प्रॉमिस डिड अभय सिंह मेक टू बिश्नोई। तो अभय सिंह प्रॉमिस्ड, ठीक है प्रॉमिस्ड कर दीजिए इसको सीधा, प्रॉमिस इसमें वर्ब है। अभय सिंह प्रॉमिस्ड टू बिश्नोई दैट, एक ताम्र पत्र दिया था ना, अभी देखिए बताते हैं आपको, दैट अभय सिंह प्रॉमिस्ड टू बिश्नोई दैट हेंसफोर्थ नो ग्रीन ट्री वुड एवर बी कट नियर बिश्नोई विलेज नोर वुड एनी एनिमल्स बी हंटेड इन दियर विसिनिटी। ओके ये इसका आंसर था। अभी एक और क्वेश्चन रह गया, लास्ट क्वेश्चन, उसको भी हम देख लेते हैं, which is 12th question. What were written on the inscription presented to Bishnois? ये सेम बात है लगभग, प्रॉमिस भी यही था और इंस्क्रिप्शन के ऊपर मैंने आंसर बताया वही था। अब चलिए डी में आ जाते हैं। डी में लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 वर्ड्स ईच। पहला क्वेश्चन है व्हाट वॉज द डिजास्टर मारवाड़ फेस्ड वेन जंबाजी वाज 25 ईयर्स ओल्ड। तो ये बहुत अच्छे से पैराग्राफ पूरा दिया हुआ है, इसको यू कैन सी देयर। हाउ डिड जंबाजीज टीचिंग अफेक्ट, मैं अभी हमको, हमने आपको जो छोटे क्वेश्चंस थे उनमें एक आइडिया दे दिया है, तो ये आपको ही करने हैं अभी। हाउ डिड जंबाजीज टीचिंग अफेक्ट द विलेजर्स, व्हाट डिड बिश्नोई सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डिड बिश्नोई save the trees, why were Abhay Singh's men frightened. Sixth question hai what made Abhay Singh visit Khejadli. Seventh question hai what do you learn from this tale. Eighth lesson hai what impressions do as get from the action of Diwan. What would you have done if you had been in place of Diwan? How did Abhay Singh console the enraged Bishnois? Tenth question hai, what message was inscribed on the copper plate? ठीक है, तो ये यहाँ पर question answers हुए। Okay, इसमें स्टूडेंट्स एक्टिविटी टू के अंदर सी में एक वो मतलब दिया हुआ है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। सी में है एक्टिविटी टू के अंदर, राइट वन वर्ड बिगिनिंग विद द लेटर गिवन फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट इन ब्रैकेट्स। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू एज एन एग्जांपल, यानी आपको ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनका वन वर्ड क्या हो सकता है वो देना है, ठीक है। मारवाड़, पहला क्वेश्चन है, मारवाड़ इज अ ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स, ठीक है। अब ब्रैकेट में दिया हुआ लैंड विद वेरी फ्यू प्लांट्स और एनिमल्स, यानी ऐसी जगह जहाँ पे बहुत कम पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं और जानवर होते हैं, तो डेजर्ट, रेगिस्तान। दूसरा क्वेश्चन है, अ कैमल कैन एंजॉय अ मिड डे एस दिया हुआ है सीएस्टा इन द, इसका आएगा शेड ऑफ बबूल ट्री। अब इसमें ब्रैकेट में दिया हुआ रेस्ट और स्लीप इन द अर्ली आफ्टरनून, तो इसका हो गया सीएस्टा। तीसरा, द कैटल वर द वर्स्ट सफरर्स इन द फर्स्ट ईयर ऑफ, डी दिया हुआ है और ब्रैकेट में दिया हुआ है, यानी जो वर्ड होगा ना हमारा वन वर्ड वो डी से होगा, और ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो हैं ड्राई और नो रेनफॉल एट ऑल, यानी बारिश नहीं होना, सूखा, तो ड्रॉट क्या होता है, ड्रॉट डी आर ओ यू जी एच टी अकाल। फोर्थ क्वेश्चन है, जंबाजी वांटेड द रीजन टू बी कवर्ड अगेन बाय एन पिर ऑफ खेजड़ी बेर केयर ईटीसी एक्सेट्रा। अब ब्रैकेट में दिया हुआ है इन सफिशियंट क्वांटिटी, यानी पर्याप्त मात्रा में, और ए से वर्ड होगा ये शुरू, तो अबंडेंट, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, शेली एंड कीट्स वर सी से जो वर्ड आएगा ब्रैकेट में खाली जगह में जो भरना है सी पोएट्स, तो बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड, एक ही समय से जो संबंधित होते हैं उसको बोलते हैं कंटेम्प्ररी, समकालीन, हिंदी में बोलते हैं समकालीन, इंग्लिश में बोलते हैं कंटेम्प्ररी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, अभय सिंह वॉन्टेड टू कंस्ट्रक्ट अ ब्यूटिफुल, फिर पी से आएगा फॉर हिमसेल्फ, जाहिर सी बात है ऑफिशियल होम, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑफिशियल होम ऑफ किंग्स, राजाओं का सरकारी निवास, तो वो पी से क्या हो सकता है पैलेस, ओके। वी शुड, सेवंथ क्वेश्चन है, वी शुड पे ड्यू रिगार्ड्स टू अवर, ए से आएगा फ्रॉम टाइम टू टाइम फोर फादर्स, अब ब्रैकेट में दिया हुआ है फोर फादर्स हु लिव्ड अ लॉन्ग टाइम अगो, तो एंसेस्टर्स, ठीक है, जो खाली जगह में हम भरेंगे वो होगा एंसेस्टर्स। आठवां क्वेश्चन है, बिश्नोईज सेलिब्रेट द मेमोरी ऑफ दियर, एम से आएगा वर्ड खाली जगह में बाई प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, तो ब्रैकेट में दिया हुआ है पर्सन्स किल्ड बिकॉज ऑफ बिलीव्स, एक विश्वास की वजह से जिन लोगों को मार दिया गया तो वो होते हैं शहीद, मार्टियर्स, ओके। तो ये भी हमारे एक सी एक्सरसाइज एक्टिविटी टू में पूरी हुई। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्टिविटी टू हैज़ बीन कम्प्लीटेड, अब हम एक्टिविटी थ्री करेंगे विच इज ग्रामर, और उसमें भी दिया हुआ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट डे ग्रामर पोर्शन करेंगे फोर्थ लेसन का, द टेल ऑफ द बिश्नोईज का, और ग्रामर पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और उसमें हम करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ओके। सो गुड बाय टू फॉर टूडे, थैंक यू।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने दोषों पर ध्यान देने की बजाय अपनी अच्छाइयों को पहचाने और उन्हें विकसित करें। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप हो रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो
1: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप और कार्यक्रम है बच्चों की दुनिया और आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। एक बार सब आप लोग अपना नाम बता दो, यहाँ से शुरू करेंगे और कौन सी क्लास में पढ़ते हो वो भी बताना। पहले आप बताओ।
2: मयंक वाधवानी क्लास फोर्थ। नीर मौलानी थर्ड पे गया हूँ।
1: आप बताओ।
3: नीर मौलानी वन पे गया।
4: केजी वन पे गया।
5: केजी वन पे।
6: नेम बीके सानिया क्लास सेवेंथ।
7: बीके राशि क्लास सेवेंथ।
1: क्लास सेवेंथ। अच्छा तो यहाँ सबसे बड़ा कौन है कौन है कौन है?
8: ये।
1: हाँ
8: ये एर्थ में, उसने सेवेंथ बोल दिया, उसने
6: अभी एर्थ में जाऊंगी। अभी
1: एर्थ में जाओगे? अभी एग्जाम्स खत्म हो गए ना, लेकिन अब एर्थ में पढ़ाई शुरू करोगे। और सबसे छोटा कौन है यहाँ पे? देव। केजी वन। अच्छा आप लोग का सबसे फेवरेट काम क्या है करने के लिए? सबसे ज्यादा क्या करने में आपको बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है जो करने में बहुत? स्कूल में, घर में खेलना कूदना, क्या करना अच्छा लगता है?
8: खेलना।
1: हाँ, पेंटिंग करना, फ्रेंड्स के साथ बातें करना, क्या अच्छा लगता है?
8: पेंटिंग।
1: पेंटिंग।
6: ड्राइंग।
1: ड्राइंग। और
8: मेहंदी।
1: मेहंदी। आपको?
8: मेरे को ड्राइंग।
1: ड्राइंग। और आपको?
5: मेरे को भी ड्राइंग।
1: ड्राइंग अच्छी लगती है। तो हाँ, आपको क्या अच्छा लगता है देव?
5: ड्राइंग।
1: ड्राइंग। किसी को डांस करना नहीं अच्छा लगता यहाँ पे?
8: मुझे।
1: क्या, कौन से गाने पे डांस करते हो?
8: बाबा के गीत।
1: कोई भी? ओके, वंडरफुल। अच्छा एक बात बताओ, लड़कियां ज्यादा इंटेलिजेंट होती है कि लड़के?
8: लड़कियां।
1: दोनों या लड़के ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं?
8: दोनों।
1: अच्छा लड़के लड़कियों में क्या डिफरेंस होता है? कोई डिफरेंस होता है लगता है आपको?
8: क्या पता?
5: बालों से।
1: हाँ अंतर है ना, उनकी लंबी चोटी और आपके शॉर्ट हेयर है ना। और कोई डिफरेंस होता है?
8: ड्रेस।
1: हाँ ड्रेस भी अलग अलग पहनते हैं।
6: नेचर
1: अलग अलग होते हैं। क्या अलग होता है? अच्छा स्पोर्ट्स कौन खेलता है, लड़के या लड़कियाँ?
8: दोनों।
1: ज्यादा अच्छा कौन खेलता है?
8: दोनों अच्छा
1: खेलते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा आप लोग अपने पेरेंट्स से सब कुछ शेयर करते हो?
8: यस।
1: और कुछ गलती करते हो फिर भी बता देते हो? हैं, फिर डांट नहीं
8: पड़ती है?
1: तो फिर डर नहीं लगता है?
8: अगर खुद बता देते हैं तो कम डांट पड़ती है।
1: हाँ और बाद में पता चलता है तो ज्यादा पड़ती है ना।
8: हाँ
1: इसलिए बता देते हो सब। कभी ऐसा झूठ नहीं बोला?
8: नहीं।
1: कभी नहीं?
8: नहीं।
1: ओके बोला है नहीं बोला। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ आप लोग सपने देखते हो? कोई सपने ड्रीम्स आती हैं आपको?
8: हाँ बिल्कुल।
1: आती है?
8: आती है।
1: कोई बताओ क्या ड्रीम आती है? क्या ड्रीम आई बताओ आपकी, कोई ड्रीम बताओ।
8: अरे हम तो उठते हैं और भूल जाते हो।
1: और किसी को याद है अपनी ड्रीम?
8: भूतिया।
1: क्या दिखता है उसमें?
8: भूत।
1: क्या कर
8: भूत दिखते मुझे?
5: भूत दिखते सब
1: हैं।
5: भूत वाली मूवी दिखता है, भूत कब आता है?
1: हाँ फिर क्या करता है भूत आता है तो?
5: चिल्लाता है
1: कैसे? ऐसा करता है? ये तो खांस, मुझे खांसी हो गई, उसको कब सिरप दे रही हूँ। बोला भूत भैया आप ठीक हो?
5: आजकल हमारा दवाई का दुकान है, हम नहीं देंगे।
1: दवाई की दुकान है तो भूत को दवाई दे दिया करो, है ना। बोला आपके पेट में दर्द है, ये लो दवाई। कैसी कैसी आवाजें निकाल रही हो आप।
5: तो पेट पर गुड़ गुड़ हो रही है, थोड़ा काला भी दे लेंगे,
1: है ना।
5: थोड़ा तो पानी भी दे दूंगा पीने के लिए।
1: पानी भी दे, कितना अच्छा है देव, देखो सेवा करता है भूत की।
5: और मेरी हाँ। सुखी दीदी।
1: और आप लोग को किसी को ड्रीम याद है अपनी? कोई सपना याद है?
4: सपना आता ही नहीं है।
1: आता नहीं? याद है आपको? हम सब सुनाएंगे। नहीं, कोई ऐसे रात को सपना दिखता है आपको कि जब सो रहे होते हो तब? जैसे मुझे पहले बचपन में सपना आता था और मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक बिल्डिंग है और मैं उससे ऐसे नीचे नीचे नीचे नीचे
6: मैं पहाड़ से गिर रही हूँ,
1: ऐसा सपना आता है अचानक से नींद खुल जाती है ना, ये मेरे साथ भी होता था बहुत।
5: मेरा तो थोड़े तो कभी कभी ऐसा भी आता है कि मैं बिल्डिंग से गिर रहा हूँ।
1: आपको भी ऐसे आता है?
5: और मैं सोता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कोई खींच रहा है।
1: फिर क्या कर?
5: फिर मैं उठ
1: फिर उठ
5: जाता फिर से सोने की कोशिश
1: करता है। फिर आपको क्या लगता है?
4: बस।
1: तो आप क्या करते हो फिर जब ऐसा लगता है कोई खींच रहा है आपको, तो क्या करते हो फिर?
5: मैं कोई भी भूतिया वो ड्रीम आते है तो मैं स्वमान बोलता हूँ।
1: क्या बोलते हो, कौन सा स्वमान?
5: मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। हाँ।
1: और आपको कोई ड्रीम आया? कभी ड्रीम आया आपको कोई? क्या
4: याद नहीं है,
1: भूल गए ना सारे? तो डर लगता है ड्रीम में या नहीं लगता कि अच्छा
4: लगता
1: ड्रीम
4: आता है? बहुत डर लगता है।
1: तो आप लोग फिर मम्मी को पापा को किसको बताते हो घर पे जब ऐसा ड्रीम आता है?
4: हम भूल ही जाते हैं।
1: भूल जाते हैं। आप किसको बताते हो? हाँ,
4: किसी को भी नहीं।
1: किसी को भी नहीं,
4: बस किसी से बात करता हूँ तो उसको बता देता।
1: अच्छा, किसी को भी बता देता। आप लोग किसको बताते हो?
4: किसी को नहीं।
1: किसी को नहीं, किसी को शेयर नहीं करते कि अरे मैंने देखा ऐसा सपना देखा आज, ऐसा नहीं बताते? नहीं, फिर डर नहीं लगता?
3: और मैंने आज सपना देखा।
1: क्या देखा?
3: भूत आ रहा है मेरे पास।
1: भूत ही आता रहता है आपके पास? इतने सारे भैया लोग हैं उनको बुलाया करो, भूत को क्यों बुलाते हो आप?
3: मैं भूत आता है तो मैं किसी को नहीं बताता।
1: किसी को नहीं बताते? ओहो। अच्छा, अभी तक का आप लोगों का बेस्ट मोमेंट क्या था? आपको सबसे ज्यादा खुशी कब हुई थी? बहुत अच्छा लगा हो जब आपको बहुत मजा आया हो, बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो।
5: मैं जब ट्री में से गया था, ट्री में से वाटर पार्क गया था।
1: अच्छा, घूमने गए थे?
5: हाँ।
1: वो बहुत अच्छा लगा था?
5: वाटर पार्क।
1: उदा पार्क,
5: वाटर पार्क, ट्री में से वाटर पार्क।
1: आप भी गए थे?
3: हाँ।
1: बहुत मजा आया था?
3: हाँ। के लिए ऐसे कूद गया मैं नदी में,
5: मजा आया।
1: हाँ।
5: से
1: आप लोगों को क्या अच्छा लगा था? मतलब ऐसे ही कभी कभी हमारी बहुत अच्छी
3: लगता है। स्लाइड तो ऐसे ही डूब गया।
1: स्लाइड में डूब गए?
5: हाँ, मैं स्लाइड में गिरा।
1: हाँ।
5: मेरी मामी ने पकड़ लिया, मजा आया था बहुत।
3: मैं पकड़ ली थी तो सीधा पानी में खिल गया।
1: सेफ्टी के साथ पानी में खेलना चाहिए, बड़ों के साथ लेके जाना चाहिए बड़ों को, है ना?
3: मैली और मैली मामी का नाम बताओ।
1: बताओ।
5: दिया मामी, खुशबू मामी।
3: दिया मामी, खुशबू मामी।
1: वेरी गुड। और आपको सबसे अच्छा क्या लगा था बताओ?
4: मेरे को मेरे को तो नहीं पता।
1: जब क्लास में अच्छे मार्क्स आए हो या आप कहीं गए हो, कुछ भी अच्छा लगा होगा?
4: लगा है।
1: क्या लगा?
4: मेरी क्लास में अच्छे नंबर आते हैं।
1: तो आपको बहुत अच्छा लगता है? टीचर्स अप्रिशिएट करते हैं आपको, बोलते हैं कि अरे वाह, ऐसा?
4: वो हमको गिफ्ट भी देते हैं।
1: हाँ, क्या मिलता है गिफ्ट में?
4: ट्रॉफी।
1: अरे वाह, ट्रॉफी लेके तो बड़ा अच्छा लगता होगा ना? चलो तालियां बजाते हैं हम सभी। वेरी गुड। आप लोगों को क्या अच्छा लगा सबसे ज्यादा?
6: जब हम माउंट आबू पहली बार आए थे
1: तब अच्छा लगा था। और क्या अच्छा लगा?
4: एग्जाम देने जाते थे तब बाबा को लेके जाते थे, बाबा एग्जाम देते थे।
1: और क्या मजा आता है करने में? और अच्छा क्या लगता है? कोई फ्रेंड से मिलना या फिर कहीं घूमने और जाना?
4: नहीं, फ्रेंड्स तो बनाते ही नहीं है।
1: नहीं, फ्रेंड्स नहीं। आप लोग, आप दोनों फ्रेंड्स हो कि नहीं? बस आप दो फ्रेंड्स हो तो एक दूसरे के साथ रहना भी तो अच्छा लगता होगा? लगता है थोड़ा कि बहुत?
6: बहुत
1: बहुत। स्माइल कर रही है। कुछ खेलना अच्छा लगता होगा? बहुत। नहीं, कुछ खेलना अच्छा नहीं लगता? क्या करना अच्छा लगता है? फिर खाना बनाना अच्छा लगता है, पढ़ाई करना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, लगता है पेंटिंग करना अच्छा लगता है। वेरी नाइस, सबको अलग अलग चीजें अच्छी लगती है ना। अच्छा तो आप में से कौन ये बताएगा कि इंडिया की राजधानी क्या है? क्या है बताओ, पता है किसी को?
4: मुझे तो पता ही नहीं है जी के।
1: बताओ भारत की राजधानी कौन सी है? अच्छा मैं हिंट देती हूँ, ठीक है? उसका नाम एन से शुरू होता है, मतलब उसके और क्या हिंट दूं मैं? चलो मैं बता ही देती हूँ, बता दो फिर उसके बाद याद रखोगे आप लोग सब लोग।
9: हाँ,
1: पक्का?
9: हाँ, पक्का।
1: इंडिया की राजधानी है नई दिल्ली।
9: ओ हाँ रे,
1: न्यू दिल्ली है ना,
9: न्यू दिल्ली,
1: दिल्ली
4: मतलब कैपिटल,
1: कैपिटल।
4: अच्छा मुझे भी पता था राजधानी, मतलब हाँ। मुझे भी पता नहीं था
1: राजधानी शब्द, नहीं पता था ना आपको।
4: हाँ,
1: कैपिटल
9: न्यू दिल्ली को पता है।
1: अच्छा हिंदी में पूछा ना मैंने, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो गए। कैपिटल को हिंदी में राजधानी। अच्छा गाना आप लोग का फेवरेट कौन सा है?
4: तेरे नादिया गाना,
9: गिरीश का
1: गा के सुनाओगे?
4: दिल ना दिया ओता, दिल ना दिया, दिल ना दिया बोलो।

0: आकेदुनिया
1: में भी अगर प्यार न किया तो क्या किया।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा गाया आप लोगों ने तो। अच्छा, आप लोग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या लगती है? जैसे मान लो अगर बड़े लोग, जैसे बच्चों में लड़ाई होती है, बड़े लोगों में होती है, होती है, तो बड़े लोगों को लड़ाई कैसे सॉल्व करनी चाहिए, क्या करना चाहिए अगर उनकी लड़ाई हो जाए तो?
2: सॉरी बोलना चाहिए।
0: क्या लगता, सॉरी बोलना चाहिए,
2: माफी मांग लेनी चाहिए
0: ना? और क्या करना चाहिए बताओ? अगर आपके पास हम आए, मेरी लड़ाई हो गई तो क्या बताओगे मुझे, कैसे हेल्प करोगे, क्या करूँ अगर मेरी लड़ाई हो गई तो?
3: नहीं पता,
0: कुछ तो पता होगा।
2: किसी बड़े को बुला लेना चाहिए।
0: हाँ, जो बड़े हैं उनको भी अपने बड़ों को बुला लेना चाहिए, है ना? और क्या करना चाहिए अगर लड़ाई हो जाए तो? हैं देव, क्या करना?
3: माफी मांगना चाहिए।
0: सॉरी करने से सॉरी माफी कर देते हैं लोग, मांग देते हैं। मैं बोलूँ सॉरी देव, मैंने आपका टॉय तोड़ दिया, आप मुझे माफ कर दोगे? कर दोगे पक्का? अरे हाँ देव तो बहुत अच्छा। और नील क्या कर सकते हैं? और अगर मान लो लड़ाई हो जाए तो, मैंने आपका कोई
3: चीज टूट गया तो उसको वापस दे देना, खरीद के वापस दे देना है।
0: खरीद के वापस देना चाहिए ना, कंपनसेट कर देना चाहिए, मतलब सोल्यूशन ढूंढ लेना चाहिए, है ना?
3: यस।
0: वेरी नाइस, वेरी वेरी इंटेलिजेंट आप लोग, तो बहुत समझदार हो। अच्छा, आप लोग का फेवरेट कार्टून कैरेक्टर कौन सा है?
3: कार्टून कैरेक्टर ऑगी
2: द कॉकरोचेस, नहीं डोरेमोन,
3: सिंचन भी।
0: आपका?
3: रुद्रा।
0: वाओ, आप लोग का?
2: डोरेमोन।
0: आपका?
3: एंजल का कार्टून देखती
0: हूँ। क्या सुपर पावर क्या होती है, मतलब वो क्या करते हैं जो आपका फेवरेट कैरेक्टर है, उसमें अच्छा क्या लगता है आपको?
3: देखिए, वो सुपर पावर्स होती है और हमेशा वो उड़ते रहते हैं।
0: ओके, और आपका डोरेमोन क्या करता है?
3: उड़ता है, सारे चीज का गैजेट होता है कि इसको कैसे सुधारे।
0: हाँ, तो क्या सुपर पावर क्या अच्छी लगती है उनकी?
3: डोरेमोन बहुत हंसाता है,
2: कॉमेडी।
0: और रुद्रा क्या करता है?
3: रुद्रा एक मैजिशियन है,
0: जादू करता है।
2: और डोरेमोन के पास हर चीज का सॉल्यूशन रहता है,
0: हर चीज का सोल्यूशन रहता है। और आपका था एंजल का तो आपने बताया। क्या बात है, बहुत सारी सुपर पावर्स आप लोगों के पास भी है, लग रहा है मुझे, है क्या? है? क्या सुपर पावर है आप लोग? अगर आपको मान लो एक विश मिले और आपको बोला जाए एक एक सुपर पावर सबको मिले, तो कौन सी सुपर पावर चाहिए आपको?
3: एंजल की
0: सुपर पावर। आपको कौन सी सुपर पावर?
2: सोल्यूशन,
0: सबको सोल्यूशन कर देंगे। आपको क्या सुपर पावर?
3: मैजिशियंस।
0: क्या जादू करोगे?
3: जादू करूंगा।
0: क्या करोगे जादू से? क्या करोगे
3: जादू से? पूरा पुरुषार्थ कर लूंगा।
0: क्या होता है पुरुषार्थ? मतलब आपको मान लो मैजिक करना है, कुछ ठीक करना है, क्या करोगे? जैसे इसको बड़ा कर दोगे, इसको छोटा कर दोगे,
3: इसको पतला कर दोगे, इसको मोटा
0: कर दोगे, किसी को क्या करोगे?
2: किसी की दुकान
0: से उड़ लोगे मैजिक से?
3: उड़ूंगा हाथ से, मुंह से आग निकालेगा।
0: हाँ, ऐसा करोगे क्या?
3: नहीं।
0: उड़ो, उड़ के कहीं भी पहुंच जाओगे ना। और आपको कोई एक सुपर पावर मिले तो कौन सी चाहिए? सुपर हीरो बन के क्या करोगे? उड़ोगे, भागोगे,
2: सबकी हेल्प,
0: लंबे हो जाओगे, क्या करोगे?
3: लंबे हो जाऊंगा, भागूंगा, उड़ भी जाओगे,
0: सब कुछ कर लोगे।
3: फ्रेश बनूंगा, फ्रेश भागूंगा,
0: कहीं भी चले जाऊंगा,
3: बहुत तेज भागूंगा, फ्रेश से,
4: और मैं भी फ्रेश से भागूंगा।
0: चलो, अपनी अपनी सुपर पावर खुद हमें बनानी है और उसके लिए ढेर सारे फ्रूट्स और

0: पर बाबर बोल रहे हो ना, सब मिल जाएंगे, ठीक है, समझे थे? चलो अभी हम अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं बाय बाय, सब लोग बोल दो बाय
1: बाय बाय बाय
0: बाय बाय
1: बाय बाय।
2: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: Best Writer Award goes to Miss Surekha.
1: अरे ये तो देख भी नहीं सकती, फिर भी उसको अवार्ड मिल गया।
0: प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस सुरेखा, दो शब्द हमारे बीच रखें। आपको कैसा लग रहा है?
2: मैंने मन की आंखों से देखा है इस दुनिया को। मेरी आंखों में रोशनी ना सही, परंतु जीवन में उजाला ही उजाला है। दिव्यांगता मेरी पहचान नहीं, मेरी काबिलियत ही मेरी पहचान है।
3: रेडियो मधुबन की कोशिश है दिव्यांग लोगों के प्रति हो सही दृष्टिकोण, काबिलियत से बनाए अपनी पहचान, पिछड़ी सोच का खत्म करे नामो निशान।
4: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।

नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार जांगड़ा, हरियाणा पुलिस सेवा सुरक्षा सहयोग। हरियाणा पुलिस व होमगार्ड आपकी सेवा में हर समय तत्पर है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: जो लोग कालजयी महापुरुषों के जीवन काल में जन्म लेते हैं और उनके घनिष्ठ संपर्क में आते हैं, वे उनकी कृपा और स्नेह पाकर धन्य हो जाते हैं। भगिनी क्रिस्टीन भी एक ऐसी ही अमेरिकन महिला थी। सन 1930 में उनके देह त्याग के बाद स्वामी जी विषयक उनकी अविस्मरणीय स्मृतियां पहली बार सन 1931 में प्रकाशित हुईं। उनके ग्रंथ का नाम रेमिनिसेंसेस ऑफ स्वामी विवेकानंद है।
1: भगिनी क्रिस्टीन द्वारा लिखे गए स्वामी जी के ये संस्मरण स्वामी जी के करीबी भक्तों के द्वारा उनके बारे में लिखित सभी रचनाओं में एक विशेष स्थान रखते हैं। इनमें विविध विषयों पर स्वामी जी के कुछ दुर्लभ विचारों का भी समावेश हो गया है। पहले उनसे परिचित हो लें।
0: भगिनी क्रिस्टीन के नाम से सुपरिचित स्वामी विवेकानंद की शिष्या कुमारी क्रिस्टीन ग्रिनस्टाइलेट का जन्म जर्मनी के नूरेबर्ग नगर में 17 अगस्त 1866 ईस्वी के दिन हुआ था। पिता फ्रेडरिक ग्रिनस्टाइलेट की 6 कन्याओं में क्रिस्टीन सबसे बड़ी थी। 3 वर्ष की आयु में वे अपने माता पिता के साथ अमेरिका आकर डेट्रॉइट में निवास करने लगी। महान विद्वान तथा स्वाधीन विचारों वाले जर्मन पिता के घर में जन्म लेने के कारण उनका बचपन बड़े सुख में बीता। परंतु 17 वर्ष की आयु में पिता का देहांत हो जाने के बाद उन्हें ही अपनी माता तथा 5 छोटी बहनों के भरण पोषण का उत्तरदायित्व वहन करना पड़ा। अर्थाभाव के कारण उन्होंने डिट्रॉइट के पब्लिक स्कूल में शिक्षक की नौकरी स्वीकार की। तब से 10 वर्षों तक उनके जीवन में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं घटी।
1: 14 फरवरी 1894 का दिवस उनके जीवन में स्मरणीय बन गया, क्योंकि इसी दिन उन्होंने अपने मित्र श्रीमती मैरी सी फंकी के साथ यूनिटेरियन चर्च में जाकर स्वामी विवेकानंद का पहली बार दर्शन किया तथा उनका व्याख्यान सुना। स्वामी जी उस बार लगभग 1.5 महीने डिट्रॉइट में रहे। इस दौरान क्रिस्टीन ने उस नगर में स्वामी जी द्वारा दिए गए सारे व्याख्यान सुने, जिससे उनके जीवन में एक महान परिवर्तन आया।
0: इसके लगभग 1.5 वर्ष बाद 6 जुलाई 1895 को उन्होंने श्रीमती फंकी के साथ सहस्त्र दीपोद्यान की यात्रा की और पुनः स्वामी जी के सानिध्य में जा पहुंची। वहां 22 जुलाई को स्वामी जी ने उन्हें ब्रह्मचर्य की दीक्षा के साथ भगिनी क्रिस्टीन नाम दिया। उन दिनों स्वामी जी आध्यात्मिक उपदेशों के अतिरिक्त बीच बीच में अपने भारत संबंधी कार्य और विशेषकर भारतीय नारियों की उन्नति के विषय में भी चर्चा किया करते थे।
1: सन 1889 ईस्वी में भगिनी निवेदिता के घर में उन्हें पुनः एक सप्ताह स्वामी जी का सानिध्य मिला। अपनी माता की मृत्यु और बहनों के अपने अपने पांवों पर खड़े हो जाने के बाद उन्होंने भारत में कार्य करने के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर देने का निश्चय किया। अतः उन्होंने अपनी शिक्षिका की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया।
0: 7 अप्रैल 1902 को वे पहली बार भारत आईं। कुछ दिन स्वामी जी का सानिध्य प्राप्त करने के बाद ही अत्यधिक गर्मी के कारण स्वामी जी ने उन्हें मायावती यानी हिमालय भेज दिया। इसके कुछ काल बाद ही स्वामी विवेकानंद ने महासमाधि ली। 1903 से उन्होंने भगिनी निवेदिता के साथ मिलकर भारतीय नारियों की शिक्षा के कार्य में आत्मनियोग किया और उनके बालिका विद्यालय में सहयोग करने लगी।
1: 12 वर्ष तक अत्यधिक परिश्रम के फलस्वरूप 1914 ईस्वी में उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और इस कारण वे अमेरिका लौट गईं। इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाने के कारण उन्होंने अपना भारतवर्ष लौटना स्थगित कर दिया। वे वहीं रहकर भारतीय संस्कृति तथा वेदांत पर व्याख्यान देने लगे। 10 वर्ष बाद 1924 ईस्वी में फिर भारत लौटकर विद्यालय के कार्य में सहायता करने लगे।
0: 1926-27 की गर्मियों का मौसम उन्होंने अल्मोड़ा में बिताया। उसी समय उन्होंने अपनी स्वामी जी विषयक स्मृति लिपिबद्ध करनी आरंभ की। खराब स्वास्थ्य के कारण 1927 में वे एक बार पुनः अमेरिका गईं और 27 मार्च 1930 को न्यूयॉर्क में उन्होंने देह त्याग कर दिया। वे अत्यंत विनम्र तथा सात्विक स्वभाव की महिला थीं। स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित लगभग 700 उपलब्ध पत्रों में से 71 पत्र उन्हीं के नाम लिखे हुए हैं। इसी से स्वामी जी के साथ उनकी घनिष्ठता का परिचय मिल जाता है।
1: आइए अब हम भगिनी क्रिस्टीन से उनके संस्मरण सुने।
2: काल के दीर्घ अंतराल के बाद बीच बीच में एक ऐसा व्यक्ति हमारे इस भूमंडल पर आ पहुंचता है जो असंदिग्ध रूप से किसी अन्य लोक से आया हुआ एक पर्यटक होता है, जो इस दुखपूर्ण संसार में भी अपने उस सुदूरवर्ती लोक की महिमा, शक्ति तथा दीप्ति का कुछ अंश ले आता है। इस मर्द लोक का ना होकर भी वो मनुष्यों के बीच विचरता है। वो मानो एक तीर्थ यात्री है, एक अजनबी जो केवल एक रात ही यहाँ ठहरता है। वो अपने आसपास के लोगों के जीवन से स्वयं को संबंध पाता है, उनके हर्ष विषाद का भागीदार बनता है, उनके साथ सुखी और दुखी भी होता है। परंतु इन सब के बीच वो ये कभी नहीं भूलता कि वो कौन है, कहां से आया है और उसके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। अपने दायित्व की बात उसे कभी विस्मृत नहीं होती। उसे सदैव स्मरण रहता है कि वो महान तेजोमय तथा महिमामय आत्मा है। ऐसे एक मनुष्य को मैंने देखा है, उसकी वाणी सुनी है, उसके प्रति मैंने अपनी श्रद्धा निवेदित की है। उसी के चरणों में झुककर मैंने अपनी आत्मा का अनुराग अर्पित किया।
1: पश्चिम में पली बढ़ी क्रिस्टीन स्वामी जी से बेहद प्रभावित हुई थी।
2: परंतु स्वामी विवेकानंद की किसी से कोई तुलना नहीं की जा सकती थी। वे एक अलग ही श्रेणी के थे। वे एक ऐसा ज्योतिर्मय विभूति थे जो एक सुनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए उच्चतर मंडल से इस मर्त लोक में अवतीर्ण हुए थे। काश हमें यह अनुमान होता कि वे इस पृथ्वी पर अधिक काल तक नहीं ठहरेंगे।
1: क्रिस्टीन ने स्वामी जी से पहली मुलाकात के बारे में लिखा है,
2: 1894 ईस्वी की फरवरी की एक सर्द रात को, जब लगभग अनिच्छा पूर्वक ही मैं डिट्रॉयट के यूनिटेरियन चर्च में एक व्याख्यान सुनने के लिए निकली, तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसा कुछ करने जा रही हूँ जो मेरे जीवन की धारा को पूरी तरह बदल कर रख देगा और जिसका इतना गहरा प्रभाव होगा। मैं बड़ी अनिच्छा पूर्वक और केवल अपने मित्र श्रीमती मैरी सी फंकी के अनुरोध के कारण ही भारत से आए एक सन्यासी विवेकानंद का वो विशेष व्याख्यान सुनने गई। फंकी अपने सुंदर आशावादी स्वभाव के कारण अब भी अपनी इस भ्रांति को पाले हुए थी और विश्वास करती थी कि किसी दिन उसे कुछ मिल जाएगा। हम भारत से आगत व्यक्ति को सुनने गए। 5 मिनट सुनने के बाद ही हमारी समझ में आ गया कि हमें वो स्पर्श मणि मिल गई है जिसकी हम दीर्घ काल से तलाश कर रही थी। एक साथ ही हम दोनों के मुख से योद्गार निकल पड़ा, यदि हम इससे वंचित रह जाती तो।
0: जिन लोगों ने स्वामी विवेकानंद के बाहरी रूप के विषय में काफी कुछ सुन रखा है, उन्हें यह जानकर विचित्र लगेगा कि जो पहली चीज लोगों पर अमिट छाप छोड़ती थी वो उनका बाहरी रूप नहीं था। पश्चिम देशों में बहुधा कृशकाय तपस्वी जैसे व्यक्ति को ही आध्यात्मिकता का पर्याय माना जाता है, पर मंच पर कदम रखने वाला उस सशक्त ओजस्वी व्यक्ति वैसा बिल्कुल भी ना था। एक दुबला पतला संत वहां सबकी समझ में आता है, परंतु एक शक्तिशाली संत के बारे में भला किसने सुना था। इस रहस्यमय व्यक्ति से निस्तृत होने वाली शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसके समक्ष मानो सभी सहमे हुए थे। उनकी शक्ति अभिभूत कर देने वाली थी, सामने आने वाली हर चीज को बहाकर ले जाने वाली थी। उन प्रारंभिक अविस्मरणीय क्षणों में इसका बोध हो गया। बाद में हमने इस शक्ति को सक्रिय रूप में भी देखा।
1: युवा दिव्य कांति भारतीय संत ने अमेरिका में जितने भी भाषण दिए, उन भाषणों में शब्दों का ताना बाना, स्वरों की संगीतमयता ने सबको मोह लिया।
2: सुदूर भारत से आए ये धर्म प्रचारक मुश्किल से 30 वर्ष के रहे होंगे। कालातीत यौवन के प्रतीक होकर भी मानो वे प्राचीन काल के एक ज्ञान रथ थे। जीवन में पहली बार हमें भारत का युगों पुराना संदेश आत्मतत्व की बातें सुनने को मिली। वे मानो एक सुंदर कश्मीरी शॉल का निर्माण करते हुए चमकीले तथा रंग बिरंगे ताने बाने बुनते रहे और श्रोतागण मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते रहे। बीच में कहीं वे उपहास का धागा डाल देते तो कहीं त्रासदी का, और उसमें बहुत से धागे गहन चिंतन, आकांक्षाओं, उद्दात आदर्शवाद तथा परम ज्ञान के भी हुआ करते। पर इन सभी तारों के बीच भारत की परम पवित्र शिक्षा मानव का दिव्यत्व और उसमें अंतर्निहित शाश्वत पूर्णता का बाना विद्यमान रहता।
0: स्वामी जी ने लोगों को आत्मसम्मान से जीने का पाठ पढ़ाया। उनके उदाहरण बड़े सटीक होते थे।
2: हम लोग उस व्यक्ति के समान हैं जो सोने की खान के ऊपर रहते हुए भी स्वयं को निर्धन समझता था। हम लोग उस सिंह के समान हैं जो भेड़ों के बीच पैदा हुआ था और स्वयं को भेड़ ही समझता था। अपने स्वरूप से बेखबर होने के कारण भेड़िए के आने पर वो भय से मिमियाने लगता था। फिर एक दिन एक सिंह आया और उसे भेड़ों के साथ मिमियाता हुआ देखकर उसे पुकार कर बोला, तुम भेड़ नहीं सिंह हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। उस सिंह को तत्काल अपने स्वरूप का बोध हो गया और वो भी जोरों से गर्जन करने लगा।
1: भारत की शाश्वत वाणी को उन्होंने नई दुनिया के समक्ष रखा। ऐसे उद्गारों ने उनके लिए एक नया द्वार खोल दिया।
2: उन्हें सुनने वाले हम में से भला कौन उन्हें कभी भूल सकेगा। जब हमने भारत का ये प्राचीन संदेश सुना तो हमारे मनों में आत्मा की कैसी सुप्त स्मृतियां जाग उठेंगी। हे अमृत के पुत्रों सुनो, हे दिव्य धाम के निवासियों तुम लोग भी सुनो। मैंने उन अनादि पुरुष को जान लिया है जिन्हें जानकर ही मृत्यु के चक्र से छूटना संभव है।
0: स्वामी जी जब बोलते थे तो उनकी सम्मोहिनी वाचन शैली मानो सभी को मन

0: हम में से कुछ को पता चला कि हमारे मन प्राण ही रूपांतरित हो चुके हैं। अपार होती है गुरु की महिमा।
1: उनके भाषणों में अपार भीड़ होती। लोग रामायण और महाभारत की कहानियां बड़े चाव से सुनते थे।
0: यूनिटेरियन चर्च में उनका पहला व्याख्यान सुनने वाले उनका दूसरा और तीसरा व्याख्यान भी सुनने आए और वे लोग अपने साथ दूसरों को भी कहकर लाए, चलो उस अद्भुत व्यक्ति की बातें सुनो। वे पहले सुने हुए किसी भी व्यक्ति के समान नहीं है और वे तब तक आते रहे जब तक कि बैठने की जगह ही नहीं बची। वे लोग कमरे में भर गए, गलियारों में खड़े रहे, खिड़कियों से झांकते रहे। स्वामी जी ने बारंबार अपना संदेश दिया, कभी एक रूप में तो कभी अन्य रूप में। कभी उन्होंने रामायण तथा महाभारत की कहानियों के माध्यम से समझाया तो कभी पुराणों तथा दंत कथाओं के माध्यम से, उपनिषदों से, तो वे निरंतर उद्धरण देते रहते थे।
1: उनकी आवाज में जादुई शक्ति थी। भारत के बारे में वे पूरे आवेग के साथ बोलते थे।
0: पहले वे मूल पाठ की आवृत्ति करते और उसके बाद मुक्त काव्य में उसका अनुवाद करते। उनके कथित शब्दों का विलक्षण प्रभाव होता और श्लोकावृत्ति तो और भी अधिक प्रभाव उत्पादक होती। अतल गहराइयां आलोकित होती और जब उसकी लय कानों में पड़ती तो श्रोतागण सांस रोके मुक्त बैठे रह जाते। मुझे लगता है कि जब हमने पहली बार उनकी उस अद्भुत आवाज से भारतवर्ष शब्द सुना, तभी से हमारे हृदय में भारत के प्रति प्रेम प्रकट हुआ। ये बड़ा ही आश्चर्यजनक लगता है कि कैसे 5 अक्षरों के इस छोटे से शब्द में इतना कुछ समा सकता है। उसमें प्रेम था, आवेग था, गर्व था, आकुलता थी, श्रद्धा थी, विषाद था, वीरता थी, ग्रह विरह था तथा सर्वोपरि था गहन प्रेम। कोई भी ग्रंथ किसी में ऐसे भाव उत्पन्न नहीं कर पाता। उनके शब्दों में श्रोताओं के मन में प्रेम संचरित करने की जादुई शक्ति थी।
2: कुछ व्यवसायी स्वामी जी को भाषण देने के लिए अनुबंधित करते थे, वे उनका शोषण करने लगे।
0: स्वामी जी छुटकारा पाने के लिए व्याकुल हो उठे। धर्म महासभा के बाद स्वामी जी ने पॉन्स लेक्चर ब्यूरो नामक कंपनी की व्यवस्था में पूरे अमेरिका का दौरा करते हुए व्याख्यान देने का अनुबंध किया। प्रत्येक नए स्थान की समिति को चयन हेतु व्याख्यान के कई विषय दे दिए जाते, यथा मनुष्य की दिव्यता, भारत की रीति रिवाज, भारतीय नारियां, हमारी विरासत आदि। जब कभी ऐसा नगर होता जो बौद्धिक गतिविधियों से कटा हुआ है या खनन उद्योग से जुड़ा हुआ हो तो बिना किसी अपवाद के वहां सबसे दुर्बोध्य विषय चुने जाते। उन्होंने ऐसे श्रोताओं के समक्ष बोलने की कठिनाई बताई जिनके चेहरे पर समझ की कोई झलक नहीं दिखाई पड़ती थी। कुछ सप्ताहों तक इस प्रकार हर शाम व्याख्यान देने और हर रात यात्रा करने के बाद ये कष्टकर बंधन उनके लिए असह्य हो उठा। डिट्रॉइट में स्वामी जी के प्रति स्नेह रखने वाले लोगों से स्वामी जी ने अनुरोध किया कि मुझे इनसे छुड़ाओ। वे लोग प्रभावशाली थे अतः उन्हें उस अनुबंध से छुटकारा दिलाने में सफल।

0: हुए, तथापि इससे बड़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ी जो उन्हें अनुचित लगी।
1: स्वामी जी का एकमात्र उद्देश्य था धन एकत्रित कर भारत का कल्याण करना। इस कार्य को वे पूजा समझकर करते थे।
0: उन्होंने आशा की थी कि इस प्रकार अर्जित धन से वे भारत में अपना कार्य आरंभ कर सकेंगे, परंतु उनके लिए इस सार्वजनिक कार्य में उतरने का यही एकमात्र कारण न था जो भाव उन्हें निरंतर आगे की ओर प्रेरित कर रहा था और जो कभी उनके मानस पटल से अदृश्य नहीं हुआ था। वो था अपने गुरुदेव द्वारा उन्हें सौंपा गया कार्यभार। उन्हें एक कार्य संपन्न करना था, एक संदेश था जो लोगों तक पहुंचाना था, एक पवित्र संदेश।
2: स्वामी जी आगे और कार्य करना चाहते थे जिसके लिए उन्हें अमेरिका में कुछ अनुयायियों की जरूरत थी। वे उन्हें तैयार करने में जुटे थे।
0: डिट्रॉयट पहुंचते उनकी समझ में आ गया कि इस प्रकार दौरे करते हुए व्याख्यान देना वो पद्धति नहीं है और जो कार्य उन्हें उनके उद्देश्य की ओर अग्रसर कराने वाला नहीं था उसके लिए वे एक क्षण भी बर्बाद करने को तैयार नहीं थे। डिट्रॉयट में उन्होंने 6 सप्ताह बिताए। उनका मन अपने लक्ष्य पर स्थिर था और समय समय पर वे व्याख्यान देते। हमने उनके व्याख्यान सुनने का कोई भी अवसर नहीं खोया। हमने बारंबार आत्मा का वो अद्भुत सुसमाचार सुना। हमने बारंबार और विभिन्न दृष्टिकोणों से भारत की कथाएं सुनी। हम समझ गए थे कि हमें अपने आचार्य मिल गए हैं। गुरु शब्द से उस समय हम परिचित नहीं थे और ना ही व्यक्तिगत रूप से हमारी उनसे कभी भेंट हुई थी, परंतु उससे क्या होता है। हमने जो कुछ सीखा था उसी को आत्मसात करने में वर्षों लगेंगे और हमें विश्वास था तब आचार्य देव हमें पुनः किसी प्रकार कहीं ना कहीं आगे की सीख देंगे।
1: सहस्त्र द्वीपों ध्यान में रहकर उन्होंने अपना लक्ष्य पूरा किया। कुछ शिष्य मिल गए।
0: हमने जैसी आशा की थी उसके पूर्व ही ऐसा हो गया, क्योंकि इसके 1 साल से थोड़े ही अधिक काल बाद हमें सहस्त्र द्वीपों उद्यान के एक ही मकान में उनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद के अद्भुत सप्ताहों के बारे में लिख पाना बड़ा कठिन है। उन दिनों हम चेतना की जिस अवस्था में निवास करती थी, यदि कोई उसी अवस्था में अपने मन को ले जा सके तभी वो हमारी उस अनुभूति को समझने की आशा कर सकता है। हम आनंद से परिपूर्ण थे। उस समय हम नहीं जानती थी कि हम उनके आलोक की परिधि में निवास कर रही हैं। प्रेरणा के पंखों के सहारे वे हमें उन ऊंचाइयों पर ले गए थे जहां उनका सहज आवास था। बाद में तो उन्हें संदेश को प्रचारित करने तथा अपने लक्ष्य को पूरा करने का पथ मिल गया था, क्योंकि आचार्य देव को अपने शिष्य मिल गए थे।
2: वे बहुत अच्छे वक्ता थे और चाहते थे कि उनके शिष्य भी उनकी तरह भाषण देने में सक्षम हो। वे उन्हें सिखाते भी थे।
0: हम लोगों को मुक्ति का पथ दिखा देना, हमें मुक्त कर देना, यही उनकी पहली प्रबल आकांक्षा थी। उन्होंने बड़े ही मार्मिक भाव के साथ कहा, आहा, यदि मैं तुम लोगों को स्पर्श मात्र से मुक्त कर पाता, उनकी दूसरी आकांक्षा थी जो इतनी प्रत्यक्ष ना होकर भी फल्गुन धारा के समान भीतर ही भीतर प्रवाहित होती रहती थी। इस टोली को अपने अमेरिका के कार्य हेतु गढ़ लेना, वे कहते, ये संदेश भारत में भारतवासियों तथा अमेरिका में अमरीकियों द्वारा प्रचारित होना चाहिए। अपने उस छोटे से बरामदे में जहाँ से पेड़ों की चोटियाँ तथा सुंदर सेंट लॉरेंस नदी दिख पड़ती थी, वे प्रायः हमसे व्याख्यान देने का अनुरोध किया करते थे। उन्होंने इसका उद्देश्य बताते हुए कहा था कि इससे हम स्वयं ही चिंतन करना सीख जाएंगे। शायद वे जानते थे कि विश्व के श्रेष्ठ वक्ताओं में से एक माने जाने वाले स्वयं उन्हीं की उपस्थिति में यदि हम अपनी मंच भीति को जीत सकें तो फिर दुनिया का कोई भी मंच हमें भयभीत नहीं कर सकेगा। ये एक बड़ी कठिन परीक्षा हुआ करती थी। वे एक एक कर सबसे प्रयास करने को कहते। बचने का कोई उपाय नहीं था। शायद इसी कारण कोई कोई तो इस घनिष्ठ शांति गोष्ठी में उपस्थित ही नहीं होते थे।
2: स्वामी जी के शिष्यों के मन में हजारों प्रश्न आते थे और स्वामी जी भी उन्हें प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित करते, उनकी झिझक मिटाते थे।
0: ऊपर के बरामदे में होने वाले इस निशा सम्मेलन की कोई बंदी बनाई व्यवस्था न थी। वे एक किनारे द्वार के पास एक बड़ी कुर्सी पर बैठते, कभी कभी वे गहरे ध्यान में डूब जाते। उस समय हम लोग भी ध्यान करते अथवा निशब्द बैठे रहते। कभी कभी ये भाव घंटों चलता और धीरे धीरे हम सभी उठकर चले जाते, क्योंकि हमें पता था कि ऐसी अवस्था के बाद उनमें बोलने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी, या फिर थोड़े समय बाद ही उनका ध्यान भंग हो जाता और उसके बाद वे हमें प्रश्न पूछने को उत्साहित करते तथा बहुधा हम ही में से किसी एक को उसका उत्तर देने को कहते। हमारा उत्तर चाहे कितना भी गलत हो, वे हमें उसी में भटकने देते जब तक वे समस्या सत्य के निकट ना पहुंच जाते, और तब कुछ ही शब्दों में वो समस्या का समाधान कर देते। यही उनके शिक्षा दान की निश्चित प्रणाली, और इस प्रकार उन्होंने हमें बड़े धैर्य और सौम्यता के साथ प्रशिक्षित किया। यह एक आशीर्वाद के समान था। बाद में भारत लौटने के बाद उन्होंने आशा की थी कि मैं हिमालय में कोई स्थान लेकर अपने प्राच्य तथा पाश्चात्य शिष्यों को एक साथ प्रशिक्षण देंगे।
1: सहस्र द्वीपोद्यान में उन्हें कुछ अनुयायी मिले जिनके अवदान को हम भुला नहीं सकते।
0: उस ग्रीष्मकाल में सहस्र द्वीपोद्यान में उनके आकर्षण से खींचे चले आए लोगों का होदल बड़ा विचित्र था। अतः इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि सर्वप्रथम वहां पहुंचने पर हम जिस दुकानदार से रास्ता पूछने गई थी उसने कहा था, हाँ कुछ विचित्र से लोग उस पहाड़ी पर रहते हैं और उनमें एक विदेशी से दिखने वाले सज्जन भी हैं। उनमें कुमारी एस ई वॉल्डो, कुमारी रूथ एलिस और डॉक्टर वाइट थे। दीर्घ काल तक व्याख्यानों को सुनने के कारण कुमारी वॉल्डो में पूरे व्याख्यान को कुछ ही वाक्यों में संक्षेपित करने की क्षमता आ गई थी। देववाणी ग्रंथ उसी का अवदान है। उसी वर्ष इंग्लैंड जाते समय स्वामी जी ने कुछ कक्षाएं चलाने का उत्तरदायित्व कुमारी वॉल्डो को ही सौंपा था, और लौट आने के बाद भी उनकी सहायता उनके लिए बहुमूल्य हो गई थी। स्वामी जी ने पातंजलि योग सूत्रों पर अपनी व्याख्या को बोलकर ही उनसे लिखवाया था। फिर उन्होंने ही कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग ग्रंथों की प्रकाशन में भी सहायता की थी। उसकी सुलझी हुई प्रशिक्षण बुद्धि तथा अटल निष्ठा ने उन्हें स्वामी जी का एक आदर्श सहकारी बना दिया था। वे जानते थे कि किस प्रकार शिक्षार्थी के मन को उद्दीप्त करके स्वाधीन चिंतन में लगाया जाए। यदि कभी हम अपना कोई विचार या दृष्टिगोचर लेकर उनके पास अनुमोदन के लिए जाकर कहते, मुझे ये इस प्रकार और ऐसा प्रतीत होता है, तो वे एक ऐसे सुर में हाँ कहते कि हमें उस विषय पर और भी सोचने का उत्साह मिलता। कुछ और भी सुलझे हुए विचार लेकर जब हम दोबारा उनके पास जाते तो पुनः वही हाँ हमें और भी अधिक सोचने को प्रेरित करता। संभवतः तीसरी बार जब हमारी चिंतन की शक्ति उस पथ पर और अग्रसर होने में असमर्थ हो जाती, तब वे हमारी भूल की ओर इंगित कर देते, और वो भूल होती हमारी पाश्चात्य चिंतन प्रणाली के फलस्वरूप।
1: आपने भगिनी क्रिस्टीन के संस्मरण सुने। आगे हम उनसे स्वामी जी के बारे में कुछ और अनजानी बातें सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो 107.8 FM। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए आज बात करते हैं 16 जून की। कुछ खास बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा आज। विशेष महमूद अली खां चौधरी, ब्रह्म प्रकाश, डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा, हेमंत कुमार, अकलक मोहम्मद खान शहर और मिथुन चक्रवर्ती CM पुनाचा, सुरेश कांत, रोहित श्रीवास्तव, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही चित्तरंजन दास, प्रफुल्ल चंद राय, चास कोरिया, चंद्रशेखर वैद्य, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज के इस प्रोग्राम में कुछ खास बातें आपसे शेयर करना चाहूँ। आइए एक सुंदर विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जैसे कि हमेशा हम लोग करते हैं। सच्चे प्रेम में हमेशा समर्पण और साझेदारी रहती है। अगर सच्चा प्रेम है तो समर्पण भी होगा और साझेदारी भी रहती है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

से परी ये सुबह मस्ती भरी यूं हंसी जैसे परी। किस्मत को शायद याद आ गए हम, किस्मत को शायद।

0: आपको भी बैंक के नाम से SMS आ रहे हैं। इन SMS में फिशिंग लिंक मिल रहे हैं, जो एक क्लिक से .apk फाइल को आपके फोन में डाउनलोड कर देते हैं। ऐसी फाइलें आपके फोन का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों को दे देती है, यहाँ तक कि वो आपका बैंक OTP भी देख सकते हैं। याद रखें, कभी भी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और किसी भी साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पर करें। सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त को फॉलो करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए बात करते हैं आज विशेष हेमंत कुमार के बारे में। जी हाँ, हेमंत कुमार के बारे में एक खूबसूरत बताना चाहूँगा। हिंदी जगत के महान गायक और संगीतकार थे वे। हेमंत दा के नाम से बहुत ही पॉपुलर हुए थे, जिनके गीत आज भी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। बंगाल और हिंदी फिल्म संगीत की जानी मानी शख्सियत हेमंत कुमार का सिर्फ मौसिकी के माहिर थे, बल्कि बेहतरीन फिल्म निर्माता भी थे। बंगाल भाषा के अनेक गैर फिल्मी एल्बम के सुर देने वाले हेमंत कुमार ने कई मशहूर हिंदी गीतों को भी अपनी मधुर आवाज दी। इसके साथ ही इन्होंने एक ऐसी फिल्म का निर्माण भी किया जिसे राष्ट्रपति स्वर्ण पदक से नवाजा। फिल्म समीक्षक ज्योति वेंकटेश के मुताबिक हेमंत कुमार अपने दौर के सबसे प्रतिभाशाली फनकारों में एक थे। संगीत की नब्ज का मिजाज समझने में दक्ष इस कलाकार को रविंद्र संगीत का विशेषज्ञ भी माना जाता है। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं, हेमंत कुमार जी के बारे में। अभी आपके लिए, आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कराते रहो।
2: बोली आवाज के मालिक बड़े ही हुनरमंद कलाकार हेमंत मुखर्जी की, जिन्हें हम हेमंत कुमार के नाम से जानते हैं। इनका जन्म हुआ 16 जून सन 1920 में शहर वाराणसी। हालांकि इनका परिवार दरअसल बाहरू इलाके से है, लेकिन बाद में कोलकाता चला आया। कोलकाता में इन्होंने आगे की पढ़ाई की। उसके बाद भवानीपुर के मित्र इंस्टीट्यूशन स्कूल में इन्होंने आगे की पढ़ाई की। यहीं पे इनकी मुलाकात हुई सुभाष मुखोपाध्याय से। सुभाष मुखोपाध्याय भी आगे जाकर एक बहुत बड़े बंगाली कवि बने।
3: गानन आया बजानन आया, दिल भर को अपना बनानन आया। हाँ।
2: आगे जाकर हेमंत कुमार साहब ने सोचा कि ये जादवपुर के बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनेंगे और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे। लेकिन ये बात समझ में आ गई थी, है तो मन में कलाकारी, तो फिर इंजीनियरिंग कैसे पूरी होगी। लिहाजा इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और फिर संगीत में ही अपना पूरा मन लगा दिया। हालांकि इनके पिता की तरफ से जरा मुखालफत तो थी, लेकिन फिर भी इन्होंने संगीत का दामन न छोड़ा।

0: जमाना।
1: इन्होंने कुछ लघु कथाएं और भी लिखी जो कि उस जमाने की बांग्ला पत्रिका देश में प्रकाशित हुई। हेमंत कुमार ने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया ऑल इंडिया रेडियो के लिए सन 1935 में। अपने जमाने के मशहूर साजिंदे शैलेश दत्ता गुप्ता का भी असर इन पे रहा। इनके ऊपर एक बहुत बड़े गायक पंकज मलिक का भी गहरा असर था। लेकिन इस बात में भी कोई दोराय नहीं कि इन्होंने शास्त्रीय संगीत का विधिवत प्रशिक्षण लिया फणीभूषण बैनर्जी से।

एक तरफ संगीत की शिक्षा चल रही थी तो दूसरी तरफ इन्होंने कोलंबिया लेबल के लिए कुछ गाने रिकॉर्ड किए और उसके बाद ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया के लिए भी। इनका पहला हिंदी गाना था कितना दुख भुलाया तुमने और ओ प्रीत निभाने वाली, जो कि सन 1940 में दुनिया के सामने आया था।

इनकी पहली बंगाली फिल्म थी निमाई संन्यास, जिसका संगीत हरि प्रसन्ना दास ने दिया था। पर अभी भी यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि हेमंत कुमार महानतम गायकों में से एक बनेंगे और सबसे जबरदस्त संगीतकारों की फहरिस्त में इनका नाम शामिल होगा। बतौर संगीतकार इनकी पहली बांग्ला फिल्म रही अभियात्री, जो कि सन 1947 में आई। ये 40 की दहाई तक आते आते इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन का हिस्सा बन गए और जमाने में इप्टा के एक और बड़े जबरदस्त मेंबर सलिल चौधरी के साथ इनकी गहरी दोस्ती हुई और सलिल चौधरी भी आगे जाकर महानतम संगीतकारों में से एक बने। इन दोनों ने साथ में काफी काम किया, पर धीरे धीरे गायकी के साथ हेमंत कुमार साहब के संगीत निर्देशन की भी खूब चर्चा होने लगी। इनके एक डायरेक्टर मित्र रहे हेमेन गुप्ता, उन्होंने जब मुंबई की तरफ रुख किया तो हेमंत कुमार को भी बुला लिया। हेमंत मुखर्जी ने फिल्म आनंद मठ के लिए संगीत दिया। आनंद मठ का संगीत बड़ा मकबूल हुआ।

उसमें गाया लता मंगेशकर जी का गाना वंदे मातरम आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर है, पर अभी भी बतौर प्लेबैक सिंगर इन्हें बड़ी मकबूलियत हासिल नहीं हुई थी। और तब महान संगीतकार एस डी बर्मन ने इन्हें मौका दिया फिल्म जाल में। गाना था ये रात ये चांदनी फिर कहां। हाउस नंबर 44 का गाना चुप है धरती चुप है चांद सितारे और 16 साल फिल्म का है अपना दिल तो आवारा। इन गानों ने हेमंत कुमार को सबसे मुख्तलिफ प्लेबैक सिंगर बना दिया।

जिन्होंने फिल्म नागिन का संगीत दिया और नागिन की बीन आज भी बड़ी मशहूर है। इसी बीच इनके असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए रवि शंकर शर्मा, जो आगे जाकर बहुत बड़े संगीतकार बने जिन्हें हम रवि के नाम से जानते हैं। नागिन फिल्म के लिए इन्हें फिल्मफेयर की तरफ से बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी दिया गया। इन्होंने गुरुदत्त के लिए प्लेबैक सिंगिंग की तो बंगाली सिनेमा के महानायक उत्तम कुमार 50 की दहाई आते आते इन्होंने हेमंत बेला प्रोडक्शंस के नाम से एक मूवी प्रोडक्शन कंपनी शुरू की और फिल्म बनाई नील आकाशेर नीचे। इस फिल्म को प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल से नवाजा गया। उसके बाद 20 साल बाद कोहरा, बीवी और मकान, फरार, राहगीर और खामोशी बड़ी जबरदस्त फिल्में साबित हुई। एक तरफ बांग्ला सिनेमा तो दूसरी तरफ हिंदी सिनेमा, दोनों ही जगह इनका खूब नाम हुआ।

इनके परिवार की तरफ रुख करें तो पता चलता है ये तीन भाई और एक बहन रहे। बहन का नाम नीलिमा, इनके बड़े भाई का नाम तारा ज्योति जो कि बांग्ला के लघु कथा लेखक रहे। इनके सबसे छोटे भाई अमल मुखर्जी जो गाना भी गाया करते थे और संगीत निर्देशन भी दिया करते थे। हेमंत कुमार साहब का विवाह हुआ बेला मुखर्जी से जो कि एक बड़ी जबरदस्त बंगाली गायिका रहीं। पर शादी के बाद बेला मुखर्जी ने परिवार को संभाला। इस शादी से इन्हें दो बच्चे हुए, बेटा जयंत और बेटी रानू। आगे जाकर बहुत ही जबरदस्त हीरोइन मौसमी चटर्जी इनकी बहू बनी। इन्होंने एक तरफ फिल्में प्रोड्यूस करी, फिल्मों का संगीत भी दिया और बतौर प्लेबैक सिंगर भी बड़ी ख्याति प्राप्त करी।

0: वहां से वापस आने के बाद हेमंत कुमार साहब को दिल का दौरा पड़ा। तारीख 26 सितंबर साल सन 1989 और तब इनका इंतकाल हो गया। इन्हें फिल्मफेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड से नवाजा गया तो नेशनल फिल्म अवार्ड से भी। भारतीय सिनेमा के इतिहास में हेमंत मुखर्जी यानी कि हेमंत कुमार साहब का नाम सदैव गर्व से लिया जाएगा।
1: तो ये थी हेमंत कुमार की कहानी आपके लिए। आगे आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपके नाम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
3: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: सपोज एक स्टूडेंट है जिसका एक महीने के बाद एग्जाम्स हैं, वो आज बैठकर ना प्रिपरेशन करता है, ही इज प्लानिंग ऑल हिज लेसंस। जब प्लान करता है तो उसको समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की 10th चैप्टर इज वेरी वेरी टफ, तो कैसा प्रोग्रामिंग करेगा? हे भगवान, सारे के सारे क्वेश्चंस 9 चैप्टर में से आए, ओ गॉड, लेट नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन कम फ्रॉम द 10th चैप्टर, टक, फर्स्ट प्रोग्रामिंग। और ये एक महीने तक ये स्टूडेंट क्या प्रोग्रामिंग देता है? If there is any question from the 10th chapter, I will be in trouble, I'll be in trouble, I'll be in trouble. एक महीने के बाद जैसे ये विद्यार्थी examination hall में जाता है, as soon as he gets a question paper, he is least bit bothered. How many questions have come from 9 chapters? He is trying to look out whether there is any question from the 10th chapter or not. और बस उनके आँखों के सामने ये question from the 10th chapter दिखाई देता है। एक महीने से क्या programming कर रहा है? If there is any question from the 10th chapter, I'll be in trouble, I'll be in trouble, I'll be in trouble. Automatically, he's in trouble. और इतना stressed up हो जाता है, सारा पसीने पसीने छूटने लगते हैं, आंखों के सामने blackout हो जाता है, और जो 9 chapter में से पढ़ा, वो धीरे धीरे evaporate होकर उड़ने लगता है. Why? Because it's the way we have programmed ourselves. Thoughts are the software. एक और उदाहरण देता हूं. तो जिस कॉलेज में पढ़ाता था, तो वहां पे जो स्टूडेंट्स है, राइट फ्रॉम 8:30 to 3:30, यू नो, हम प्रोफेसर्स लेक्चरर्स बम्बार्ड आवर स्टूडेंट्स विद सो मच ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन। 3:30 बजे तक बच्चे इतने थक जाते थे कि कुछ पूछो मत, दे सो डैम टायर्ड। किसी तरह वो अपना बैग बैगेज उठाता है, समहाउ ही कम्स आउट, और वो अपना घर देखता है 100 meters अवे। 100 meters सीम्स टू हिम एज 100 kilometers बिकॉज ही सो टायर्ड। और उस समय ये विद्यार्थी देखता है एक कुत्ता बहुत तेज से उसको काटने के लिए आ रहा है, क्या करेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत थक गया हूं ना, कहेगा? नो, ही विल रन एट द फास्टेस्ट ऑफ फास्ट स्पीड, इफ नॉट द 100 मीटर्स वर्ल्ड रिकॉर्ड, लेकिन 100 मीटर्स इंडियन रिकॉर्ड तो उसको तोड़ना ही था। व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट इज, ऐसा नहीं है कि उसके पास एनर्जी नहीं था, एनर्जी था, बट ही केप्ट ऑन प्रोग्रामिंग, आई एम टायर्ड। ऑटोमेटिकली द बॉडी मैनिफेस्टेड इटसेल्फ इन द सेम वे। जैसे ही उसने उस कुत्ते को देखा तो क्या किया, एक स्विच ऑफ किया, दूसरा स्विच ऑन किया, he had energy and he could run at the fastest of fast speed. जैसे ही घर में पहुंचा, the first thing that he does it, switch on the television. Right there from 7 o'clock to late 10 o'clock, he is there in front of the television. 10 बजे वो realize करता है, oh my god, tomorrow मुझे इतने सारे assignments submit करने हैं। और 10 बजे वो लिखना आरंभ करता है, सोते सोते 12 बज जाते हैं। 6 बजे का अलार्म रखता है और उसका मन में यही विचार आता कि मैं कैसे उठ पाऊंगा। और जैसे ही 6 बजे का अलार्म बजता, टक, 10 मिनट सोता हूं। और 10 मिनट का कितना, 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाता है। एवरी डे ही इज देयर इन द कैंपस लेट एंड ही हैज टू हियर फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द प्रोफेसर्स। एक महीने के बाद द क्रेजी प्रोफेसर, द सेम प्रोफेसर स्वामीनाथन, एंटर्स द क्लास एंड सेज टू द स्टूडेंट, हे स्टूडेंट्स, लिसन टू माय अनाउंसमेंट वेरी केयरफुली, टुमारो वी आर ऑल गोइंग टू अ ट्रिप टू खंडाला। Please make it sure that tomorrow you are reaching the campus sharp 7 a.m. As usual, television till 10 o'clock, he's there in front of television. Suddenly at 10 o'clock he realizes, my God, tomorrow trip to Khandala. Mujhe bahut practice karni hogi, kya kya karna hoga. Aur 10 baje wo practice karna aarambh karta hai. Har din wo 12 baje sota hai, lekin us din wo 1 baje so raha hai. He has to reach the campus 7 a.m. Every day he keeps the alarm at 6 o'clock. That day he keeps the alarm at 4 o'clock. Hardly 3 hours of sleep. Lekin, 4 baje ka alarm rakhta hai. Lekin, 3 baje bhi uthega, 3:15 baje bhi uthega, 3:30 baje bhi uthega. And before the alarm can ring, this gentleman is so fresh. It's a way we program ourselves. A sara din he's there in Khandala enjoying himself, playing in the ghats, enjoying with his friends. He had hardly had 3 to 3.5 hours of sleep, but no form of tiredness. It is the way we program ourselves. और ऐसा नहीं है कि हम छोटे या स्टूडेंट्स ही प्रोग्राम करते हैं, हम बड़े भी बहुत अक्सर करके प्रोग्रामिंग कर देते हैं, सेल्फ प्रोग्रामिंग। It's a kind of a programming.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए, हेमंत कुमार के बारे में सुनकर आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। आइए, इसके साथ ही मैं एक और व्यक्ति के बारे में बात करता हूँ, चौधरी ब्रह्म प्रकाश के बारे में। जी हाँ, चौधरी ब्रह्म प्रकाश जो है, एक ऐसे व्यक्ति है आज़ादी के दीवाने, दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे, लोकसभा के सदस्य भी रहे। सन 1940 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चौधरी ब्रह्म प्रकाश 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत नेताओं से थे। अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण वो कई बार जेल भी गए और 17 मार्च 1952 से 12 फरवरी 1955 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। एशिया का सबसे बड़ा आयुर्वेद हॉस्पिटल जो कि नफजगढ़ के खैरा डाबर में बनाया गया था, उसका नाम चौधरी ब्रह्म प्रकाश के नाम से रखा गया था। इतना ही नहीं, विधानसभा में भी उनकी मूर्ति को लगाया गया है। चौधरी प्रकाश भाग्य से बहुत धनी थे। दरअसल दिल्ली की पहली विधानसभा में मुख्यमंत्री देशबंधु गुप्ता को बनाए जाने की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन जहाज दुर्घटना में उनकी मृत्यु होने के बाद चौधरी ब्रह्म प्रकाश सीएम बन गए। वहीं जब उन्हें सीएम गद्दी से हटाकर गुरुमुख निहाल सिंह को सीएम बनाया गया, तो उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल होने की शर्त पर डेवलपमेंट व फाइनेंस डिपार्टमेंट मांगा। बाहरी दिल्ली से गांधीवादी सी कृष्ण अय्यर 1952 में संसद रहे, जब चौधरी ब्रह्म प्रकाश को संसद के रूप में कांग्रेस ने चेहरा बनाया, तो उन्हें सबसे पहले 1997 में नवनिर्मित सीट दिल्ली सदर दी गई, क्योंकि नायर की खिलाफत करना आसान नहीं था। वही चौधरी ब्रह्म प्रकाश के सामने दिल्ली सदर से जनसंघ के कट्टरवार नेता श्यामचरण गुप्ता मैदान में थे। तीसरे लोकसभा चुनाव जो कि 1962 में हुए थे, उसमें बाहरी दिल्ली में चौधरी ब्रह्म प्रकाश को कांग्रेस ने टिकट दिया और वो जीत गए। उनका दबदबा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब दिल्ली की 7 सीटों में से 6 जनसंघ की पास चली गई थी, उस समय सिर्फ बाहरी दिल्ली की सीट पर ही विजय मिली थी, जिस पर चौधरी ब्रह्म प्रकाश आपत्तकाल के बाद 1977 में हुए छठे लोकसभा चुनाव में बंटवारे से आहत चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उन्हें जनता पार्टी ने पहली बार दिल्ली से ही बाहर से टिकट दी और वह रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते। बताया जाता है कि उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों का बड़ा सपोर्ट मिला था। तो ये थी कुछ खास बातें चौधरी वेद ब्रह्म प्रकाश के बारे में। चौधरी ब्रह्म प्रकाश की जीवन कहानी को सुनकर थोड़ा सा यूनिक लग रहा है कि नहीं? कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने दम पर कुछ काम कर जाते हैं और सरकार उसे चाहे ना चाहे, लेकिन जनता का प्यार बहुत मिलता है। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: इसे मुसीबत कहते हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहां से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूलना।

0: गया हाथ से, गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया? झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
1: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशर्म, शेखर, मेरे पास वक्त नहीं फजूल बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
0: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है, बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
1: होता है तो होने दो।

0: आप हमरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हमरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हुए आगे बढ़ते हैं। और हेमंत दा की बातें सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा होगा, उनके गाने वगैरह। तो आइए एक और शख्सियत के बारे में बात करते हैं, और ये हैं सुरेश कांत। जी हाँ, सुरेश कांत, इनकी जीवन कहानी से कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूँगा। और सुरेश कांत जो है हिंदी भाषा के बहुत ही समकालीन उपन्यासकार, संपादक और कुशल लेखक रहे। सुरेश कांत विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में अब तक 500 से अधिक रचनाओं को प्रकाशित कर चुके हैं। इसके अलावा हिंदी के अग्रणी पुस्तक प्रकाशकों के द्वारा 50 से अधिक पुस्तकों की रचना भी कर चुके हैं। सुरेश कांत चर्चा करते हैं, चर्चित वक्ता है, चर्चा भी करते हैं, और विभिन्न बैंकों, कार्यालयों और संस्थाओं के माध्यम से विश्वविद्यालयों आदि द्वारा आयोजित जो सम्मेलन होते हैं, संगोष्ठियाँ होती हैं, कार्यशालाओं में भाग लेते हैं, वक्तव्य देते हैं, और हिंदी भाषा और साहित्य, राजभाषा, बैंकिंग, वित्त और प्रबंधन पर सैकड़ों इनके व्याख्यान उन्होंने दे चुके हैं, और आपको कहीं ना कहीं उनकी बातें जो है वीडियो के रूप में भी मिल जाएंगी। तो ये ऐसे विशेष साहित्यकार की बातें करते हैं। आज ही के दिन 16 जून 1956 को गाँव कारदोल हाथी मुजफ्फपुर जिला उत्तर प्रदेश में इनका हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय से पहली श्रेणी में बीए ऑनर्स इनको प्राप्त है, और हिंदी में एमए की ऑनर्स इनको प्राप्त है। इसके बाद वो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया, और हिंदी गद्य लेखन में व्यंग और विचार विषय पर पीएचडी किया। इसके बाद प्राचीन भारत में बैंकिंग शब्दावली का स्वरूप विषय पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की, और भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई में 20 साल तक एज ए राजभाषा के महाप्रबंधक के रूप में सहायक रहे, और भारतीय स्टेट बैंक मुंबई में 10 वर्षों तक उप महाप्रबंधक रहे। भारत के अग्रणी करियर पत्रिका कंपटीशन नई दिल्ली में 3 वर्ष तक संपादक हिंदी रहे। वर्तमान में भारत के सबसे पुराने और बड़े प्रकाशन संस्थान हिंदी पैकेट बुक्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली नोएडा में मुख्य संपादक के रूप में भी काम करते हैं। उसके बाद इनके लेखन कार्य की बात करें तो अलग अलग न्यूज़पेपर प्रकाशन से जुड़े रहे, और अमर उजाला, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, ऐसे कई पेपरों में इनके लेख छपते रहे, और इनमें कहीं ना कहीं विशेष रूप से इनका जुड़ाव बना रहता था। इसके साथ ही अगर बात करें तो एनसाइक्लोपीडिक डिक्शनरी ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस टर्म्स, ये शब्दकोश का भी उनको जो है सहयोग मिला। और सम्मान और पुरस्कार की बातें तो चलती रहती हैं, अलग अलग संस्थानों से जुड़ने के कारण इन्हें काफ़ी सहयोग और खासी सम्मान जो है प्रतिष्ठा जो है मिली है सभी से। और इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सोसाइटी नई दिल्ली द्वारा अत्यंत प्रतिष्ठित भारत ज्योत अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। हिंदी अकेडमी से सम्मान, साहित्य कला परिषद से इनको सम्मान, गृह मंत्रालय दिल्ली से इनको, वित्त मंत्रालय से भी इनको सम्मान मिला है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुंबई से भी इनको विशेष रूप से सम्मान प्राप्त है। तो ये थी कुछ खास बातें विशेष सुरेश कांत के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

मैं हूं श्रवण राठौर ऑफ नदीम श्रवण टीम और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ एक और लेजेंडरी सेलिब्रिटी फिल्मी स्टार के बारे में बात करते हैं। भारत के बहुत ही पॉपुलर अभिनेता, सामाजिक कार्यकर्ता और उद्यमी हैं मिथुन चक्रवर्ती। जी हाँ, मिथुन चक्रवर्ती ने अपने अभिनय की शुरुआत कला फिल्म मुगया से की थी और जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त था और 1980 के दशक के अपने सुनहरे दौर में एक डांसिंग स्टार के रूप में उनके बहुत सारे प्रशंसक बने और खुद को उन्होंने भारत के सबसे लोकप्रिय प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया। विशेष रूप से 1982 में बहुत बड़ी हिट फिल्म डिस्को डांसर में स्ट्रीट डांसर जिमी की भूमिका ने उन्हें लोकप्रिय बनाया। कुल मिलाकर बॉलीवुड की 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय के अलावा उन्होंने बंगाल, उड़िया और भोजपुरी में भी बहुत सारी फिल्में की। मिथुन मोनार ग्रुप के मालिक भी हैं जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर में कार्यरत है। तो आइए इनके बारे में कुछ खास बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा और आशा करूँगा कि आपको बड़ा अच्छा लगेगा इनकी कहानी सुनकर। और कुछ तो आइए डांस, ड्रामा और डायलॉग अभी आपके लिए।

0: उसके बाद आई फिल्में डांस डांस और कसम पैदा करने वाले की।
1: तेरा संदेशा मिल गया था, मैंने सोचा तुझे चलने में तकलीफ होगी इसलिए मैं खुद यहाँ आ गया।
2: तकलीफ? अरे तकलीफ तब तुझे होंगी उसका सोच। मैंने कहा था ना हॉस्पिटल से निकलते तुझसे निपटूंगा।
1: हाँ वो बात तो सही है, लेकिन मैं तुझे हॉस्पिटल से निकलने दूं तब ना।
0: और साथ ही ये वो वक्त भी था जब अमिताभ बच्चन पॉलिटिक्स की तरफ रुख कर चुके थे और मिथुन दा को काफी फायदा हुआ। ये बन गए नंबर वन स्टार बॉलीवुड के। एक से बढ़कर एक फिल्में आती रहीं, मुझे इंसाफ चाहिए, स्वर्ग से सुंदर, प्यार झुकता नहीं, घर एक मंदिर और ये फेहरिस्त बहुत लंबी है। हिंदी फिल्में इन्हें स्टारडम दे रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्ला फिल्में इन्हें दे रही थी नेशनल अवार्ड। इन्हें तहदार कथा के लिए भी नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। वक्त के बाद मिथुन चक्रवर्ती मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा को छोड़ थोड़ी लो बजट फिल्मों में काम करने लगे। यही वजह थी कि एक बरस में इनकी तकरीबन 30 फिल्में रिलीज हुई थीं। हालांकि इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं किया था, पर छोटे सेंटर्स में ये फिल्में बहुत चली थीं। प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स भी मिथुन चक्रवर्ती के ऊटी के मोनार्क होटल के पास ही शूटिंग करने को तैयार हो जाते थे, इसलिए काम भी जल्दी होता था और फिल्में भी फटाफट रिलीज हो जाती।
3: अबे दर्जी की औलाद, लड़कियों की कमर का नाप लेने से पहले अपनी हड्डियों की नाप ले ले जो अभी टूटने वाली है बगैर इंची टेप।
0: उसके बाद मिथुन दा ने वापसी की कैरेक्टर रोल्स में। मणिरत्नम की फिल्म गुरु को कौन भूल सकता है, लकी नो टाइम फॉर लव और कल्पना लाजमी की चिंगारी, इन सभी फिल्मों में मिथुन दा का सशक्त अभिनय सबके दिलों को जीत गया।
4: पाप और पुण्य का खेल इस संसार में जो खेला जाता है उस पे सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार है, रंडियों का नहीं।
5: अब आप भगवान को नाराज कर रहे हैं।
4: चुप साली।
5: गलती हो गई महाराज, फिर ना हो, गलती हो गई।
4: क्या फर्क है तुझ में और उसमें? उसके 5 पति थे और तेरे अनगिनत। तेरा काम मुझसे बहस करना नहीं है, मेरी वासना को पूरा करना है।
0: एक बार फिर इन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया और इस बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। फिल्म का नाम स्वामी विवेकानंद। मिथुन दा ने मल्टी स्टारर्स में भी कमाल किया और सोलो हीरो वाली फिल्मों में भी, रोमांटिक फिल्मों में भी और फैमिली ड्रामास में भी। फिल्म गुलामी से इनका डायलॉग कोई शक आज भी बहुत पॉपुलर है।
6: मुझे मालूम है।
0: टीवी की दुनिया में जब मिथुन दा ने कदम रखा तब इनका एक जुमला इतना मशहूर हुआ कि जब भी किसी की तारीफ करनी हो तो बस इतना कह दीजिए, क्या बात क्या बात क्या बात।

0: मिथुनदा के पारिवारिक जीवन की तरफ रुख करें तो हमें पता चलता है कि इनकी शादी हुई जबरदस्त अभिनेत्री योगिता बाली से। इस शादी से इन्हें 4 बच्चे हुए, 3 बेटे और 1 बेटी। सबसे बड़ा बेटा मिमो भी एक्टर ही बना। मिथुन चक्रवर्ती उन गिने चुने एक्ट्रेस में से हैं जिन्होंने पैरेलल सिनेमा में भी कमाल किया और कमर्शियल फिल्मों में भी इनका लोहा माना गया।
1: हाँ, मैं बस्ते में शराब की बोतलें लाता था। तुमने मेरे बस्ते के अंदर शराब की बोतलें देखी थी, लेकिन मेरे अंदर की मजबूरी तुमने नहीं देखी थी। तुमने मेरा बस्ता उठाकर फेंक दिया, लेकिन बस्ते से बोतलें निकाल कर उसमें किताबें नहीं रखी थी। तुमने मेरे लिए स्कूल का दरवाजा बंद कर दिया। तुमने तो अपन क्या करता अखा जिंदगी स्कूल के बंक गेट के बाहर गुजार देता।
2: ए मासा जी, नहीं, इसलिए अपन दूसरा स्कूल चला गया। भट्टी भी बहुत बड़ा स्कूल है मासा जी, वहां आदमी को अक्षर पहचाना नहीं सिखाया जाता है, लेकिन आदमी पहचाना जरूर सिखाया जाता है।
0: फिल्म अग्निपथ के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया और फिल्म जल्लाद के लिए बेस्ट विलेन। हर किरदार को मिथुन दा ने जिया। स्क्रिप्ट के अनुसार मिथुन चक्रवर्ती ने वो अभिनय दिखाया जिन्हें तो सुपरस्टार बनना ही था।
3: शिवा अपने सर पर कभी किसी का कर्ज नहीं रखता माँ, इसका जवाब उसे जरूर मिलेगा।
0: यकीनन जबरदस्त डांसर, फौलादी एक्शन सीन्स करने वाला, कमर्शियल और पैरेलल सिनेमा का अजीज मिथुन चक्रवर्ती। भारतीय सिनेमा के इतिहास में इनका नाम हमेशा

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: अभी बजे हैं शाम के 5।

0: मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: रेडियो मधुबन 90.4 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम का नाम है युवा मंच। दोस्तों, युवाओं का मंच है तो फिर कुछ करियर्स के बारे में भी बीच बीच में बात होती है जो कि युवाओं को आकर्षित करते हैं, या कई चीजें जो जानकारियां हमारे लिए उपस्थित नहीं होती। हालांकि दोस्तों, इंटरनेट का जमाना है, बहुत कुछ आपको मिल सकता है जो भी आप करियर अपनाना चाहें। लेकिन वो करियर है कैसा, उसको जाने किसी ऐसे व्यक्ति की नजर से जो ऑलरेडी उस करियर में हो, तो फिर कहीं ना कहीं मोटिवेशन के साथ साथ सही जानकारी भी मिल जाती है। दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे इसी श्रृंखला में। आज हमारे साथ हैं श्री कृष्ण प्रकाश तौले जी। एक्चुअली मैं उनका नाम पूरा जरूर लिया, लेकिन उनकी पोस्ट तो भूल ही गई। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं सीए श्री कृष्ण प्रकाश तौले जी। जी हाँ, वो एक युवा साथी हैं और सीए हैं, तो आज इसी फील्ड के बारे में, इसी करियर के बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे और उनके बारे में भी कुछ जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू।
1: अच्छा, सबसे पहले तो बहुत अच्छा करियर है, आई नो बहुत कॉम्पिटिशन होता है, तो आपको बहुत बहुत बधाई है कि आप इतना अच्छे करियर में आगे बढ़ रहे हैं, एंड हम आपसे आज बहुत कुछ जानेंगे। आप अपने बारे में कुछ अपने शब्दों में बताइए।
2: थैंक यू सो मच फॉर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अगर आप सीए के बारे में करेंगे तो सीए एक बहुत अच्छा, मतलब इंडिया में रिप्यूटेड कोर्स है, जिसकी शुरुआत इसका, मतलब मैंने एक्चुअली इन द 9th स्टैंडर्ड ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि मुझे सीए परस्यू करना है।
1: अच्छा।
2: मुझे एक्चुअली एक स्कूल टीचर से पता चला था, बिकॉज तब इतना अवेयरनेस नहीं होता है सीए कोर्स के बारे में लोगों को, इसलिए वो इशू जाता है। तो मुझे एक स्कूल टीचर से पता चला था कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स होता है और इसमें ऐसा ऐसा कुछ फ्यूचर वगैरह होता है, तो फिर मैंने वहां से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट
1: किया। तो आपको इंटरेस्टिंग कैसे लगा, मतलब आप 9वीं कक्षा में थे, 9th क्लास में थे, तो उस टाइम आपको कैसे लगा कि नहीं सीए अच्छा है, मतलब क्या बताया ऐसा टीचर ने जो आपको बहुत अच्छा लगा?
2: एक्चुअली वो नई चीज सुनी थी, क्योंकि पहले तो डॉक्टर, इंजीनियर और अदर फील्ड जो ऑप्शंस जो यूजुअली अपने को पता होते हैं, वही चीजें पता थी, बट ये नई चीज सुनी थी। और ये सुना था कि रेपुटेशन अच्छा होता है, इसका जॉब पैकेज अच्छा होता है, ये सब चीजें सुन के मैंने और इंटरेस्ट लिया। और एक पावर होता है सीए के सिग्नेचर में, तो वो चीज सुन के फिर मैंने उसको आगे सोचना स्टार्ट किया।
1: आपको लगा ये अच्छा है? ओके। तो आपके टीचर्स ने आपको ये बातें बताई?
2: टीचर को इतना नहीं पता था एक्चुअली, उन्होंने ब्रीफ में बताया था। एक्चुअली वो टाइम पे एक मुंबई की एक बहन थी, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने टॉप किया था क्लास में, लेकिन वो उनके पापा रिक्शा चलाते थे, तो उन्होंने टॉप किया था, तो उनका एक मोटिवेशन एग्जांपल देने के लिए उन्होंने हमको बताया था, तो उससे फिर उन्होंने सीए के बारे में बता दिया, तो वहां से मेरा इंटरेस्ट वो फील्ड, मतलब उसके बारे में बढ़ गया
1: और बढ़ गया। राइट। ओके। तो उसके बाद आपने क्या किया, मतलब आपको पता चला था सबकी सीए बनने के लिए क्या करना होता है?
2: कुछ भी पता नहीं था, बस ब्लाइंडली लोगों से पूछता था, लोग कुछ अपने हिसाब से जवाब देते रहते थे, उतना कुछ आइडिया नहीं था। आफ्टर 11th मुझे वो सब चीजें फिर क्लियरली, बट सोचा था मैंने कि करना है, बट जो प्रैक्टिकल चीजें है, जो एक्चुअल क्या है, जैसे सुनते तो अपन काफी चीजें, टफ होता है, टफेस्ट इन द, मतलब इंडिया में टफेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, नहीं कर पाते आप, क्लियर नहीं हो पाओगे, अगर आप बीच में रुक गए तो आपका करियर स्पॉइल हो जाएगा और आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो लोग से सुनते थे, बट फिर बाद में जब मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया तो फिर चीजें थोड़ी अलग थी।
1: ओके। तो जो 9th में आपको जानकारी मिली थी वो बहुत थोड़ी थी, 11वीं में जब आप थे तो ऐसी क्या जानकारी मिली जो आपको क्लैरिटी आई?
2: ओके। फिर उस हिसाब से मैंने कॉमर्स चूज किया 11th 12th, कॉमर्स से मतलब रिलेटेड ही होता है, तो मैंने 11th 12th कॉमर्स स्ट्रीम को चूज किया, जिसमें फिर मेरे जो कल मतलब जो फ्रेंड्स थे स्कूल वाले, सब मैक्सिमम दोस्त भी सीए ही कर रहे थे, तो उनसे मुझे पता चला, और फिर प्रैक्टिकली मुझे जो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट थे उनसे डायरेक्ट मिलने का मौका।
1: अच्छा।
2: हाँ, जो टीचर हमारे थे, मतलब एग्जाम जो प्रिपरेशन कराते, वो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो उनसे मुझे अच्छा गाइडेंस मिला, तब मुझे पता चला कि हाँ, मतलब यहाँ कर सकते हैं या फिर।
1: अच्छा, तो क्योंकि आपने जैसा बताया 11वीं में पता चला, तो 11वीं के बच्चे को आप क्या बताएंगे, बहुत डिटेल में आप बताएंगे या उसके अनुसार बताएंगे? तो अगर एक 11वीं का बच्चा आपको सुन रहा है आज, और जो आपने सुना था उस वक्त, तो आप उसे क्या बताएंगे सीए क्या होता है?
2: ओके अगर सीए के बारे में बात करेंगे तो एक इंडिया में बहुत अच्छा रिप्यूटेड कोर्स है. इसका एक्चुअली इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट की फॉरेन में भी अच्छी डिमांड है. फॉरेन कंपनीज में भी इंडियन सीए रिक्रूट होते हैं. आज कनाडा में देखिए, दुबई में देखिए, दुबई में बहुत अच्छा मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम चलता है, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट का. तो अगर सीए के बारे में बात करें तो एक 4.5 साल का ब्रीफली कोर्स होता है, मतलब 4.5-5 साल अप्रोक्सीमेटली पकड़ सकते हैं आप. 12 आप 10वीं के बाद उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है और फिर 12वीं से आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. मतलब आप 12th अपीयर चाहिए, आप 12th अपीयर होते हुए भी आप एग्जाम दे सकते हैं. आप 12th अपीयर होके एग्जाम दीजिए, सबसे पहले एग्जाम होते हैं सीए फाउंडेशन. मतलब इसमें 3 एग्जाम आपको क्लियर करना है और 3 साल की सीए के अंडर आर्टिकलशिप कंप्लीट करना है. मतलब इट्स लाइक प्रैक्टिस, आपको सीए के अंडर ट्रेनिंग करना है, उसको आर्टिकलशिप बोलते हैं. तो आपको पहली एग्जाम 12th अपीयर होते हुए, जैसे आपके 12th की एग्जाम हो जाती है, वो 12th के आई कार्ड के बेसिस पे आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं. फिर वो एग्जाम का फॉर्म दे के आप एग्जाम दो.
1: कहाँ भर सकते हैं ये फॉर्म?
2: ये ऑनलाइन ही भरना है. मतलब पहले तो आपको 10वीं के बाद रजिस्ट्रेशन लेना है. 11वीं में आप 11वीं में 12वीं में कभी भी आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो. पहले एक रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही करना होता है सब. एक ICAI.org वेबसाइट होती है इंस्टीट्यूट की, जिसमें आप वो रजिस्ट्रेशन करा लो.
1: कौन सी वेबसाइट बताएं?
2: ICAI.org. www.icai.org ये साइट पे चाहिए तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे. तो आप वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए. फिर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप 12th के बाद एग्जाम दिए सीए फाउंडेशन. वो 4 सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं. 4 सब्जेक्ट को आपको क्लियर करना है. और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पता होनी चाहिए, ये पासिंग क्राइटेरिया है. एक्चुअली यहाँ पे 2-वे पासिंग क्राइटेरिया होता है. आपको 50% टोटल एग्रीगेट में लाना है और 40% इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट. लाइक अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो आपको एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए. और अगर टोटल ओवरऑल जो स्कोर है आपका, जैसे आपको 4 पेपर है 400 मार्क्स के, तो आपको 200 मिनिमम लाना, दैट्स 50%. तो एग्रीगेट आपको 50% लाना है और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मिनिमम 40% होना चाहिए. अगर आप एक सब्जेक्ट फेल हो जाते तो फिर आप दूसरा, मतलब आप पूरे सब्जेक्ट को वापस से आपको देना,
1: मतलब आपको 4 सब्जेक्ट का दोबारा देना पड़ेगा,
2: पूरा देना पड़ेगा.
1: ओके. और ये कौन कर सकता है? मतलब कोई भी स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं या कोई सब्जेक्ट जरूरी है इसमें अपीयर करने के लिए?
2: कोई भी स्ट्रीम के कर सकते हैं. 11th में अगर वो कॉमर्स है, आर्ट है, या फिर आप साइंस बैकग्राउंड से, कोई भी कर सकते हैं यहाँ पे.
1: तो ऐसा नहीं है कि मैथ्स होना जरूरी है?
2: ऐसा कुछ नहीं, बस ये होता है कि आपको थोड़ा अच्छा कैलकुलेशन होना चाहिए. बट ऐसे जरूरी नहीं कि आपको एडवांस लेवल का मैथ चाहिए. बट आप नॉर्मल मैथ से भी चला सकते हैं. और चीजें तो सीखने के लिए होते हैं, अपन तो कुछ भी सीख सकते हैं.
1: ये बहुत अच्छी बात कही आपने. ओके. तो मतलब हमने अभी तक ये समझा कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो सीए की हम बात कर रहे हैं, तो 11वीं या 12वीं के साथ आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो वेबसाइट पे.
2: Yes.
1: और एक सीए का पहला जो पेपर होता है फाउंडेशन, उसमें 4 सब्जेक्ट आपको पास होने जरूरी हैं.
2: Right.
1: मिनिमम 40% और टोटल 50%.
2: हाँ, टोटल 50%.
1: अच्छा, तो अगर नहीं पास हो पाए तो दोबारा कर सकते हैं. तो 12वीं के बाद, मतलब जब आप आगे की पढ़ाई कर रहे हो तब भी आप कर सकते.
2: विदिन 6 मंथ्स एग्जाम होती रहती है.
1: अच्छा,
2: साल में 2 बार, मई और नवम्बर.
1: ओके. तो कब आता है इसका फॉर्म, कौन से समय आता है ऑलमोस्ट?
2: ये आप कभी भी कर सकते हैं. मतलब अभी चाहो तो अभी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं.
1: अच्छा.
2: इसका कोई ये नहीं, बस ये क्राइटेरिया होता है कि आपको अगर एग्जाम देना है तो 6 मंथ्स बिफोर आप रजिस्टर्ड होना चाहिए. दैट इज अ बेसिक क्राइटेरिया. कि अगर सपोज आपको 12th के बाद, जैसे आपके 12th में मार्च में एग्जाम कंप्लीट हो रही है और आपको मई में एग्जाम देना है, तो आप मई के एग्जाम के 6 मंथ्स बिफोर आप रजिस्टर होना चाहिए.
1: अच्छा, 6 महीने पहले?
2: 6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन तो भी एटलीस्ट होना चाहिए.
1: ओके, ठीक है.
2: और फिर उसका एग्जाम फॉर्म आएगा आपका. एग्जाम वो इंस्टीट्यूट के साइड पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे. एग्जाम फॉर्म जनरली एग्जाम के 2 महीने पहले आ जाता है, तो वो आपको फिल करना है. उसका 10-15 दिन का टाइम होता है, तो फिर आप ये कर सकते. फिर
1: तो जो सेम वेबसाइट आपने बताई, वहीं पे आता है एग्जाम फॉर्म?
2: हाँ, वहाँ पे फिर नोटिफिकेशन आते रहता है. वहाँ पे फिर सब वेबसाइट्स वगैरह है उसमें, जो अलग अलग चीज़ें, जैसे ICAI.exam एक अलग वेबसाइट होती है जिसमें एग्जाम फॉर्म आपको अलग से भरना है. बट ये कोर वेबसाइट जो मैंने बोला है, मेन वेबसाइट जो www.icai.org,
1: मतलब उसके थ्रू आपको सारी जानकारी
2: मिल जाएंगी मोस्टली.
1: ठीक है. तो अगर पहला जो क्राइटेरिया है, यानी पहला जो एग्जाम है फाउंडेशन का, वो क्लियर किया, तो उसके बाद क्या?
2: हाँ, अगर आप सपोज मई में एग्जाम क्लियर कर ले, तो कोई भी साल में, तो उसके बाद फिर आपको 9 मंथ स्टडी पीरियड होता है सेकेंड एग्जाम का.
1: अच्छा,
2: सेकेंड एग्जाम का नाम होता है सीए इंटरमीडिएट, जो आपको जैसे आप एग्जाम क्लियर होते हो उसके 9 मंथ्स आपको पढ़ाई करनी है उसकी, आपको बुक्स इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा.
1: ओके,
2: हाँ, पूरी आपको कुरियर के द्वारा अपने घर आ जाएंगे पूरी बुक्स, पूरा मटेरियल, साथ में आईसीए की चैनल्स भी चलते जिसमें वो लेक्चर्स वगैरह रहता, शॉर्ट मतलब स्टडी मटेरियल रिलेटेड ऑल चीज़ें आप इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा, और आप कोचिंग भी ले सकते हो.
1: Okay.
2: हाँ, तो वो 9 मंथ्स में जब आप क्लियर हो जाते हो तो वो 9 मंथ्स के अंदर आपको प्रिपरेशन करनी पूरी इंटरमीडिएट के लिए, फिर आप इंटरमीडिएट के एग्जाम दे सकते हो.
1: अच्छा, तो मतलब आपने 9 महीने तैयारी किया, उसके बाद फिर से वो एग्जाम फॉर्म भरना है.
2: हाँ,
1: जो
2: सेकेंड एग्जाम,
1: सेकेंड एग्जाम है, उसमें क्या होता है?
2: हाँ, उसमें एक्चुअली 8 सब्जेक्ट्स होते हैं.
1: अच्छा,
2: आठ सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि जैसे पहले अपन ने सुना है कि 50% एग्रीगेट होना चाहिए, तो उसमें कभी ऐसा हो जाता है कि आपको 40-40 तो आ जाता है. एक्चुअली एग्जाम थोड़ा टफ होता है, इसलिए 40 लाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है. काफी बच्चे नहीं ला पाते हैं, मतलब रिजल्ट आपको पता होगा रिजल्ट काफी टफ आता है इंस्टीट्यूट का, तो वो 40 लाना अगर आपको ये हो जाता है तो इसलिए वो फिर इंटरमीडिएट पे 2 ग्रुप बनाया आईसीए ने एग्रीगेशन पर्पज के लिए. मतलब 4 सब्जेक्ट का एक ग्रुप, 4 सब्जेक्ट का दूसरा ग्रुप, ऐसे ग्रुप 1 ग्रुप 2, ऐसे 2 ग्रुप होंगे 8 सब्जेक्ट के, लेकिन आपको इंटरमीडिएट पूरे एग्जाम क्लियर करना है तो दोनों ग्रुप क्लियर करने हैं, 4 सब्जेक्ट के 8 सब्जेक्ट के.
1: वो क्या सब्जेक्ट होते हैं? अगर बता सकते हैं आइडिया?
2: हाँ, ग्रुप 1 में अगर मैं बताऊँ तो फर्स्ट पेपर होता है अकाउंट्स का, होता है अकाउंट्स होता है, कॉस्टिंग होता है, ऑडिट होता है इसमें, इंटरमीडिएट का 3 साल होता है ना फिर.
1: हाँ, हाँ,
2: इंटरमीडिएट के
1: टाइम हो जाता है, सही बात है.
2: फाउंडेशन के भी एग्जाम, ये इंटरमीडिएट के जो सब्जेक्ट्स है, पहला पेपर होता है अकाउंटिंग का, सेकेंड पेपर होता है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, जिसमें आपको लॉज को पढ़ना है बिजनेस लॉज रिलेटेड, और थर्ड पेपर होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, जिसमें कॉस्टिंग्स के बारे में बात होंगी, फोर्थ पेपर होता है टैक्सेशन, जिसमें आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना, डायरेक्ट टैक्स इज रिलेटेड टू इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स इज जीएसटी मोस्टली, और उसमें कस्टम्स और बाकी अदर इनडायरेक्ट टैक्स भी आते हैं. फिफ्थ पेपर होता, ये हो गया फर्स्ट ग्रुप 4 पेपर का टैक्सेशन तक. फिर सेकेंड ग्रुप में होते हैं एडवांस अकाउंटिंग, लेकिन थोड़ा उसका स्कोप ये हो जाता है, बड़ा हो जाता है. और सिक्स पेपर होता है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, जिसमें ऑडिटिंग रिलेटेड आपको लॉज पढ़ने हैं. सेवेंथ पेपर होता है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इट्स लाइक ये होता है मैनेजमेंट रिलेटेड, ये होता है और आईटी रिलेटेड सब्जेक्ट होता है. एट पेपर होता है जो लास्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, इसमें आपको फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज मिलेगा और इकोनॉमिक्स जो जिसके बेसिस पे वर्ल्ड में वर्ल्ड इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स उसके बारे में आपको सब्जेक्ट रहेगा.
1: ओके, तो 8 सब्जेक्ट 9 महीने हमारे पास है. तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि शेड्यूल क्या होता था आपका एक दिन का जब आप इसकी तैयारी कर रहे थे?
2: उसमें तो एक्चुअली ऑप्शन होता है कि आप एक ग्रुप का भी प्रिपरेशन कर सकते, मतलब 4 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लो फिर बाद में आप 4 सब्जेक्ट देना, एक ग्रुप पहले दे दो एक ग्रुप. लेकिन मैंने जब सोचा था कि मुझे बोथ ग्रुप एट अ टाइम कंप्लीट करना है, ऐसा मैंने टारगेट रखा था, तो मेरी वैसे क्लासेस भी मैंने पूरी फिर कंप्लीट की. क्लासेस में एक्चुअली शेड्यूल हमारा काफी फिक्स होता था, मतलब सुबह 7 बजे से क्लास स्टार्ट होती थी, रात के 9 बजे तक तो मिनिमम क्लास चलती थी बोथ ग्रुप, जब 8 सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो
1: सुबह 7 से रात 9 बजे तक.
2: दोपहर में 1-2 घंटे का ब्रेक लेके, तो ऐसा पूरा दिन भर क्लासेस चलती थी, तो पूरा एग्जॉस्ट तो हो ही जाता था, उतनी पढ़ाई नहीं होती पाती थी क्लासेस के ड्यूरिंग, लेकिन थोड़ा रिवाइज करना होता था कि आप जो क्लास में पढ़े उसको थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज कर लो और नेक्स्ट डे आप क्लास में चले जाओ, ताकि वो होता रहे, नहीं तो आप भूल जाओगे पूरी चीज़ें. तो वो तो क्लासेस के ड्यूरिंग तो ऐसे टाइट शेड्यूल था, सो आप 6 बजे उठ के ये करके 7 बजे से जाओ, फिर रात को 9 बजे तक आओ. फिर उसके बाद जब क्लासेस हो गए, आई थिंक क्लासेस का ड्यूरेशन मोस्टली 5 to 6 months था, फिर लास्ट के 3 months हमारे सेल्फ स्टडी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि क्लासेस में आप चीज़ें भूल जाते हो, लेकिन आपको लास्ट एग्जाम के पहले जो पढ़ना होता है 3 महीने मिलते थे, उसमें आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होता है, अच्छे से पढ़ना होता है. तो वो टाइम मिनिमम मैं 10 घंटे तो पढ़ता ही था, कभी कभी 12-13 घंटे हो जाते थे, कभी थोड़े कम भी होते थे, क्योंकि वो थोड़ा अप एंड डाउन चलते रहता स्टडी में.
1: लेकिन ज्यादातर आपने इतनी पढ़ाई की?
2: यस, मिनिमम 10 आवर्स तो वी हैव टू स्टडी, वो तो जरूरी हो ही
1: दिन भर में मिनिमम 10 घंटे
2: पढ़ने. और आपको बस वो एग्जाम के पहले 3 जो महीने हैं 2-3 महीने वो पढ़ लो, आप क्लियर हो जाओगे.
1: ओके लेकिन ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपने जैसे बताया कि पढ़ाई इतनी जरूरी है और उसी पढ़ाई से जो हम आगे मतलब आपने जैसे शुरू में बताया था कि सीए करते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है तो जो मेहनत का नतीजा है वो आगे मिलता है लेकिन मेहनत जरूरी है उसके लिए
2: बहुत ज्यादा
1: जरूरी है। तो कैसा लगता था उस समय आपको, मतलब क्या डर लगता था या बस पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं आता था दिमाग में या कभी क्या लगता था?
2: कभी कभी तो ऐसा लगता था कि गलत फील्ड में आ गए, नहीं आना था।
1: अच्छा ओके
2: कि गलती हो गई, हमारे दोस्त जो इंजीनियरिंग जो अदर फील्ड में गए वो एंजॉय करते थे वो अपनी स्टूडेंट लाइफ एंजॉय कर रहे और हम क्लासेस कर रहे दिन भर, समय ही कहाँ है अदर एक्टिविटीज के लिए, समय नहीं है ना, तुम स्कूल जा रहे हो ना कॉलेज जा नहीं जा रहे हो कॉलेज और दिन भर क्लासेस और पढ़ाई, तो वो थोड़ा लगता था कि थोड़ा ये हो गया। बट हाँ फिर सोचना पड़ता था कि हाँ फ्यूचर में जब बन जाएंगे तो अलग ही ये रहेगा, और टीचर्स को देखते थे उनकी लाइफ को देखते थे तो थोड़ा मोटिवेशन आ जाता था।
1: ओके
2: हाँ और मैं मेडिटेशन वगैरह करता था तो थोड़ा माइंड काम रहता था तो वो हो जाता था।
1: बिल्कुल, मतलब इतना ज्यादा अगर पढ़ाई करनी हो तो मेडिटेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट
2: है।
1: आप मेडिटेशन करते थे, क्या करते थे पर्टिकुलरली, क्या कैसे करते थे अगर आप थोड़ा सा बताएं हमें, क्या करते थे, किस समय करते थे? समय तो आपको मिलता नहीं था,
2: देखता ही रह लेना आप आगे।
1: एक बार आप समय भी बता सकते पता चले कितने बिजी शेड्यूल में से करते
2: बस 5-10 मिनट करने स्टार्ट करने के पहले।
1: हाँ ये भी अच्छी बात है क्योंकि आप 5 मिनट भी खुद के लिए दे रहे हैं, खुद के माइंड के लिए दे रहे हैं, तो उसको तैयार करें एक तरीके से, तो अच्छी बात है। क्योंकि कई बार हमें मेडिटेशन को सोच के लगता है कि इतना समय देना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, लेकिन आप करते करते बीच में कर सकते हैं, ये सुन के अच्छा लगा। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए
2: कर सकते हैं। बीच में आप मतलब न्यू सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करो तो बीच में ब्रेक लेके 10-15 मिनट का पे कर लो, म्यूजिक सुन लो, थोड़ा माइंड फ्रेश भी हो जाता है क्योंकि आप कंटिन्यूस नहीं पढ़ सकते ना।
1: बहुत जरूरी है एक्चुअली। ठीक है अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो आपका जब आपने 8 सब्जेक्ट ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों दिए तो क्या हुआ फिर?
2: शॉकिंगली मैं फेल हो गया था।
1: ओके
2: मैं फेल हो गया था शुरुआत में क्योंकि शुरुआत में जब मैंने क्लासेस की थी शेड्यूल बिजी होता था इसलिए मैं उतना पढ़ नहीं पाता था, तो जब मैं सेल्फ स्टडी कर रहा तो काफी चीजें मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भूल गया क्योंकि वो ब्रेन अपना एट द एंड आप ह्यूमन माइंड है तो उसका प्रॉपर ये रहता है प्रोसीजर, आपको माइंड के अंदर कुछ चीजों को अगर इनपुट डालना है और उसको स्टोर रखना है तो उसका प्रोसीजर, उसको आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा और उसको आपको प्रैक्टिकली मतलब सोच के उसको ये करना पड़ेगा तभी जाके हो रहा था। लेकिन मेरे क्लासेस का शेड्यूल इतना टाइट था इसलिए वो नहीं हो रहा था मेरा।
1: Okay,
2: मतलब नहीं हो पाया मेरा क्लियर, मैं फेल हो गया था। रिजल्ट आया कुछ नहीं, फिर एक दिन थोड़ा आंसू बहा लो, लोगों की सांत्वना ले लो।
1: ओके
2: उसके बाद तो फिर नॉर्मल जिंदगी तो अपनी कोई जीना होता है, उसको अपनी कोई ट्रूथ को एक्चुअली अपने साथ रख के उसको आगे बढ़ना पड़ता है।

0: तो वो थोड़ा था कि हाँ ठीक है, नॉर्मल है, होता है
1: होता है
0: होता।
1: बिल्कुल।
0: तो फिर मैंने फिर 2-3 दिन ब्रेक लेके फिर माइंड को उसका कमांड दे दे कि इस बार कुछ भी हो जाए अच्छे से पढ़ना है। वो कैसा होता है ना कि जब आपके एग्जाम देते हो तो आपको 2.5 महीना तो भी रिजल्ट आने को लगता है। सपोज अगर मैं मई में एग्जाम दे रहा हूँ तो मेरा अगस्त तक रिजल्ट आ जाएगा इंटरमीडिएट का। तो फिर जैसे आप अगस्त का रिजल्ट आ रहा है तो आप अगस्त से फिर आपको नवंबर में नेक्स्ट एग्जाम है।
1: ओके
0: हाँ तो फिर अगस्त से आपको नवंबर तक का टाइम मिल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर और 3 महीने का, बस 3 महीने
1: तो आपको
0: का।
1: फिर से रजिस्टर करना
0: नहीं
1: पड़ता
0: नहीं
1: है।
0: नहीं आप रजिस्ट्रेशन हमारा मोस्टली 3 साल तक वैलिड रहता है। अगर 3 साल तक आप एग्जाम क्लियर नहीं करते तो फिर वापस से आपको रिन्यू करना पड़ेगा, बट वो चलते रहता है। एग्जाम आप कितने भी बार दे सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है, आप अनलिमिटेड एग्जाम दो। तो जो नेक्स्ट एग्जाम देने उसमें 3 महीने का टाइम है, वापस से आपको 3 महीने प्रिपेयर करना है और एग्जाम फॉर्म भरना है और आपको एग्जाम देना है। ऐसे ये साइकिल चलता रहता है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं जाता है ये कर इसमें कि आपको एक एक साल रुकना है या फिर काफी टाइम रुकना है, तो वो प्रॉब्लम नहीं जाता। आपके पास ऑप्शन रहते हैं कि आप एग्जाम दे के ये कर लो।
1: ठीक है। ग्रुप
0: तो वापस से फिर मैंने 3 महीने पढ़ाई की, फिर नेक्स्ट टाइम मेरा हो गया क्लियर,
1: वन ग्रुप टू दोनों,
0: ग्रुप 1 क्लियर हो गया।
1: ग्रुप वन क्लियर हो गया, क्या बात है। ठीक है, ये तो बड़ी मतलब आपको बहुत खुशी हुई होगी डेफिनेटली। कितना रिलीफ भी मिला होगा।
0: एग्जैक्टली कि वापस से वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना
1: हाँ
0: अभी।
1: सही बात है। और उसके बाद फिर आपने ग्रुप टू की तैयारी की।
0: हाँ तो उसमें ऐसा होता है कि ग्रुप 1 क्लियर होने के बाद या फिर कोई भी एक वन ऑफ द ग्रुप क्लियर होने के बाद आप आर्टिकलशिप जो 3 साल मैंने बोला था जो सीए के अंडर अपने को करना है वो कर सकते स्टार्ट। लेकिन मैंने नहीं किया था क्योंकि मैंने सीनियर्स से वगैरह सुना था कि सेकेंड ग्रुप को थोड़ा टाइम देना पड़ता है, उसको क्लियर कर लो तो फिर आर्टिकलशिप अच्छे से कर सकते। और आर्टिकलशिप में आपको प्रॉपर ऑफिस जाना होता है, मतलब 10 बजे जाओ, फिर आपको आने का टाइम डिसाइडेड नहीं है क्योंकि आपको काम है तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको सीखना है ऑफिस में जाके। प्रैक्टिकली पूरी चीज़ें जो तुमने पढ़ा था वो सब अप्लाई करना है। तो ऑफिस के टाइम में, ऑफिस में टाइम जाता है तो फिर आप पढ़ाई पर इतना फोकस नहीं कर पाते, तो इसलिए आप पहले एक ग्रुप, सेकेंड ग्रुप बचा है वो क्लियर कर लो। तो मैंने वो सोचा था बट शॉकिंगली वो नहीं ये हुआ, मैं वापस से फेल हो गया
1: ओहो ओके।
0: था। हाँ तो फिर मैंने एट द एंड सोचा कि नहीं इसको, क्योंकि मेरा टाइम डिले हो जाता है, क्योंकि अगर आपका वो समय चले जाता है तो फिर आपका जो कंप्लीशन होता है एक कोर्स का वो लेट हो जाता है। तो फिर मैंने फिर बाद में रजिस्टर कर लिया आर्टिकलशिप के लिए।
1: अच्छा ठीक है, तो
0: हाँ तो फिर मैंने
1: आपने
0: आर्टिकलशिप
1: अपने ऑप्शंस खुले रखे, सोचा कि अब ये कर सकता हूं तो आप आगे बढ़े।
0: हाँ फिर मैंने सोचा कि हाँ अभी फाइनली आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें अगर वापस से फेल हो गए तो वापस समय चले जाएगा, 6 महीने का समय आपका जा रहा है तो उधर आगे एक्सटेंड हो रहा है, क्योंकि आपका सीए फाइनल भी जो लास्ट एग्जाम वो क्लियर करना है तभी आप डिग्री ले सकते हो, तो उसको डिले हो जाएगा आपको, वो जो फाइनल कट है वो डिले हो जाएगा। तो इसलिए अभी से रजिस्ट्रेशन करा लो तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे
1: तो आपने आर्टिकलशिप फिर शुरू कर
0: शुरू
1: दी।
0: कर दी।
1: वो एक्सपीरियंस तो मुझे लगता है और ज्यादा आपको, जैसा आपने बताया अभी कि जॉब भी करनी है और पढ़ाई भी करनी है, तो कैसा था वो अनुभव शुरुआत में? शुरुआत में कैसा था?
0: शुरुआत में तो अब आदत पड़ गई थी कि आपको पढ़ना ही है, और ऐसी जिंदगी की आदत पड़ गई थी कि आपको जहाँ इतनी मौज वाली जिंदगी नहीं, आपको पढ़ना है और ये करना है, तो ऐसे एटीट्यूड ही बन गया था कि आपको बस यही आप की जिंदगी, यही लिमिट है, क्योंकि आप फंस गए हो ना वहाँ पे। क्योंकि अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं कर रहे तो फैमिलीज के ताने या फिर अपने को खुद को लगता है कि हम कुछ आउटपुट नहीं दे पा रहे हो, तो इसलिए थोड़ा वो पढ़ना ही तो जरूरी है क्योंकि एग्जाम क्लियर करने हैं और साथ में ऑफिस तो बहुत जरूरी। तो वो बहुत हेक्टिक होता था एक्चुअली, मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग, मतलब आपको ऑफिस में जाना है 10 बजे, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि ऑफिस में अपने हाथ से गलती हो रही तो फिर सीनियर्स की डांट खा लो, बॉसेस की डांट खा लो, क्योंकि वो बिजी रहते थे सर, मतलब जो हमारे चार्टर्ड अकाउंट जो इनकी प्रैक्टिस है, तो उनके काफी जो काम से रहते थे क्लाइंट से मिलना वो सब चीजें, तो वो उसकी
1: मिस
0: वजह से।
1: होता था।
0: हाँ तो हम, और हम नए थे छोटे।
1: उम्र भी उतनी नहीं थी।
0: हाँ, उम्र भी उतनी नहीं थी। आई गेस मुझे याद है कि मैं 1920 का होऊंगा जब मैंने आर्टिकलशिप स्टार्ट किया, वो टाइम में तो बच्चे मजे कर रहे होते मतलब कॉलेज लाइफ में, और आप प्रॉपर ऑफिस में जा रहे हो फॉर्मल्स पहन के,
1: 19 साल
0: तो
1: की उम्र में ही।
0: 19-20 साल की उम्र में, तो वो अलग ये रहता है, आपका अलग फील रहता है कि आप वो कर रहे हो।
1: जी
0: तो फिर मैंने मैनेज कर लिया, फिर मेरा सक्सेसफुली उसके बाद हो गया क्लियर एग्जाम,
1: ओके।
0: सेकेंड ग्रुप मेरा कंप्लीट हो गया, फिर
1: तो आपने ऑफिस को और पढ़ाई को दोनों को मैनेज
0: दोनों को
1: किया,
0: मैनेज किया।
1: क्या बात, बाप रे। तो तो लेकिन एक बात मुझे और यहाँ पे आपको पूछनी है कि

0: जैसे आपको कभी कभी लगता था कि आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं या बहुत हेक्टिक है, तो कोई कोई चीज थी जो आपको उसमें मदद करती थी? क्या मदद करता था?
1: जैसे मैंने पहले बोला कि मैं एग्ज़ाम मतलब पढ़ाई के टाइम में मेडिटेशन करता था, तो वो एक चीज़ मुझे हेल्प करती है, क्योंकि आपको तो चीज़ें पूरे माइंड से करने, बॉडी एग्जर्शन तो नहीं हो रहा है आपका, बस माइंड ब्रेन प्रॉपर होना चाहिए, वही से चीज़ें विचार आपके बनने चाहिए, एटीट्यूड बनना चाहिए, उसके लिए मेडिटेशन काफ़ी हेल्प करेगा। आप सुबह उठते ही सबसे पहले 10-15 मिनट मेडिटेशन कर लो, या फिर बीच बीच में भी आप थोड़ा एक जगह बैठ के रिलैक्स होके आंखें बंद कर लो, आप एक कुछ म्यूज़िक सुन सकते हो, मोस्टली आप वो मेडिटेशन वाला म्यूज़िक सुनो जिसमें लिरिक्स ना हो, क्योंकि वो आपको याद रहेगी, लिरिक्स वाले अगर आप सुनोगे तो
0: तो लिरिक्स ही याद आएंगे।
1: लिरिक्स याद आएंगे तो वो विदाउट लिरिक्स वाला जो मेडिटेशन सॉन्ग्स है वो सुनो, तो थोड़ा काम रहेगा,
0: जी
1: स्ट्रेस को थोड़ा मैनेज करने के लिए हेल्प होगा। और कभी कभी तो आपका स्ट्रेस बहुत ओवर हो जाता है, बट ठीक है, वो चीज़ें भी निकल जाती है, बिकॉज वो सस्टेन नहीं होता है, हम वो स्ट्रेस आपका थोड़ा रहता है थोड़ा, क्योंकि आपको कलीग्स वगैरह होते हैं उनके साथ थोड़ा बाहर चले जाओ, घूम लो थोड़ा, कहीं और चले जाओ, फ्रेंड्स के
0: रिलैक्स
1: साथ
0: करना
1: पार्टी कर
0: जरूरी
1: लो,
0: है।
1: यस थोड़ा, तो वो फिर ये हो जाता है, रूटीन में आ जाता है।
0: ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर स्ट्रेस है, प्रेशर है, तो वो अपने तक रखे, लेकिन
1: नहीं
0: उसको कैसे हमको डील करना है वो भी समझना जरूरी है।
1: एग्जैक्टली
0: क्योंकि नहीं तो जैसा आप बता रहे हैं, सीए का एग्जाम इतना टफ है, कंपटीशन इतना ज्यादा है, फिर आप एक सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाए तो आपको पूरा रीअपियर करना पड़ता है,
1: राइट
0: तो बहुत ऐसे सर्कमस्टेंस में खुद पे डाउट होने लगे, इससे ज्यादा इससे जरूरी है कि हम खुद को मोटिवेटेड रखें, बहुत जरूरी है।
1: एग्जैक्टली क्योंकि एट द एंड आपको ही करना है, कोई कुछ भी बोले या फिर कोई कुछ भी करे, आपको खुद को ही मैनेज करना है सब चीज़ें,
0: बिल्कुल
1: तो वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप खाली बैठ के मतलब आप स्ट्रेस लेके क्या आउटपुट क्या निकल रहा है आपका, आपका समय बर्बाद हो रहा है, आप खुद को तकलीफ दे रहे हो,
0: राइट।
1: है ना, तो आपको एट द एंड वो स्ट्रेस से मूव ऑन होके आपको को खुश रखने के बहाने ढूंढ के आपको ये करना ही
0: आगे
1: पड़ेगा,
0: बढ़ना है।
1: आगे बढ़ना पड़ेगा।
0: तो जब आपने आपका जॉब भी किया, साथ में आपने ग्रुप 2 भी क्लियर किया, तो उसके बाद क्या?
1: हाँ ओके, फिर आर्टिकलशिप जब आपकी स्टार्ट होती है उसके 2.5 साल के बाद आपको आप फाइनल का एग्जाम,
0: अच्छा
1: हाँ पहले तो आपको 2.5 साल में आर्टिकलशिप करना है, ऑफिस में रोज जाना है, ये कर ऑफिस के पूरे काम करने, कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यू डेट्स होते हैं, जैसे आप इनकम टैक्स का अगर पता करो तो इनकम टैक्स की एक ड्यू डेट होती है, इनकम टैक्स रिटर्न्स की फॉर्म्स की, तो वो आपको अगर ड्यू डेट पे पूरा काम होना चाहिए, तो फिर पेनल्टी इंटरेस्ट वगैरह क्लाइंट को लगता है, अगर आपको क्लाइंट को प्रॉपर सर्विस देना है तो वो चीज़ें आपको करनी पड़ती है, तो फिर आप आर्टिकलशिप में तो आपको तो करना ही पड़ता है, तो कभी कभी काफ़ी लेट तक आपको ऑफिस रह के काम करने हैं, तो वो ड्यूरिंग आर्टिकलशिप आपको ऑफिस प्रॉपरली करना है, साथ में आपको सीए फाइनल की पढ़ाई भी करनी है।
0: बिल्कुल
1: वो ग्रुप 2 तो अलग ये था,
0: हाँ।
1: उसको आपको क्लियर करने के बाद फिर आप फाइनल में फोकस करना
0: और
1: है,
0: इसमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं?
1: इसमें भी 8 सब्जेक्ट्स होते, बट उनका लेवल जो होता है वो थोड़ा एडवांस होता है, इट्स लाइक हाई लेवल नॉलेज होता है वो, तो वो आपको ये करना होता है, उसका सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, जैसे इंटरमीडिएट में भी वास्ट होता है, तो वो एज के हिसाब से लगता है, क्योंकि आप फाइनल में गए हो तो आर्टिकलशिप के, तो आपको नॉलेज भी आ गया, तो उस हिसाब से वो ठीक है, बट सिलेबस काफ़ी वास्ट हो जाता है,
0: तो वो 8ों सब्जेक्ट के पेपर एक समय देने होते हैं या यहाँ भी?
1: उसमें भी 2 ग्रुप का ऑप्शन है, ग्रुप 1 ग्रुप 2, आप दोनों भी दे सकते हो, कभी मतलब एक दे दो पहले फिर बाद में दो, तो मोस्टली मैंने सुन मेरे मतलब जो दोस्त है एक ग्रुप देते हैं, क्योंकि आप आर्टिकलशिप कर रहे हो उसमें टाइम जा रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, फिर लास्ट में 2.5 साल के बाद मतलब आपको 6 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली लीव्स का ऐसे समझ लो कि आपको 6 महीने कोई भी ऑफिस में आप काम कर रहे हो तो बॉसेस आपको 6 महीने की छुट्टी दे देंगे पढ़ाई के लिए, मतलब डिपेंड ऑन फॉर्म्स 4 to 6 मंथ्स की वो लीव होती है जिसमें आपको फाइनल की पढ़ाई करनी है, क्योंकि वो सफिशिएंट टाइम नहीं है एक्चुअली स्पीकिंग, ड्यूरिंग आर्टिकलशिप भी आपको पढ़ना है।
0: ठीक है। तो आपने फिर 2.5 साल मतलब मेहनत किया, और क्या सीखने को मिला है? प्रैक्टिकल आपको क्या सीखने को मिला जब आप आर्टिकलशिप कर रहे थे?
1: एक्चुअली मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही होती है, क्योंकि आप उसमें देखोगे एग्जाम अगर मैं टाइम कैलकुलेट करूँ तो ये 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आर्टिकलशिप आपको 3 साल करना है, तो ये अच्छी ब्यूटी इसलिए क्योंकि आपको प्रैक्टिकल चीजें पता चल रही, आप बुक में पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं कि वो हमेशा हर चीजें एज इट इज अप्लीकेबल हो जाएंगे। वैसे नॉलेज प्रैक्टिकल है, बट जब आप प्रैक्टिकली ऑफिस में जाते हो, क्लाइंट से बात करते हो और प्रैक्टिकली काम करते हो जो तुम्हें सीए बनने के बाद करना है, तो वो बहुत जरूरी होता है क्योंकि आप गलती कर सकते हो। मेन चीज है कि आप ड्यूरिंग आर्टिकलशिप गलती करते, लेकिन एक बार आप प्रोफेशनल बन जाते हो आफ्टर क्वालिफाइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप गलती करने का जो स्कोप है आपका कम हो जाता है, बिकॉज आपको क्लाइंट को सर्विस देना है
0: right.
1: या फिर आप जॉब में हो तो वहां पे भी आप गलती नहीं कर सकते हो, या प्रैक्टिस में वहां गलती नहीं कर सकते, क्योंकि उससे ऐसा हो सकता है कि आप क्लाइंट को पेनल्टी बैठ सकती है, क्लाइंट ना खुश हो जाए और आपका बिजनेस चले जाए। तो वो जो गलती करने का जो समय होता है ये 2.5 साल होता है
0: okay.
1: जो आप ऑफिस
0: हो,
1: हाँ सीखते हो, करके सीखते हो,
0: करके सीखते हो
1: एग्जैक्टली
0: okay. तो यहाँ मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगी कि अगर कोई एक 19 या 20 साल का बच्चा, कोई भी यूथ अगर जा रहे हैं जॉब के लिए, मान लीजिए आर्टिकलशिप है या कोई और जॉब है, अगर वो जा रहे हैं 19-20 साल की उम्र है, तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया है, तो क्या उनको बोलेंगे जो उनका अनुभव बेहतर हो?
1: पहली बात तो आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, एटीट्यूड बनाना पड़ेगा एक प्रॉपर, कि आपको मतलब ऐसा, ये पहले ही वैसे आपका ये बन गया होगा एटीट्यूड, क्योंकि पढ़ाई, क्योंकि आपको थोड़ा मौज वाली दुनिया से थोड़ा दूर रह के आपको ये करना है, क्योंकि काफी वर्क प्रेशर होता है ऑफिस में आर्टिकलशिप के ड्यूरिंग, काफी वर्क प्रेशर होता है और आपको करना ही पड़ता है। लाइक समवेयर बॉसेस को ऐसा रहता है कि आप देखो इतना काम दिया तो देखो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ऐसा ये रहता है थोड़ा। कभी कभी बॉसेस स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कभी रूड हो जाते हैं, फिर अपने को सुनना, बिकॉज अपन जूनियर है, अपन सीख रहे, तो थोड़ा वो करना ही भी पड़ता है। हाँ, वो टाइम पे थोड़ा बुरा लगता है, क्या सुनना पड़ रहा है वो सब चीजें,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बट वो अच्छे प्रोफेशनल के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप डांट खा खा के ही और गलती करके ही इंसान आगे बढ़ता है। वो तो आप भरपूर गलती करो, मतलब ऐसे नहीं जानबूझ के गलती नहीं करो, बट नई नई चीजें करो, तो उससे फिर आपका उतना एक्सपीरियंस भी उसमें पड़ेगा।
0: ओके okay. एंड अगर डांट सुनते भी हैं तो जैसा आपने कहा कि शुरुआत में होता है और उससे थोड़ा और स्ट्रांग होता है।
1: एग्जैक्टली जितना ऐसे बोलते ना, जितना हीरे को आप तराशोगे उतना वो चमकता है। इट्स लाइक अपन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हीरा बनने वाला है, जो अभी कोयले के खदान में है, जो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन उसको वो तरस रहा है और उसको फाइनल मतलब क्लियर करके बाहर निकलना है, तो आपको जितना मतलब आप पीसोगे, जितना ज्यादा आप रगड़े जाओगे उतना ज्यादा आप चमकोगे बाहर आके। तो वो चमकने के लिए आपको जितना ज्यादा हो सके मतलब आप प्रेशर को हैंडल करो। हाँ थोड़ा वो होता है, बट आप दोस्तों के साथ रहते हो, कलीग्स रहते हो ऑफिस में, तो थोड़ा मैनेज हो जाता है। ठीक है, कभी डांट सुन लो फिर भूल जाओ, बट अपना काम कंटिन्यू करो, आप नई नई चीजें सीखते जाओ, वो जरूरी। और थोड़ा
0: मतलब दिल से नहीं लगाए डांट को।
1: एग्जैक्टली,
0: और वो ये ध्यान रखे कि हमें ये बेहतर बनाएगा,
1: बेहतर बनाएगा। कभी कभी मतलब बॉसेस को खुद से वो नहीं करते, वो तो उनको मतलब और ज्यादा ये बढ़ाने के लिए, वो
0: हमें आगे बढ़ाने के लिए।
1: हाँ, आगे बढ़ाने के लिए।
0: ओके okay. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, जैसा कि कम्युनिकेशन आजकल कहते हैं बहुत जरूरी है, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हम बात करते हैं जब हम जाते हैं जॉब्स के लिए,
1: right.
0: तो क्या आपको लगता है कि कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए, या कम्युनिकेशन क्या मदद करता है हमें?
1: ओके, कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आप प्रैक्टिस में जाओ या फिर जॉब में जाओ, तो आपको वहाँ पे, जैसे अगर प्रैक्टिस में जा रहे हो तो आपको क्लाइंट को एक्वायर करना है, नए क्लाइंट्स को की सर्विस देना है, तो उनको आपको प्रॉपर कम्युनिकेट करना जरूरी है, तभी जाके आप वो न्यू क्लाइंट को एक्वायर कर सकते हो और उनको कंटिन्यू रख सकते हो। प्रॉपर कम्युनिकेशन जरूरी है।
0: okay.
1: आप ऑफिस में जा रहे हो और आजकल आप देखोगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आर हायरिंग फॉर द गुड पोजिशन इन द फॉर्म, कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में आप कोई कोई तो सीईओ सीएफओ लेवल पे चार्टर्ड अकाउंटेंट आज पोजीशन में है, तो वो पोजीशन में आप बैठे हो तो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल तो बेसिक चीज है, वो होना ही चाहिए।
0: तो ये धीरे धीरे डेवलप होता है जब आप फील्ड में उतरते हो।
1: यस यस, हाँ, जब आप फील्ड में उतर रहे हो, मतलब आप आर्टिकलशिप कर रहे हो तो आपको क्लाइंट से कम्युनिकेट करना है, बॉसेस से कम्युनिकेट करना है, कलीग से कम्युनिकेट करना है, कभी कभी इंटर ऑफिसेस होते हैं उससे कलीग कनेक्ट करना है, तो वहां पे आप वो चीजें सीख जाते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स,
0: कि आपको भाषा कॉन्फिडेंस होना, आपकी भाषा अच्छी होना और सम्मान देना
1: रिस्पेक्ट देना,
0: ये बहुत ज्यादा जरूरी
1: होता है
0: जी। तो दोस्तों बिल्कुल आप इस मामले में अगर आप जानकारी रखते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करें हमारे व्यवहार में सम्मान सभी के प्रति जरूर हो. भाषा हम जितना हो सके पढ़ें सुने, और साथ साथ आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आप कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है अपने जीवन में हमें आगे बढ़ना है तो. और धीरे धीरे होता है, ये ना सोचें अभी नहीं है तो अरे क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे सीखते हैं आगे बढ़ते हैं. जैसा आपने बताया कि आर्टिकलशिप हुई आपकी, अब फाइनल फिर कैसे?
1: हाँ, मैंने तो शुरुआत में फिर आर्टिकलशिप के एक साल तो मजे में ही चले गए, ये नहीं मतलब ऑफिस में जा रहे, बस ऑफिस में जा रहे और ये कर रहे, मतलब मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया था फाइनल का. बट फिर बाद में मैंने क्लासेस वगैरह लेना स्टार्ट कर दी और ऑनलाइन क्लासेस करता था मैं. पेन ड्राइव लेक्चर्स आते हैं अच्छे अच्छे बेस्ट फैकल्टीज के, आप गूगल करके आपको अच्छे अच्छे फैकल्टीज के हर सब्जेक्ट वाइज लेक्चर्स मिल जाएंगे.
0: ठीक है,
1: वो मैंने ऑर्डर करके फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया आफ्टर वन ईयर. वैसे आप भी वैसे कर सकते हो, मतलब
0: कहाँ से ऑर्डर करते हैं
1: exactly? हमने तो गूगल उनके वेबसाइट्स पे जाके, क्योंकि अभी काफी सीएज है जो पढ़ाते हैं.
0: अच्छा.
1: तो उनसे आप लेक्चर्स ले सकते हो.
0: ठीक है,
1: मतलब वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट के 8 लेक्चर्स लेके आप वो पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो. आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, लैपटॉप में आप वो पेन ड्राइव क्लासेस आते हैं, आपको मटेरियल भी प्रोवाइड हो जाता है क्लासेस से और आप फिर पढ़ना स्टार्ट कर दो.
0: ओके.
1: प्रत्येक हर सब्जेक्ट को 8 सब्जेक्ट के क्लासेस कंप्लीट कर लो. तो मैंने फिर वो क्लासेस करना स्टार्ट कर दिया. फिर आर्टिकलशिप मतलब सुबह मैं एक क्लास कर लेता था, शाम को एक क्लास कर लेता था, ऐसे 2-2 घंटे 3-3 घंटे का, ऐसे 3-4 घंटे अप्रोक्सीमेटली क्लास कर लो, फिर दिन भर ऑफिस कर लो. तो वैसे मैनेज करना पड़ेगा आपको.
0: ठीक है.
1: फिर क्योंकि आपको फिर लास्ट में जब आपके एग्जाम है उसके 4-6 महीने का मोस्टली ऑफिस में लीव मिलती, बस वही समय मिलेगा जिसमें आपको बस सेल्फ स्टडी करने,
0: जिसमें आपको पूरा समय सिर्फ पढ़ाई के लिए
1: करने, मतलब लेक्चर नहीं कर सकते. आपको लेक्चर ऑफिस मतलब कर रहे हो तो उसी ट्यूरिंग आप लेक्चर कर लो, फिर बाद में आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो.
0: ओके. तो जैसा क्योंकि आपने बताया ग्रुप 1 ग्रुप 2 है, तो ग्रुप 2 का जब आपने क्लियर किया तो कैसा था, मतलब क्या लगा था आपको, क्या था आपके मन में उस वक्त? ग्रुप 2 जब आपका क्लियर हुआ, मतलब एकदम फाइनल एग्जाम जब क्लियर हुआ आपका,
1: ओके,
0: तो कैसा लगा जब रिजल्ट आने वाला था, या जब रिजल्ट आया तो कैसा लगा?
1: वो तो शब्दों में तो नहीं बोल सकता क्योंकि बेस्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ, बिकॉज द थिंग्स फॉर विच वी आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम लास्ट 4-6 ईयर वी फाइनली अचीव इट.
0: 6 साल से आप एक ही चीज के लिए लगे मेहनत कर रहे हैं.
1: मेहनत कर, जो संकल्प मैंने 9th-10th standard में लिया था कि आई हैव टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोफेशन में आना है, तो इतनी मेहनत की है, इतने सैक्रिफाइसेस किए हैं, फंक्शन सैक्रिफाइस. इवन आई विल से कि फाइनल का जब मेरा एग्जाम का प्रिपरेशन चल रहा था तो मैंने तो मेरा फोन तो मेरा फॉर 5 मंथ्स आया फोन स्विच ऑफ था मेरा, नो कनेक्शन विद नो फेसबुक नो सोशल मीडिया नथिंग, जस्ट ओनली पढ़ाई, बस बस पढ़ाई चल रही. सुबह उठ के बस वो जो सब्जेक्ट से वो पढ़ो, शाम को सोते वक्त भी वही पढ़ो,
0: बस वही,
1: कोई शेड्यूल नहीं, बिकॉज आपको फोकस रहना होता है. क्योंकि आप अगर सोशल मीडिया, फिर कैसे हुआ था शुरुआत में भी मैं थोड़ा इसमें मिस गाइड हो गया था कि मैं मोबाइल पे सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, इंस्टाग्राम चला रहा हूँ या फिर फंक्शन अटेंड कर रहा हूँ, शादी में जा रहा हूँ, तो वहाँ डिस्ट्रैक्शन हो रहा है. क्योंकि आपको फुल फोकस्ड माइंड होना चाहिए, मतलब आपके माइंड को कोई नई चीज नहीं होनी चाहिए सोचने के लिए, देखने के लिए. तो आप देखो ही मत, सोचो ही, तो आप के पास कोई बुद्धि को सोचने के लिए, मन को सोचने के लिए कुछ होगा ही नहीं पढ़ाई के अलावा.
0: पढ़ाई, बस पढ़ाई,
1: बस पढ़ाई.
0: ओके.
1: तो वो आपको 45 मिनट्स मैंने पढ़ाई की थी, तो वो मुझे कभी कभी रोना भी आता था कि यार इतने दिन हो गए और कितना पढ़ना है, रिजल्ट पास आएगा फेल आएगा कैसे होगा क्या होगा. एग्जाम देने के बाद तो लग रहा था कि हाँ इस बार हो जाना चाहिए.
0: अच्छा.
1: बट शुरुआत में तो मेरा ये हो गया था, बट वही कि आपको कि मेहनत का रंग आ गया वापस, मतलब आप
0: बिल्कुल ऐसे मोमेंट को शब्दों में नहीं मैं
1: नहीं
0: कह
1: सकते.
0: आपके माता पिता और घर में भी सब लोग बहुत खुश हो गए.
1: फर्स्ट टाइम मैंने पापा को रोते हुए देखा था, नहीं तो उनका कभी मैंने रोना नहीं सुना था, बट वो रो रहे थे, सभी लोग रो रहे थे, तो वो खुशी के आंसू थे.
0: बहुत प्राउड महसूस कर रहे.
1: एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा.
0: ओके. तो ये आपने कब क्लियर किया फाइनल एग्जाम सीए का, कौन से वर्ष में?
1: ये December 21 में मेरी एग्जाम हुई थी, अभी ये कोविड के ड्यूरिंग, फिर मेरा रिजल्ट 10th ऑफ फेब आया था, वो डेट को तो मैं कभी नहीं भूल सकता लाइफ में, ड्यूरिंग माय होल लाइफ, 10th February 2022
0: क्या बात,
1: तो रिजल्ट आया था और 1 बजे का समय था जब डिक्लेयर हुआ रिजल्ट और मैंने लैपटॉप पे ओपन किया तो पास था, तो मेरे को तो आधे घंटे तक कुछ सोची, आई वॉज टोटल ब्लैंक, क्या हुआ मेरे साथ, मैं तो ऐसे शांत पड़ा था
0: बिलीव नहीं हो रहा था
1: एग्जैक्टली
0: बिल्कुल, आपने कड़ी मेहनत की है और आप डिजर्व करते थे तभी आपको ये मिला है। और जैसा आपने बताया कई बार हमें लग सकता है कि दूसरे लोग कुछ तो आराम कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो फल भी आपको मिलेगा।
1: एग्जैक्टली
0: और दूसरे हो सकते हैं आज मस्ती कर रहे हैं तो उनको कल उनका कुछ और उन्हें करना हो, सबका जर्नी अलग अलग है, लेकिन आपकी मेहनत का फल आपको ही मिलता है। और डेफिनेटली बहुत कुछ आपने सैक्रिफाइस किया, डेडिकेशन से आपने एफर्ट किए, तब जाके आपने आप CA बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने।
1: एग्जैक्टली और उस दिन मुझे याद है कि उस दिन मैंने 400 से ज्यादा लोगों को रिप्लाईज किए कॉन्ग्रेचुलेशंस का, जो लोग मुझे जानते नहीं थे, जो बस मतलब ठीक है कोई नहीं ऐसे ही नॉर्मल है, मतलब कुछ वैल्यू नहीं है, उन सब लोगों का मैसेज आया कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तो वो एक अलग सेटिस्फेक्शन रहता कि सब लोग याद कर रहे खुशी में।
0: राइट
1: जब आप फेल होते तो कोई आपके साथ नहीं होता, 2-4 लोग होते बस, 2-4 फ्रेंड और फैमिली होती, बट आप पास हो जाते हो तो लोग क्राउड होता है आपके पास।
0: राइट और यही ध्यान रखना होता है कि वो जो लोग साथ रहे हैं जब हमने नहीं कुछ अचीव किया था वो उनका ध्यान जरूर रखना होता है।
1: Exactly.
0: हमेशा बहुत अच्छी बात है आपने कही। एंड मुझे लगता है हम अपने शो के अंतिम मोड़ पे भी आ गए। मैं आपको पूछना चाहूंगी कि इसके बाद आपके क्या प्लान्स हैं और अगर आप CA बन जाते हैं तो क्या होता है आगे?
1: ओके, CA बनने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, तो मैं अगर आपको बताऊं तो हम फाइनल में जो 8 सब्जेक्ट पढ़ते तो हर एक सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइजेशन को ये करके आप उसमें और आगे पढ़ सकते हो या फिर और आगे आप उसमें एक्सप्लोर कर सकते हो, वो एक ऑप्शन होता है कि आप कोई और डिग्री ले लो, जैसे MBA वगैरह कर सकते हो या फिर अदर फॉरेन कोर्सेज भी, वो भी कर सकते हो, मतलब आपको और कई और ऊंचे लेवल पे जाना है उसके लिए। लेकिन आपको करियर ऑप्शन बहुत अच्छे है, आप प्रैक्टिस में जा सकते हो, मतलब खुद का पर्टिकुलर सब्जेक्ट रिलेटेड प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, वो एक अच्छा ऑप्शन होता है। सेकंड ऑप्शन है जॉब कर सकते हो, जॉब की वैकेंसी काफी है इंडिया में या फॉरेन में भी, आज इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर किया जाता तो ऑल ओवर इंडिया काफी वैकेंसीज है कंपनीज के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, तो वहाँ आप जॉब कर सकते हो। मेरे केस में मैंने जॉब का ऑप्शन लिया कि शुरुआत में मैं जॉब कर दो, फिर बाद में और समय है सोचने के लिए, जॉब्स काफी है, जॉब कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर आप अदर फील्ड भी ये कर सकते हो,
0: चूज कर सकते हैं, मतलब आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज
1: है,
0: लेकिन हाँ बस यही है कि आपको मेहनत करनी है, एग्जाम देने हैं, उसके बाद आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस
1: ऑप्शन यस, मतलब आपको पढ़ते रहना है एक्चुअली कोई भी प्रोफेशन में चले जाओ, जहाँ पे आप पढ़ना बंद करते हो तो आप नहीं बढ़ सकते, आपको पढ़ना ही पड़ेगा,
0: सीखना जरूरी
1: सीखेगा तो ही बढ़ेगा।
0: बिल्कुल। और यहाँ दोस्तों मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगी कि अगर आपको कोई जानकारी चाहिए इससे ज्यादा जो आपको नहीं मिल पा रही है ऑनलाइन, तो आप रेडियो मधुबन पर हमें मैसेज कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको वो जानकारी उपलब्ध कराने की। रेडियो मधुबन का नंबर है 9414151415, यानी कि 9414151415। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। अच्छा, जाते जाते मैं ये आपसे बोलना चाहूंगी, जो भी युवा साथी आपको सुन रहे हैं, वो स्कूल में हो सकते हैं, कॉलेज में हो सकते हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, ये जो अपना यूथ पीरियड होता है, जो आई थिंक मुझे बोलना चाहिए 18 से स्टार्ट हो सकता, 16-18 से 10वीं 12वीं 11वीं के बाद अपना स्टार्ट होता है, ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है ऐसा मुझे लगता है। और आप 25 तक जो आपका पीरियड है ये बहुत ही क्रूशियल है, मतलब आपके लाइफ का, आपको अगर बेहतरीन जिंदगी जीना है, कुछ कंट्रीब्यूट करना है नेशन को या फिर खुद के फैमिली को कंट्रीब्यूट करना है, खुद के लिए कंट्रीब्यूट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट समय होता है जिसमें आपको जो आपका हर एक कदम इंपॉर्टेंट है, आपको एक प्रॉपर स्टेप लेना चाहिए, आपका एक गलत कदम आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकता है या फिर उसको एक, क्योंकि आफ्टर 25-30 आप नहीं कर सकते चीजों को जो चीजें आप तब कर सकते थे जो 18-25-24 वाले पीरियड में, इसलिए ये समय में जो आप चीजें कर रहे हो तो आप एक बस खुद को पूछियो कि इज इट मेकिंग एनी वैल्यू एडिशन टू अस, मतलब कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है क्या
0: या हमारे जीवन में
1: वैल्यू एडिशन, या मतलब अपन कौन से रास्ते की तरफ जा रहे हैं, एक अच्छाई वाला रास्ता जहाँ पे फ्यूचर ब्राइट है, अच्छी अच्छा फ्यूचर है, वहां जा रहे, या फिर अपन खुद को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहे कि फ्यूचर में अपनी लाइफ कैसे, आप वो सोचिए कि आप 30-40 के बाद कैसे होंगे, आप सपने देखिए कि आपको 30-40 के बाद क्या होना चाहिए, आपको कुछ दिनों के बाद कैसे होना चाहिए, तो वो चीजों विजन रख के आप काम कीजिए, क्योंकि आपको फिर जिंदगी बहुत बड़ी है अगर अच्छे से जीना, और एक हर एक को एक वैल्यूएबल लाइफ मिली है, इसलिए वो पूरे जिंदगी को पूरा जीना ही सबसे बेस्ट होता है। आप कोई कुछ भी करो, जरूरी नहीं कि आप सीए ही करो या फिर डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आप कुछ भी करो, जो भी प्रोफेशन में आप हो, आप उसको फुल फ्लेज और प्रॉपर स्टेप लो, वो इम्पोर्टेंट है कि आप,
0: मतलब कल को ये ना लगे कि अरे ये कर लेते हैं,
1: exactly.
0: थोड़ी और मेहनत कर लेते
1: हैं, exactly. वो हमें भी कभी कभी लगता है कि कोई चीज हमने नई चीज या मिस आउट हो गई, तो अभी लगता है कि वो चीज कर लेना था, वो समय तो चलेगा, अभी तो कुछ नहीं है, क्योंकि आप जब फिर वो मेहनत करने के बाद जो हासिल करते हो उसका जो फ्रूट होता है, वो उसका एक्सपीरियंस जो होता है, मतलब आप मरते दम तक नहीं भूल पाओगे, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करने का तो अलग ही महत्व होता है, वो चीजों को ध्यान रख के आप बस लाइफ को जो बाकी करना ही के
0: नहीं, बहुत आपने बहुत सरल तरीके से अपनी ये सभी बातें कही, और आपने साथ साथ मोटिवेट भी किया और प्रैक्टिकल बातें भी बताई कि हाँ ऐसा नहीं है कि आराम से हो रहा है, लेकिन हाँ आप मोटिवेटेड हो तो आप कर सकते हो,
1: लाइफ को जियो, भी मस्ती करो, दोस्तों के साथ घूमो फिरो, वो भी जरूरी है, क्योंकि वो उम्र तो वापस नहीं आने वाली, क्योंकि 25-30 के बाद आप दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाओगे लेकिन उतना आपकी हेल्थ साथ नहीं देंगी, वो सब करते हुए आप करियर को भी एक फोकस रख के आगे बढ़ो, तो वो बहुत जरूरी है,
0: बहुत जरूरी, युवा काल में बहुत जरूरी,
1: बहुत जरूरी है।
0: दोस्तों अपना रास्ता खुद चुने, और कई तरीके के रास्ते आपके सामने आएंगे, हो सकता है आपके दोस्त भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको चुनना है आपका भविष्य, और इसीलिए जरूरी है, क्योंकि कई युवा साथी हैं दोस्तों बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत उनके पास हुनर है, लेकिन कई बार नशे की आदत, कई बार इस तरह की आदतें पड़ जाती हैं युवा काल में, जो जीवन के ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पल हैं वो ऐसे ही गुजर जाते हैं। और दोस्तों वैसे तो कहते हैं कभी भी देर नहीं होती बदलाव के लिए, तो इसीलिए अगर आपको आज भी ये महसूस हुआ है तो आज ही ये बदलाव लेकर आइए अपने जीवन में, एक करियर, एक विजन, खुद से प्रश्न कीजिए, जैसा आपने कहा कृष्णा हमारे साथ हैं और उन्होंने कहा खुद से प्रश्न कीजिए कि आप अपना भविष्य कैसा देखना चाहते हैं, तो जवाब मिल जाएगा कि क्या जॉब किस तरह का आप करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं।
1: एग्जैक्टली,
0: थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड यूथ को गाइड करने के लिए, बहुत सरल तरीके से हमसे आपकी जानकारी शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू रेडियो मधुबन, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी यूथ से कनेक्ट होने के लिए, इसके लिए थैंक यू सो मच,
0: एंड थैंक यू आप सभी को भी दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रेडियो मधुबन 90.4 FM। अगर आप और भी जुड़ना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, तो रेडियो का नंबर है 94।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ चैलेंज, जीवन एक सुंदर एक चुनौती है, एक्सेप्ट इट एंड फेस इट, है ना। मैं एक बार एक बहुत सुंदर आर्टिकल पढ़ रहा था जिसे मैं काफी मोटिवेट हुआ। उसमें था कि एक रिपोर्टर बच्चों के पेंटिंग कॉम्पिटिशन में गए, छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग कर रहे थे। जब सेकंड प्राइज का अनाउंसमेंट हुआ तो ये रिपोर्टर ने देखा कि एक व्यक्ति एक 10 वर्ष के बच्चे को स्टेज पर लेकर जा रहा है टू रिसीव द सेकंड प्राइज। तो रिपोर्टर को लगा व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस बॉय। जब वो नीचे उतरे तो ये रिपोर्टर उस बच्चे के पास जाकर पूछे, एनी प्रॉब्लम विद योर लेग्स, आपके पैरों में कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर 10 वर्ष का बच्चे ने कहा, मैडम वन ऑफ माई लेग इज एम्प्यूटेड, मेरे एक पैर को काटा गया। तो उन्होंने कहा, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन ऐसे कैसे हुआ? बोला, जेनेटिक डायबिटीज प्रॉब्लम, डॉक्टर्स ने कहा इसको एम्प्यूट करना पड़ेगा। तो रिपोर्टर ने उस 10 वर्ष के बच्चे से एक बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके उम्र के बच्चे इतना खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, उनको देखकर आपको कैसे लगता है? और ये 10 वर्ष बच्चा का ब्यूटीफुल जवाब था, मैडम इस संसार में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और ये सारे प्रॉब्लम को सुधारने के लिए भगवान को बहुत दौड़ धूप करनी पड़ती होगी और शायद भगवान को एक मजबूत पैर की जरूरत पड़ी होगी, इसलिए शायद भगवान ने मेरा एक पैर ले लिया है। कैन वी लर्न समथिंग फ्रॉम दिस 10 ईयर ओल्ड बॉय? क्या हम उनसे कुछ सीख सकते क्या? है ना, परिस्थिति आई लेकिन उस परिस्थिति को चैलेंज समझकर एक्सेप्ट किया, फेस किया और आगे बढ़े। आज हम देखते हैं समाज में इतने सारे सुसाइड रेट्स क्यों हो रहे हैं। उसका एक कारण हो सकता है कि वो परिस्थिति को चैलेंज के रूप में वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, हताश हो रहे हैं, टूट रहे हैं। और विशेष तौर पर मैं उस स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहूंगा कि जब आपके रिजल्ट्स आते हैं तो प्लीज आप जो भी रिजल्ट्स आए उसको आप एक्सेप्ट करो, और अगर आपको कम मार्क्स मिल रहे हैं तो यू फेस इट एंड देन ट्राई अगेन टू स्कोर मच गुड मार्क्स। हम देखते हैं हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जब उनका रिजल्ट डिक्लेयर होने होता है ना, तो उसके एक दिन पहले बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं और हर एक न्यूज़पेपर का हॉरोस्कोप पढ़ेंगे, राशिफल। ऐसे स्टूडेंट के लिए हम कहते हैं, हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो बीच बीच में अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करो और इंट्रोस्पेक्ट करो और अपनी जो जीवन की जो खुशी, द हैप्पी मोमेंट्स, शेयर इट विद एवरीवन, एंड दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट।

गुड इवनिंग नमस्ते, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त मोना। आप दोस्तों के बीच प्यार के साथ, मस्ती के साथ गुनगुनाते खूबसूरत शाम बिताने आई हूं और साथ में कुछ कहानियां, कविता और कुछ अच्छी बातें भी लेकर आई हूं। तो आप जुड़े जरूर रहना हमारे साथ, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन, भारत तेरी धरती को नमन। अगला गीत सिर्फ आपके लिए लेकर आ रहे अब उड़ान में।

भारत तेरी धरती को नमन। बिल्कुल, उस भारत को नमन करने के साथ साथ कर्म को भी नमन। कर्म हमारा ऐसा हो जिससे लोगों को या आत्माओं को, धरती को सुख मिले। कर्म कर ए मूढ़ मन, तू कर्म कर। तन को कर पाषाण तू, और श्वास को ज्वाला बना। भाग्य के बल पर न जी, तू खुद ही अपना रथ चला। इस जीवन को दिशा तू दे, एक लक्ष्य को स्थापित तू कर। कर्म कर ए मूढ़ मन, तू कर्म कर। कर्म करता चल, तू कर्म करता चल। भाग्य रेखा की परिश्रम से बदलते देखे हैं, कोई ये न जाने कि क्या उसके भाग्य में लिखे हैं। कल क्या होगा सोच कर तू व्यर्थ में पछताएगा। कर्म कर ए कर्मयोगी, कल कभी न आएगा। फल की आशा त्याग कर कर्मठ की भांति आगे बढ़। कर्म कर ए मूढ़ मन, तू कर्म कर। कर्म कर, आगे बढ़ते हैं। और आज क्या सवाल आप दोस्तों के लिए लेकर आते हैं। सवाल जुड़ा है आज एक कहावत के साथ, बांट जौना। तो दोस्तों, हिंदी का ये वाक्यांश है बांट जौना, इसका अर्थ क्या होता है? आपके सामने ऑप्शन है ए खाना बनाना, बी जुताई करना, या सी प्रतीक्षा करना। सही जवाब झटपट दीजिए 9414151415 पर दीजिए। और मुकेश हेमंत कुमार का आज जन्मदिन है, उसी से जुड़ा उनके द्वारा सुर दिया हुआ ये गीत आपके लिए अब उड़ान में है। ये दिल की सुनो।

0: महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
2: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

वेल दोस्तों, इसके साथ साथ पुनः आज का सवाल एक बार और दोहराते थे। हिंदी वाक्यांश बाट जोना का अर्थ क्या होता है? ए खाना बनाना, बी जुताई करना, या फिर सी प्रतीक्षा करना। वेल, आप कहीं जाते हैं और आप बहुत देर से इंतजार करते हैं तो उसको कहते हैं बाट जोना। तो मतलब भाई अब तो अर्थ बता दो। हमारा नंबर नोट कर लो, 9414151415 पर कॉल करो। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। चंद्रेश जी की मीठी आवाज आपके लिए हो रही है उड़ान में।

0: സാരേഗാമ കാർവ ഡിജിറ്റൽ ഓഡിയോ പ്ലേ.
1: ये तंबाकू क्या होता है?
2: अरे तिकु नहीं पता क्या? इसमें पता है लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते. अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
3: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया.
1: अच्छा तो फिर मेरे नंबर कम आए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
2: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है.
4: ऐसी बातें बचपन में होती है, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है. बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं. धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है. सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की. रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी.

0: रतन एक गरीब कपड़ा बुनने वाला था। उसका काम बहुत ही अद्भुत था, सभी को बहुत पसंद आते थे। कपड़े बहुत जल्दी बिक जाते थे, लेकिन फिर भी उसकी गरीबी कम नहीं हुई। वो अकेला ही रहता था। वो बहुत बड़ा शिव भक्त था। एक दिन,
1: महादेव महादेव, मैं तो आपकी इतनी प्रार्थना करता हूँ, कितनी पूजा करता हूँ, लेकिन आप तो मेरी प्रार्थना स्वीकार ही नहीं करते हैं। मैं अब और कितनी तकलीफ सहूँ महादेव, अब और कितने दिनों तक मेरी जिंदगी ऐसे गरीबी में गुजरेगी। अब आप ही कुछ करिए महादेव, आप ही कुछ कीजिए, दया कीजिए, कृपया अपना चमत्कार दिखाइए बाबा, दया करो बाबा, दया करो, मुझसे ये गरीबी और बर्दाश्त नहीं होती।
2: अच्छा, ये सब क्या है? आप क्या देख नहीं रहे कि आपका भक्त कितनी तकलीफ में है?
0: आप किसकी बात कर रही हैं?
2: किसकी बात करूंगी, रतन की बात कर रही हूँ। रतन हर समय आपकी पूजा करता है, रतन आपका परम भक्त है।
0: मैं जानता हूँ।
2: अरे जानते हैं का क्या मतलब? आपके इस तरह के परम भक्त के प्रति आप इतने ज्यादा कठोर क्यों हैं? आप तो अपने भक्तों के प्रति इतने कठोर नहीं होते हैं कभी भी, आपको उस पर दया नहीं आती है? इस तरह के गुड़ी इंसान को देख कर मुझे भी दया आ रही है।
0: दया तो आती है।
2: तो फिर आप उसके लिए कुछ कीजिए ना प्रभु।
0: क्या करूं?
2: क्या करूं मतलब, उसकी किस्मत बदल दीजिए ना। उसके पास ज्यादा पैसे रहेंगे तो वो सुख और शांति से रह पाएगा प्रभु। और ऐसी बात नहीं है प्रभु कि उसके पास कोई गुण ही ना हो।
0: सुनिए पार्वती, सब उसकी किस्मत की वजह से है। उसकी किस्मत मैं बदल नहीं सकता हूँ, मेरे हाथ में नहीं है।
2: मुझे भरोसा नहीं है, आप देना नहीं चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है, आपको नहीं देना तो मत दीजिए। आपके किसी भक्त का ऐसा अपमान, ऐसी तकलीफ मैं नहीं सह पाऊंगी प्रभु, उसे मैं दूंगी।
0: देखिए, अगर कर सको तो, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, किस्मत ऐसे बदली नहीं जा सकती, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी।
2: मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ।
0: कोशिश करके देखिए।
2: ठीक है।
1: वाह क्या बात है, कितनी मधुर धुन है ये। वाह क्या गाना है ये, आंखें बंद करके गाने का मन हो रहा है।

0: क्या हुआ पार्वती, आपने देखा ना, वो तो सिक्के देख ही नहीं पाया।
1: मैंने देखा, लेकिन सुनिए, मेरा काम है देना, और मैंने जब बोला है कि मैं दूंगी तो फिर मैं उसे देकर ही मानूंगी।
0: ठीक है, कोशिश करके देखिए, अगर कर पाए तो।

0: माँ, अब मुझसे चला नहीं जा रहा। यहाँ तो एक रिक्शा तक नहीं है। ओ, माँ
1: क्या बात है, आपको क्या?

0: हुआ है माता?
1: बेटा, मेरा घर बहुत दूर है और मैं अकेले ही रहती हूँ। इतना भारी सामान लेकर अब मैं नहीं चल पा रही हूँ।
0: आप परेशान मत होइए, मैं आपको घर पहुँचा दूंगा। लाइए लाइए, अपना सामान दीजिए, मैं उठा लेता
1: हूँ। खुश रहो बेटा, तुम्हारा भला हो। खुश रहो।

0: रुक जाओ, रुक जाओ बेटा, इसे यहीं पे रख दो, रखो।
1: वैसे आपका घर कहाँ है?
0: मेरा घर नहीं है, मैं इसी मंदिर में रहती हूँ। ये लो बेटा, ये तुम रख लो, रखो।
1: माताजी ये क्या है?
0: अरे ये सोने का सिक्का है, इसकी बहुत कीमत है, अच्छे से रखना, ठीक है? इसको बेचने पर तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, तुम्हें तुम्हें और तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी, समझे? हाँ रखो इसे, रखो।
1: समझ गया मैं ध्यान रखूंगा, बिल्कुल रखूंगा। आज मैंने बहुत काम किया है और गर्मी भी बहुत ज्यादा है। वाह कितना ठंडा पानी है। एक काम करता हूँ, चलो इस तालाब में नहा लेता हूँ,

0: अरे कहाँ गया मेरा सिक्का? कहाँ गया? यहीं तो रखा था। लगता है जब मैं पानी में गया वो गिर गया। क्या करूँ? क्या फूटी किस्मत है मेरी, सिक्के को भी पानी में आप ही गिरना था। मेरी किस्मत साथ नहीं देती, क्या करूँ?
1: क्यों, देख लिया ना आपने मैंने क्या बोला था आपको?
2: मैं उसे पैसे देकर ही रहूंगी।
1: ठीक है, दीजिए फिर, देखिए क्या होता है।
2: कैसे हो भैया?
0: आप कौन हो बहन? मैंने आपको पहचाना नहीं।
2: मैं साधना हूँ, लेकिन मैं आपको पहचानती हूँ। आप रतन दाती हैं?
0: हाँ बहन, पर आपको कैसे पता?
2: आप मुझे नहीं पहचानेंगे भाई, आपने मुझे एक बनारसी साड़ी बनाकर दी थी ना।
0: ओह, लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा है ये मैंने कब किया।
2: लेकिन मैं आपको नहीं भूली हूँ भाई, मेरे पति बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि उस साड़ी की कीमत आपको दूँ। ये लीजिए पैसे।
0: बहन इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं, बनारसी साड़ी के इतने पैसे नहीं होते हैं।
2: पसंदीदा सामान की कीमत नहीं देखी जाती है, इसे रखिए। आपको अब तकलीफ उठाकर चरखा नहीं चलाना होगा। आप इन पैसों से अपनी बाकी की जिंदगी बड़े आराम से बिताइएगा। मैं चलती हूँ।
3: क्या हुआ रतन भाई, इतने खुश क्यों हो?
0: क्या बताऊं भाई, जरा ये देखो कितने पैसे मिले हैं मुझे।

0: कितने सारे पैसे मिले थे वो भी चोरी हो गए सारे। जब भी पैसे मिलते हैं कोई ना कोई उसे चुरा लेता है। हे महादेव, ये आपकी कैसी लीला है? हाँ, हाय रे मेरी किस्मत, जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो मेहनत करके क्या फायदा होगा।
1: क्या हुआ, निराश होकर बैठ गई हो, दुखी हो?
2: हाँ प्रभु।
1: रतन के लिए क्या?
2: हाँ, मैंने इतनी कोशिश की पर सब पानी में मिल गया, सब उसके खिलाफ हो गया।
1: मैंने तो आपसे बोला था, आपने ही मेरी बात नहीं मानी। आपकी ये पैसे देने के चक्कर में वो आज भूखा है, उपवास है, जो भी हो, लेकिन वो आज तक कभी भूखा नहीं रहा है, समझिए आप।
2: बेचारा इतनी तकलीफ उठा रहा है यही देखकर तो मैं
1: आपसे, मैंने बोला था ना कि उसकी किस्मत को बदलना मेरे हाथों में नहीं है।
2: मैं समझ गई हूँ, ये सब आपकी माया है प्रभु। आपके भक्तों की किस्मत बदलना अगर आपके हाथ में नहीं तो किसके हाथों में है?
1: उनके खुद के हाथों में।
2: मतलब?
1: पैसों के लिए उसे स्वयं बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो मैं उसकी मदद कर पाऊंगा।
2: पहले कर्म उसके बाद फल। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठे हुए हैं?
0: आपके दिए हुए सारे पैसे कोई चोर चोरी करके ले गया।
2: तो उससे क्या हो गया? आपके हाथों का काम तो बहुत अच्छा है। आप आज रात में 10 साड़ी बनाकर कल सुबह मेरे साथ पास वाले बाजार में चलिएगा।
0: उससे होगा क्या बहन?
2: अरे चलिए तो, कल सुबह मैं आपको लेकर जाऊंगी। ठीक है?
0: ठीक है बहन, ठीक है।

0: क्या हुआ, साड़ियाँ तैयार हो गई?
1: हाँ वो तैयार हो गई, लेकिन आप इतनी सुबह सुबह यहाँ?
0: अरे सुबह सुबह क्या बोल रहे हैं, चलिए चलिए देर हो रही है। अगर इतनी देर करेंगे तो कैसे काम चलेगा, बाजार बंद हो जाएगा।

0: आप यहीं पर बैठ जाइए। अरे मैं आपके पास ही हूँ।
1: अरे वाह, इतनी सुंदर साड़ियाँ, इसकी कीमत क्या है?
2: मैंने आज तक इतनी सुंदर साड़ी नहीं देखी है, मुझे दे दीजिए।
3: वाह वाह वाह, कितना सुंदर रंग है, मुझे वो दे दो, लाओ लाओ दे दो।
2: मुझे एक, मुझे भी,
1: मुझे दो चाहिए।
4: अरे साड़ी खत्म हो गई क्या? वो रही, वो एक साड़ी बची है। हाँ वो दे दो।
1: भैया वो तो मैं नहीं बेचने वाला, ये साड़ी मेरी साधना बहन के लिए है, अगली बार मैं ज्यादा साड़ी लेकर आऊँगा।
3: हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा साड़ी ले आना।
4: हाँ हाँ यही ठीक रहेगा, ज्यादा लेकर आना।
1: अरे वाह, सारी साड़ियाँ बिक गई, लेकिन ये साधना बहन कहाँ गई?

0: सब समझ गया माँ, सब समझ गया। कर्म से बड़ा भाग्य कभी नहीं होता। आज तो आपने आपने मेरी आंखें खोली दी माँ, आपने मेरी आंखें खोल दी। जय हो माता की, जय हो माता की। माँ ये साड़ी मैं आपको अर्पित करता हूँ।
1: इसके बाद माँ के दिखाए रास्ते पर रतन ज्यादा साड़ी बनाया करता था और दूर दूर की गांव में साड़ी बेचकर वो एक बड़ा आदमी बन गया। लेकिन उसके बावजूद रतन बीच बीच में साड़ी बनाते हुए मन ही मन शिवजी के भजन गाता रहता और इस तरह उसे जीवन में खुश रहने का रास्ता मिल गया।

पढ़े न फिर पछताना, कर्म करो ऐसे भाई। और एक बार पुनः सवाल और दोहरा देते हैं, हिंदी वाक्यांश बाट जोहना का अर्थ क्या होता है? ए खाना बनाना, बी जुताई करना, सी प्रतीक्षा करना। वेल, कोई अच्छी चीजों के लिए कहते हैं थोड़ा इंतजार तो कर ही लो, थोड़ी देर बाट तो जो ही लो। चलिए, ये आपका हिंट और हो गया भाई, कॉल कर दीजिए। मैं मोना आपका लाइव कार्यक्रम आप तक पहुंचा रही हूं और आपके कॉल का भरपूर इंतजार कर रही हूं, क्योंकि आप जुड़े हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। और नंबर है हमारा 9414151415। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। और गीत चल रहा है, कर्म करो ऐसे भाई कि कभी ना पड़े पछताना।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: मखमली घास और बीचों बीच चांदी जैसी चमकती नदी। उस नदी का पानी साफ और ठंडा था। नदी के किनारे बड़े बड़े पेड़ थे जिन पर मीठे फल लगते थे। वहाँ रहता था चिंटू खरगोश। कद छोटा, कान लंबे, लेकिन दिमाग मानो सुपर कंप्यूटर। तभी पेड़ की ऊंची डाल से मिट्ठू तोते ने पंख फड़फड़ाते हुए आवाज दी। ओए चिंटू, यहाँ पेड़ों पर सड़े हुए फल ढूंढ रहे हो? कभी नदी के उस पार भी नजर दौड़ाई है? वहाँ ऐसी लाल सुर्ख गाजरे उगी हैं कि एक बार देख लो तो बस देखते रह जाओ।
3: गाजरे? वो भी लाल वाली? मिट्टू भाई, मजाक तो नहीं कर रहे?
4: मजाक नहीं भाई, हकीकत है। लेकिन वहाँ जाने का मतलब है अपनी जान जोखिम में डालना। उस ठंडे पानी में भोपू मगरमच्छ घात लगाए बैठा रहता है। वो तुम्हें गाजर समझकर ही कटक जाएगा।
2: चिंटू की आंखें गाजर का नाम सुनते ही ऐसे चमक उठी जैसे रात में जुगनू। उसने अपने पेट पर हाथ फेरा और मन ही मन बोला,
3: उफ, स्वादिष्ट गाजर है। बस नाम सुनाए और पेट में चूहे कुश्ती लड़ने लगे। लेकिन रास्ता, वहाँ तो वो मगरमच्छी मुसीबत भोपू बैठा है। अगर डर गया तो गाजर क्या, घास भी नसीब नहीं होगी। चिंटू बेटा, अब गाजर खानी है तो मगरमच्छ से दोस्ती तो करनी ही पड़ेगी।
2: चिंटू नदी के किनारे पहुँचा। पानी सच में ठंडा और साफ था। लेकिन तभी पानी के बीच दो बड़ी बड़ी आँखें ऊपर आईं। वो था भोपू, जिसके दांत देख किसी के भी पसीने छूट जाएं।
5: आओ आओ नन्हे दोस्त, पानी बहुत ठंडा है, एक डुबकी लगाओगे क्या, या मेरा दोपहर का नाश्ता बनना पसंद करोगे?
3: अरे भोपू भाई, सादर प्रणाम। क्या हालचाल है, आज बड़े चमक रहे हो। क्या बात है, पानी में कोई नया साबुन इस्तेमाल करना शुरू किया है क्या?
6: हाय खरगोश के बच्चे, तू मुझे भाई बोल रहा है और वो भी इतनी पास खड़े होकर? तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? तुझे मुझसे

0: डर नहीं लग रहा?
1: अरे भोपू भाई, डर कैसा? आप तो जंगल के सबसे हैंडसम और समझदार जीव माने जाते हो। डरते तो वो है जिन्हें आपसे बात करने की तमीज नहीं होती। मैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर लेकर आया था, पर लगता है आप अभी बिजी हो।
0: ए छोटे, तू अपनी हद भूल रहा है। इतने करीब आकर मुझसे ऐसी मीठी बातें कर रहा है जैसे हम बचपन के दोस्त हों। तुझे पता भी है मेरे जबड़ों की ताकत। एक बार बंद हुए तो तेरा नामो निशान तक नहीं बचेगा। तुझे डर नहीं लगता?
1: डर? अरे भोपू भाई, डर तो उन्हें लगता है जिनके पास छिपाने के लिए कुछ हो। मैं तो आपके लिए खुशियों का खजाना, मेरा मतलब है एक बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आया हूँ। अब आप कहें तो बताऊँ, वरना मैं वापस चला जाता हूँ।
2: अच्छी खबर मेरे लिए। इस जंगल में शिकारी और शिकार के बीच अच्छी खबर कब से होने लगी? जल्दी बोल, क्या बात है?
1: दरअसल भाई, मुझे खुद जंगल के महाराजा शेर सिंह ने आपके पास भेजा है।
3: महाराज ने तुझे? उस गुफा के शेर को मुझ जैसे पानी के राजा की याद कैसे आ गई? कहीं तू मुझे फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा?
1: अरे नहीं भाई, महाराज बहुत खुश हैं। वो इस साल का ग्रैंड फॉरेस्ट रिवॉर्ड देना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि इस नदी में कुल कितने बहादुर मगरमच्छ रहते हैं, ताकि उन सबको शाही दावत और बड़े बड़े इनाम दिए जा सके। उन्होंने कहा, चिंटू जाओ और हमारे मगरमच्छ भाइयों की गिनती करके आओ।
4: इनाम और शाही दावत का नाम सुनते ही भोपू की आंखों में लालच के लट्टू जल उठे। उसकी डरावनी आंखें अब चमकने लगी थीं।
2: इनाम? सच में? क्या दावत में ताज़ा शिकार भी होगा? अरे वाह चिंटू छोटे, क्या तू सच कह रहा है या ये तेरी कोई नई चाल है?
1: हाँ भोपू भाई, इनाम तो पक्का है, लेकिन महाराज का सख्त आदेश है, एक भी मगरमच्छ गिनती से छूटना नहीं चाहिए, वरना इनाम हाथ से निकल जाएगा।
5: अरे तुम चिंता क्यों करते हो छोटे, मैं अभी पूरी फौज खड़ी कर देता हूँ। ओए कालिया, ओए जब्बार, सब बाहर आओ, आज हमारी किस्मत खुलने वाली है।
4: देखते ही देखते नदी का पानी खौलने लगा और दर्जनों डरावने मगरमच्छ सतह पर आ गए।
6: अरे बाप रे, इतने सारे! ऐसे तो मैं गिनते गिनते थक जाऊंगा। एक काम कीजिए, आप सब इस किनारे से उस पार तक एक सीधी लाइन बना लीजिए, मैं आपकी पीठ पर उछलते हुए फटाफट गिनती पूरी कर लूंगा।
4: सारे मगरमच्छ लालच में आकर एक कतार में बिछ गए। चिंटू ने पहली छलांग लगाई। चिंटू एक एक कर सबकी पीठ पर टप्पे खा रहा था और मगरमच्छ मन ही मन शाही दावत के सपने देख रहे थे। जैसे ही चिंटू ने आखिरी मगरमच्छ की पीठ से किनारे पर छलांग लगाई, वो जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगा।
6: धन्यवाद मगरमच्छ भाइयों, इतनी शानदार सवारी के लिए शुक्रिया। इनाम तो पता नहीं, पर आपने मुझे मुफ्त में नदी पार जरूर करा दी।
7: क्या? क्या मतलब? ओए छोटे, गिनती पूरी नहीं हुई क्या? वापस आ।
1: अरे भोपू भाई, अकल के कच्चे, कैसी गिनती और कैसा इनाम! मुझे तो बस उस पर गाजरें खानी थी। अब आप लोग आराम से पानी में धूप सेंकिए, मैं चला लाल लाल गाजरें चबाने। बुरा मत मानना, पर आप सब सच में बड़े भोले निकले।
7: धोखा! इस पिद्दी से खरगोश ने हमें बेवकूफ बना दिया। रुक जा, अगर वापस इस तरफ आया तो तुझे कच्चा चबा जाऊंगा।
4: चिंटू भागकर गाजरों के मैदान में पहुंच गया। वहां का नजारा देख उसकी आंखें फटी रह गईं।
6: ओ तेरी, मिट्टू सही कहता था, ये गाजरें हैं या सोने की डलियां, इतनी बड़ी और इतनी रसीली, मजा आ गया।
4: चिंटू ने पेट भरकर गाजरें खाई, पर तभी उसके मन में अपने दोस्तों का ख्याल आया।
1: नहीं चिंटू, तू खुदगर्ज नहीं हो सकता, इतनी मीठी गाजरें तो मिट्ठू और बाकी दोस्तों को भी मिलनी चाहिए। अकेले खाने में वो स्वाद कहाँ जो बांटकर खाने में है।
4: चिंटू ने फुर्ती से गाजरें इकट्ठी करनी शुरू की, लेकिन तभी अचानक दिन में रात हो गई, ठंडी हवाएं चलने लगी और आसमान में काले घने बादलों ने डेरा डाल दिया।
8: अरे ये मौसम को अचानक क्या हुआ? अभी तो धूप खिली थी और अब ये काली घटाएं, लगता है कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है।
4: आसमान से पानी नहीं, मानो आफत बरसने लगी। नदी की जो धारा शांत थी अब वो एक दहाड़ते हुए राक्षस की तरह ऊपर उठ रही थी। चिंटू गाजरों की पोटली पकड़े किनारे पर खड़ा कांप रहा था।
6: हे भगवान, ये क्या हो गया? पानी इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि अब वापस जाना नामुमकिन है। क्या मैं यहीं फंस जाऊंगा और मेरे दोस्त?
4: तभी चिंटू की नज़र बीच नदी में पड़ी। वहाँ एक नन्ही हिरनी लहरों से लड़ रही थी। उसकी आवाज़ पानी के शोर में दबी जा रही थी।
6: अरे नहीं, कोई बचाओ! मिट्ठू, भोपू भाई, कोई है? वो नन्ही हिरनी बह जाएगी, मदद करो!
4: चिंटू को लगा था कि मगरमच्छ गुस्से में है तो शायद वो मदद ना करें, लेकिन तभी पानी को चीरते हुए एक विशाल साया आगे बढ़ा। वो भोपू था। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और डूबती हुई हिरनी को अपनी मजबूत पीठ पर टिका लिया। कुछ ही पलों में भोपू ने हिरनी को सुरक्षित किनारे पर उतार दिया। चिंटू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था।
6: भोपू भाई, आपने उसकी जान बचाई, पर मैंने तो आपको धोखा दिया था। आप तो मुझसे नफरत करते थे।
7: देखो चिंटू, मुझे गुस्सा जरूर था क्योंकि तुमने मेरा मजाक बनाया, लेकिन भूख और गुस्से से भी बड़ा एक धर्म होता है, जान बचाना। जब कोई मुसीबत में हो तो पुरानी कड़वाहट भूल जानी चाहिए।
6: मुझे माफ कर दो भोपू भाई, मैंने सिर्फ अपने लालच के लिए आपको बेवकूफ बनाया। आप वाकई में बहुत बड़े दिल वाले हो। मैं तो बस एक छोटा और स्वार्थी खरगोश निकला।
9: और ये पगले, मैंने देखा कि तुम खुद मुसीबत में होने के बावजूद दूसरों के लिए गाजरें बटोर रहे थे। जो दूसरों का भला चाहता है वो बुरा नहीं हो सकता। आज से दोस्ती पक्की।
10: पक्की पक्की, अब से आपको मुझे ढोने के लिए नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद आपके लिए हर रोज सबसे मीठी और रसीली गाजरें और आपके दोस्तों के लिए ताज़ा फल लेकर आऊँगा।
7: और तुम्हें नदी पार करने के लिए अब चोरों की तरह छिपने की जरूरत नहीं। बस एक आवाज़ देना, भोपू टैक्सी हाजिर हो जाएगी।
4: उस दिन के बाद उस घने जंगल का नजारा ही बदल गया। नदी अब डर का रास्ता नहीं बल्कि दोस्ती का पुल बन गई थी। अब जब भी किसी को उस पार जाना होता, मगरमच्छ छान से उन्हें अपनी पीठ पर बिठा कर ले जाते। और चिंटू, वो अब सिर्फ चतुर नहीं बल्कि पूरे जंगल का सबसे प्यारा दोस्त बन गया था। वो हर शाम नदी किनारे बैठता और अपने दोस्त भोपू को मजेदार कहानियाँ सुनाता, और बदले में भोपू उसे नदी की गहराइयों के रहस्य बताता।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: वेल दोस्तों, आज के सवाल का जवाब देने का भी वक्त आ गया है और आज का सवाल हमने आप तक पहुंचाया था, आपसे पूछा था हमने कि हिंदी वाक्यांश का बाँट चोदना क्या होता है और इस शब्द का अर्थ है खाना बनाना बिल्कुल नहीं, जुताई करना वो भी नहीं, बल्कि सी जवाब है प्रतीक्षा करना। जी हैं, बाँट जोतने का अर्थ है प्रतीक्षा करना। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल मिलने का वादा है ठीक शाम 6 बजे, तब तक के लिए उड़ान से कहना चाहेंगे गुड बाय, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति।
1: मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी म्हारो गांव म्हारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते हैं, ढाणी ढाणी में जाते हैं, फली में जाते हैं, तो हमें बहुत खुशी मिलता है। कोई परिचय नहीं होता है, अचानक में जाते हैं तो हमारा भाई बंधु मिल जाते हैं, आई लोग भी मिल जाते हैं, कभी बाप लोग भी मिल जाते हैं। तो आज खासकर हम धमसरा ग्राम पंचायत में पहुँचे, धमसरा के भाई बहन हम जो बात किए बहुत अच्छा लगा। कौन सी फली का नाम क्या है? भुमरिया फली। तो धमसरा का ग्राम पंचायत में भुमरिया फली में हम पहुँचे। यहाँ का जो निवासियों से मिले, खासकर भाई लोग मिलते हैं और खासकर भाई लोग यहाँ पर अपना खेती भी करते हैं। इसके साथ साथ बच्चे को जब हम बात किए तो बहुत पढ़े लिखे में बहुत होशियार है, सब पढ़ाई लिखाई किए हैं, कोई MA तो कोई BEd। आश्चर्य हो गया, मतलब ये शहर से भी कम नहीं है ग्रामांचल लोग। तो आज इस कार्यक्रम में जब भुमरिया फली में पहुँचे तो यहाँ का एक बुजुर्ग वृद्धजन जिसको हम सम्मान करते हैं, सलाम करते हैं, आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए उपस्थित है, तो उनको राम राम करते हैं। राम राम,
2: राम राम, राम राम, राम राम।
1: तो थमर हूँ नाम
2: बाबू।
1: अच्छा, और गाँव रो? गाँव रो फली रो हूँ नाम
2: बुगरिया फली।
1: बुगरिया फली, भुमरिया फली ना गुगरिया फली? भुमरिया फली। वाह, भुमरिया फली में हम पहुँचे। और तो बाबू जी आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए उपस्थित है, तो क्या क्या खेती करते हैं? खेती क्षेत्र क्षेत्र में
2: मक्की बापता था, मक्की और बाजरी, हमने सवला छोला बीड़े सब सीजरे, टमाटा अपने गुआर फली,
1: ये सब खेती करते हैं।
2: हाँ,
1: उसमें हो जाता है। और घर में छोकरा छोकर कितना है? लड़का लड़की?
2: छोकरा छोकर तीन
1: तीन लड़का और लड़की?
2: लड़की चार।
1: चार, सात लोग, पूरे सात लोग को पूरा पढ़ाई लिखा है सभी को?
2: तीन बढ़िया,
1: तीन बढ़िया। अरे वाह, इतना लोग को पढ़ाए, इतना बड़ा परिवार है, फिर भी सब मिलजुल कर रहते हैं, खेती करते हैं, और खुशी लगता है क्योंकि जॉइंट फैमिली में बहुत सारा आता है, क्योंकि सबको लेकर चलना है, ये कम बात नहीं है। क्योंकि कॉलेज हो गए, सबका संस्कार अलग अलग होता है, कोई पढ़ी लिखी है, कोई अनपढ़ है, और कोई करना चाहते हैं, कोई करना नहीं चाहते हैं। फिर भी एक जिम्मेवारी माँ बाप का होता है,
2: सही बात,
1: सबको संतुष्ट रखना होता है, सभी बच्चों को, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। फिर भी बहुत अच्छा जानकारी दिए, तो बच्चों को पढ़ाया, जो पढ़ना चाहे उसको पढ़ाया, जो नहीं पढ़ना चाहे उसको खेती में
2: काम खेती में लगे,
1: खेती में लगे, खेती भी जरूरी,
2: खेती करी भी रहे, एक अन्य लगे भी खेती करी,
1: जी जी
2: लगी भी नौकरी, ये बात है।
1: तो बर्तन को देखते हुए, संसार को देखते हुए आपका जमाना में और आज का क्या अंतर है?
2: हमारा जमाना में ये है, वो तो अपने कुआ था, हल होते, हल खेलता, काटी खेलता, तब आना जमाना मोड़िया भंडवार वाला आ जाएगा। आना जमाना में ट्रैक्टर आई, लाइट आई, हमारा माँ हमारा खेती मैं करता के उन्होंने कुआ था, बड़ी कुआ और मारे वाला, वही कुआ करता था, बलद खेलता था,
1: बल्द से पानी निकलता,
2: हाँ पानी बलता तो करता था।
1: अब किए सब काम?
2: बस वो काम करता था, वो मोड़िया बीजू आ जाओ, जो अपने वो रात गए बीजू आ जाओ, राजे वाले राज है नहीं थे, वो बूढ़ा पर अपने जाओ, बूढ़ा पढ़ने जा, आप बूढ़ा पढ़ने जा, अपने वो कोई तो मन है, वही मोड़ चार के पर मेरा दो छेते कर पे, एक लोग ही कर पे आगे, वही कर पे, ये बाप क्या थम बजी के मैं क्या कर पाई कर पे, तो आप वो क्या नहीं नहीं थे ना करे, मैं कहना कर हूँ अपने तो नहीं डे इडे, ये बात है।
1: समय का खेती और आज के खेती में बहुत अंतर,
2: हाँ
1: इस रात दिन का फर्क है,
2: सही सही बात।
1: तो कहने का मतलब समय अनुसार बदलना पड़ता है, प्रकृति भी साथ नहीं देता है। पहले तो प्रकृति पानी बारिश होता था, अभी तो बारिश कम हो रहा है, जमीन भी बंटवारा हो गया, पहले ज्यादा था,
2: उमजा भी,
1: तो ये भी एक क्या बात है, लेकिन हम सबको मिलकर चलना होता है समय को देखते हुए। और वृद्ध जन जो होते हैं, वृद्ध मैंने जो हमारा ढोकरा हो जाते हैं ना, ढोकरी हो जाते हैं, तो उनका पास बहुत अनुभव रहता है, क्योंकि वो किए हुए जीवन में देखे हुए संसार को, जमीन को देखे हैं, उसी हिसाब से उनसे जब समय मिलता है उनका पास बैठने से, वो हमको बताएगा, अनुभव बताएगा, जिसका आधार से हम अपने जीवन को, अपना परिवार को भी, हमारा संसार को भी चला सकते हैं। क्योंकि वो तो चला जाएंगे, हमको जाना है, किंतु वो पहले चला जाएगा तो हम उनका पास जो शक्ति है, जो खजाना, जो अनुभव हम कैसे लेंगे? तो जब बैठेंगे तब हमारा वो काम निकल पाएगा। बहुत अच्छा जानकारी दिए और आज का बच्चों को देखते हैं, और कभी भी आप बच्चा था, आप भी छोकरा था कभी, कभी छोकरा था ना, उसमें पढ़ाई होता था। अभी जैसे स्कूल बच्चे जाते हैं, आप भी जाते थे स्कूल में,
2: अब
1: ये लोग जा रहे,
2: आप तो गतु किया ही नहीं, आप तो पूरा डोकरा आगे डोकरा दबेगे, मैं ये दोनता ही
1: नहीं,
2: लेकिन ओए बहुत बड़ी छोकरा मिल जाए ना आगे।
1: देखो अभी तो बच्चे तो कितना सुंदर, मैं पूरा ड्रेस पहन कर, पूरा जीन पैंट शर्ट पहन कर सब पढ़ रहे, लेकिन आपका समय तो वो नहीं था, लेकिन अंतर है।
2: जितने अंतर हमारी होते थे, हमारा कोई खोदरा नहीं, वो मकम वाड़ी है, वो कोई भारी की दो वो ठीक भाई दूसरों तो आगे डोकर रहे।
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इतना जानकारी दी। आपका समय में भजन कीर्तन करते थे, गीत गुब्बारा गाते थे, घर से गीत गाते थे?
2: गीत गाता था
1: कभी गणगौर त्योहार हो,
2: मेला था,
1: मेला जाते थे उसमें गीत गुब्बारा गाते थे, शादी में गाते थे, है ना।
2: हाँ, वो आगे डोकरा गीत गाए थे, वो को गीत नहीं कोई थी, आगे डोकरी गाई थी गीत अपने मेला रहा, मेला में गाए थे गणगौर लेता।
1: ये जो बगरिया फली में, ये जो फली के धामसरा में पहले सब कैसे था, आज तो पूरा घर द्वार दिखाई दे रहा है सभी लोग, तो उस समय कैसे था? आपका समय में जो आप जब इस तरह
3: पहले
2: की स्थिति होती, ये तो स्थिति होती कोई जे दीवार ठीक भाई,
1: इसे रास्ता बड़ा अच्छा था, रास्ता जैसे जाने आने
2: ना ना रास्ता ही ना कोई ना डोड़ी सीधी और रास्ता है बेस एरी डोड़ी होती पगडोड़ी।
1: फिर इसमें खेत में रहते थे, जंगल में रहते थे आप लोग?
2: आपने कहा कि मैंने एक मौजू अब तो के तो ऊपर लेन जाता इस पेड़ मुड़े लेन जाता है जोड़ी करें, जोड़ी में करें लेन जाने हाथ करता था। वो तो मैंने तो दो आज मुझे बा बेहे नीडो चलो मैट क्यों हमारा जो उन्हें मैं खेत हम करता के उन्हें बारे में कोई मजा नहीं होता सेटा वो मोटिया बाढ़ अपने तो धीरे धीरे धीरे धीरे हमारा कुआ का बहुत करता मूड़ा का अपने माड़े बनता एरू धंधो तो कोई हमारा इतना थोड़ा भागता था, थोड़ा भागता था आगे खेतों कोई कोई गिनती नहीं होती, आज बे बे है कि तीन है इतना भागता था खावा इतना बस बीजू सूटू कौन भावे इतना।
1: जी जी बहुत अच्छा, तो बाबूराम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते इतना जानकारी दिए, उनका पीरियड में जो समय था जब उनका बचपन का याद कर रहे हैं और बच्चों को आज सुना रहे हैं, अपने बच्चे भी सुन रहे हैं और रेडियो का माध्यम से भी जो जो माता पिता ऐसे बच्चों को अपना अनुभव आधार से बताएंगे तो वो लोग भी कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि जो इतिहास है गाँव का जो पृष्ठभूमि है पहले जैसे और आज बहुत फर्क है, समय बदल गया और हम सब अपने को भी बदल दिए, लेकिन शुरुआत में जो शुद्धता गांव का जो वातावरण गांव का जो एकता मिलता था अभी और देखने को बहुत अच्छा लगा। तो चले कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन। राम राम, धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्ते। राम राम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी है, क्योंकि गांव और अंचल में जब जाते हैं, गांव का आसपास में जो गतिविधि हो रही है, सब तक पहुंचाने के लिए रेडियो हमेशा कोशिश करता है, क्योंकि रेडियो मधुबन एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा ही परिचालित तो होता है, और सामुदायिक का आवाज़ उनका पहचान हो, क्योंकि सबको एक मंच मिले, एक स्टेज मिले, जिसके माध्यम से अपना मन का बात को, दिल का बात को सरकार तक पहुंच पाए। सरकार जब सुनते हैं उसी हिसाब से स्कूल में हो चाहे पंचायत में हो, ऐसे स्कीम देते हैं, योजनाएं निकालते हैं, क्योंकि जमीन स्तर पे जो चीज़ हो रही, तकलीफ हो, पढ़ाई में जो असुविधा हो, कि आगे के लिए जो लक्ष्य रखें उसको लेने में भी दिक्कत हो रहा है, तो इस माध्यम से वो सरकार तक पहुँचाएगा, और सरकार इस बात को जब सुनेगा तो उसी हिसाब से योजनाएँ इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है, तो बहुत खुशी मिलता है। गांव और अंचल में हम जाते हैं, जब चाहे किसान वर्ग हो, चाहे प्रशासन वर्ग हो, चाहे किशोरियाँ हो, चाहे हमारा आई लोग हो, सभी वर्ग से मिलते हैं, समाज सेवी हो, रोजगार संबंधित हो, सभी विभाग से मिलने के बाद उनका जो मत मन का बात को रखते हैं। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा साथ एक किशोरी है, पढ़ी लिखी है, और नाम तो पहले मुझे बता दी, ये सुनीता है, क्योंकि यहाँ का सुनीता तो नंबर वन है, फर्स्ट क्लास नाम, जहाँ भी जाते हैं सुनीता और सुरेश अंचल का फेमस नाम है, सुनीता और सुरेश। तो सुनीता को स्वागत करते हैं ग्रामवासियों की तरफ से, क्योंकि हम जब बुमरेफल्ली धमसरा में जब पहुँचे तो यहाँ के एक किशोरी हमारा इस कार्यक्रम को सजाने के लिए उपस्थित है। सुनीता कहाँ तक पढ़ाई किए?
2: दसवीं
1: अभी इस साल 10th क्लास में पढ़ रहे। अच्छा, कौन सा स्कूल का नाम बताओ? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंगथला। प्रिंसिपल कौन है? सत्येंद्र गोल गुजार। वहाँ पर भी सुनीता मैडम भी है के हैं तुम तो सुनीता है और एक सुनीता मैडम भी है ना? सुनीता मैडम को देखे है ना? क्या पढ़ाती है सुनीता मैडम?
2: इतिहास।
1: इतिहास कितने मैडम है तुम्हारे स्कूल में? सुनीता मैडम तो एक हो गई, और कोई मैडम?
2: प्रेमलता मैडम, विनीता मैडम।
1: प्रेमलता मैडम, नीता मैडम मैडम और सुनीता मैडम, और बाकी सब सार। अच्छा, सबसे आपका पूरा फेवरेट प्यारा शिक्षक व शिक्षयित्री कौन है? आपको बहुत आकर्षण होता है वो टीचर का व्यवहार, उनका पढ़ाई करने का शैली और बातचीत, कौन आपको अच्छा लगता है? विनीता मैडम। ताली बजा भाई विनीता मैडम के लिए, जहाँ भी सुन रहे हैं, हमारा विनीता मैडम जैसे सभी बने और हमारा सुनीता को अच्छा जैसे लग रहा, सबको अच्छा लगे। और सुनीता, बड़े कर तुम क्या बनेगी? डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, कार्यकर्ता? और
2: मैडम,
1: घर में और कौन कौन है?
2: भाई बहन।
1: बड़ी बहन है? बड़ी बहन और आप दो बहन हैं? अच्छा, बढ़िया से पढ़ाई करो, है ना? और कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा, कौन सा विषय आपको अच्छा लगता है, जैसे कौन सा टीचर आपको अच्छा लगता है, आप तो विनीता मैडम बता दिए, और कौन सा सब्जेक्ट विषय, इतिहास, गणित, इंग्लिश, कौन सा विषय आपको अच्छा लगती है?
2: सभी लगती
1: है। वेरी गुड। स्कूल में गीत वगैरह गाते हैं आप?
2: नहीं।
1: अपना लोकगीत, गरज का गीत
2: नहीं
1: गाते? कौन सा त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाते सब लोग मिलकर?
2: होली।
1: अरे वाह, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। और स्कूल में क्या मिलता है? साइकिल
2: मिलती है।
1: साइकिल? अरे वाह, चलाती साइकिल? चलाती
2: जी।
1: अरे कितना साल हुआ साइकिल मिलते हूँ?
2: एक
1: साल।
2: नाइन।
1: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सुनीता को बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और कुछ जानकारी लेंगे जो लास्ट में आएंगे, लेकिन अच्छा प्रस्तुत देंगे, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे वो आएंगे। उनका परिवार है बाबूराम का, बहू है, बेटा है, सब पढ़े लिखे, लेकिन उनसे भी बात करेंगे, उनका दिल का बात, मन का बात, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार की खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी है कि परिवार का जो भाषना सही में देखने को मिलता है और होना भी ऐसे चाहिए, क्योंकि माँ बाप बेटा बेटी बहू पोता पोती सब रहते हैं। एक जॉइंट फैमिली में एक समूह रूप में देखना हो तो गारा से समाज में देखो, बहुत अच्छा से रहते हैं। जो भी दाल रोटी मिलता है रोटा मिलता है उसमें खाकर जीवन गुजारा करते हैं। पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी अपना देह अभिमान नहीं रहता है, एक परिवार का भाषना दिलाते हैं और चाहे सास हो चाहे ससुर हो चाहे पति देव हो सबको सम्मान देकर घर को चलाना ये एक कला बहनों से सीखना पड़ता है, क्योंकि बहनों के पास इस तरह कला रहता है, भाई लोगों के पास इतना कला नहीं रहता, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड भगवान का दिया हुआ है, प्रकृति का दिया हुआ है बहनों को, क्योंकि भाई के पास तुरंत गुस्सा हो जाते हैं बा इधर उधर काम दम करने, घर का जो संभालने का काम जो लक्ष्मी कहते हैं ना, घर का लक्ष्मी बहू होते हैं बेटी होते हैं, वो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए उनको भी स्वागत करते हैं। बाबूराम जी का बहू है और हमें खुशी है इस तरह बहू जो बढ़ चढ़ कर हमारे कार्यक्रम को सजाएंगे तो हमें बहुत खुशी मिलेगा। चलिए अभी सुनते बाबूराम जी का जो बहू है तो वो भी पढ़ी लिखी है, वो अपना बात खुद बताएंगे, हम कम जानते उनका बारे में, मैं बताऊँगा तो कम बता पाऊँगा, लेकिन वो खुद जो बताएगी तो बहुत कुछ बता पाएगी।
3: मेरा नाम अंजा कुमारी, गांव का नाम दामसरा है, उमरेवली, और मैं एमए की है फाइनल।
2: ओ, ओपन से किया?
3: हाँ, प्राइवेट है।
2: प्राइवेट में किया। और बीए कहाँ पर किए थे? बीए
3: मोहनलाल सुखड़िया गुरु।
2: बीए काम कंप्लीट किए थे?
3: पीयर में बीए थे, कर लिए
2: पीयर में जो थे। शादी का कितना साल हो गया?
3: पाँच साल
2: हो गया। पढ़ाई में इतना रुचि क्यों आपका?
3: क्योंकि सर आगे सीखने को कुछ न कुछ मिलेगा और नौकरी मिलेगी, पढ़ाई करेंगे तो परिवार सुधरेगा पूरा।
2: अरे वाह, आपका प्यार घर?
3: चौहानों की फली चनर।
2: चौहान की फली, वो भी बहुत अच्छा गांव है और आप उसी गांव से आए हैं तो अच्छे ही होंगे, क्योंकि गांव के जो व्यक्ति जो जन योग्य जन का चलते गांव का नाम रोशन होता है। आपका बचपन, पढ़ाई और शादी, इसमें बहुत उतार चढ़ाव आया होगा।
3: हाँ।
2: बहुत मेहनत की होंगे, सबको सम्मान देकर खुश, अभी भी आप इतना खुशी से बोल पा रहे, कोई इतना बोल नहीं पाते आजकल जो छोकरी हैं, लेकिन आप इतना पढ़ी लिखी होने के बाद करते हुए आपका चेहरा में बहुत खुशी मिल रही है। इतना खुशी रहना सबसे बड़ी खजाना है, सबसे ज़्यादा संपत्ति धन जो है खुशी नहीं है, आप कितना भी रोजगार करें कोई फायदा नहीं। तो आपको देखकर आपका उमंग उत्सव देखकर जो भी छोकरियाँ सुन रहे जो भी बहू सुन रहे तो उनको एक प्रेरणा मिले, आपका जैसे उमंग उत्सव हौसला है, आपका भाभी से भी कुछ प्रेरणा लिए, परिवार से भी लिए, सास ससुर से भी लिए, पतिदेव से भी लिए, तो इस बीच में आप क्या सीखें और क्या त्याग किए, क्या छोड़े, क्या खोए और क्या पाए, क्या छोड़ दिए और क्या मिला आपको? क्या मिला? पतिदेव मिला। क्या छोड़ दिए? माँ बाप को दूर हो गए ना। और क्या मिला? कुछ त्याग किए? त्याग बिना तो भाग्य बनेगा नहीं, त्याग बिना मान जब हम यहाँ त्याग कर यहाँ पर नहीं आएंगे तो मिलेगा क्या? आए तब तो बैठ समय दिए तब तो कुछ मिल रहा है ना, घर बैठ कर आप लोग हमारे पास आएंगे क्या? इसलिए करना पड़ेगा, कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए, वो भी श्रीमद आधार में होना चाहिए, हमारा कर्म किसको दुख न दे।
3: मैं पहले जाती थी स्कूल 8वीं तक थी मेखेड़ा में, तो उस समय अभी तो 10वीं तक बनी है, तो पहले हम जाते थे ना, हमारे दोस्त छोटे छोटे बच्चे लड़कियां सब मिल के जाते थे, एक दूसरे को जाते न, तो रास्ते में भी एक दूसरे के इंतजार करते थे, वो आएगी तो मैं भी जाऊंगी, साथ साथ में यूं साथ जाने का, एक पास पास में रहते थे न, तो एक साथ साथ में जाते थे, साथ साथ में आ रहे थे, खेलते थे, खेल में भी मैं भाग ले रही थी, और कोई भी उत्सव होता था उसमें गाना गीत वगैरह नाचना सब में भाग लेती थी आगे होके, साथ साथ में सभी लड़कियां मिलकर, और जैसे जैसे आगे गई जैसे जैसे मैंने पढ़ाई छोड़ने का तो ऐसा नहीं लगा कि पढ़ाई छोड़ूं, मैंने मुझे लगा कि आगे आगे मैं पढ़ाई करती रहूं, आगे पढ़ के कुछ बनना चाहती थी अभी, लेकिन मैं पढ़ाई अभी भी मेरी जारी है, अभी छोड़ी नहीं है। इधर आए तो इधर भी ससुराल वाले अच्छे मिले, तो इन्होंने अभी भी पढ़ाई मेरी चालू करी है। अभी मेरी पढ़ाई के पर कोई अभी रोक टोक नहीं हो रहा है। और उधर भी मुझे पढ़ने के लिए तो कभी मना नहीं कर रहे थे, माँ बाप भी नहीं किया, और इधर आई तो इधर भी नहीं किया। घर का भी काम कर रही हूँ और पढ़ाई भी जारी है, और बच्चे भी है, बच्चों का भी पालन पोषण कर रही हूँ।
4: सही होना चाहिए। और आपको मैं जब सुन रहा था, हमारा श्रोता मित्र भी सब सुन रहे हैं अभी, सबसे मेन चीज बहनों को व छोकरियों को सपोर्टिंग मिलना जरूरी है, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएगी।
3: हाँ।
4: जैसे आपने बोला हमारा पति देव बा ससुराल हमको फ्री दिए, मैंने हाँ। आप पढ़ाई करना चाहो तो करो, जितना करना चाहो करो, हमारा तरफ से जो भी सहयोग होगा हम देंगे।
3: हाँ।
4: इस तरह सभी सास ससुर हो चाहे पति देव जब देंगे तो बहुत आगे
3: हाँ।
4: चला जाएगी, लेकिन
3: हाँ।
4: कुछ भी नहीं होगा तो कुछ तो आपने जानकारी उनको मिल पाएगा।
3: हाँ।
4: जैसे आज रेडियो में जितना अभी हम लिए सबका रिकॉर्डिंग, लेकिन आपका रिकॉर्डिंग टॉप हो रहा है, क्यों ना, आपको फ्रीडम है बोलने के लिए, बोलो कुछ। पतिदेव बोला भाई तुम्हारा आवाज को सब तक पहुंचे,
3: हाँ।
4: एक पहचान मिले, आपका आवाज ही पहचान हो। सरपंच कभी खड़े होंगे तो आपका गांव वाले भी तो आपको बोलना पड़ेगा ना उनको भी, अभी तो माइक में बोल रहे।
3: हाँ।
4: जब आपको कभी मौका मिल जाएगा सरपंच बनेगी कि ना,
3: हाँ।
4: चांस मिलेगा तो छोड़ेंगे क्या,
3: बनेंगे
4: सरपंच बनेंगे तो क्या होगा ना, गाँव का विकास करेंगे।
3: हाँ।
4: जो योग्य जन है उसको निखारने के लिए आपको एक चांस मिलेगा। अभी जो पीरियड है, अभी एक बहू, बहू का क्या रोल होता है, बहू मतलब घर में किस तरह रहना चाहिए बहू को, आप तो रह रहे, आप अपना अनुभव से बताइए बहू का भूमिका सबका साथ कैसे होना चाहिए, क्योंकि आपको एक बहू है।
3: हाँ।
4: सबको खुशी रखना है, सबका आवश्यकता जो है उसको देना है।
3: हाँ।
4: और खुद का भी ध्यान देना पड़ेगा।
3: हाँ।
4: आप खुद का पर कैसे, जैसे आप अटेंशन रखते हैं स्वास्थ्य को लेकर हो, अपना मनन चिंतन को लेकर हो, भविष्य भी देखते हैं भाई आगे में बढ़कर बच्चों के लिए थोड़ा पढ़ाई लिखाई अच्छा कराऊंगा, ऐसे सोचते हैं ना, तो क्या सोचते हैं आप बच्चों के लिए?
3: बच्चों के लिए कि पहले खुद पढ़ेंगे तो बच्चों को भी पढ़ाएंगे, खुद तो पढ़े लिखे है ही है, तो अब खुद पढ़े लिखे है तो बच्चों को भी चाहते हैं कि अच्छे स्कूल में जाके अच्छी पढ़ाई करें, और बच्चों का भविष्य भी आगे हमारे जैसे पढ़े लिखे हो जाएंगे तो उनके बच्चों को भी वो अच्छे पढ़ाई करवाएंगे, और घर का काम भी साथ साथ में लेके चलना पड़ेगा, और परिवार के भी साथ में मिल के काम करना पड़ेगा, कोई भी काम है तो मिल बांट के करते हैं।
4: जी जी, बहुत अच्छा। हाँ। ये एक बहू का रोल होना चाहिए।
3: हाँ।
4: भूमिका होना चाहिए।
3: हाँ।
4: बच्चों का भविष्य को भी सामने रख के कर्म करना है, और बच्चों को जहाँ भी जरूरत पड़ा प्रेरणा देना चाहिए।
3: पहले वो अबरोड में बौद्ध संस्था करके नाम थी, संस्था आई थी, उसमें भी मैं काम कर रही थी पहले आंगनवाड़ी में।
4: ओ,
3: तो मैं जहाँ जाती थी तो मैं रास्ते पर जाती थी पैदल पैदल, तो मुझे देख के बच्चे आगे आ रही, मैडम आई चलो आंगनवाड़ी चलो, तो माँ बाप भी देख के भेजते थे कि मैडम आई है चलो आज तो आंगनवाड़ी जाएंगे, तो बच्चे देख के आंगनवाड़ी आ जाते थे, बुलाने नहीं जाते तो भी देख के आ जाते थे। जैसे कोई भी एक्टिव गतिविधियाँ करवाते थे तो आंगनवाड़ी में तो पहले होती थी लेकिन कम होती थी, तो जैसे बौद्ध संस्था उस समय से तो इतना टाइट हुआ कि बच्चे देख के भागते थे, आ जाते थे आंगनवाड़ी में भी, और पहले तो आते थे लेकिन तो भी थोड़ा कम होते थे।
4: तो राज हंजा जी का भी पता चला आपको बोलते बोलते, क्योंकि ये पहले भी काम कर चुके हैं समाज सेवा में, जिसे बौद्ध शिक्षा समिति जो
5: पांच,
4: है पांच वर्ष तो काम किए, वो एक्सपीरियंस है, अनुभव ही है, इसलिए बोलने में कोई झिझक नहीं, क्योंकि उनका काम ही था भाषा ज्ञान हो, बुद्धि को तेज करने के लिए उनको एक दायित्व मिला था जो बौद्ध शिक्षा समिति में, जिसका चलते पाँच साल का जो एक्सपीरियंस है जिसका चलते आज अपना चुप्पी तोड़ के आगे होना चाहिए। इस तरह सभी हमारा जो बहू हो चाहे बेटियाँ आएंगे तो क्यों नहीं हमारा भारत, हमारा गांव आदर्श बनेगा, और हमारा घर आदर्श बन पाएगा, और खुद जब आदर्श बनेगा हमारा घर आदर्श बनने में कोई देर नहीं लगेगा। एक शिक्षित होने के नाते ये फायदा होता है, सबका सामने बात करने के लिए एक कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, नहीं अपना हक को साबित कर पाते हैं। तो
3: मैं बौद्ध में काम कर रही थी उस समय से, अब मैं किसी के सामने बोलती हूँ तो भी इतनी झिझक नहीं होती, पहले तो मुझे डर लगता था मैं क्या बोलूँगी, सही बोलूँगी कि गलत बोलूँगी कि क्या बोलूँगी, ऐसे डर लगता था, अब तो मुझे डर इतना नहीं लगता है। पहले मीटिंग करवाई थी पहले तो मुझे डर लगता था मैं क्या बोलूँगी, उतने महिलाएँ आएगी वो आदमी आएंगे तो उनके सामने मैं क्या बोलूँगी, तो जैसे जैसे वो आती थी आंगनवाड़ी में पूछताछ हो रही थी, उनसे मेरी बात हुई, इसमें काम कर रही हूँ, ऐसे बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाती थी तो उनके माँ बाप देखने के लिए भी आते थे, उनको मैं प्रोजेक्ट जैसे ले बच्चों ने काम किया ना उनके उनके बच्चों का गम भी बता रही थी, आपने बच्चे ने ये किया, ये लिखा है, ये ऐसे गाता है गीत, ऐसे ये करता है, घर जाके भी वो हाव भाव के साथ में करता था ना एक्शन, तो वो बोलते थे पहले तो ऐसा नहीं हो रहा था, अब तो ये बच्चे बहुत होशियार हो रहे हैं, ऐसे करके बच्चे भी भेजते थे आंगनबाड़ी में। मीटिंग भी मैं करवा रही थी महिलाओं की, पुरुषों की।
4: चलिए उनका शुक्रिया।
3: हाँ, नाम है अभिमन्यु। गाँव का नाम क्या है? फली का नाम
5: दामिश्रा।
3: कौन से जिले में रहते हो? जिला
5: चिरोई
3: जिला। तहसील?
5: अबूर।
3: अबूर। मम्मी रो नाम है? अंजा देवी। पप्पा रो? बदराम जी।
4: ये था कुछ छोटा आवाज में, क्योंकि बोध शिक्षा समिति में जो उसको याद आई अंजा जी, उसका लड़का को भी कैसे, छोकरा को भी कैसे पढ़ाता है, और बहुत सारा प्रश्न उनको रखा है। भले मुझे देख रहा था, लड़का थोड़ा झिझक कर रहा, डर रहा, पहला बात हमको ही देख रहा है इसलिए थोड़ा सा नर्वस है, लेकिन जब मैं नहीं रहूँगा तो सब चीज़ का उत्तर देगा, मेरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जब उनका मम्मी इतना पढ़ी लिखी है तो उनका बेटा बेटी को तो होशियार करा देगी। अभिमन्यु को भी धन्यवाद, छोटा बच्चा है लेकिन अभिमन्यु जब सुनते तो अर्जुन का मुझे याद आ रहा, मातृ गर्भ से ही अभिमन्यु सब सीख गए थे, तो सही में नाम जैसे वो काम भी ऐसे करेगा, क्योंकि अभिमन्यु जो था पूरा महारथियों को भी हरा दिया था। जैसे पूछा आपका जिला का नाम क्या है तो बोला सिरोही, भाई आपका तहसील का नाम क्या है तो आबू रोड, तो आपका गांव का नाम क्या है तो भुबरिया फल्ली, आपका ग्राम पंचायत का नाम क्या है तो बोल रहा है धमसरा, क्या ग्राम पंचायत धमसरा, बोलो जोर से।
5: हाँ
4: ये धमसरा है ना, सभी तो पूरा अच्छा बात बता रहे, बड़े होकर क्या बनेगा तुम?
3: मार्शल
4: बनेगा। अरे वाह, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अभिमन्यु के लिए। पहले इस तरह तोतल तोतले आवाज में जी बच्चों को मिलता है तो आगे बहुत नाम रोशन करेंगे, क्योंकि आज रेडियो पे आ रहे हैं, कल स्टेज में बड़ा बड़ा स्टेज में जाकर अपना भाषण करेगा, अभी से प्रैक्टिस कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, ये तो श्री हंजा देवी को और बाबूलाल जी को जाता होगा, क्योंकि बाबूलाल का पोता है और हंजा का बेटा है।
3: अभी 4 साल ही है,
4: 4 साल है वो भी उनका मम्मी बता रही है, 4 साल
3: की। नोज, टीथ, हेयर, ये सब बता रहा है शरीर के नाम इंग्लिश में
4: बता रहा हूँ। शिक्षा जैसे हमारा संस्कार है उसके ऊपर हम डालेंगे, छोटा परिवार सुखी परिवार जो कहते हैं ना, पढ़ा लिखा होने के बाद उसको जो प्रेरणा मिलता है, क्योंकि माँ बाप शिक्षित हैं इसलिए उसका असर परिवार बच्चों का ऊपर पड़ता है और उनसे ज़्यादा होशियार हो जाते हैं। जैसे हंजा का ससुर मैंने उनका पति का जो बाप है वो कम पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो बेटा बीए पढ़ लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, बहू एमए किया है, लेकिन उनका बेटा जो थर्ड परिवार आएंगे, एक पीढ़ी दूसरा पीढ़ी और तीसरे पीढ़ी जो आएंगे वो तो इससे और होशियार होंगे। हाँ। उनका माँ बाप से ज़्यादा होशियार, तो मोटरसाइकिल चला जाएगा 2 साल में ही। क्योंकि साइंस का कमाल है और वर्तमान मॉडर्न युग है, तो कॉलेज युग में तो आज बच्चे तुरंत फटाफट सीख जाते हैं, क्योंकि इंटरनेट और मीडिया इतना सुंदर मिला, आज तो माइक देखो कभी सोचे नहीं उनका परिवार वाले, जो आज रेडियो पे उनका आवाज़ जा रहा है, ये तो कमाल है समय की। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हंजा देवी का साथ साथ उनका पतिदेव भी उपस्थित है तो उनको भी स्वागत करेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन।

अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर। डायल कीजिए 101 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक का पहला में हंजा देवी से सुन रहे थे, खासकर एक शिक्षित होने के नाते जो झिझक जो डर और एक अपना बात को रखने के लिए जो साहस सही में शिक्षा में रहता है। शिक्षित और अशिक्षित में यही अंतर है, चाहे बहू हो चाहे बेटी हो चाहे जो भी हो, लेकिन चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पढ़ा लिखा होने से थोड़ा होशियार होते हैं और समझ में आता है जी हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनको एक बल मिलता है। तो चलिए इस कार्यक्रम को सजाने के लिए जो परिवार में बात करें तो पिताजी बहू पोता अभी बेटा से बात करेंगे। सर आपका शुभ नाम बताइए, आपका परिचय।
1: माय नेम इज बदाराम।
0: और कहाँ तो पढ़ाई किए?
1: मैंने MA और BEd दोनों किए।
0: अच्छा वाह, बहुत क्वालिफाइड है। तो श्रोता मित्र ग्रामवासी हम कह रहे थे ना, एक परिवार में ऐसे भी कभी कभी परिवार मिलता है जिसमें पढ़े लिखे बहुत होते हैं, जैसे आज बाजाराम ने अपना बात को रख रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है और कार्यक्रम को सजा रहे हैं तो सुंदर लगेगा ही। हंजा जी वो भी पढ़ी लिखी है और ये भी इतना पढ़ा लिखा किए, आप क्या लक्ष्य रखे इतना पढ़ाई लिखाई किए परिवार में, इतना पढ़ाई लिखाई में आपका रुचि कैसे आया और इसका पीछे क्या राज है?
1: पहले तो हम 5वीं तक पढ़ रहे थे यहाँ पे मीरगढ़ में
0: जी,
1: शुरू से मेरे पढ़ने में रुचि थी शुरू से। फिर 5वीं में था, 5वीं बोर्ड था उस टाइम में, तो उस टाइम में जैसे कि हमारे साथी बहुत थे स्कूल से, हमें वो प्रश्न बैंक मिलता था उस टाइम में, तो बहुत लड़के थे हमारे साथी बहुत ही, इतने पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं देते थे कहीं घर से, तो स्कूल से उनको देते मैडम, तो बहुत पढ़ते नहीं थे, तो वो वापस मुझे देते थे प्रश्न बैंक था ना तैयारी के लिए, तो मैं बहुत पढ़ते नहीं थे, कोई तो एक दिन आता तो कोई भाग जाता था, स्कूल ही नहीं आते थे लड़के के लिए। फिर वो मैं उनसे डेली लेता, मैं खुद ही पढ़ता। फिर मैं 5वीं बोर्ड फर्स्ट आया था हमारे बीरगढ़ स्कूल में यहाँ से। फिर यहाँ से उस टाइम हम सड्डी पहनते थे और यहाँ से फिर टीचर निकाल के हम मानपुर ग्रामीण में गए थे पढ़ने के लिए, और वो छात्रावास में रहते थे उच्च प्राथमिक विद्यालय
0: ग्रामीण में।
1: हाँ ग्रामीण में 8वीं तक पढ़ाई की,
0: वहाँ छात्रावास भी है।
1: हाँ मानपुर वाला हेलीपैड के पास है, इस साइड में लड़कियों का है इस साइड लड़कों का है, हेलीपैड वाला रोड है ना, इस साइड मंदिर का मंदिर टाइप है ना।
0: अच्छा अच्छा,
1: वो छात्रावास है
0: वो, उसमें अब थे।
1: हाँ उसमें
0: ठीक है, समझ गए। वहाँ पर
1: फिर वहाँ से 8वीं तक पढ़ाई की, उसके बाद दरबार स्कूल है ना राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय दरबार स्कूल, वहाँ से 12वीं की,
0: क्योंकि दरबार स्कूल में जो बच्चे हम देखते हैं पढ़ाई तो उनको बोलने में हो चाहे होशियार होते हैं, क्योंकि स्कूल बहुत पुराना स्कूल, अभी भी कोई टीचर पूछेंगे ना यहाँ का शिक्षकगण वो भी दरबार स्कूल से ही निकले हैं, क्योंकि दरबार स्कूल का पूरा नाम है इस एरिया में, एक छाप लग चुका है कि
1: उस टाइम में।
0: कौन प्रिंसिपल थे जब आप 12वीं कर रहे थे?
1: रमेश जी
0: थे। अच्छा प्रिंसिपल,
1: उसके बाद BA किया था, उसके बाद वो BEd का वो प्री एग्जाम दिया था, तो उसमें फर्स्ट लिस्ट में ही हमारे तेजेंद्र प्रसाद कॉलेज मुझे मिला था पहली बार। अब
0: पास सिलेक्शन होता है BEd का?
1: मेरे प्री एग्जाम होता है
0: ग्रेजुएशन
1: BA करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद प्री एग्जाम होता है, तो उसमें जैसे मतलब 2-3 लिस्ट निकलती है, फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट और राउंड होते हैं, तो हमारा पहले लिस्ट में ही निकले, ये जिनके ज़्यादा नंबर होते हैं ना उन्हीं को ये तेजेंद्र प्रसाद कॉलेज है ना उनको उन्हीं को ही मिलता है, बाकी को नहीं मिलता है आज भी।
0: तो उसमें आप सिलेक्शन?
1: हाँ तो उसमें, हाँ फिर वो उस टाइम में मेडिसिन में बहुत करता था, पहले मैं इधर लगी थी कि छोटी थोड़ी उस टाइम में, फिर वो ओम का उच्चारण ऐसे करते करते मेरे में मेंटल फिर थोड़ा सही हो गया क्या नहीं करते।
0: अच्छा
1: फिर ये पहले कोई भी मैं कॉलेज जाता था उस टाइम में मुझे लगी थी तो मैं पढ़ता था ना बहुत मुझे याद नहीं होता, टीचर पढ़ाते थे ना बहुत सारा याद हो जाता था।
0: ओ
1: हाँ खुद पढ़ता वो बिल्कुल याद ही नहीं होता, टाइपर निकला था कि उस टाइम में हॉस्टल में रहता था उस टाइम में, तो मैं एकदम से खड़ा हो गया तो मुझे चक्कर आ गया, तो दीवार था ना दीवार का कोना होता ना
0: जी,
1: तो वो टच हो गया यहाँ पे थोड़ा सा, तो ये माइंड तो एकदम गर्म हो गया, बहुत जाम हो गया ऐसे करते करते। फिर मैं कॉलेज जाता था, डेली जाता था, रेगुलर कॉलेज थी मेरी, क्योंकि वो पढ़ाते वो मुझे याद रहता था ना, मैं खुद पढ़ता वो बिल्कुल याद ही नहीं रहता, ऐसे करते करते फिर मैं प्री एग्ज़ाम में वो BA करने के बाद फिर प्री एग्ज़ाम में मैंने मेडिसिन स्टार्ट किया।
0: अच्छा।
1: फिर मेरे ये है ना फिर मुझे याद भी तेज होने लगा, और कॉलेज में वो तेजेंद्र प्रसाद कॉलेज था ना उसमें भी मैं सब ये GK करवाना ये सब मैं करवाता था उस टाइम में।
0: ओके
1: पांच पाकिस्तान था मेरा
0: ओके वेरी गुड अरे वाह
1: अभी फिर मेडिसिन करने लगा तो मेरा अब मैं खुद पढ़ता वो भी याद होता है और दूसरा वो भी याद हो जाता है मेडिसिन दो तीन साल तक मैंने रेगुलर करता था मैं एक मेरा एक घंटा तो परफेक्ट था उस टाइम
0: जैसे अभी कुछ
1: ध्यान करने भी एक घंटा आधा घंटा ऐसे में ऊपर जाता था कि पहाड़ पर चट्टान है तो भाई बैठा रहता था
0: अच्छा
1: फिर क्या कि एकाग्रता शक्ति रहती है कि हाँ तो उसे मेरे पढ़ाई में क्या बहुत मतलब सहयोग मिला उससे योगा से मतलब बहुत सहयोग मिला मुझे
0: अच्छा अच्छा बहुत अच्छा बात बता ये तो यादगार बचपन का सुना है और पढ़ा लिखा इतना है और सभी जो हमारा यूथ सुन रहे हैं युवा सुन रहे हैं तो एक करियर के लिए अपना
1: योगा भी जरूरी है सर
0: जरूरी है क्योंकि मेडिटेशन मन को शांत देता है और एकाग्रता में वृद्धि होता है आत्मा में एक बल आता है मन और बुद्धि संस्कार पूरा तेज होता है मन बुद्धि जिसका तेज है बुद्धि जिसका तेज बौद्धिक शिक्षा जब होता है बुद्धिमान बुद्धि का बल से ही काम होता है बाहुबल से काम नहीं हो पाएगा बाहुबल अल्प दिन के लिए किंतु बुद्धि बल कहीं भी रहो बुद्धि से काम करो तो आराम से काम निकल जाएगा बहुत अच्छा बात बताया बाजाराम जी तो
1: उसके बाद सर वो आपके वो ब्रह्मा कुमार वाले आए थे हमारा ट्रेनिंग चल रहा था मईखेड़ा में उस टाइम में तो वहाँ से मैंने और थोड़ा वो सीखा उस टाइम हम शांति वाले कि मतलब चिंता कोई भी अपन टेंशन होता है तो उसे कैसे दूर किया जाता है फिर वो वहाँ बताया था कि वहाँ आए थे आपके ब्रह्मा कुमार वाले तो वहाँ से कोई भी चिंता टेंशन हो जाता तो फिर तो बस सांस अंदर वो ऐसे करता था मैं उस टाइम वहाँ से सिखाया था उस टाइम टेंशन ऑटोमेटिक दूर हो जाता था इसे
0: तो राज्य को इस पर विश्वविद्यालय ओम शांति में राज्य को सिखाते हैं जो कि खुद का बारे में मैं कौन हूँ मुझे क्या करना चाहिए मैं कौन हूँ हु एम आई और व्हिच गॉड परमात्मा कौन है आत्मा का पिता परमात्मा कौन है जब वो ज्ञान आ जाता है समझ आता है तो उसी हिसाब से हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं जीवन जीने की कला जो भी हम कर्म करते हैं कर्म इंद्रिय द्वारा कान से सुनते हैं आँख से देखते हैं मुख से बोलने बोलने वाला देखने वाला करने वाला आत्मा है जो ड्राइवर है जब वो बाबूराम जी काम करेगा तब ये काम में आएगा तो ये आत्मा जैसे देखे देखना चाहेगी उस तरह स्थिति बनेगा इस चक्षु से आत्मा देखती है आत्मा निकल जाएगा ये चक्षु काम करेगा नहीं आँख कोई काम का
1: नहीं
0: आँख का रोशनी भी कुछ काम नहीं करेगा आँख है ही नहीं रोशनी करने वाला बैटरी जैसे मोबाइल से बैटरी निकाल देंगे
1: तो फिर
0: मोबाइल चलेगा नहीं या शरीर से जब आत्मा मैंने मन बुद्धि को निकाल देंगे तो काम करेगा नहीं तो मेडिटेशन राजयोग जो ध्यान केंद्रित करने का शक्ति राजयोग से हम प्राप्त करते हैं अच्छा बात बताएं आपने राजयोग भी थोड़ा बहुत जानते हैं हठयोग भी जानते हैं और आपका बौद्धिक विकास के लिए ये सब काम में आता है तो श्रोता मित्र जब सुन रहे युद्ध जो सुन रहे जब भी समय मिले वो ध्यान लगाए अपना मन बुद्धि को भ्रुकुटी में एकाग्रता करने के लिए देखिए खुद को देखने के लिए अभ्यास करें खुद का और खुद तो आत्मा अलग और शरीर अलग ये चीज जब जान लेंगे तो आप कोई भी काम करेंगे तो सक्सेस हो पाएंगे और नहीं मिलेगा तब भी खुशी होगा क्योंकि कर्म का गुह्य गति को मालूम होता है जैसे शिक्षा को लेकर इतना पढ़ा लिखा किए आपका समाज में गारा से समाज में बहुत कम लोग पढ़ते लेकिन आप इतना पढ़ाई किए इसका पीछे इतना पैसा आप आपका उमंग उत्साह को आगे बढ़ाने के लिए कौन सहाय किया
1: हमारा मकसद यही है कि मैं मतलब एक मैं ये सोचता हूँ कि मतलब ये जो मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ मुझे देख देख कर मेरे गांव के मतलब जो है ना लोग वो भी मतलब मेरी जैसे ही बने के कहने करते पढ़ाई करे और मैं तो ये सबसे ज़्यादा पढ़ाई पर बल देता हूँ
0: कभी अफसोस नहीं होता अभी तक नौकरी नहीं मिला बा हम ट्राई कर रहे हैं अभी तक सक्सेस नहीं है इसको भी
1: अफसोस तो अभी क्या कि हार मानने से कोई नहीं होता हम सोचते कि लगेंगे मेरा लक्ष्य है कि मैं टीचर बनूंगा तो बनूंगा
0: उसके लिए आप क्या करते हैं उसके लिए क्या मेहनत करते हैं क्योंकि ऐसे हरास कभी नहीं होना चाहिए जब तक आपका उम्मीद है जब तक प्राण है जब तक आपका एज का सीमा है तब तक आप कोशिश और लगाइए 20 नाखून लगाकर आप थोड़ा सब त्याग किए और थोड़ा हुआ नहीं तो और त्याग करो और पढ़ाई करो तो ज़रूर कामयाबी होगा और ऊपर वाला तो बैठा है तो इसके लिए आप क्या क्या मेहनत करते हैं बाजाराम जी पढ़ाई के लिए जो आप लक्ष्य टीचर बनूंगा ही तो बनने के लिए आपका प्रयास जैसे डॉक्यूमेंटेशन हो चाहे जो वैकेंसी निकलता है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे क्या प्रयास
1: तो ऐसे में कोचिंग के लिए गया था जोधपुर में जोधपुर भी रहा था मैं दो बार गए जोधपुर, फिर एग्जाम से पहले दो ये कोरोना काल आ गया, फिर वो घर आते पढ़ाई थोड़ा सपोर्ट हो गया यहाँ से, फिर वापिस चले गए कोचिंग के लिए, वापिस कोरोना आया तो वापिस घर आते, घर पे इतनी पढ़ाई नहीं होती है।
0: दो तीन साल जब गया कभी अफसोस नहीं हो रहा भाई हमारा तो एज जो लिमिट है वो तो माइनस हो रहा है, तो क्या सरकार बढ़ाएगा दो तीन साल देगा आपको?
1: एज तो नहीं देगा, लेकिन सर क्या है कि हमारा वो एग्जाम ही था, सह बार तो सह खिसक गया उस टाइम में, तो फिर क्या लो हो जाते, फिर क्या कि इतना पैसा और कहाँ से करे बार बार, तो फिर वो एग्जाम भी दिया था वो भी रद्द हो गया, तो वापस अब वही एग्जाम है ना, दो साल उसमें खर्च किए तो वही एग्जाम अभी जुलाई में हमारा। मुझे छोटे बच्चों को पढ़ाने में बहुत रुचि है, इंटरेस्ट, यहाँ पहले ये घर पे ही मैं पढ़ाता था इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे बहुत आते थे हमारे गाँव के।
0: अच्छा, इस फल में कितने बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चे?
1: बच्चे तो
0: तीन साल से आठ साल का अंदर में
1: बहुत हैं। ये फलिया ना हमारी, ये और ऊपर वाले बांधे ने वहाँ, ये ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे ही आप, ये फल बुमरिया फली ये नीचे की साइड जान मिलेंगे लेकिन कम, ये यहाँ से सीमा है डामर फल बिल्कुल मतलब इतना कम है, मतलब शिक्षित कम है क्या यहाँ के, हमारे यहाँ के बुमरिया फली पूरी पढ़े लिखे ही है, थोड़े बहुत कोई मिलेंगे।
0: आपका अभी उम्र क्या है?
1: मेरी उम्र 31 साल है।
0: और कितने साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं?
1: 40 तक
0: और 9 साल है तो है कर सकते हैं और हो जाएगा, लेकिन और थोड़ा मेहनत करो। और
1: मैं तो हमारे पीछे भी लड़की है नहीं, इनको भी डांटता हूँ, मैं फालतू का घूमना नहीं, फालतू ये टाइम चला जाएगा, अभी तुम्हारे अभी हम पढ़े लिखे तो आपको कुछ राय देंगे तो उस पर चलोगे तो जल्दी लग जाऊँगा, हमसे पहले लग जाऊँगे, हमारे क्या कि अनुभव बताने वाले उस टाइम में मिले नहीं थे उस टाइम में कि कौन से लाइन पकड़ने से कौन सा सही रहेगा।
0: जी जी जी।
1: अब तो क्या कि बारहवीं तक पढ़ता लड़के डायरेक्ट बता देते कि यार ये BST का प्री एग्जाम दिए तो ये मास्टर के लिए सही रहेगा कहने, तो पहले से तैयारी बच्चे को बता देते तो पहले से तैयारी प्री में निकल जाता, तो फिर वो क्या दो चार ट्रेनिंग होती है दूसरा में।
0: अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद अपना बाजाराम जी को इतना सुंदर प्रस्तुति दी और अपना अनुभव बता रहे जो भाई हम तो समाज सेवा के लिए उपस्थित हैं, हम करेंगे तो जरूर हमारा लक्ष्य रखें जो बच्चों को पढ़ाना, और हम उसी लाइन में जा रहे हैं, अभी पढ़ाई चल रहा है, पढ़ाई के बाद जरूर कामयाब होंगे, कहीं अभी एग्जाम बाकी है ना, तो बाकी होने के बाद फिर वो सफलता ही सफलता मिलेगी, जब हम नेक्स्ट बार आएंगे तो जरूर वो कामयाब हो जाएंगे, एक ही परीक्षा होगा ना इसमें रिजल्ट आ जाएगा, फिर इसके बाद आप इंटरव्यू हो जाएंगे, आपका फिर नंबर मिलेगा।
1: अब की बार दो एग्जाम किए फ्री देना और इसके बाद मेन है।
0: हाँ मेन भी आएगा।
1: हाँ इस साल किया है नहीं तो एक ही था।
0: अच्छा अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और कुछ गुनगुनाएंगे किस गीत पर गाते हैं गीत आपको अच्छा लगता है सुनने में, आपका गला से गीत अच्छा लगता है? समाज सेवा के लिए क्या करना चाहिए, एक यूथ समाज सेवा क्या कर सकता है, आपका गांव को एक आदर्श गांव बनाने के लिए क्या करना चाहेंगे, आपका की मैसेज, व्हाट इज योर की मैसेज टू द ऑडियंस?
1: गांव को आदर्श बनाने के लिए सबसे पहले क्या है कि मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं कोई पढ़ने स्कूल नहीं जाता है तो उसे स्कूल से जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो पढ़े लिखे होंगे तो गांव का विकास भी होगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, ये के मैसेज जो भी हमारा श्रोता सुन रहे हैं और खासकर जो यूथ, मान लीजिए नौकरी मिलेगा तो दी बेस्ट, नौकरी नहीं मिलेगा तब भी खुद का पैर पे खड़े होकर दूसरों को भी खड़ा करना ये एक जिम्मेदारी रहेगा, और कितना दुआएं मिलेगा, आप तो रोजगार कर रहे उसके साथ पाँच लोग को रोजगार दिला रहे है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आज इस कार्यक्रम में का परिवार में जो बाप बेटा और बहू और पोता सबका आवाज,
1: अंकल जी
0: जो भी आते हैं तो उनको भी बोलता है भाई उनको माइक दो भी कुछ बोले, क्या करते हैं आप?
2: खेती अंडा बिरयानी गो।
0: अभी गर्मी का टाइम में आप खेत को कैसे बना कर रखे, अभी आप खेत को कैसे रखे?
2: सफाई
0: क्या क्या सफाई किए?
2: और साला बीजा काटे खेर बीज करें।
0: अच्छा,
2: बोना रू
0: आषाढ़ महीना में,
2: आषाढ़ महीना दो मक्की रो बिरयानी सो अपना अंडा हुआ है गो तो आपने सियाड़ी में नहीं आते सियाड़ी में।
0: और घर में कौन कौन है बच्चे छोकरा छोकरी
2: हैं?
0: हैं, क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई क्या रहा है सबको?
2: पढ़ाई क्या रही है का, कोई कारीगरों काम करे, कोई दुकान माता है
0: उन्हें हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, ये था बादाराम का चाचा जी हैं, काका जी हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद देते आज का कार्यक्रम को जिन्होंने सजाए सुंदर रूप में, सबको धन्यवाद। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन, धन्यवाद, आभार, राम राम, राम राम।

साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।

0: नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूं, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूं।
1: मैया मोरी मैं नहीं मां खायो,
0: ये भजन मुझे बहुत प्रिय है, आप भी सुनिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आदाब। केम छो कीगन हो। रेडियो मधुबन के सभी लिसनर्स को केवल का यानी कि मेरा प्यार भरा सलाम। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो खुशी के नगमे दिल की बात है। जी दोस्तों, आज का जो टॉपिक है थोड़ा अलग है, थोड़ा गंभीर है, लेकिन हमारे दिल से, दिल के सबसे करीब है। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात करेंगे क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन पर। या लेकिन टेंशन मत लीजिए, हम यहाँ लंबे चौड़े भाषण या लेक्चर नहीं देने वाले, बल्कि दिल से दिल की बात करेंगे। क्योंकि जैसे आपको पता है, शो है दिल की बातों का, दिल के नगमों का, एक ऐसे रिश्ते की बात हो जो ज़्यादा शायद थोड़ा टूट रहा है ना। तो सोचिए, अगर हमारी धरती हमें खत लिखे तो उसमें क्या लिखा होगा? कोई बता सकता है कि अगर धरती माँ ने हमें खत लिखा है तो उस खत में हमें क्या लिख सकते हैं? हम किसी को खत लिखते हैं जब हमारे रिश्ते टूट रहे होते हैं, हमें ऐसा कुछ लगता है कि कुछ हमारे दिल की बातें लिखनी होती है, हम क्या लिख सकते हैं? तो धरती माँ क्या लिख सकती है, देखिए सुनिए। प्यारे इंसानों, जब तुमने पहली बारिश में भीगना सीखा, मुझे खुशी हुई। जब तुमने मेरे पेड़ों की छाँव में सुकून पाया तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन अब मुझे थोड़ा बुखार है, मेरी सांसें गर्म हो रही है और मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। जी हाँ दोस्तों, क्लाइमेट चेंज पर कुछ नहीं, हमारी धरती का वही बदलता मिजाज है जो हमें जता रहा है कि अब हमें संभलना होगा। पहले पहले जहाँ मौसम दादी नानी की कहानियों जैसा सुहाने होते थे, अब वहाँ कभी बेमौसम बारिश तो कभी चुभने वाली गर्मी होती है। जी हाँ दोस्तों, क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बातें करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ कहने से या सुनने से कुछ नहीं हो सकता है। हमें उसके लिए अपने अंदर से, अपनी तरफ से कुछ कोशिशें करनी होगी जिससे हम धरती माँ का ये जो बढ़ता तापमान है उसको हम कम कर सकते हैं। चलिए, बातें होती रहेंगी धरती माँ के साथ और धरती की इस क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन के बारे में भी हम बातें करते रहेंगे, लेकिन वक्त है सबसे पहले ये गाना सुनने का। चलिए सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।
1: नजरों से कह दो जी,

0: मैं कनव हूँ, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कल जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो पता है मैंने क्या देखा? एक अंकल सड़क पे कचरा फेंक रहे थे। मैंने उनको जाकर बोला कि अंकल सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो पता है उन्होंने क्या बोला?
1: अरे बड़ा है मुझे सिखाने वाला।
0: उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो चले गए, लेकिन मैंने खुद ही कचरा उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया।

0: थक ना जाएं। जी हाँ दोस्तों, हेमंत कुमार जी की आवाज़ में ये सदाबहार नगमा सुनकर दिल झूम उठता है ना। लेकिन आज इस गाने के बोल सुनते ही मेरे दिल में एक अलग बात आई। चलिए थोड़ी दिल की बातें करते हैं एक नए नज़रिए से। देखिए, जब हम बात कर रहे थे क्लाइमेट चेंज के बारे में और ये ऐसा गाना है, तो यहाँ ये है कि एक दोस्त अपने दोस्त के लिए कह रहा है कि नज़रों से कहें निशाना चूक ना जाए, है ना। तो अब बात ये है कि गाने के बोल है मज़ब जब तुम्हारी हर अदा कातिल ही कहलाए, है ना। मज़ा जब है तुम्हारी हर अदा कातिल ही कहलाए। तो दोस्तों, हमारी इस प्रकृति, इस जलवायु की अदाएँ भी बड़ी खूबसूरत है। जब रिमझिम बारिश होती है, जब ठंडी हवाएं चलती है, तो हम सब कहते हैं क्या सुहाना मौसम है, है ना। लेकिन सोचिए, अगर हमें जिसकी देखभाल नहीं की, अगर हमने इसकी देखभाल नहीं की, तो ये प्रकृति गुस्से में जब बिखरेगी, चाहे वो बेमौसम तूफान हो या भयंकर गर्मी, तो ये कातिल शब्द सच में बदल जाएगा। हम कहते ना, क्या कातिल धूप है, क्या तूफान बारिश आया, तो हम कितनों को, तो हमारी एक छोटी सी लापरवाही इस खूबसूरत मज़ा को सज़ा में बदल सकती है। और रही बात पहली लाइन की, ज़रा नज़रों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए, तो दोस्तों अब वक्त आ गया है कि हम अपना निशाना बिल्कुल सही जगह लगाए। जी हाँ, हमारा निशाना क्या होना चाहिए, हमारी नज़रें इस बात पर होनी चाहिए कि हमारे आसपास पानी व्यर्थ ना जा रहा हो। जी हाँ, पानी अगर व्यर्थ जा रहा है तो उसे नल से बंद कीजिए और प्रकृति को बचाइए। हमारा निशाना इस बात पर होना चाहिए कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। जी हाँ, और सबसे बड़ा निशाना कि धरती को बचाने का हमारा संकल्प कभी चूक ना जाए, है ना। चलिए बात करते हैं इस गाने के बारे में और भी, लेकिन सबसे पहले आज हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ रहे, सुनते हैं उनसे। हेलो,
1: हाँ जी सर, नमस्ते। गुड इवनिंग, सूरज भाई बोलता हूँ जटाना से। कैसे हो सर?
0: गुड इवनिंग सूरज जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं हम।
1: बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और बस कार्यक्रम शुरुआत हो गई है अच्छे गाने से। जरा नजरों से कह दोगी जी
0: निशाना चूक ना
1: जाए, तो निशाना चूक ना जाए बहुत अच्छा गाना था
0: जी।
1: तो शुरुआत अच्छी की है अपने, धरती से की है, आकाश की है, कागज की है
0: जी।
1: तो बस मुझे एक गाना याद रहा आदा है, जो कागज से आपने बोला था, कागज का मेरा गाना याद आ गया, तो मैं कागज पर एक गाना सुनाता हूँ आपको।
0: हाँ।
1: ये फिल्म का नाम है कोरा कागज
0: जी।
1: तो ये कोरा कागज का गाना है।

0: मेरा जीवन थोड़ा कागज थोड़ा ही रह गया।
1: वाह क्या बात,
0: बहुत अच्छा गाना है सर
1: जी,
0: मीठा गाना है। तो बस सभी हमारे मित्र की हमारा तो परिवार जी भी आ जाएंगे थोड़े देर में, हमारा बदन लाल जी भी आ जाएंगे
1: जी,
0: और हमारा बुरा राम जी बहुत अच्छी बातें करते हैं।
1: हाँ बिल्कुल,
0: वो उम्र लायक है, थोड़ा सा तबियत थोड़ी सी प्रॉब्लम है तबियत की, फिर भी रेडियो से तो जरूर जोड़ ही जाते हैं और मित्रों को हराम हर रोज राम राम कर देते हैं
1: जी।
0: ये हमारे सभी मित्रों का एक प्यार है, प्रेम है
1: जी,
0: तो खींच लाते हैं सभी मित्रों को साथ रेडियो मधुबन के साथ। तो सभी हमारे प्यारे मित्रों को नमस्ते। आज देखो कई सारे मित्र हमारे 80-80 साल के हैं, हमारे गुरु राम जी हैं 70-80 साल के, हमारे ये बुरा राम जी 70-80 साल के, फिर भी हम दोस्त मानते हैं, मित्र मानते हैं
1: जी,
0: क्योंकि हमारे परिवार के जो हिस्सा है हमारा, थोड़ा हम हमारा से बहुत बड़े हैं, हमारे सचिवर हैं, फिर भी हम मित्रों की तरह हम रेडियो मधुबन में बात करते हैं, तो एक खुशी की बात होती है सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और हम यहाँ पे मुझे भी ये लग रहा है काफी समय से जब हम बातें करते हैं या हमें जो भी कॉल कर रहे हैं तो इतने प्यार से सभी एक दूसरे को याद करके बातें करते हैं, तो मुझे भी यही लग रहा है कि ये शो एक ऐसा माध्यम बन गया है कि अपने दोस्तों को याद करने का एक जरिया बन गया है कि भाई चलिए सभी आते हैं, एक दूसरे को सलाम करते हैं, याद करते हैं, नमस्ते करते हैं।
0: बिल्कुल, तो एक दूसरे का हाल चाल भी पूछ लेते हैं जी, उससे तो रेडियो मधुबन की वजह से, बल हमने देखा नहीं है, फिर भी आज हम अच्छी तरह से एक दूसरे का हाल चाल पूछ के एक अच्छा नाता भी हमारा बन गया है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे हमारे परिवार के हिस्से है ऐसे हमारा सबका नाता बन गया है।
1: बिल्कुल,
0: तो बस ऐसे ही हमारे मित्र जुड़ते रहे, अच्छी अच्छी बातें करते रहे
1: जी,
0: ऐसी हम शुभकामना करते हैं सभी मित्रों से, जरूर जुड़िए रेडियो से। हमारे केवल भाई बहुत अच्छी बात बताते हैं, ऐसे गाने भी गाते हैं और गाने के बाद बात उसका जो विश्लेषण भी समझाते हैं कि इसमें क्या बात है
1: जी।
0: ये भी बहुत खूबी है आज की सर।
1: थैंक यू सो मच,
0: ये हमारे लिए खास इसीलिए है कि ये जो सब आप बताते हैं गाने के, तो इसमें हमको समझ आते हैं कि क्या कहना चाहते हैं।
1: हाँ।
0: गाने में लाइन क्या बताती है, जीवन के लिए जरूरी परिवर्तन का एक माध्यम है जो आप बताते हैं सर।
1: नहीं, कई बार ऐसे होता है ना, कोशिश हम करते हैं कि गाने तो देखिए सभी लोग सुनते हैं, लेकिन कई बार हम ये होता है कि हम उनको बस सुनने खातिर सुन लेते हैं, आजकल का तो यही जमाना है, सिर्फ सुनने खातिर सुन लेते हैं,
0: सुन तो लेते हैं लेकिन इसका भावार्थ क्या है,
1: भावार्थ नहीं समझ पाते
0: जी, ये हम नहीं समझते, लेकिन आज अच्छी तरह से आप समझा रहे हैं, तो एक जीवन का एक मकसद बन गया है सर, और हमारे लिए भी और हमारे सभी श्रोताओं के लिए भी जरूरतमंद बताते हैं, तो इसमें कई सारी बातें हम जीवन में धारण करके एक अच्छा जीवन परिवर्तन कर देते हैं सर
1: जी। थैंक यू सो मच सर जी,
0: नमस्ते,
1: नमस्कार,
0: थैंक यू। हमारे बुरीलाल जी मेरी राह देख रहे हैं कि सुरेश भाई फोन मुके में
1: सुरेश जी भी है, फिर मदन लाल जी भी आएंगे, मदन लाल जी ने कल याद किया था, बोले सब आ गए, मैंने कहा सभी ने याद दिया है, आप ही की वेट कर रहे
0: हैं।
1: नमस्कार, थैंक यू सो मच सुरेश जी। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे सुरेश जी, और हम जब बात कर रहे थे कि हमारा नज़रिया क्या होना चाहिए, निशाना क्या होना चाहिए और कहाँ चूक ना जाए, तो ये चीज़ों पे हमने बात की। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है बिना किसी बिल के, बिना किसी कंडीशन के, तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम थैंक यू कहें, और थैंक यू कहने के सबसे अच्छा तरीका है केयर करना। जी हाँ, चलिए फिर से हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े, बात करते हैं उनसे। हेलो,
2: हेलो जी, नमस्कार बाबू जी, नमस्कार।
1: नमस्कार भूरीलाल जी, कैसे हैं आप?
2: बस आपकी बातों को सुनकर के आनंद ले रहा हूँ।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच।
2: सुरेश भाई भी अपनी बातें रख रहे थे आपके सामने और उनकी सुनकर के मैं आनंद ले रहा था।
1: हाँ, और आपने कई बार सुना कि भूरीलाल जी का नाम लिया गया है, सुरेश भाई ने कहा कि भूरीलाल जी
2: नाम करते, वो नाम हर समय मुँह पे रखते है, भूरीलाल जी, भूरीलाल जी, सुरेश भाई है, जटा नवाज, सबका नाम लेते हैं वो।
1: हाँ बिल्कुल,
2: वो हमारे केपी में, हाँ, रेडियो मधुबन के खास सदस्य है वो।
1: हाँ बिल्कुल।
2: उनको तो हमेशा हम हमारे दिल के अंदर रखते हैं।
1: बिल्कुल,
2: रेडियो मधुबन तो रेडियो मधुबन के आधार है।
1: हाँ बिल्कुल,
2: आज वो हेमंत कुमार जी का जन्मदिन है क्या?
1: हाँ जी,
2: उनका एक गाना है सर।
1: हाँ जी,
2: नागिन फिल्म का नाम है, फिल्म का नाम है नागिन।
1: ओके,
2: मेरा मन डोले मेरा तन डोले कौन बजाए बाजुरिया,
1: क्या बात है,
2: उनका गाना सर। हो जाएगा तो क्या बात करो, मेरा भी मन बोलने लग जाएगा और ठंडू का मन बोलने लग जाएगा सर।
1: चलिए कोशिश बिल्कुल से कोशिश करते हैं, आज आपका मन भी डुला देते हैं, तन भी डुला देते हैं। चलिए
2: क्या बात कर दो दोस्तों, फिर हमेशा के लिए आपके साथ मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं किराया लग रहा हूँ भगवान आ जाए।
1: चलिए थैंक यू सो मच बुरीलाल जी, जी थैंक यू,
2: सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार,
1: और जो भी सुन रहे उन सब की तरफ से आपको भी प्यार भरा नमस्कार,
2: धन्यवाद।
1: जी हाँ, तो ये हमारे हसमुख बुरीलाल जी है, अब तो हमें इनको यही कहना है कि हसमुख बुरीलाल जी हमेशा हंसते रहते हैं और हंसाते रहते हैं सभी को। तो चलिए दोस्तों थोड़ा और सुकून देते हैं इस अगले नगमे के साथ, क्लाइमेट के साथ बात करेंगे, और हमारे जो भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं हम सभी से फिर से गुजारिश करते हैं कॉल करके हमें अपनी फरमाइश दे सकते हैं, हमें अपने गाने बताइए, हम आपके लिए ज़रूर से प्ले करेंगे, कोशिश करेंगे आपके लिए प्ले करें, और शाम के इस बहुत ही सुंदर समय को हम गानों के साथ शांत बैठ करके अपने पूरे दिन की थकान को मिटाएंगे। चलिए सुनते ही अगला नगमा, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

वेलकम बैक दोस्तों। बहुत ही सुंदर नगमा अभी हमने सुना, सुरेश जी की ये फरमाइश थी, मेरा जीवन कोरा कागज़ है। इससे पहले कोई और गाना हम प्ले करने वाले थे, लेकिन कुछ और था, क्यू में आ गया, तो हमने ये गाना प्ले किया सुरेश जी का, मेरा जीवन कोरा कागज़। जी हाँ दोस्तों, कोरा कागज़ मूवी का ये गाना, कल्याण जी आनंद जी इसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे और इसे गाया था किशोर कुमार साहब ने, इसको लिखा था एम जी हसमत जी ने। कई बार दोस्तों जीवन में ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे साथ जहाँ पे हम ये कहते हैं कि मेरा जीवन बिल्कुल कोरा कागज़ था, जो लिखा था आंसुओं में के संग बह गया। और कई बार ऐसा होता है कि किसी के आने से, मिलने से हम कहते हैं कि आपके आने के बाद हमारे जीवन में सारी चीज़ें हुई है, लिखी गई है, हमारे जीवन जो कोरा कागज़ था उसमें सारी चीज़ें लिखी है, वो आपने लिखी है। तो गाने के बोल तो बहुत कुछ सिखा जाता है। एक हवा का झोंका आया, टूटी डाली से फूल, ना पवन की ना चमन की किसी किसकी है ये भूल, खो गई खुशबू हवा में कुछ ना रह गया। कई बार जब हम ये क्लाइमेट चेंज की बात भी करते हैं दोस्तों, तो कुछ ना कहीं ऐसा ही होता है जब हम बेमौसम तूफान की बात करते हैं। अभी देखिए कई दिनों से मौसम ऐसा ही चल रहा है ना, कि सुबह और शाम इतनी तेज़ हवाएँ चलती है कि जो थोड़े बहुत बादल जमा इकट्ठा हुए हैं, बारिश के काले बादल इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, आप रोड की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसा लगता है कि आज तो तेज़ बारिश आने वाली, लेकिन वही हवा के साथ उड़ते चले चले जाते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे साथ जीवन में। चलिए सुनते हैं ये अगला नगमा और फिर बात करते हैं और भी इस क्लाइमेट चेंज के बारे में। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: हेलो
1: जी नमस्कार।
0: हाँ बुराराम जी बोल रहा हूँ। वापस आपने बोला था
1: जी
0: कॉन्फिडेंस बाद में फोन करने का।
1: जी बुराराम जी, अभी आपको सभी सुन रहे हैं, हमने आपको लाइव पे लिया हुआ है।
0: अभी तो सुरेश भाई और मदन भाई और सब मेरे यार दोस्तों को मेरा राम राम है। मधुबन
1: जी
0: भाई को सबको, और मेरे को एक गाना सुनाने का है। सुरेश भाई बोले तो उनके ऊपर ये दोस्ती का है फिल्म,
1: जी
0: मेरी दोस्ती मेरा प्यार, ये करके सुनाएंगे तो बहुत अच्छा सब भाई सुनेंगे। दोस्ती
1: बिल्कुल कोशिश करूंगा, जरूर से आपका ये गाना आज प्ले कर दे।
0: का है
1: जी
0: फिल्म।
1: मेरी दोस्ती मेरा प्यार, ये गाने के बोल हैं।
0: मोहम्मद रफी भाई
1: बुराराम जी सुन रहे हैं आप, आवाज आ रही है
0: सर।
1: जी। हेलो हेलो, शायद आवाज़ कट रही थी, शायद आवाज़ नहीं आ रही है। और चलिए कोशिश करते, फिर से उनकी कॉल आया है। हेलो
0: नमस्कार। हेलो
1: हेलो,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: क्या बात है, आवाज उड़ जाती है बीच में से कहीं
1: बीच
0: आवाज जल्दी।
1: बिल्कुल कहीं कहीं
0: जी
1: आवाज़ कट जाती है। आप कैसे हैं मदन लाल जी, ठीक है?
0: जी मैं बस बढ़िया हूँ। और ऊपर रह रहा है, एरोप्लेन चल रहा है
1: अच्छा
0: और आगे रेल चल रही है और आजू बाजू में गाड़ियां चल रही हैं
1: जी
0: और बस सभी का दिमाग चल रहा है, चलने वालों का।
1: जी
0: और आपको नमस्कार करते हैं नई किरण। अरे खुशी के लगने और दिल की बात है। कैसे
1: जी
0: हैं आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: मैं बस अच्छा ही हूँ। मैं आपसे अच्छा ही लेके रेडियो मधुबन से अच्छा ही हूँ मैं।
1: क्या बात है, चलिए
0: और
1: बहुत अच्छी
0: जी
1: बात है।
0: हाँ मैं मेरा सुबह शाम रेडियो मधुबन सुनता हूँ जब भी मेरी बैटरी चार्जिंग होती है।
1: बहुत अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है ना कि रेडियो सुनने से, क्योंकि आज के ज़माने में रेडियो बहुत कम सुनते हैं, और अगर आप रेडियो
0: जी
1: सुन
0: जी
1: करके अपने दिन की बैटरी चार्ज करते हैं, तो इससे बड़ी बात और हमारे लिए क्या हो सकती है।
0: जी जी और भगवान जी ने बोला अगर तुम रेडियो सुनते हैं
1: जी
0: और रेडियो सुन के उसको अंदर धारण करते हैं
1: जी
0: तो आप खुद भी रेडियो ही बन जाते हैं।
1: क्या बात है।
0: जी। और मैं रेडियो ही हूँ वैसे, आप समझो तो बहुत कुछ है। और बस नमस्कार करते हैं हमारे सभी दोस्तों को आज जिनका भी जन्मदिन है
1: जी हेमंत कुमार
0: और
1: जी का जन्मदिन है
0: पूरे सैलेटी में है।
1: जी।
0: सैलेटी में सभी को, बहनों को, भाइयों को और हमारी सभी दादियों को नमन करते हैं हम।
1: थैंक यू सो मच।
0: और जी और गाना कौन सा गाएंगे? गाना तो यही गाना थी गुमनाम सिंह का है। तो इस दुनिया में जीना है तो सुन लो मेरी बात, गम
1: ये
0: छोड़ के मनाओ
1: बुराल जी,
0: रंग
1: ये अभी कल या परसों में ही गाना
0: दे
1: सुनाया था हमने, और कोई गाना सुना सकते तो बताइए, क्योंकि अभी शायद परसों ही हमने ये
0: ले।
1: गाना सुना है।
0: क्या बात है, दो तो अच्छा ही है ना।
1: हाँ अभी 2 दिन
0: दो
1: पहले ही
0: तो
1: हमने
0: मैं
1: आपको ये
0: दूसरा
1: गाना
0: गाना
1: सुनाया
0: सुनाता
1: शायद।
0: हूँ, सुनाता हूँ। दो
1: जी
0: गाने देखे थे मैंने।
1: हाँ
0: और देख मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गाम रे, छलकुर रे देख बांगला ठंडी ठंडी शाम रे।
1: वाह
0: देख मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गाम रे, पल फिर दे देख बांगला ठंडी ठंडी शाम रे। अरे मेरे काले काले दिल की मुझे लोग कहे मुझे बावरी, मेरे उलझे उलझे बाल, लोग कहे मुझे बावरी मेरे उलझे उलझे बाल, मेरे काला काला दिल है मेरे गोरे गोरे गाल, मैं चली उस गली में जैसे गाम रे, देख मेरा क्या नाम रे, नदी तुम्हारे गाम रे, पलकों रे देख बांगला ठंडी ठंडी शाम
1: क्या
0: रे।
1: बात है, वाह
0: ये
1: वाह,
0: गाना
1: चलिए कोशिश करते हैं
0: कविता
1: आपके लिए
0: देवदत्त
1: इसको प्ले
0: का है
1: करें।
0: और छहरी पिक्चर का गाना है, छहरी जी का
1: ओके
0: अच्छा गाना है। और नमस्कार है आपको बहुत बहुत, आपकी आवाज बड़ी सुरीली है, अच्छी है।
1: थैंक यू सो मच,
0: नमस्कार
1: चलिए
0: ओम शांति।
1: कोशिश करते हैं आपके लिए, आपका ये जो भूज मेरा क्या नाव रे नदी किनारे गांव रे, कोशिश करते हैं आपके लिए गाना आज प्ले
0: कुरकुरे
1: करें।
0: देख बांगला ठंडी ठंडी छावनी।
1: ठीक है
0: क्या ओम शांति।
1: चलिए, थैंक यू सो मच कॉल करने के आराम जी। जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारे दोस्तों की फरमाइशें, और बड़ी खुशी होती है जब ऐसे कुछ हम गाने इनके लिए प्ले करें, और प्ले करने के बाद उनको जब ये खुशी हो और ये गाना सुने। तो चलिए प्ले करते हैं अभी हमारे बुरी राम जी का ये प्यारा सा गाना कि मेरा मन डोले मेरा तन डोले, और फिर करते हैं और भी फरमाइशों के बारे में गानों की बातें। लेकिन जी हाँ दोस्तों, अभी जो हम गाना सुन रहे थे इसकी भी बातें करनी तो हमसे रह गई है, क्योंकि उस बीच में ही कॉल आ गया था। और ये जो अभी हमने गाना सुना मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले जी की आवाज़ में, दिल खुश बिल्कुल खुश हो गया, और इस गाने को बोल सीधे ही दिल को छू गए। दोस्तों बातें बहुत सी है इस गाने के बारे में करने के लिए, लेकिन वक्त भी साथ देता है क्योंकि फरमाइशें बहुत सी हैं हमें कहने की। चलिए पहले सुनते हैं गाने और फिर करते हैं गानों के बारे में बातें। तो सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: वेलकम बैक दोस्तों। अभी जो हमने गाना सुना मंडोले मेरा तंडोले, ये अपने ज़माने का एक बहुत ही बेहतरीन सा गाना है। और इसका म्यूज़िक, जी हाँ, आप सभी जानते हैं, इसमें एक बीन का म्यूज़िक दिया गया है, जहाँ पे हम ये कहते हैं कि नाग या नागिन को जब लोग सफेरे जो बन के यूज़ करते थे, इसका जो बीन बजाते थे, ये म्यूज़िक बड़ा हिट हुआ है उस समय का। मूवी भी नागिन है, 1954 की ज़माने की नागिन। तो उसके बाद और भी कई मूवीज़ में नाम आया है, लेकिन ये जो गाना था 1954 का गाना है। लिरिक्स इसके जो लिखे थे राजेंद्र किशन जी ने लिखे थे, लता मंगेशकर की आवाज़ है, म्यूज़िक डायरेक्टर हेमंत कुमार जी है। और अगर आप सभी को याद हो तो अभी के ज़माने में इसका जो म्यूज़िक है, ये जो बीन वाला जो म्यूज़िक, इसको भी रीमिक्स करके बनाया गया है और काफ़ी हिट भी हुआ है ये गाना। और आज भी कई जगह पर जब लोग नाचते हैं या नागिन डांस जो हम कहते हैं शादियों वगैरह में बड़ा यूज़ होता है, तो उसमें भी इस गाने के म्यूज़िक को बड़ा ही यूज़ किया जाता है। तो सोचिए दोस्तों कि उस ज़माने के सुपरहिट गाने, उस ज़माने के सुपरहिट म्यूज़िक आज भी लोगों के दिल में बसे हुए, लोग आज भी झूमते हैं इन्हीं गानों के बोलों के साथ। तो चलिए दोस्तों, समय है और भी बहुत सारे गाने, हमें और भी हमारी फरमाइशों को प्ले करना है। तो बढ़ते अगले नगमे की ओर, कि हमारे भूरा राम जी और से, जिन्होंने हमारे खास दोस्त सुरेश जी के लिए और हमारे जो भी लिसनर्स हमें सुनते हैं, मदन लाल जी है, बुरीलाल जी है, इन सभी के लिए बहुत ही प्यारा नगमा सजेस्ट किया है, फरमाइश थी, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, ये गाना उनके लिए हमें प्ले करना है सुरेश जी के लिए। और शायद सुरेश जी अगर ये सुन भी रहे हैं तो कल बहुत ही शानदार फरमाइश आने वाली है सुरेश जी की तरफ से हमारे भूरे राम जी के लिए और सभी के लिए। चलिए सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर ये बेहतरीन नगमा, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपके खाई बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है। सर
1: सावधान रहें, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर गाना है अभी हमने जो सुना, दोस्ती मूवी का ये गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की म्यूज़िक डायरेक्शन में मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में इसे लिखा था मजरूर सुल्तानपुरी साहब ने। और जी हाँ दोस्तों, ये गाना आज भी इतना ही सुपरहिट है। जब भी हम इस गाने को आज भी सुनते हैं तो आँखों में से नमी, आँखों में से आंसू ज़रूर से आते हैं, बिकॉज गाने के बोल भी इतने प्यारे हैं कि मेरी दोस्ती मेरा प्यार। इसमें एक शब्द ऐसे है जहाँ पे कहते हैं कि दोस्ती अगर भाई है तो बहना है प्यार। भाई बहन के रिश्ते को भी कितने प्यार से इन्होंने सजाया है और दोस्ती के रिश्ते को भी कितने प्यार से। आज भी जब हम दो दोस्त, चार दोस्त कहीं मिल करके बातें करते हैं या कोई ऐसे रूठने रूठाने की बातें होती है तो दोस्ती के ऊपर ये गाना बिल्कुल से फिट बैठता है। जी हाँ दोस्तों, और आज जी भुराराम जी ने जो भी गाना हमारे सभी मित्रों को ये सजेस्ट किया था, आज मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आज 6 महीने हो गए ये शो को शुरू हुए। जनवरी 26 से हमने ये शो शुरू किया था और आज जून की 16 हो गई है ना, 6 महीने होने आए हैं। और जो दोस्त हमने बनाए हैं जिन्हें हमें कभी देखा नहीं है लेकिन सिर्फ आवाज़ को सुन करके हमें आप डेली कॉल करते हैं, हमें इतना प्यार देते हैं, तो आप सभी को फिर से मैं दिल से थैंक यू कहता हूँ। और बस इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए हमारे साथ, रेडियो मधुबन के साथ सुनते रहिए हमें, और बस दिल की बातें हम इसी तरह से करते रहेंगे आप सभी के साथ। चलिए दोस्तों, फिर से एक और वक्त हो चला है एक और फरमाइश को सुनने का। जी हाँ, हमारे मदन लाल जी की तरफ से ये फरमाइश आई है कि बूझ मेरा क्या नाम रे, सुनते ही प्यारा सा नगमा उनके लिए। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

सभी लोग ये बताइए, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से अगर कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं?

नदी किनारे गांव रे। जी हाँ दोस्तों, कितना मज़ा आता है ना जब नदी किनारे अपना गांव हो, पानी बहता हो, और वहाँ ठंडी ठंडे पानी में जा कर के दोपहर में नहाना, और गांव की वो हरियाली, गांव के वो खेत, बड़े मज़ेदार सुहाने दिन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, याद तो बड़ी आती है गांव के समय की, जब हम गांव में थे और गांव की वो मस्तियाँ, वो खेल कूद, वो पानी, बारिश के समय का मौसम, बड़ा प्यारा सा दिन होते हुआ करते थे। और अब जब शहर में आ गए तो ये सारी मस्तियाँ भूल गए, और जब ऐसी चीज़ें कुछ याद आती है तो फिर याद आ जाता है। जी हाँ, अभी जो हमने गाना सुना, CID मूवी का ये गाना, ओपी नैयर साहब ने इसे म्यूज़िक डायरेक्ट किया था, मजरूल सुल्तानपुरी जी ने इसे लिखा था, शमशेद बेगम जी की आवाज़ में अभी हमने ये जो गाना सुना। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं, ये भी हमारी फरमाइश थी जो हमें मदन लाल जी ने और फरमाइश दी थी। बढ़ते हैं शो के अंत की तरफ, और आप सभी से विदा लेने का समय आ गया है, और फिर मिलेंगे हम मंडे को। कल हम नहीं हैं यहाँ, किसी कारण से मुझे कहीं बाहर जाना हो रहा है, तो गाना शो चलेगा इसी तरह से, खुशी के नगमे इसी तरह से रहेगा, खुशी के नगमे अपने 8 बजे फिर से आएगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि कोई और आ जाए, चाहे विशाल भाई हो, चाहे अंतरिक्ष भाई, जो भी हो आ सके वो आएंगे, और हम फिर आपसे मिलेंगे फिर से सीधा मंडे को। तब तक आप बने रहिए रेडियो के साथ, अपना प्यार इसी तरह से लुटाते रहिए रेडियो को, और सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM और यह है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। दोस्तों, स्वास्थ्य को सहज स्वास्थ्य ये कहते ही लोग कहते हैं कि स्वास्थ्य सहज कैसा है। स्वास्थ्य को तो हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखो, लोग जिम जा रहे हैं, अस्पताल जाना पड़ता है, विटामिन की सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, इतनी मशक्कतें कर रहे हैं, तब जाके व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। मगर क्या ये सही में स्वास्थ्य का डेफिनेशन है? क्या स्वास्थ्य के लिए इतनी मशक्कत करने की जरूरत है कि हम कहीं और से दुकान से खरीद के ले आ रहे हैं, हम डॉक्टर की दुकान पे, दवाई की दुकान पे, जिम एक्सरसाइज की दुकान पे इत्यादि से क्या ये स्वास्थ्य सहजता से हमें हासिल हो सकता है? व्यक्ति आसानी से अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए क्या कर सकता है, इस बारे में बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं जाता। ऐसे में जब हम प्रकृति से चिकित्सा की ओर रुख करते हैं तो पता चलता है कि प्रकृति ने हमें नेचुरली प्राकृतिक रूप से स्वस्थ बनाए रखा है और हम प्रकृति के दिए हुए नियमों से या प्राकृतिक जीवन शैली से जब दूर होते जाते हैं तो हमारे शरीर में बीमारियां आने लगती हैं। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम बिना खर्चे के, बिना ज्यादा मेहनत किए बगैर अपने आप को स्वस्थ रख सकें? और ये बिल्कुल सहजता से संभव है। आइए आज की बातचीत में कुछ ऐसे ही विषयों पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट के रूप में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं और भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं और वहीं से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो ये बात समझी जाए कि लोग ये जो समझते हैं कि स्वास्थ्य दुकानों से खरीदने वाली चीजें, लोग सोचते हैं तबीयत बिगड़ी तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमारा स्वास्थ्य वापस लौटाएंगे। स्वास्थ्य के लिए दवाई की दुकान, विटामिन सप्लीमेंट्स, ये वो भी, आजकल तो बहुत सारे लोग बहुत सारी दवाइयों की दुकान अपने घर में ही रख लेते हैं। वो जितनी दवाइयां खाते हुए देखते हैं उनको देख के हैरानी होती है, बाप रे, स्वस्थ रहने के लिए इतनी दवाइयां खानी पड़ रही हैं, ऐसा भी लगता है। और कुछ लोग स्वस्थ रहने के लिए जिम मेंबरशिप, ये मेंबरशिप, योगा क्लास, लाफ्टर क्लब और न जाने ऐसे अलग अलग आयामों में अपना पैसा खर्च कर रहे हैं कि स्वास्थ्य बनाए रखें या स्वास्थ्य को वापस ले आया जाए। तो आप क्या इसे स्वास्थ्य का डेफिनेशन समझते हैं, क्या ऐसे हम दुकानों से हम स्वास्थ्य खरीदें?
1: कुछ भी चीज खरीद के नहीं मिलती है भैया, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत खुद को करनी पड़ती है, खासकर स्वास्थ्य के लिए। ये नहीं हो सकता कि कोई जिम में एक्सरसाइज करे उसका बेनिफिट हमको मिले, ये नहीं हो सकता कि कोई किलोमीटर मैराथन दौड़े और उसके शरीर की जो ताकत है वो हमें मिल जाए, ये हमें खुद करना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य पाने के लिए हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद अपने भोजन पे कंट्रोल करना पड़ेगा और खुद एक्सरसाइज करनी पड़ेगी।
0: तो दोस्तों, ये बात आपने समझ लिया है कि स्वास्थ्य के आसान तरीके स्वयं पर कार्य करने पर है। स्व पर अनुशासन से अगर हम उस सेल्फ डिसिप्लिन से काम करना शुरू करें, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है उस डिसिप्लिन को फॉलो करें, हर दिन एक्सरसाइज करना है, शारीरिक व्यायाम करना है, इत्यादि विषयों पर ध्यान रखने से चीज संभव। डॉक्टर साहब, कल की बातचीत में हम ये बात कर रहे थे कि फैट को लेकर, वसा की आवश्यकता को लेकर हम अनेक चीजों के बारे में बातचीत कर रहे थे। प्रायः लोग फैट कहते ही घबरा जाते हैं, अरे नहीं नहीं फैट से तो बचने की जरूरत है, इन चीजों से तो बचाव करने की जरूरत है। तो बहुत सारे लोग फैट नहीं खाने के बारे में आज कॉन्शियस होके जा रहे हैं कि भाई नहीं, ये नहीं खाना, इसमें बहुत तेल की मात्रा है, इसमें तो बहुत घी पड़ा हुआ है, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसा लोग कहते आ रहे हैं। और आपने ये भी समझाया था कि नहीं, शरीर के लिए वसा आवश्यक है, कितनी मात्रा में आवश्यक है उस चीज को समझा जाए। आजकल ये भी चीज देखने को मिलती है क्योंकि आजकल हर कोई साल में एक आध बार ब्लड टेस्ट तो करा ही लेता है, हेल्थ चेकअप्स के लिए लोग जागरूक होने लगे हैं और सोचते हैं कि भाई हाँ हाँ, ये कराने से हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं। उसमें अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। फिर लोग ये भी चीजें सुनने लगे हैं कि एक गुड फैट होता है, एक बैड फैट होता है। अब इन सब चीजों को समझा जाए कि अच्छा फैट क्या है, ये क्या है।
1: फैट को हम जब भी मतलब डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको या तो एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स के रूप में करते हैं या फिर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स में। तो जो सबसे कॉमन तरीका है उसको हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के रूप में अगर हम डिवाइड करें तो सैचुरेटेड फैट वो है जो सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर, मतलब कोई भी चीज जिसको आप समझते हैं कि जिससे मोटापा आपका बढ़ सकता है और आपके कमरे के टेम्परेचर पे वो अगर सॉलिड है तो वो आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें सबसे कॉमन है बटर, चीज, आपका रेड मीट के सारे अवतरण, पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल। इस समय, आज के समय में सबसे खराब जो तेल है वो पाम ऑयल है, क्योंकि हम आप में सभी बच्चे जो मेरे कांटेक्ट में आ रहे हैं और आपके सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि पाम ऑयल इस समय हमारे आइसक्रीम से लेकर, सोचिए हमें अभी चिप्स पे पहुंचा नहीं हूं, आइसक्रीम, चॉकलेट, डोनट, आप जिसमें ढूंढिए उसमें पाम ऑयल मिल रहा है। अगर आप मोटापे से और मोटापे की वजह से होने वाली बीमारियों से बचना चाहते हैं तो प्लीज आप जो इंग्रेडिएंट्स में अगर आपको पाम ऑयल दिखता है तो प्लीज उस चीज को छोड़ दीजिए। ये इतना ज्यादा हमारे यहाँ भोजन में इस्तेमाल हो रहा है और सर ये इसकी एक खासियत है, ये सस्ता है इसीलिए इसका प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है जो हमारे शरीर में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको एलडीएल बोलते हैं, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसको ये बहुत बुरी तरीके से बढ़ाता है और इसी की वजह से सारी हार्ट डिजीजेस होती हैं। तो प्लीज जितनी भी आप देखिए आपकी नजर अच्छी है, जो भी तेल जमा हुआ है उसका प्रयोग कम करिए और भोजन में जो भी सामान आप देख रहे हैं कि वो पाम ऑयल है उसके अंदर, प्लीज उसका प्रयोग कम करिए। दूसरा, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में बात की, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो लिक्विड्स होते हैं, मतलब वो तरल होते हैं आपके नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे और इनका प्रयोग भी कुकिंग के लिए होता है और ये जो है ये आपके हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन मतलब HDL जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाते हैं। तो इनका प्रयोग यदि हम भोजन में करेंगे तो ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। इसमें सबसे कॉमन जो एग्जांपल लिया जाता है, मैं वेजिटेरियन सोर्सेस की पहले बात करूंगा, वो है ऑलिव ऑयल का। और जिस फल के बारे में इस समय सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं पूरे विश्व भर में वो है एवोकाडो। एक हरे रंग का फल जो पहले सिर्फ विदेशों में, मेक्सिको और कोलंबिया, इन लैटिन अमेरिका कंट्रीज में बहुत ज्यादा मिलता था, अब वो पूरी दुनिया में मिल रहा है, हमारे आपके शहर में भी मिल रहा है और पहले महंगा था और हमारे भारतीय किसानों ने उसे अपने देश में उगाना भी शुरू किया है और ये बहुत अच्छा फल है। इसका चटनी के रूप में, इसका डिप बना के लोग खाते हैं, इसको रोटी में लगा के खा रहे हैं, आप खा सकते हैं। कुछ नहीं, कच्चा फल उसको निकाल लीजिए, उसमें थोड़ा नींबू डाल दीजिए, टमाटर डाल दीजिए, उसको मिला लीजिए, हल्का सा नमक डाल लीजिए, वो एक अच्छा खासा चटनी के रूप में तैयार हो जाता है। ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जा रहा है एवोकाडो, और एवोकाडो आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ाता है और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को कम करता है। तो ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। वॉलनट, अखरोट और चिया सीड और फ्लेक्स सीड, जो हमारे, इसके बारे में हम लोग और आगे बात करेंगे, ये तीन चीजें, या सोयाबीन से बना हुआ टोफू, इसके लिए भी बहुत लोग लिख रहे हैं। भारतीयों के लिए मैं हमेशा मानूंगा कि वो अखरोट का प्रयोग करें, वो अपने देसी ऑयल जो है आपके सरसों हुआ उसका प्रयोग करें, आप अगर अफोर्ड करें थोड़ा बहुत ऑलिव ऑयल का प्रयोग करें। इवन भैया ये तक कहा जा रहा है कि आपके घर का जो घी है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपने जो मलाई निकाली है उससे जो घी बनाया है वो सबसे अच्छा है आपके शरीर के लिए। तो इसका प्रयोग करिए, ये आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा और अच्छा रखेगा।
0: जैसे आपने कहा कि ये फैट के दो कैटेगरीज हैं, गुड फैट, बैड फैट, एलडीएल एचडीएल, ये चीज हम समझते हैं। हम दिनों दिन ये भी देखते जा रहे हैं कि लोग इन सभी चीजों के बारे में जागरूक भी हो रहे हैं, ज्यादा चीजें आजकल मीडिया, सोशल मीडिया की वजह से भी लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहीं ना कहीं किसी ने व्हाट्सएप पे वीडियो भेज दिया तो लोग कहते हैं अच्छा अच्छा मैंने आज वीडियो में ये चीज सुना था और उसके हिसाब से मैं ये चीज करना चाहता हूँ। अब फैट के इस्तेमाल में सबसे ज्यादा जो चीजें आती हैं, बेसिक से अगर हम शुरू करें तो लोग भोजन बनाने के लिए जो तेल का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में समझा जाए। आपने कहा पाम ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, उससे बचने की जरूरत है, हालांकि वो सस्ता है मगर वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये तो एक बहुत बड़ी चीज है जो हम इस बातचीत से उठा रहे हैं। मगर जो भोजन बनाने के लिए हम रेगुलरली तेल का इस्तेमाल करते हैं, खासकर हमारी माताएं बहनें या हमारे भाई जो भोजन बनाते भी हैं घर में, तो उनको क्या ध्यान रखना है कि कितना तेल लिया जाए, कौन सा तेल लिया जाए। लोग ये भी कहते हैं कि घर में एक प्रकार का तेल नहीं होना चाहिए, अलग अलग प्रकार के तेल भी बदलने चाहिए, अनेक चीजें ऐसे सुनने को मिलते हैं। ये बताएं कि कौन सा तेल इस्तेमाल किया जाए, कितनी मात्रा में उसका इस्तेमाल हुआ जाना किया जाना आवश्यक है।
1: इसका उत्तर ये होगा कि जो तेल आपके लोकल आपको मिल रहे हैं उसका सबसे ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। घर का निकाला हुआ देसी घी से अच्छा कोई घी नहीं, आपके एरिया में सरसों के तेल से अच्छा कोई सरसों का तेल नहीं, जैतून का तेल जिसको ऑलिव ऑयल बोलते हैं अब वो भी हमारे देश में मिलने लगा है, और जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या फिर यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी है, वो ये सब लोग ऑलिव ऑयल की बहुत तारीफ करते हैं और ये कहा जाता है कि जिनको हृदय की समस्या है उनको ऑलिव ऑयल का जरूर प्रयोग करना चाहिए। हम लोग को स्वाद बढ़ाने के लिए तेल की जरूरत पड़ती है। अगर सब्जी छौंकनी है वो 2 चम्मच तेल में भी छौंकी जा सकती है। हमको एक्सेसिव जो तेल है वो तलने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं सबको ये बोलता हूं कि अगर आप वो भोजन बनाने में जो तेल है उसका जरूर प्रयोग करिए, मगर आप अननेसेसरी भोजन को तलना बंद करिए। जैसे आप आलू परवल की अगर सब्जी खा रहे हैं तो प्लीज उसको भाप में या प्रेशर कुकर में उसको बना लीजिए या कढ़ाई में उसको बर्तन उसका ढक्कन बंद करके बना लीजिए, बनस्पत उसको तेल में तल कर उसको बनाने में आप उसका प्रयोग करें। एक चीज और देखी गई है, जहां ज्यादा भोजन बनता है और जल्दी भोजन बनाना होता है वहां सब चीज को तल दिया जाता है। हमारे घर में जनसंख्या 3-4 की है इसलिए रोटी बनती है, शादी ब्याह में जब 200-300 आदमी खाने आ रहे हैं तो तुरंत पूरी तल दी जाती है। तो ट्राइंग कुक्स द फूड फास्टर, तो इसीलिए आप कहीं भी बाहर जाएंगे खाना खाने तो वहां पर आपको तली और चीजें ज्यादा मिलेंगी क्योंकि वो जल्दी उनको बनाना है और वहां कंसंट्रेशन न्यूट्रिशन पे नहीं होता है, वहां कंसंट्रेशन टेस्ट पे होता है। और फ्राइंग ऑलवेज इंक्रीजेस टेस्ट, तली हुई चीज हमारी जो जिह्वा है उसको ज्यादा अच्छी लगती है। जो हमारा बर्गर है उसकी जो बीच की पैटीज है वो तली हुई होती है वो बड़ी अच्छी लगती है। जो फ्रेंच फ्राइज है, जो तला हुआ आलू है, वो तलने के वजह से अच्छा लगता है। आप एक आलू को तल के खाइए और एक आलू को उबाल के खाइए, जो तला हुआ आलू है वो ज्यादा आपकी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसीलिए मैं सबको ये बोलूंगा कि जो आपका लोकली प्रोड्यूस्ड ऑयल हो उसका प्रयोग करिए और आप घर का बना हुआ, घर का तला हुआ वो भोजन भी करिएगा तो आपके शरीर के लिए अच्छा होगा।
0: जब आप ये बात कह रहे थे डॉक्टर साहब, मुझे सहसा ये बात याद आई, मैं अक्सर ये चीज कहता था और अभी भी कहता हूं कि जब एक गरम गरम समोसा तेल से तला हुआ निकलकर सामने आता है तो उसके प्रति जो आकर्षण है और उसके प्रति जो भाव है, अगर उसी के साथ साथ थाली में एक एप्पल ले आया जाए या आजकल तो आम का सीजन है तो आम भी अगर ले आया जाए तो भी व्यक्ति का हाथ सीधे समोसे पे जाता है, आम या एप्पल पर नहीं जाता।
1: भैया अगर आप एप्पल कहेंगे तो मेरा हाथ नहीं जाएगा, पर अगर आम कहेंगे तो पक्का मेरा हाथ आम पे चला जाएगा।
0: समझता हूँ कि आम पर हाथ भी इसलिए जाता है क्योंकि वो साल में कुछ ही महीने नसीब होता है।
1: कुछ ही महीने, यस यस यस।
0: तो ये बात समझ में आती है कि तेल में तली हुई चीजें ज्यादा स्वादिष्ट कर महसूस होती हैं इसलिए व्यक्ति उसकी तरफ खींचा चला जाता है, मगर ये चीजें स्वास्थ्य के लिए इतनी लाभप्रद नहीं है। इसलिए किसी भी चीज का, बहुत ज्यादा तली हुई चीजों का खाना ये अच्छी चीज नहीं है। अगर आप बाहर खाते हो तो बाहर के तले हुए चीजों को खाने से अच्छा घर में उन चीजों को तल कर खाना है। अब बात समझ में आती है कि तले हुए भोजन के प्रति तेल को कम करने के लिए क्या जरूरत है, ये बात समझ में आ रही है। आप ये बात कह रहे थे कि आजकल लोग फ्लैक्स सीड्स की बात करते हैं कि भाई फ्लैक्स सीड्स खाना चाहिए, उसको रोस्ट करके खा लेते हैं, कई उन्हें डब्बे में भर के रख भी लेते हैं कि भाई आते जाते इसको खा लेंगे। आजकल गर्मियों के दिन है तो लोग चिया सीड्स का भी प्रचलन बढ़ गया है, लोग इंटरनेट पे चिया सीड्स के ड्रिंक्स और स्मूदी बनाने के और फ्रूट जूसेस में से डालने के अनेक चीजों के बारे में बात करते हैं। ये क्या नई चीजें हैं?
1: ये बहुत पुरानी चीजें हैं। फ्लैक्स सीड को हिंदी में अलसी का बीज बोलते हैं और चिया को सब्जा बोलते हैं, और चिया का तो एक दूसरा नाम है तुलसी के बीज। और चिया सीड्स या सब्जे के बिया को सुपर फूड कहा गया है। आप कोई भी फालूदा खाएंगे जो राजस्थान या गुजरात में बहुत प्रचलित है, उसमें वो इस बिये को जरूर डालते हैं। और ये कहा जाता है कि सब्जे का जो बिया है वो ठंडी तासीर है, उसको पेट को ठंडा करता है। उसमें फाइबर बहुत है, वो एक छोटा सा बिया जिसको पानी में डालते हुए फूल जाता है, इसलिए वो बड़ा साइज उसका हो जाता है, तो वो हमारे पेट को भरने में भी उसका प्रयोग होता है। और इसमें भैया ओमेगा थ्री फैटी एसिड है जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत जरूरी है। नॉर्मली भैया ओमेगा थ्री, ओमेगा सिक्स, ओमेगा नाइन जो है, ये तीन तरह के फैटी एसिड्स कॉमनली इनके बारे में बात होती है, और इसको ये गुड फैटी एसिड्स हैं, ये हमारे हृदय की। अच्छा, फैट दो चीज सबसे बुरा दो जगह करता है। एक, हमारे हृदय की धमनियों में ये जमा हो जाता है और वो हमारे हृदय को ब्लॉक कर देता है, तो एक उससे हमें हार्ट की समस्या होती है, और जब वो ब्लॉक करता है तो एक जगह खून हमारे हृदय को नहीं मिल पाता है, तो उस वो जो पेन होता है उसको एंजाइना पेन या हृदय का दर्द बोलते हैं, और फिर वहां पे जब रक्त संचार नहीं हो पाता है तो हृदय काम नहीं कर पाता, तो वो हार्ट अटैक जो कॉमन भाषा में कहा जाता है वो होता है, और आदमी की अगर उसको सही समय पर इलाज नहीं मिले तो मृत्यु हो सकती है। दूसरा, मोटापा जो फैट है, एक तो हृदय को हमारे खराब करता है, दूसरा हमारे शरीर को खराब करता है। जब ज्यादा हम मोटे हो जाते हैं हमारे जगह जगह फैट डिपॉजिट हो जाता है, जितने भी जोड़ हैं उनको ज्यादा वजन उठाना पड़ता है,

0: बादाम से, एवोकाडो से और सनफ्लावर ऑयल से, इन सब चीजों, ऑलिव ऑयल से, इनसे मिलती हैं। तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम गुड फैट का प्रयोग करें और बैड फैट का प्रयोग नहीं करें। और बैड फैट वो चीज हो गई जो बहुत बुरी तरीके से तली हुई है, जितनी भी रेड मीट्स हैं उनको सब बुरा माना जा रहा है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छा और सही भोजन करें।
1: दोस्तों ये बात स्पष्ट हो रही है कि हम कई चीजें तो परंपरागत तरीकों से करते आए हैं, जैसे अलसी के दानों की बात हुई या जैसे डॉक्टर साहब अभी चिया सीड्स की बात कर रहे थे, सब्जी को हम पालूदा गर्मी के दिनों में पेट को ठंडक करने के लिए पानी में मिलाकर अनेक शिकंजियों में डाल के हम पीते आए हैं। अब इन सब चीजों का स्वास्थ्य के लिए कितना फायदा है, कितना लाभ है, वो हम चीज समझते आए हैं। आज हमें सिर्फ उन्हीं चीजों को समझकर वापस जीवन में उन चीजों को शामिल करना है जो हानिकारक चीजें हैं, जैसे बहुत ज्यादा तली हुई चीजें हैं या रेड मीट है, यानी मांसाहार में कुछ ऐसी चीजें हैं तो लाल मांस है, वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है और वो आपके शरीर के लिए, खासकर आपके हृदय के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए इन चीजों से बचने की जरूरत है। आलू के चिप्स या पाम ऑयल का इस्तेमाल, आजकल जो आइसक्रीम्स में भी पाम ऑयल और चॉकलेट्स में पाम ऑयल इत्यादि का इस्तेमाल हो रहा है, उन सबसे बचने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ भोजन आप अपने घर में बनाए, घर में जो गुड फैट के लिए आज डॉक्टर साहब ने बात कही, जैसे हमारे यहाँ लोकल मिलने वाले जो तेल हैं, जैसे सरसों का तेल है, जैसे सूरजमुखी के सीड्स का, उनके बीजों का तेल है, या घर में ही बनाई हुई घी, इनका इस्तेमाल करना बहुत लाभप्रद है। और साथ साथ मात्रा के बारे में ध्यान रखना है, और जो चीज हम खा रहे हैं वो अच्छा भी खा रहे हैं तो भी शारीरिक व्यायाम, कसरत, विहार, इसका भी ध्यान रखना आवश्यक है। फैट से जुड़े हुए अनेक विषयों पर आज नई जानकारियां हासिल हुई हैं। मैं समझता हूं आप सबके लिए भी ये फायदेमंद होगा। अगर आपके घर में कहीं पर अलसी के दाने आपने रखे हुए हैं, अलसी के बीज रखे हुए हैं, तो वापस निकालिए, उनका हर दिन इस्तेमाल करना आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि ये गुड फैट देने वाली चीजें हैं। दोस्तों आज की बातचीत में यहीं विराम लेना होगा, समय इशारा करता है, मगर डॉक्टर साहब आज हमारे साथ जुड़े और इन विषयों पर इतनी अच्छी जानकारियां दी जो हम सबके स्वास्थ्य को सहज वापस लौटाने में लाभप्रद होगा। डॉक्टर साहब, हमारे सभी श्रोता मित्रों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद। ओम शांति।
1: दोस्तों आज की बातचीत में बस इतना ही। सहज स्वास्थ्य में क्या करना है, आज ये बात समझ में आई है। आशा करते हैं कि आप जो कुछ भी सुन रहे हैं उन सबको समझ कर जीवन में अपनाएं और तुरंत परिवर्तन करके देखें कि आपको क्या फायदा हो रहा है। आपको जो भी महसूस हो रहा है, जो फायदे आप गिनाए जा रहे हैं, वो आपके जीवन में देखने को मिल रहे हैं या नहीं, ये भी आप रेडियो के नंबर्स पर फोन करके या व्हाट्सएप के जरिए या मैसेज करके बता सकते हैं 9414-1415 पर। रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम जारी रहेंगे, फिर होगी मुलाकात। तब तक सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: हेलो बच्चों, आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। आ गई है मनी दीदी और परी लेकर आपका फेवरेट शो
2: सपनों की सैर। और बच्चों, आजकल हम आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, और इसलिए
3: बच्चों हेमराज ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, तो चलो सुनते हैं हेमराज की आवाज में।
4: मुझे गेम्स बहुत पसंद है, मोबाइल नहीं मिले तो चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, क्या करूँ?
1: हाँ बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है। और आजकल परी, मुझे तो लगता है बहुत से बच्चों की यही शिकायत होगी।
2: बिल्कुल मनी दीदी, ये सभी बच्चों की शिकायत होगी, ऐसा मुझे भी लगता है। और बच्चों, खेलना गलत नहीं है, पर हर चीज की सीमा होती है, मोबाइल को अपनी दुनिया मत बनाना।
1: हाँ, दिन का एक समय निश्चित कर लो, आधा घंटा या एक घंटा बस, बाकी समय तो बाहर खेलो, चित्र बनाओ, म्यूजिक सुनो या किताब पढ़ो,
2: और धीरे धीरे तुम्हारा मन दूसरी चीजों में भी लगने लगेगा। तो बच्चों याद रखना, असली जीवन मोबाइल से बड़ा और सुंदर है।
1: सही कहा परी। तो बच्चों देखो, बहुत सही सवाल पूछा है, लेकिन ये वैसे तो सभी बच्चों की तरफ से ही होगा, और आप सभी बच्चों को इसका ध्यान देना चाहिए।
2: हाँ मम्मी दीदी। तो बच्चों, जितना हो सके इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स पर ध्यान दो, मोबाइल के गेम पर नहीं। और मोबाइल यूज करो तो सुबह एक घंटा, शाम को एक घंटा, उससे ज्यादा नहीं।
1: हाँ तो चलो भाई, अभी आपको तो जवाब मिल ही गया होगा, और चलो अब समय भी हो रहा है, और सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।
2: सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: बच्चों चलो चलो जल्दी से बैठो रेडियो के पास। परी आ गई कहानी सुनाने के लिए। आज एक ग्वालिन की कहानी सुनेंगे। बच्चों एक ग्वालिन थी जो दूध बेचने जा रही थी। उसके सर पर दूध से भरा घड़ा था। चलते चलते मन ही मन विचार करती थी, इस दूध को बेचने से उसको पैसा मिलेगा और जो पैसा मिलेगा उससे मैं अंडा खरीदूंगी और उन अंडों से मुझे अनेक अच्छी अच्छी मुर्गियां मिलेगी। उन मुर्गियों को बेचकर मैं अपने लिए रेशमी साड़ी खरीदूंगी। रेशमी साड़ी को मैं पहनकर बहुत सुंदर दिखाई दूंगी। फिर अच्छे अच्छे लड़के मेरे पास आएंगे, मुझसे शादी करना चाहेंगे। मैं इनकार में अपना सिर झटकर कहूंगी नहीं। बच्चों इस तरह का वो सपना चलते चलते देख रही थी और ये सोचते हुए उसने अपने सिर को जोर से झटका दिया। इसके कारण क्या हुआ, सिर पर जो रखा हुआ दूध का घड़ा था ना, वो जमीन पर गिर गया। उसका सारा दूध जमीन पर फैल गया और बर्बाद हो गया। और इस तरह अंडों, मुर्गियां, रेशमी साड़ी और अच्छे अच्छे लड़कों का ग्वालिन का जो सपना था ना, मिट्टी में मिल गया। देखा बच्चों ये कहानी क्या बताती है, हवा में महल बनाना अच्छा नहीं है। तो बच्चों सपने भले देखो लेकिन जागृत होके, ऐसे नहीं कि हम अपने काम में कोई नुकसान पहुंचा दे, है ना बच्चों। तो इसीलिए सपना देखना अलग बात है, लक्ष्य रखना अलग बात है। तो चलो बच्चों सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: तो बच्चों, आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। मनी दीदी आ गई है लेकर तेनाली रामा की अनोखी दुनिया की किताब, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं कहानी जिसका शीर्षक है स्वर्ण पिंडों की पहेली। और जैसे कहानी के शीर्षक से ही पता चल रहा है कि इस बार तेनाली रामा को पता लगाना है कि उन दोनों स्वर्ण पिंडों में से कौन सा स्वर्ण पिंड भारी है और कौन सा स्वर्ण पिंड हल्का। तो अब वो कैसे पता लगाएगा, तो चलो मैं आपको सुनाना शुरू करती हूँ ये कहानी। महाराज को भी तेनाली राम की बातें याद हो आई। उन्होंने इसे प्रकट नहीं होने दिया और व्यापारी से कहा, व्यापारी सोमदत्त, आप आज हमारी अतिथि शाला में विश्राम करें। कल जब सभा लगेगी तब आपके प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। व्यापारी को महाराज ने अतिथि शाला में भेज दिया। सभा विसर्जित होने के बाद महाराज ने तेनाली राम को बुलाकर कहा, तेनाली राम, तुम्हें अब इस व्यापारी की शर्त के अनुसार उसकी पहेली को हल करना होगा। ऐसा नहीं होने पर राज्य की बड़ी बदनामी होगी, इसलिए आज रात भर सोच विचार लो। कल सभा की कार्यवाही शुरू होते ही तुम्हें स्वर्ण पिंडों की पहेली हल करनी होगी। जैसी आज्ञा महाराज, तेनाली राम ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया और अपने घर लौट आया। उसे स्वर्ण पिंडों को लेकर कोई तनाव नहीं था। दूसरी ओर सभा में तेनाली राम से ईर्ष्या रखने वाले सभासदों में इस बात की खूब चर्चा हो रही थी कि तेनाली राम आज फंस ही गया। स्वर्ण पिंडों की पहेली हल करने के लिए अब यह तय है कि महाराज उससे ही कहेंगे। यह पहेली हल होने वाली होती तो वह व्यापारी इतना सोना दांव पर नहीं लगाता। अब आएगा आनंद। तेनाली राम की विद्वता की कलई इस बार खुलनी तय है। बड़ा ज्ञानी फिरता है। तो इस तरीके से बहुत जो सभासद थे, जो ईर्ष्या रखते थे तेनाली रामा से, उनके मन में तो खुशी के लड्डू फूट रहे थे कि अभी तेनाली रामा की इंसल्ट हो जाएगी तो क्या होगा। चलो बच्चों, अब आगे पता चलेगा कि तेनाली राम कैसे इस चुनौती को हल कर पाता है। तो चलिए अब लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार के खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: हेलो बच्चों, चलो चलो आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। मनी दीदी आ गए लेकर परी को अपने साथ में। और पता है ना, पिछली कड़ी में परी ने क्या पूछा था? क्या पूछा था परी आपने?
3: बच्चों हमने पूछा था, दिन भर मेहनत करता हूँ, सबको रोशनी देता हूँ, रात को सो जाता हूँ, सुबह फिर जागता हूँ।
2: और सही जवाब पता है ना बच्चों क्या है? सही जवाब है सूरज दादा।
3: बिल्कुल सही बच्चों। तो चलो आज कोई पहेली नहीं है, आज फिर से एक टंग ट्विस्टर हो जाए।
2: अच्छा कौन सा टंग ट्विस्टर परी?
3: बच्चों ध्यान से सुनना। टिप टिप टपकती टपरी पर टपकती टिप टिप।
2: क्या टिप टिप टपकती टपरी पर है और टपरी पर टपक टिप टिप, क्या है परी ये?
3: हाँ बच्चों जल्दी से इसका वॉइस नोट बनाकर हमें भेज दीजिए। टिप टिप टपकती टपरी पर टपकती टिप टिप।
2: हाँ बच्चों तो टिप टिप टिप टिप याद रखना और अपनी करी करी आवाज में भेजना। नंबर तो आपको याद ही होगा, 9414151415।
3: हाँ बच्चों तो चलो अब हम लेते हैं विदा।
2: गुड नाइट,
3: स्लीप टाइट,
2: गुड बाय।
3: सुनते रहिए,
2: मुस्कुराते रहिए
3: रेडियो मधुबन
2: 107.8 FM पर।

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अचानक के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणेशा। सही मायने में जो हम कमाते हैं वही तो हमारे साथ जाता है। जो हम कमा करके पुण्य का कार्य करते हैं वो ही हमारे साथ जाता है। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, पाइनएप्पल कौन सी बीमारियां ठीक करता है, कैसे स्वास्थ्य के लिए हेल्दी है, जरूर जानेंगे। खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो व्यंजन भला कैसे भूल सकते हैं, आप क्या सीखना चाहते हैं भाई, आप जो सीखना चाहते हैं बोलिएगा। अगर आप नहीं सिखा सकते तो फरमाइश तो कर ही सकते, नहीं तो फिर हम अपनी पसंद की तो सिखाने ही वाले हैं। और आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर रहेगा, तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: करते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन।
2: गुड मॉर्निंग, आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार है कि जो हम अपने हाथों के द्वारा पुण्य करते हैं वो ही सही मायने में हमारी सच्ची कमाई है और वो ही साथ चलेगा, बाकी कुछ नहीं। कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूँगी। एक बार एक सेठ जी थे, वो बड़े साधु सेवी थे। जो भी संत महात्मा नगर में आते वह उन्हें अपने घर बुला करके उनकी सेवा करता। एक बार एक महात्मा जी सेठ जी के घर पर आए। सेठानी महात्मा जी को भोजन कराने लगी। सेठ जी उस समय किसी काम से बाजार चले गए। भोजन करते करते महात्मा जी ने स्वाभाविक ही सेठानी जी से कुछ प्रश्न किए। पहला प्रश्न यह था कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं? सेठानी जी ने उत्तर दिया कि ईश्वर की कृपा से 4 बच्चे हैं। महात्मा जी ने दूसरा प्रश्न किया कि तुम्हारा धन कितना है? उत्तर मिला कि महाराज, ईश्वर की अति कृपा है, लोग हमें लखपति कहते हैं। महात्मा जी जब भोजन कर चुके तो सेठ जी भी बाजार से वापस आ गए और सेठ जी महात्मा जी को विदा करने के लिए साथ चल दिए। मार्ग में महात्मा जी ने वही प्रश्न सेठ जी से भी किए जो उन्होंने सेठ जी से किए थे, सेठानी जी से किए थे। पहला प्रश्न था कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? सेठ जी ने कहा, महाराज मेरा एक पुत्र है। महात्मा जी दिल में सोचने लगे कि ऐसा लगता है सेठ जी झूठ बोल रहे हैं। इसकी पत्नी तो कहती थी कि हमारे 4 बच्चे हैं और हमने स्वयं भी 3-4 बच्चे को आते जाते देखा और यह कहता है कि मेरा एक ही पुत्र है। महात्मा जी ने दोबारा वही प्रश्न किया, सेठ जी तुम्हारा धन कितना है? सेठ जी ने उत्तर दिया कि मेरा धन 25,000 रुपया है। महात्मा जी फिर चकित हुए। इसकी सेठानी कहती थी कि लोग हमें लखपति कहते हैं, जो हमने अपनी आंखों से भी देखा, इनके इतने कारखाने और इतना कारोबार जो चल रहा है और ये कहता है मेरा धन 25,000 रुपये है। महात्मा जी ने तीसरा प्रश्न किया, सेठ जी तुम्हारी आयु कितनी है? सेठ जी ने कहा, महात्मा जी मेरी आयु 40 वर्ष की है। महात्मा जी ये उत्तर सुनकर के हैरान हुए। सफेद बाल है इसके, देखने में 70-75 वर्ष का वृद्ध प्रतीत होता है और ये अपनी आयु 40 वर्ष बताता है। सोचने लगे कि सेठ अपने बच्चे और धन को छुपाना चाहते हैं, परंतु आयु को कैसे छुपा सकता है भला? महात्मा जी रह न सके और बोले, सेठ जी ऐसा लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। सेठ जी ने हाथ जोड़कर विनय के स्वर में कहा, महाराज झूठ बोलना तो वैसे ही पाप है और विशेषकर संतों के साथ झूठ बोलना और भी बड़ा पाप है। आपका पहला प्रश्न मेरे बच्चों के विषय में था, वस्तुतः मेरे 4 पुत्र हैं, किंतु मेरा आज्ञाकारी पुत्र एक ही है। भक्ति भाव पूजा पाठ में लगा हुआ है, मैं उसी एक को अपना पुत्र मानता हूँ। जो मेरी आज्ञा में नहीं रहते, कुसंग के साथ रहते, वे मेरे पुत्र कैसे भला? दूसरा प्रश्न आपका मेरा धन के विषय में था, महाराज मैं उसी को अपना धन समझता हूँ जो परमार्थ की राह में लगे। मैंने जीवन भर में 25,000 रुपये ही परमार्थ की राह में साधु सेवा गो सेवा में लगाए हैं, वही मेरी असली पूंजी है। जो धन मेरे मरने के बाद मेरे पुत्र बंधु संबंधी ले जावेंगे, वे मेरा भला कैसे? तीसरे प्रश्न में आपने मेरी आयु पूछी है। 40 वर्ष पूर्व मेरा मिलाप एक संत जी से हुआ था। उनकी सेवा चरण शरण ग्रहण करके गुरु धारण किए। मैं तब से भजन अभ्यास और साधु सेवा कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसी 40 वर्ष की अवधि को ही अपनी आयु समझता हूँ। वो कहते हैं, कबीर संगत साध की साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दे दिन बाद। जब कभी संत महापुरुषों का मिलाप होता है, उनकी संगति में जाकर मालिक की याद आती है, वास्तव में वही घड़ी सफल है, शेष दिन तो जीवन के निरर्थक है। दान देने से पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, और दान का फल आपको केवल इस जन्म में ही नहीं बल्कि कई जन्मों तक भी मिलता है, यहाँ तक कि मरने के बाद भी दिए गए दान का फल प्राप्त होता है। तो इस तरह का भाव इसमें दर्शाया गया है जो आपके समक्ष रखा है। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार। इसलिए कहा जाता है कि भाई जो हम अपने हाथों से श्रेष्ठ कर्म कर लेते हैं वो ही असली हमारी कमाई है, असली पूंजी है, असली पुण्य है, बाकी तो सब निरर्थक है। ये हुआ आज का सुंदर सा विचार। और आइए फिर से सुन लेते हैं गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण मंगल, शूद्र का चरना, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय। तो आइए, अनानास किस तरह फायदा करता है हमारे स्वास्थ्य के लिए वो आप जानेंगे, ठीक है। तो पाइनएप्पल देखिए, अभी सीजन है पाइनएप्पल के भी, इतना महंगा नहीं है मार्केट में, आप ला सकते हैं और आराम से इसको खा सकते हैं। तो क्या है, रोहिणी रोग होता है ना, जैसे कि रोहिणी की झिल्ली को काट कर गले को साफ करने का प्रमुख गुण अनानास के रस में होता है। अतः इस व्याधि से मुक्ति पाने के लिए मेरे प्यारे श्रोता बंधु इसके रस का सेवन करिएगा। साथ ही शरीर के समस्त अस्वस्थ तंतुओं को स्वस्थ करने की क्षमता अनानास के रस में होती है, तो बहुत ही फायदेमंद है। रोहिणी की झिल्ली को काट करके गले को साफ करने का प्रमुख गुण अनानास के रस में होता है, तो इस व्याधि से मुक्ति पाने के लिए इसके रस का सेवन करिएगा आप। साथ ही साथ शरीर के समस्त अस्वस्थ तंतुओं को स्वस्थ करने की क्षमता अनानास के रस में होती है। अगला उपाय भी बहुत ही सुंदर है, अगर गले की सूजन है, टॉन्सिल है, तो अनानास खाइएगा, काफी फायदा करेगा। गले में सूजन है, टॉन्सिल बढ़ गए हैं, तो आप अनानास खाइएगा, काफी हितकारी होगा। और देखिए, अगर फुंसिया हो गई है, भाई गर्मी चल रही है, सीजन तो गर्मी का है और गर्मी में तो यही समस्या सबसे ज्यादा होती है, तो आप सेवन के समान ही राय प्रयोग में भी अनानास, वो कहते हैं ना कि कम गुण नहीं है इसमें, इसके गुदे को फुंसियों पर लगाइए, इससे वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो जिस तरह हम कोई भी चीज खाते हैं अंदरूनी अंदर जाता है और वो बीमारियों को खत्म करता है, उसी तरह अनानास के गुदे को, ठीक है, इसके पल्प को निकाल करके आप पुंसियों पर लगाइए, वो ठीक हो जाएगी। तो इस तरह पाइनएप्पल हमारे हेल्थ के लिए कौन कौन सी बीमारियां ठीक करता है और कैसे ठीक है वो आपने जाना है। आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न भी बहुत सुंदर है। देखिए, योगा डे शुरू हो गया कल से, एक सप्ताह योगा डे का रहेगा, ठीक है, 15 तारीख से योगा डे शुरू हो गया है। तो सूर्य नमस्कार के कितने चरण होते हैं, इसका जवाब आपको देना है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। आप चाहे तो ऑन एयर जुड़िए, आप चाहे तो ऑफलाइन दे सकते हैं, आप चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो आइए यहीं पर फिर से एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटते हैं, बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं। हेलो,
2: हाँ जी, नमस्ते सुरेश भाई, बोलता हूँ जताना से।
1: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हो आप?
2: बस अच्छे हैं, जवाब देना था लेकिन लाइन शुरू हो गई।
1: अच्छा तो, कोई बात नहीं, आप जवाब इनडायरेक्टली भी दे सकते हैं, ठीक है? आप उल्टे बोलोगे तो मैं उसका सही समझ जाऊंगी।
2: चलो उल्टा तो मैं सुन लो।
1: हाँ हाँ,
2: कि अब योगा डे आ रहा है तारीख को।
1: जी ओके, ठीक है। हाँ जी, अच्छा, आज का विषय है गुणों के सहारे ही व्यक्ति सफल हो पाता है, मगर विनय और विवेक साथ हो तो शिखर छू जाता है। क्या कहेंगे आप?
2: बिल्कुल सही बात बताया दीदी, क्योंकि देखो विवेक नहीं होगा, वर्तन अच्छा नहीं होगा तो कैसे हम अच्छे हो सकते हैं? क्योंकि कहते हैं कि कोई कई कभी कभी लोग कहते हैं कि इसके बिल्कुल विवेक नहीं है, इसके बोलने का ढंग नहीं है। चाहे अच्छे दोस्त हो, अच्छे कोई भाई हो, लेकिन दीदी अच्छे होने का मतलब ये नहीं, अच्छे होना यानी कि अच्छे विवेक से अच्छा होना। देखो आज कोई हमारे घर पे आता है और तरह से कोई चरण स्पर्श करते हैं, नमस्कार करते हैं, हाथ मिलाते हैं, इसको विवेक कहते हैं दीदी। कोई आते हैं तो अच्छी तरह से बुलाते हैं
1: जी।
2: कभी कभी तो कोई ऐसा जाता है तो कोई सामने जाते हैं तो बोलते भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं कहते चलो आइए हमारे घर आओ, तुम हमारे घर पे आओ, तो कोई ऐसा व्यक्त भी करता है कि भाई आइए
1: जी।
2: तो ये विवेक नहीं होता दीदी, विवेक तो जो विवेक होता है उसको अच्छे इंसान माना जाता है
1: जी।
2: हेलो,
1: हाँ जी, हाँ जी सुन रही हो।
2: लेकिन किसी के बोलने का अच्छा ढंग नहीं है, बोलने का तरीका नहीं है
1: जी,
2: तो ये इंसान दीदी दिखने में तो अच्छे, क्या करना, दिखने में अच्छे हो लेकिन गुण नहीं हो तो क्या करे?
1: वो रूप तो 4 दिन का होता है पर फिर जमीन पर उतरते हैं तब गुणों की आवश्यकता रहती है।
2: संतो दीदी ऐसा कहेंगे कि चाहे कैसा भी हो लेकिन अच्छा मान सम्मान जहाँ मिलता है, और देखो पहले जमाने में तो दीदी क्या था, हमारे घर पे कोई आता था तो इतने आनंद से प्यार से दो दो तीन तीन दिन रुकता था, नहीं जाने देते थे, इतने विवेक करते थे, नहीं भाई आज नहीं कल जाना, कल नहीं परसों जाना, कल जाना, कल जाने में 2-3 दिन निकाल देते थे, इतना आनंद था, कितना एक भाव था इसमें। लेकिन आज वो नहीं है, आज तो कोई हमारे घर पर आते हैं तो चलो आइए आया चला जाए, बस ऐसा रहता है, कोई ऐसे विवेक नहीं करते, कोई ऐसा बहुत वो मान सम्मान ऐसे पहले जैसा नहीं मिल रहा है दीदी अब
1: जी। बिल्कुल,
2: नमस्ते जी।
1: हाँ जी नमस्ते, बहुत बहुत आभार। तो ये थे सुरेश भाई झोटाना से, आपने विषय को स्पष्ट करने की अच्छी कोशिश की है। अब आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। आज का प्रश्न है सूर्य नमस्कार के कितने स्टेप है, ठीक है, संख्या बतानी है आपको। और विषय बहुत ही सुंदर है, गुणों के सहारे ही व्यक्ति सफल हो पाता है, मगर विनय और विवेक साथ हो तो शिखर छू जाता है। क्या कहेंगे आप? बहुत ही सुंदर विषय है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, प्रैक्टिकल विषय है। जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। वो मारवाड़ी में कहावत है, भणिया कोनी पर गुणिया जरूर। ये कहावत अक्सर कभी की प्रचलित है और आज भी ये कहावत चलती है। बहुत जनों को आप देखोगे कि वो पढ़ाई में कोई ऐसे खास नहीं है, 10वीं 12वीं पढ़ करके व्यापार में लग गए, लेकिन आज उनको देखो आप, आसमान छू लिया उन्होंने, और उनका व्यवहार देखो आप, ओहो ऐसा लगता है किसी से बहुत पढ़े लिखे हैं। कोई कोई की पर्सनालिटी ऐसी होती है और कोई कोई का व्यवहार ही ऐसा होता है कि लोग विश्वास ही नहीं कर पाते कि अच्छा आपने 12वीं तक ही पढ़ाई की, नहीं नहीं आप में तो सर्वगुण दिखाई देते हैं, ऐसे बोलते हैं, है ना? तो गुणों के आधार पर इंसान की पहचान होती है, न कि सुंदरता के आधार पर। हेलो, हेलो नमस्कार। चलिए जो भी जुड़ते हैं कोशिश करिएगा कि आपकी आवाज़ हमारे तक पहुँचे। तो बहुत ही सुंदर विषय है कि गुण जो होता है व्यक्ति में तो सचमुच वो जीवन में सफल हो जाता है, क्योंकि अधिकांश लोगों को हम देखते हैं कि वो गुणों के आधार पर आगे बढ़ते हैं। और जिन्होंने अपने पैसे का दम या फिर कोई अन्य दम भरा हो वो निश्चित रूप से पतन की ओर चले जाते हैं। हेलो
2: हाँ भूरा राम बोल रहा हूँ दीदी।
1: हाँ भूरा राम जी, राम राम, कैसे हो?
2: राम राम है, सब मधुबन भाइयों को और सबको मेरा राम राम है। बस बैठ के आपके सुन रहा था, वो फोन लगाने में मेरे को कुछ थोड़ा टाइम लगा, वो अभी लगाया फोन।
1: जी जी कोई बात नहीं, अभी तो विषय चल रहा है। तो आज का प्रश्न है सूर्य नमस्कार के कितने चरण होते हैं, ये आज का प्रश्न है। और विषय है गुणों के सहारे ही व्यक्ति सफल हो पाता है, मगर विनय और विवेक साथ हो तो शिखर छू जाता है, क्या कहेंगे?
2: बहुत बढ़िया ये प्रश्न आपने किया है। वो सूर्य तो इतना मेरे को नॉलेज नहीं है और इसके बारे में तो बता दो, जो आदमी में गुण है और हर चीज का विवेक है तो वो आदमी कोई भी बोले तो आके अपने बाजू में बैठते और सुनते और अपना बोले तो सम्मान करते। और अपने अंदर गुण होते हैं तो लोग बोले तो सुनते कि इनके पास में क्या जा रहा है, उनके बातें सुन के बोले तो बोर हो जाते हैं ऐसे जाते। और अपने में गुण है तो आजू बाजू वाले भी सुनते कि चलो 5 मिनट उधर राम जी के पास में जाके बैठेंगे तो थोड़ी अच्छी बातें सुनेंगे, अच्छे ये करेंगे। तो ऐसा तो आदमी में गुण होता है तो अपने को पूछते, और अवगुण है तो कोई अपने को पूछता नहीं है दुनिया में
1: जी।
2: तो ऐसी बातें तो हर चीज विवेक भी चाहिए, हर चीज आदमी को बोले तो विवेक होता है तो सब पूरा अपना सम्मान होता है। तो क्या बताओ दीदी?
1: जी कोई बात नहीं, इतना बता दिया, बहुत बहुत आभार आपका। और हाँ जी, और आज के प्रश्न का जवाब देंगे आप?
2: कौन सा
1: आज के प्रश्न है? सूर्य नमस्कार के कितने स्टेप होते हैं, कितने चरण होते हैं?
2: सूर्य नमस्कार के तो कितने, अपने को इतना ज्ञान नहीं है।
1: अच्छा चलिए कोई बात नहीं,
2: मैं नहीं बता सकता। ओके सर,
1: कोई बात नहीं, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे भूरा राम जी ओर से, आपने भी विषय को अच्छा स्पष्ट किया है। और अब आप भी जुड़ सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। प्रैक्टिकल विषय है, गुणों के सहारा ही व्यक्ति सफल हो पाता है, मगर हाँ साथ ही साथ विनय और विवेक होना तो वो शिखर छू जाता है। गुणवान होना अच्छी बात है, गुणवान होना भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में विनय हो, ठीक है, नम्रता हो और हमारी विवेक शक्ति मजबूत हो तो सचमुच इंसान फिर जो चाहे कर सकता है, उसका जो भी श्रेष्ठ संकल्प है उसको पूरा कर सकता है। तो वो कहते हैं ना, गुणवान तो बहुत होते हैं लेकिन साथ ही साथ विनय और विवेकशील बनना ये मुश्किल होता है। लेकिन जो गुणवान है और साथ ही साथ ये लॉटरी भी उसको मिली हुई है कि वो मतलब उसका नेचर विनय पूर्ण है और वो विवेक शक्ति से काम लेता है, तब तो निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ना ही है, फिर जीवन में उसको कोई पीछे हटा नहीं सकते। बहुत जनों को देखते हैं कम पढ़े लिखे होते हैं लेकिन इतने वाकपटु होते हैं, इतने व्यावहारिक होते हैं कि मुझे एक दुकानदार के बात याद आ रही है जो मैंने देखा है कि वो दुकानदार कोई खास पढ़ा लिखा नहीं है, अच्छी सी दुकान है, ग्राहक को एक को भी नहीं जाने देता है। हमारे सामने देखा, कोई गए तो नए थे, पहली बार उस दुकान पर चढ़े तो अरे आइए आइए बहन जी, आइए आइए, अरे बैठिए, अरे वो अपने जो वर्कर लोग हैं उनको बोल रहे, अरे देखता क्या है, एक चेयर लेके आ, मैडम के लिए चेयर लेके आ। चेयर लेके आए, मैडम को बिठाया, फिर अरे गर्मी से तप करके आए, पानी लाओ, ठंडा पानी लाओ, पानी ला करके पिलाया, बहन जी आप आराम से बैठिए, पंखा की हवा खाइए, फिर आपको जो चाहिए बोलिए हम आपको दे देंगे। देखिए आप पसीने से तरबतर हो गए हैं, अब बहन जी को लगा कि वास्तव में दुकानदार कितना अच्छा है, कौन इतना भाव देता है। फिर बहन ने बहुत सारा सामान खरीदा और वो परमानेंट कस्टमर बन गई। तो ये भाई वो कहते ना कि गुणवान तो है ही है, उसके गुणों से दिखाई दिए व्यवहार के, और उसकी वाणी में मिठास थी, नम्रता थी और विवेकशील तो था ही। तभी पता है कि कस्टमर को प्यार देना जरूरी है और इंसान प्यार में ही हारता है। वो कहते हैं ना कि अगर हम किसी से सच्चे दिल से, जैसे उस दुकानदार का व्यवहार देखा तो उसके अंदर भी लगा कि कितना प्यार से पेश आ रहा है, तो अब मुझे कहीं नहीं जाना, सामान यहीं से लेंगे। और ऐसे नहीं कि नए ग्राहक का ही भाव पूछता है, पुराने वाले को भी तुरंत पूछेगा, जैसे ही पसीने से तर बतर देखेंगे तो अरे आपको सामान की जल्दबाजी नहीं है तो आप बैठिए थोड़ी देर, फिर आप आराम से लिस्ट दीजिए, उस अनुसार हम सामान निकाल देंगे। तो कस्टमर बड़े खुश हो जाते हैं कि बंदा पानी का भी भाव पूछता है और पंखे में बिठाता है, नहीं तो आजकल तो दुकानों पर बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे बैठने के लिए एक स्टूल भी वहाँ से हटा देते हैं कि खामखा कस्टमर एक आदि, क्योंकि भीड़ लगती है ना कस्टमर की, कोई कोई फेमस दुकानें होती है तो बैठने का कुछ नहीं रखते हैं कि कम से कम एक कस्टमर दो कस्टमर ज़्यादा खड़े रह सकते हैं, अपनी दुकान पर ज़्यादा आएंगे, भीड़ देखेंगे तो बाहर से ही चले जाएंगे। तो ऐसा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अपने नसीब का सबको मिलता है। वो दुकानदार ने 3-4 ऐसे चेयर रख रखी है जो थोड़े से दुकान के बाहर की साइड में बिठाते हैं, बाहर भी फैन लगा हुआ है और एकदम आड़ है, छाँव है, तो न उनके दुकान को डिस्टर्ब होता है, आने वाले भी बड़े खुश हो जाते हैं, और एक जने को हाजिरी में ही रखता है कस्टमर के कि भाई कस्टमर आवे तो उनको पानी का भाव जरूर पूछो। पानी पिलाने से वो कहते हैं ना ऐसी गर्मी में पानी पिला दो तो बस और क्या, सब कुछ मिल गया। तो गुणों के साथ साथ विवेकशील होना भी बहुत जरूरी है, विनय बनना भी बहुत जरूरी है, फिर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अब वो दुकानदार है, देखा, देखते देखते एक छोटी सी दुकान से उसने शुरुआत की, आज बड़े से शोरूम की तरह उसके अच्छी सी दुकान है, और दुकान मतलब शोरूम की तरह तो नहीं है, शोरूम तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन फिर भी वो दुकान बड़ी है, और बड़ी होने के साथ ही साथ उसकी दुकान इतनी अच्छी चलती है कि कस्टमर भले घंटों घंटों इंतज़ार करेगा लेकिन दूसरी शॉप पर नहीं जाएगा, बैठेंगे हम, कोई बात नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है। और उन्होंने अपन काम करने वाले 3-4 भाई बहनों को रख रखा है कि भाई कस्टमर का कोई बाहर बैठे है तो पहले उनको पूछो, अंदर वाले तो पता है कि बाहर निकलेंगे तो हमारे क्लाइंट पहुँच जाएंगे और वापस ले आएंगे, एक भी ग्राहक को वो नहीं जाने देते। कभी कभी कोई ऐसे सोचते हैं कि चलो बहुत टाइम लग जाएगा, चलते हैं, तो बाहर से वो इशारा करते हैं कि जाओ उनको बुला के लाओ, फिर उनका काम पहले कर देंगे, अच्छा आपको जल्दी है लाइए आपकी लिस्ट दीजिए, पहले सोचते हैं कि भाई जो पहले आए उनको दे देते हैं। लेकिन जिनको जल्दबाजी देखते हैं कि ये जल्दी में जा रहा है, निकल ही गया है, तो तुरंत उसको बुला करके सामान पकड़ा करके ही भेजते हैं और खुश होकर के कस्टमर ले जाते हैं। देखिए ये भी अपने अपने एक वो कहते हैं ना कि गुणवान के साथ साथ विवेकशील है और विनयी है, तो सब कुछ उसका हो रहा है, हमने खुद देखा है हमारी आंखों के सामने, आज अच्छे से उसके फ्लैट है और परिवार को प्यार से पाल रहा है और दुकान भी धनाधन चल रही है और हाय हाय भी नहीं है। दान पुण्य करना ये भी उनके ये है, जल्दी उठना, वही पंछी पक्षियों को पानी देना जैसे हमारे सुरेश भाई जोटाना वाले करते हैं, ऐसे उनका नियम है। तो ऐसे लोग कभी पीछे हट ही नहीं सकते और वो कभी पीछे पड़ ही नहीं सकते, ठीक है, वो घिर नहीं सकते, वो जो चाहे जैसा संकल्प चाहे वो पूरा कर सकते हैं, क्योंकि मेहनत उनके हाथ में है और मेहनत करने वालों की कभी हार ही नहीं होती है ना। तो चलिए इस विषय पर और भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन समय हो चला एक गीत सुनने का, तो एक गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं, बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: रुका, ओए त्रिदेव, त्रिमूर्ति, एक बाइक पे तीन हैं, ओए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ओ बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो, ओ तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको? ओए अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी, तीन के बोझ की मारी।
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
0: ओए तुम्हारे मैच की तो, ओए एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्रीन बोल्ड हो जाओगे, ओए जिंदगी के स्टंप उखड़ जाएंगे। ओए ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार सड़क।
2: याद रखें, एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं, यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है। गुणों के सहारे व्यक्ति सफल हो पाता है, मगर विवेक और विनय साथ में हो तो शिखर छू जाता है। जब हम अकेले हो ना मेरे प्यारे श्रोता बंधु, तब अपने विचारों को संभालिए, और जब हम सबके बीच हो तब अपने शब्दों को संभालना बहुत जरूरी होता है। तो बहुत ही सुंदर विषय आपके समक्ष रख चुकी हूँ, आप जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, सूर्य नमस्कार के कितने स्टेप होते हैं? भाई योगा डे शुरू हो गया है और 7 दिन योगा रहेगा और 7वें दिन लास्ट रहेगा 21 जून, वो तो फिर बहुत ही धूमधाम से होगा, हर जगह होगा, है ना? लेकिन 1 सप्ताह का है योगा डे, तो देखते हैं आपका कितना नॉलेज है और जरूर करिएगा सूर्य नमस्कार। हेलो,
4: हाँ नमस्कार दीदी, ओम शांति। मैं सुरेश भाई, आपको और सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।
3: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, ओम शांति, और कैसे हो आप?
4: ओम शांति, बस अच्छे है दीदी। और अच्छा, बहुत अच्छा विषय है दीदी आज भी, और आज का विचार भी बहुत सुंदर था, जो कहानी आपने बताई बिल्कुल दिल छूने वाली कहानी थी
3: जी।
4: और दीदी मैं विषय के बारे में बताऊं कि बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आपके, विवेकशील होना बिल्कुल जरूरी है। तो उससे मुझे एक बात याद आई कि एक लकड़हारा लकड़ी काटने गया तो सूखा पेड़ था, तो वो काटा भी, लेकिन उनको भूख लगी, प्यास भी लगी और धूप भी लग रही थी, तो कहीं जाकर बैठ रहा था तो बहुत बड़ा पेड़ था, आम का पेड़ था। उन्होंने आम खाए, विश्राम भी किया, और साथ में जो हरा भरा वृक्ष होता है उसके पास नदी वगैरह भी रहती है, तो वो पानी पिया। तो ये कहानी समझ कर मुझे ये समझ में आया कि हमेशा अकड़ कर नहीं रहना। वो एक और पेड़ था जो सूखा अकड़ कर रहता था, तो उनको काट के ये थी, और एक हरा भरा पेड़ वो हमेशा झुका रहता था विवेकशील से, तो लोग आश्रय भी लेते हैं। तो ये बात है दीदी, मेरा कहने का मतलब आप समझ रही होगी।
3: जी जी बिल्कुल।
4: तो मैं बस यही कहूंगा कि कोई फायदा नहीं है कि जो ज्यादा बुरे होना या कोई अपने आप पर ही बस मैं ही मैं हूँ, हमेशा विवेकशील रहे और दूसरों के प्रति अच्छे भाव व्यक्त रखे। जैसे कि आपने जो दुकानदार जो होता है ग्राहक वाली बात बताई, ये भी बिल्कुल सही बात है, अच्छे मन स्वभाव रखेंगे ना दीदी तो लोग हमारा भी विश्वास करेंगे और हम लोगों पर भी विश्वास करेंगे
3: जी।
4: ये बात है दीदी,
3: बिल्कुल
4: जी जी,
3: बहुत सुंदर
4: जी। नमस्ते दीदी।
3: हाँ जी नमस्ते,
4: प्रश्न का जवाब भेज दिया।
3: हाँ जी हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई धानेराव से, आपने भी विषय को बहुत ही अच्छा स्पष्ट किया है, और वास्तव में आज का विषय बहुत ही सुंदर है। वो कहते हैं ना कि गुणवान बनना जरूरी है, गुण के साथ अगर विनय और विवेकशील है फिर तो क्या कहना। तो जैसे कि मैं वो दुकानदार की बात बता रही थी कि अपने स्वभाव की वजह से उसकी दुकान अच्छी चल रही थी। एक जगह मैंने देखा कि मतलब बेटी उनकी बहुत ही सुंदर थी, गुणवान थी, रूपवान थी, तो माता पिता की इच्छा थी कि हमें जमाई भी ऐसा मिले जो रूपवान हो, हमारी बेटी के साथ सेट हो सके, भाई घूमने जाए तो लगे कि हाँ ये जोड़ी राम जी और सीता जी जैसी है। हेलो
5: हेलो नमस्ते, ओम शांति।
3: हाँ जी नमस्ते सगुना बहन, कैसे हो आप?
5: बहुत अच्छे हैं आपकी दुआ से।
3: जी ईश्वर की कृपा से।
5: हाँ,
3: बस हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।
5: आप भी हमेशा खुश रहिए।
3: जी थैंक यू। तो सगना
5: का जवाब,
3: हाँ जी आप कुछ भी घुमा फिरा कर दीजिएगा। जी
5: और विषय भी क्या है?
3: विषय है गुणवान बनना, अच्छी बात है। गुणवान के साथ साथ विनय और विवेक है तो इंसान आगे बढ़ सकता है, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आसमान छू सकता है।
5: तो गुणवान बनना तो अच्छा ही है, उसके अंदर संस्कार अच्छे होंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। संस्कार में अच्छे नहीं होंगे, हमारे में गुण नहीं होगा, अच्छे गुण नहीं होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं।
3: जी।
5: हमारा स्वभाव किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा।
3: जी
5: तो सरलता भी होना जरूरी है, सहनशीलता भी होना जरूरी है हमारे में।
3: जी
5: कभी अच्छे होना जरूरी है। हमारे गुजराती में बोलते हैं कि खोटो सिक्को तो आगर जाए नहीं, ऐसे हमारे गुजराती में बोलते हैं। तो हमारे में गुण अच्छे होंगे तो रास्ते चलते भी हमको कोई बुलाएगा भाई ये इंसान अच्छा है। और जो अच्छे गुण नहीं होंगे, स्वभाव संस्कार अच्छे नहीं होंगे तो मतलब जान से बुलाना नहीं।
3: जी
5: तो निर्गुण अच्छा होना बहुत जरूरी है।
3: जी बहुत अच्छी बात है।
5: घुमा फिरा के नहीं देखते सही दिख रहे।
3: हाँ जी हाँ जी
5: हाँ
3: जी हाँ जी ओम शांति। तो ये थे सगुना बहन झोटाना से, और आज का विषय बहुत ही सुंदर है। हमारे श्रोता बंधु जुड़ करके अच्छी तरह इसको स्पष्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी, देखा था कि एक परिवार में इस तरह बेटी बहुत ही सुंदर थी, तो उनको एक सुंदर से लड़के की तलाश थी जो उनको बहुत ही नज़दीक रिश्तेदार में ही मिल गया। अब परिवार जाना पहचाना है, लेकिन आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं होता है ना। माता पिता का नाम होता है कि भाई हाँ पिताजी इस पोस्ट पर है, या इस तरह का इनका परिवार है, ठीक है अच्छा है, पैसा से संपन्न है, बेटी को यहाँ कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी, बेटे को खूबसूरत देखा तो पसंद आ गया कि ये हमारी बेटी के साथ बहुत ही अच्छा सेट होगा। और एक ही बार में दोनों तरफ से हाँ हो गई, क्योंकि उनको भी बहू अच्छी चाहिए थी, खूबसूरत भी चाहिए थी, और साथ ही साथ गुणवान, तो उन्होंने तो देख लिया कि गुणवान है इनकी बेटी, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा है कि भाई इनका बेटा तो बड़ा सुंदर है लेकिन रूप के साथ गुणवान है, एक नहीं है, नहीं देखा, शादी करवा दी। शादी करवा दी तो पता चला कि बेरोजगार, बेरोजगार के साथ साथ थोड़े से मतलब संग भी खराब और खान पान भी शुद्ध नहीं, तो बेटी बड़ी परेशान होने लगी, क्योंकि जो नशे के आदि होते हैं वो कभी ना कभी तो वो कहते हैं अपनी छात पर आ ही जाते हैं, वो बता ही देते हैं कि हाँ मैं नशेड़ी हूँ, मारपीट करना या फिर गाली गलौज करना, जोर जोर से चिल्लाना। तब रहते रहते पता चला कि अरे ये तो देखने में सुंदर है, बाकी सारे अवगुण ही अवगुण है। बेटी को परेशान करना, बेटी को मारना पीटना शुरू कर दिया, ये नहीं करती हो वो नहीं करती और कमाता नहीं है। तो अब माँ बाप देखिए, जब तक लड़का कुमारा होता है तब तक तो माँ बाप फिर भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और उसको मतलब उसका ध्यान रखते हैं क्या चाहिए क्या नहीं हर बात का, लेकिन जब शादी हो जाती है तो वो भी धीरे धीरे उधर से हट जाते हैं कि बस अब अपना करें। तो देखिए ऐसे माता पिता को यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि आप ये सोच करके शादी करवाते हैं क्या बच्चों की, क्या आने वाली संभाल लेगी? कैसे संभालेगी? जब माता पिता से बच्चा नहीं संभला तो आप दूसरों पर क्यों छोड़ते हो कि आने वाली संभालेगी? उसकी क्या ताकत है, उसकी कोई सुनेगा नहीं सुनेगा। तो या तो आप बताइए उनको कि भाई हमारा बेटा इस तरह का है, फिर आप देख लीजिए, करना हो तो, नहीं करना हो तो आपकी मर्जी। अरे क्यों छुपाते हो? बहुत सारे रिश्तों में देखा है छुपाते हुए, कि छुपा देते हैं सारी गलतियां कि बेटा या बेटी कैसे है, फिर जब जाते हैं, जब शादी होती है और ठोस जमीन पर उतरते तब पता चलता है कि कौन किस स्वभाव संस्कार का है, तब कुछ नहीं रहता बर्बादी के अलावा। तो ऐसा ही हुआ, वो बेटी को परेशान करने लग गए। अब बेटी इतनी खूबसूरत माता पिता के, वो भी इकलौती बेटी थी, दो भाई और बहन, तो बहुत ही प्यार से उसको रखा। अब उसके हालत देखी, थोड़े दिन तो उसने छुपाया, कुछ नहीं बताया माता पिता को, लेकिन जब देखा कि सास ससुर का प्यार ही नहीं मिल रहा और पति भी गाली गलौज और एक रुपये की कमाई नहीं, और जो बेटी को मायके से मिला उसमें से भी सारे केस पति ने नशे में उड़ा दिया, मीठा बोल बोल के प्यार से ले जाता कि भाई दे दो, मैं देखो कुछ न कुछ काम जरूर करूंगा और फिर देखो तुम्हें कैसे हाथों पर रखता हूं। ऐसे करके उसने 2 साल गुजारे, उसने कहा बस हो गया इनफ। कैसे भी करके थोड़े बहुत माता पिता को भी पता चला, लेकिन वो कहते हैं ना कि थोड़े बहुत में माता पिता हमेशा यही चाहते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा नए नए है, फिर सेट हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार 2 साल जब बहुत ही मतलब पैसे तो सारे ले ही लिए थे, अब गहनों तक बात आई कि तुम्हारा फैलाना गहना दे दो, मैं कोशिश कर रहा हूँ नौकरी के लिए, मिलते ही तुम्हारे बनवा दूंगा, तो उसने मना कर दिया कि एक भी गहना नहीं मिलेगा। तो मारपीट हुई, मारपीट हुई तो उसने फोन करके अपने माता पिता को बुला लिया कि बस आपको अभी के अभी आना है। माता पिता बड़े घबरा गए, बेचारे आए, देखे ऐसे तो है नहीं कि एक ही गांव में जो फटाक से आ जाए, तो फिर भी वो जैसी कंडीशन में थे निकल गए। 3 घंटे बाद पहुंचे, तब तक उसको मार भी पड़ी, जो भी है उसने तो सास ससुर को भी उठा दिया कि बस अब या तो आर या पार, अब मैं क्यों मार खाऊं, तो उठा भी दिया था। माँ बाप ने कहा कि क्यों फोन किया पियर पर, हमें पहले बताती, तो उसने कहा कि आपको तो पता ही है ना रोज ही मारपीट हो रही, नहीं पता है। फिर माँ बाप आए, माँ बाप को सारी बातें बताई कि न तो कमाता है न धमाता है, सारे केस जितने आपने दिए सब ले गए और अब गहनों तक बात आ गई, तो अब मैं एक भी गहना क्यों उड़ाऊ, ये तो नशे में उड़ा रहा है। तब जाकर के माँ बाप अपनी बेटी को ले आए, सारे गहना तो वैसे ही लेके आ गए क्योंकि बेटी के पास ही था, जो फिर कह दिया कि या तो कमाई करके मेरी बेटी को अच्छा रखना है तो ठीक है, नहीं तो डिवोर्स के पेपर भिजवा देंगे, साइन कर देना, बात ही खत्म, हमें कुछ नहीं चाहिए भरण पोषण का और हम नहीं भेजेंगे। फिर लेकर के आए, वो बेटा नहीं सुधरा, तलाक हो गया। साल भर का उसको चांस दिया था कि साल भर में कमा करके बता और तो अपना कुछ अपनी अच्छी पोजीशन बता, लेकिन नशे वालों को कहाँ होश होता है, तो उसने कुछ नहीं किया और वो तलाक हो गया। और इतनी सुंदर बेटी, इतने गुणवान बेटी बिना कारण 2-3 साल परेशान हुई। और भाई शादी होना ये कोई छोटी बात थोड़े, शादी के बाद रिश्ते टूटना ये भी कोई छोटी बात थोड़े, गुड्डे गुड्डी का खेल थोड़ा होता है, लेकिन क्या करें। लेकिन वो माता पिता समझदार थे, जो अच्छा रहा कि उन्होंने बेटी को नहीं भेजा, नहीं तो आजकल हम देखते हैं कि इसी तरह बेटियों को कब मार देते पता ही नहीं चलता। आजकल तो कानून का भी डर नहीं रहा कि भाई हम मारेंगे सामने वाले को तो कल पुलिस भी तो हमें पकड़ के ले जाएगी, जेल में डालेगी, तब क्या होगा, पता नहीं आगे पीछे का सब भूल जाते और फिर इस तरह का अपराध करते हैं, ऐसा सुनने को मिलता है। तो माता पिता ने समझदारी से काम लिया और बेटी तो पढ़ी लिखी थी, तो बेटी को कहा कि अब आप जो करना चाहो करो, जॉब करना चाहो जॉब करो, नहीं करना चाहो घर में कोई कमी नहीं है। लेकिन बेटी समझदार थी, उसने जॉब करना शुरू कर दिया। हेलो,
6: कैसे हो उषा बेन?
3: हाँ जी नमस्ते, हम अच्छे हैं, आप सुनाइए।
6: आप अच्छी बात करते हो, बहुत बनता है गीता।
3: अच्छा हाँ, आज के बहुत बन रहा है, सही है।
6: ए, देवी जैसी लड़कियों की परेशान बहुत होती है। आप बोला के वो पहला के ऐसा कमाता है, ऐसा कमाता है, बजे बाद में वो शराब पीता है,
3: जी जी
6: मन करता है वो,
3: जी
6: सब वो गिरना होता वो बेच देते है
3: जी।
6: आपने बहुत अच्छा उसको सुझाव दिया
3: जी जी, थैंक यू। आपका शुभ नाम बताएंगे
6: क्या?
3: आपका शुभ नाम बताएंगे?
6: दयाराम भाई माधी।
3: अच्छा अच्छा, इकबालगढ़ वाले। हाँ जी, कैसे हो दयाराम भाई?
6: बस बस बेसुनर सुन रहा था, अभी अभी चालू किया, अभी तो बहुत अच्छी बात करते हैं, बहुत किस्सा बनता है, दिक्कत से जिंदगी बर्बाद होती है।
3: जी जी जी जी बिल्कुल।
6: अरे शराब ऐसा राक्षस है, वो एक वो घुस गया तो भाई निकलना बहुत मुश्किल होता है।
3: सही है,
6: अपने तो उच्च कक्षा में कम है लेकिन दूसरे में इतनी होती है ना परेशानी दिखरियों की, देवी जैसी दिखरी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है।
3: जी जी जी, वो कहते ना कि
6: बहुत अच्छा सुधार भी, आपको धन्यवाद है।
3: अच्छा, ऊपर वाले को धन्यवाद। आज के प्रश्न का जवाब देंगे?
6: कौन सा, मैं भी सुना नहीं, अभी चालू किया था
3: जी। आज का प्रश्न है, जो हम योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसमें सूर्य नमस्कार करते हैं, उसके कितने चरण है?
6: मैं करता हूँ।
3: ठीक है,
6: सूर्य नमस्कार मैं करता हूँ।
3: अच्छा, तो फिर कितने स्टेप है बता सकते हैं आप तो आराम से?
6: वो बार होता है, बार नाम ने बार होता है।
3: अच्छा, तो ठीक है दयाराम भाई।
6: बार का है, नमो खटाए, नमो मित्राए, नमो नमो सूर्याए, नमो बार मंत्र है, बार करते हैं।
3: ठीक है,
6: उम्र तो होगी थोड़ी धीमे से करता हूँ, उम्र होगी आस्ते आस्ते करता हूँ।
3: नहीं, अच्छी बात है ना, स्लोली स्लोली करना है, धीरे धीरे ही।
6: उसके तो बहुत अच्छा आपका शरीर को, उसके आपका शरीर को अच्छा रहता है
3: जी। अगर आपने 101 सूर्य नमस्कार कर लिए तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं फिर बाद में।
6: तो सही बात है,
3: और एकदम उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे करनी चाहिए, एक किया, पांच किया, दस किया, ऐसे।
6: मेरे छोटे भाई वो जल्दी से करता है, वो तो 100 कर देता तो, पर वो उसकी हाइट है ना, वो बहुत पतली है।
3: जी जी जी, अच्छा,
6: ये सूर्य नमस्कार जरूरी है जी, मोदी करते हैं तो अपने भी करना चाहिए
3: जी।
6: मैं तो पहले से करता हूँ, इसके लिए तो मेरी तबीयत अच्छी रहती है।
3: बहुत बढ़िया, क्या बात है।
6: मेरी उम्र ज्यादा होगी फिर वो सूर्य नमस्कार से शरीर टकाऊ है।
3: कितने साल के होंगे आप?
6: मेरी कितने साल होगी मैं बताऊँ? 76।
3: ओहो, तो काफी एज है आपकी, लेकिन आपकी आपकी आवाज से नहीं लगता कि आपकी इतनी एज है। और आप,
6: मैं भी 100 किलो की गुण आती है, उठा को फेंक देते हूँ।
3: अरे वाह, क्या बात है, बहुत है। क्या बात है
6: जी,
3: जी जी जी, बहुत जरूरी है एक्सरसाइज जीवन में। बहुत अच्छी बात है, तभी तो आप टिके हुए है, और इतने 100 किलो का एक बोरा होता है उसको उठाना क्या।
6: दूसरी बात करता हूँ, आपकी उम्र कितनी बड़ी, लेकिन आप बात करते कैसे करते, तेजस्वी करते, अर्जुन जैसी।
3: अच्छा,
6: आपकी उम्र कितनी है? मन लगता है कि मेरे जितनी होगी आपकी।
3: नहीं नहीं भाई जी, आपसे तो बहुत छोटी हूँ मैं।
6: नहीं, आपने बताया था क्यों?
3: आपसे तो बहुत छोटी हूँ मैं, तो 55। देखिए वैसे तो अपनी एज नहीं बतानी चाहिए, लेकिन आपने बताई, हमने भी बता दी, ठीक है, जग जाहिर हो गया।
6: आप ये चित्र हो गया होगा।
3: अरे भाई जी, 55। हाँ हाँ, आपसे बहुत छोटे हो।
6: अच्छा सुधार, आप बताओ, बात कैसे, अच्छी बात सुनिए। जय श्री कृष्ण, राम राम
3: जी, राम राम, आभार आपका। तो ये थे दयाराम जी इकबालगढ़ से, और बस अब इस विषय को यही समाप्त करते हैं। कहने का भाव यही है कि गुणों को धारण करिए, और गुणों के साथ विनय बनाए रखिए, और विवेकशील रहिए, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। और आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर है, सूर्य नमस्कार के कितने स्टेप होते हैं? यह आज का प्रश्न है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और यहीं पर एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

नमस्कार, मैं हूँ शिप्ला, डिस्ट्रिक्ट मोहाली, स्टेट पंजाब से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। अभी देखिए कच्ची केरी का सीजन चल रहा है तो सोचा कि आपको छुंदा बनाना सिखा देवे। केरी का छुंदा, ठीक है सभी सीखने को तैयार हो ना? तो चलिए, वो कहते ना गर्मियों का मौसम और कच्चे आम का स्वाद ना मिले ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो आइए गुजरात की मशहूर रेसिपी छुंदा आपको राजस्थान में सिखाएंगे। तो आप ले लीजिए कच्चे आम 1 किलो, मतलब कच्ची केरी लीजिएगा 1 किलो। अब आप चीनी लीजिएगा 750 ग्राम, ज़्यादा ही खट्टे हो तो बरोबर ले लीजिए बाकी 750 ग्राम। नमक 1 छोटा चम्मच लेना है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लीजिएगा, 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर लीजिएगा और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी लेनी है। ठीक है, तो क्या लेना है सामग्री में? कच्ची केरी 1 किलो, चीनी 750 ग्राम, अगर ज़्यादा खट्टी है और आप थोड़ा सा मीठा ज़्यादा खाते तो 1 किलो ले लीजिए, बरोबर ले लीजिए ठीक है। और 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच ही हल्दी पाउडर नहीं लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच ही सिका हुआ जीरा पाउडर ठीक है, और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। बनाने का तरीका भी आपको साथ ही साथ सिखा रही हूँ। कच्ची जो केरी ली है इसके धुलाई करिएगा, धुलाई करके छील लीजिए, छील करके अब इसको कद्दूकस कर लीजिएगा। कद्दूकस करने के बाद अब इसको आप थोड़ा सा निचोड़ लीजिए ताकि थोड़ा सा पानी होगा वो निकल जाएगा, पर इस पानी को फेंकना नहीं। इसका आप केरी का पन्ना बना करके पी सकते हैं, केरी का शरबत बना करके पी सकते हैं ठीक है। तो अतिरिक्त पानी को दबा दबा कर निकालिए, फिर इसमें चीनी और नमक मिला करके आप हिलाइए और हिलाने के बाद कांच के बर्तन में भर दीजिए। फिर इसे 5-7 दिन तक रोज धूप में रखिए और दिन में 1 बार 7 चम्मच से इसको हिला दीजिए। जब चीनी पूरी तरह मिक्स हो जाए, घुल जाए और मिश्रण गाढ़ा होने लगे तब उसमें लाल मिर्च, हल्दी और जीरा पाउडर डाल करके मिला दीजिए। फिर ये छुंदा तैयार हो चुका है, इसको सूखे कांच के जार में भरकर रख दीजिए। तो ये बन गया छुंदा। तो कैसे बनाया हमने? केरी की धुलाई करनी है, धुलाई करने के बाद इसके छिलके निकालने हैं, फिर कद्दूकस कर लेना है, कद्दूकस करके इसको दबा करके थोड़ा पानी निकले उतना निकाल देना है। फिर इसमें कद्दूकस किए हुए केरी में चीनी डालिएगा, मतलब शक्कर डालिएगा, नमक डालिएगा और एक कांच के बर्तन में भरकर रखिएगा ठीक है, थोड़े से चौड़े बर्तन में। फिर इसे 5-7 दिन तक रोज धूप में रखिए, ऊपर से कपड़ा बांध दीजिए कांच के बर्तन में ठीक है। कपड़ा बांध करके फिर आप रोज धूप में रखिए और बीच में रोज एक बार हिलाना है 7 चम्मच से। जब ये मिश्रण गाढ़ा होने लगे तब इसमें थोड़े लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर डाल करके हिलाकर रख दीजिएगा। अब छुंदा तैयार हो चुका है, इसको आप अच्छे से साफ स्वच्छ कांच की बर्नी में भर करके रख सकते हैं, चीनी की बर्नी में भर के रख सकते हैं और बस जब चाहे तब आप छुंदे का आनंद ले सकते हैं। 1-2 साल इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा ठीक है। और फिर तो देखिए वो कहते हैं ना कि जितना डालो मसाला उतना ही स्वाद बढ़ता है। तो ड्राई फ्रूट्स भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं आप, काजू डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, और नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, सिंपल भी बहुत अच्छा लगेगा। विशेष करके आप थेपला के साथ खाएंगे तो बहुत स्वादिष्ट लगेगा। लेकिन जो भी हम सात्विक चीज बनाते हैं अपने इष्ट देव को भोग लगा करके ही खाइएगा। और अब साथ ही साथ समय भी हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज का कार्यक्रम तो आपने सुना ही है, काफ़ी अच्छा रहा है, सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे और उसके भी बहुत ही अच्छे दिए है। पाइनएप्पल खाने के क्या फ़ायदे है वो आप सभी ने जाना है और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई। तो रेसिपी में जो आपको केरी का छुंदा बनाना सिखाया है ज़रूर बना करके खाइएगा। और आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर था कि सूर्य नमस्कार के कितने चरण होते हैं, कितने स्टेप होते हैं? तो आज हमारे सभी श्रोता बंधुओं ने लगभग सही जवाब दिया है। तो हम सबसे पहले तो सभी श्रोता बंधुओं के लिए ढेर सारी तालियां बजाना चाहेंगे। अब नाम लेना चाहूंगी सुरेश भाई जोटाना से।
जुड़े हैं और फिर जुड़े हैं अलका जी काबरा कप्पासन से, सुभाष भाई महाराष्ट्र से, सुरेश भाई

कार्य में लगाना सच्ची और सबसे बड़ी सेवा है। अब मैं आपको एक प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घनी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sancharsathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। अब जिंदगी से प्यार ना हो तो भाई जिंदगी जीने का आनंद कैसे आएगा, मजा कैसे आएगा। और ना जाने जिंदगी के ऊपर कितने गाने सुने हैं, कितने गाने बने हैं, लिखे जाते हैं, गाए जाते हैं, और बड़ा मजा आता है कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो चलिए जिंदगी को तो नहीं लेकिन खुद को जानने की कोशिश करते हैं लव यू जिंदगी में। और आज हमारे साथ हैं दो स्पेशल गेस्ट। जी हाँ, हमारे साथ वो एक्सपर्ट्स हैं जो आपको खुद से मिलाएंगे। आज हमारे साथ हैं कल्पना जी जो कि स्पिरिचुअल काउंसलर हैं, ग्लोबल अस्पताल से सीधा जुड़ गई हैं हमारे साथ। बहुत लंबा अनुभव है उनका यूथ के साथ, बच्चों के साथ, बहुत लोगों को उन्होंने मदद की है जिंदगी से प्यार करने में। और हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीनिधि जी भी जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आरजे भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार आरुषि जी।
2: नमस्कार। नमस्कार आरुषि जी, बहुत अच्छा लग रहा है फिर से एक बार आपके साथ जुड़कर।
0: मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आज आप दोनों की आवाज सुनकर, और ये जानकर और खुशी हो रही है कि बड़ा ही टॉपिक इंटरेस्टिंग है आज का, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो फॉरगिव और फॉरगेट की बात करता है। खुद को माफ करना, दूसरों को माफ करना। कई बार मुझे तो ऐसा लगता है कि दूसरों को माफ करना फिर भी आसान होता है, पर खुद को माफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खुद को माफ करना भी छोटी छोटी चीजों के लिए भी कभी कभी मुश्किल हो ही जाता है वैसे, लेकिन क्या ये इम्पोर्टेंट है, क्या जरूरी है माफ करना, और माफ करना कैसे होता है? मतलब कह दिया माफ कर दिया तो क्या सच में माफ कर दिया, या वो अंदर वो रह जाता है कुछ बाकी? तो जानेंगे ये सब। कल्पना जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। सबसे पहले आपको कितना रेलेवेंट लगता है ये टॉपिक?
2: ये टॉपिक मेरे दिल के करीब है, क्योंकि हमेशा से मेरा ये अभ्यास रहा है कि मैं किसी को माफ नहीं कर पाती थी बचपन से लेकर बड़े होने तक। लेकिन जब मुझे थोड़ा समझ आई और मुझसे ऐसी कोई गलती हुई जिसके लिए मैं चाहती थी कि मुझे कोई माफ करे, और जब उनकी तरफ से मुझे माफी नहीं मिली, तो उस समय जो मुझे तकलीफ हुई, उसके बाद मैंने ये सोचा कि आज से आगे से चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुझे सबको माफ करने की आदत डालनी है। और जिस दिन से मैंने ये ठान लिया, मेरे अंदर पता नहीं क्यों बहुत बहुत सुंदर एक एहसास उत्पन्न हुआ, जिसको हम सुकून कह सकते हैं, शांति कह सकते हैं, जिसको हम रिलैक्सेशन कह सकते हैं, हल्कापन कह सकते हैं। वो एहसास मेरे में जागा, और जब मैंने माफ करना शुरू किया तब मैंने देखा कि मेरे पांव जमीन पर नहीं, मैं कहीं दूसरी दुनिया में, मतलब मैं इतना हल्का महसूस कर रही थी अपने आप में। उस दिन मैंने जाना कि माफ करना किसी और के लिए नहीं होता है, ये तो खुद को आजाद करने का, नेगेटिव फीलिंग से, नेगेटिव इमोशन से ये आजाद करने का एक तरीका है। हम जितनी देर तक अलग अलग प्रकार से मिले हुए दर्द को पकड़ के रखते हैं, उतनी ही गहराई से वो दर्द हमें पकड़ के रखता है, और उसके कारण जो लाइफनेस है, इजीनेस है, हल्कापन है, क्रिएटिविटी है इवन, वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाती है। सो माफ करना मेरी जिंदगी का बहुत अच्छी शिक्षा मेरे लिए मिली, जो कि मैंने अपने जीवन में अच्छी तरह से उसको धारण कर लिया।
0: मतलब माफ करने से हम लाइट हो जाते हैं और हमारी क्रिएटिविटी पे भी असर पड़ता है, बहुत चीजों पे असर पड़ता है, आपने बताया। श्री जी, आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगी, इतना रेलेवेंट है आपके लिए टॉपिक, क्या आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है माफ करने से जुड़ा हुआ?
1: मैं शुरुआत ही एक शेर से करना चाहूंगा। रूठने का हक है तुझे मगर वजह बताया कर, रूठने का हक है तुझे मगर वजह बताया कर, नाराज होना गलत नहीं तो खता बताया कर।
0: क्या बात।
1: कहने का भाव ये है कि बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि हम कभी किसी से माफी चाहते हैं, या कभी कभार हमें खुद ऐसा लगता है कि सामने वाला मुझे माफ करे या मैं किसी को माफ करूं, मगर बिना ये जाने कि वजह क्या है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है। अगर हम किसी से खफा भी हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, तो उसके भी पीछे कोई वजह है, और अक्सर ये बात कही जाती है कि हम उन्हीं लोगों से नाराज होते हैं, उन्हीं लोगों से खफा होते हैं जो अपने होते हैं, और ना सड़क चलते कोई टक्कर लग गई, किसी का हाथ लग गया, तो हम कहते हैं चलो जाने दो यार, कौन कौन ये सब कुछ करेगा। मगर अपने ही लोगों से अगर कभी कभी कभार दुख होता है तो ऐसी सूरतों में हमें मुश्किलात ज्यादा लगने लगती हैं, पेन या हर्ट ज्यादा होने लगता है, तो इसलिए जानना जरूरी है।
0: कहते हैं बहुत से लोग जहाँ प्यार होता है वही नाराजगी होती है, वही गुस्सा होता है, या वही उनसे ही मुश्किल होता है लेकिन माफ करना उन्हीं को जिनसे सबसे ज्यादा प्यार होता है।
1: जी, और मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी चीज है कि हम वजह जाने, और पहली वजह ही ये है कि हम उनसे नाराज इसलिए हैं क्योंकि उनसे हमने ये उम्मीद नहीं की थी, हमने ये सोचा था कि वो हमारे अपने हैं और उनसे हर्ट या उनसे किसी प्रकार की तकलीफ या उनसे इस प्रकार का व्यवहार मैंने अपेक्षा ही नहीं की थी, एक्सपेक्ट नहीं किया था। और एक ऐसे क्वार्टर से जब मुझे वो पेन मिला या मुझे वो वैसा व्यवहार मिला तो हम नाराज हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि वो हमसे माफी मांगे। और कभी कभार हमसे जब गलतियां होती हैं तो हमें भी लगता है कि हमें माफी मांगनी चाहिए, मगर वो नाराज इतने होते हैं तो लगता है कि माफी मांगे तो किस मुंह से मांगे कि माफी मांगेंगे तो ऐसा लगता है माफी मिलेगी नहीं, हमें और चार बातें खरी खरी सुनने को मिलेंगी, इसलिए भी हम संकोच करने लगते हैं। और मैं समझता हूँ हर व्यक्ति के पास ऐसी घटनाएं हैं, जीवन के ऐसे अनेक किस्से हैं जहां पर या हमने गलती की है या किसी और ने हमारे साथ कुछ गलत किया है, इसकी वजह से या तो हम माफी के तलबगार हैं या हम खुद माफी मांगने के इंतजार में हैं, हम उस सही मौके की खोज में हैं। और मैं समझता हूँ ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं समझना, कि हर इंसान गलतियां करता है, हर एक को माफी मांगने की और माफ करने की जरूरत है, और ये कैसे किया जाता है ये सीखना जरूरी है।
0: लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ आप दोनों से कि माफ खुद को करना ज्यादा आसान है या दूसरों को करना।
2: एक किस्सा याद आता है, एक 15 साल का लड़का मेरे पास आया और अपनी कहानी उसने सुनाई। उसने कहा मैं जब 2 साल का था, मेरा भाई 4 साल का था, तब हमारी मम्मी बिना किसी वजह के, बिना कुछ बताए हमें छोड़कर चली गई। सो वो अपनी कहानी बता रहा था और मेरी आंखों में आंसू थे कि मैं अब इस बच्चे को क्या जवाब दूं और कैसे इसका दर्द को समझूं। सो हम दोनों ने एक कोशिश की कि चलो हम ये पॉजिटिव सोचते हैं कि अगले 6 महीने में आपकी मम्मी आपके घर आ जाएगी। सो हम दोनों ने ये मिलके सोचा और वो पॉजिटिव एनर्जी का असर देखिए कि उनकी मम्मी 6 महीने के भीतर घर आ गई। बहुत बड़ी उपलब्धि हुई, बट उसको पता नहीं चल रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे, उनको क्या बोले। वो माफ करने के लिए तैयार नहीं था मन से, उसके मन में बहुत सारी शिकायतें थी कि आप हमें क्यों छोड़ के गए, 2 साल से लेकर 15 साल तक का मेरा जीवन मैंने कैसे बिताया मुझे पता नहीं, और वो माफ नहीं कर पा रहा था। परंतु जब उसने मुझे पूछा कि अब क्या करना चाहिए, तब हमने कहा कि नहीं, अब सोचते हैं कि वो 2 साल से 15 साल का समय आया ही नहीं, और अभी अभी मतलब कि पुरानी सारी बातें भूल कर माफ करके दोनों एक दूसरे से गले लग जाएं और एक सेकंड में भूल जाएं। जब उसने ऐसा किया तब उसे महसूस हुआ कि माफ करना और भूल जाना इतना मुश्किल भी नहीं था जितना वो सोच रहा था। सो इस घटना से हमें कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलता है। अक्सर बच्चे अपने माँ बाप से कुछ न कुछ सीखते हैं और अक्सर माँ बाप भी अपने बच्चों से कुछ न कुछ सीखते हैं। कभी माता पिता की गलती हो सकती है, कभी बच्चों की गलती हो सकती है, और दोनों जब एक दूसरे की गलतियों को माफ करना सीख जाते हैं तब वो एक दूसरे के साथ उम्र भर के लिए रहने के आदि हो जाते हैं। वो जो प्यार है, अपनापन है, सुरक्षा की भावना है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, वो हर रिलेशनशिप की आवश्यकता होती है। इसलिए वक्त रहते माफ करना और भूल जाने की आदत जल्दी हमें सीख लेनी चाहिए।
0: ये बहुत बहुत टफ सिचुएशन है, बहुत बड़ी सिचुएशन है जिसमें वो बच्चे ने माफ कर दिया, मगर हम तो छोटी छोटी बात में भी कई बार माफ नहीं कर पाते और वेट करते कोई माफी मांगे तो मैं माफ करूं, बिना माफी मांगे माफ करने का भी मन नहीं करता कि भाई अपनी गलती रियलाइज तो करो, कम से कम बोलो तो सॉरी आके, फिर तो चलो मैं माफ कर दूं, पर सामने वाला भी बोल नहीं रहा होता, हम भी माफ कर नहीं रहे होते। तो दूसरों को माफ करने के लिए अपॉलॉजी इम्पोर्टेंट है बहुत, या फिर बिना उसके भी माफ किया जा सकता है?
1: मैं समझता हूँ बहुत बार ये चीज भी एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि भाई सामने वाला माफी मांगे तब मैं माफी दूंगा, और इसके इंतजार में हम बहुत सारी गलत फहमियां पाल लेते हैं। हम इंतजार में रहते हैं कि मौका आने दो, उसके इंतजार में होते हैं। जैसे अभी कल्पना जी वो कहानी सुना रहे थे, बिल्कुल ये बात भी है कि हम सामने वाले को रियलाइज कराना चाहते हैं कि उनसे क्या गलती हुई है। और कभी कभार गलतियां, मुझे याद आता है मैंने एक बहुत ही सुंदर प्रवचन सुना था दादी जानकी जी से, उन्होंने ये कहा था कि गलती, भूल, गुनाह, खता, ये कितने सारे अलग अलग लफ्ज हैं, और इसके एवजे में जो चीजें माफी देने वाली चीजें हैं उसमें भी अलग अलग चीजें हैं। अंग्रेजी में हम उसको कहते हैं फॉरगिवनेस, मर्सी। अगर आप इन शब्दों को देखते ही चले जाएंगे, फॉरगिवनेस के लिए जो शब्द बने हुए हैं, तो आपको बहुत ही मजा आएगा कि कितनी गहरी बातें हैं ये। खैर, मैं उस गहराई में न जाते हुए मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि छोटी मोटी भूलों को हम भी भूल जाते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, शायद हम उसे दिल पे भी नहीं रखते। उससे भी थोड़ी बड़ी अगर गलतियां होती हैं, भूल नहीं है, कोई गलती हुई है, तो फिर हम कहते हैं कि चलो गलती हो गई ना, कोई बात नहीं, ये भी कह देते हैं। फिर कभी कभार इसके बाद जो आप अभी बात कर रहे हैं कि हम इस उम्मीद में है कि वो हमसे माफी मांगे, तब माफी दी जाएगी। और ये अक्सर देखा जाता है कि छोटे बच्चे जब गलतियां करते हैं तो छोटे बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जितने छोटे होंगे बच्चे उतना उनकी गलतियों को और ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। जब बच्चे गिर भी जाते हैं या कहीं उनको भी चोट लगती है तो उनको ये बताया जाता है अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हालांकि उस बच्चे की गलती की वजह से कोई चीज टूटी हो सकती है या उसे चोट लगी हो सकती है। तो ये चीजें करते हैं, हम सबको माफ करना सिखाया गया, हम सीखते आए हैं, मगर जैसे जैसे हम बढ़ती उम्र के साथ ये एक उम्मीद लगाने बैठ जाते हैं कि हम अपने लोगों से, जैसे मैं कह रहा था कि जो हमारे अपने स्वजन हैं, अपने दोस्त हैं, अपने परिवार के नजदीकी लोग हैं, हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि तुमसे तो ये गलती अपेक्षित नहीं थी, तो इसलिए हम उन्हें उस कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, उनको उस गलती का एहसास दिलाना चाहते हैं, रियलाइज कराना चाहते हैं कि देखो भाई तुमसे गलती हुई है, और जब वो माफी मांगे तब हम माफी देना चाहते हैं, तब तक हम उस चीज को पाल के रखते हैं और वो भी बोझ की तरह बन जाता है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि पहले ये कल्टिवेट करना, ये एक अभ्यास डाल लेना चाहिए कि कोई माफी मांगे या ना मांगे, मैं माफ करने के लिए इंतजार नहीं करता। अगर मुझे समझ में आया है कि गलती हुई है तो उसे तुरंत माफ कर देना चाहिए। कॉर्पोरेट में हम लोग इस चीज को समझते हैं कि एक बहुत ही सुंदर मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ये, डू नॉट आस्क हु मेड द मिस्टेक, आस्क व्हाट वेंट रॉन्ग। ये मत पूछो कि ये गलती किसने की, ये पूछो कि क्या गलती हुई है, ताकि उसे सुधारा जा सके। अगर हम ये पकड़ के बैठ जाएं कि इसने गलती की है, इसको इसकी सजा मिलनी चाहिए या इसे माफी मांगने की जरूरत है, तो शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और उसमें बहुत वक्त जाया हो जाता है। और इसीलिए ये बात शायरों ने बहुत खूबसूरती से कही है। मुजफ्फर रजमी का ये शेर बहुत ही मशहूर है, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। और अक्सर यही चीज होती है कि वो लम्हे होते हैं जहां पर गलतियां होती हैं, वो खता एक लम्हे भर की होती है, कोई चूक हो जाती, कोई भूल हो जाती, ना चाहते हुए भी कभी कभार चाह के, और बहुत बार ना चाहते हुए भी वो गलतियां हो जाती हैं। अगर आप उस घड़ी उसको माफ नहीं करते, तुरंत तुरंत माफ नहीं करते, तो फिर वो जो लम्हों की खता है उसकी सजा सदियां पाती हैं, और लंबे समय तक वो फॉरगिव न करने की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग सफर करते हुए आए हैं, उनको मुश्किलों का सामना करते आना पड़ा है, किसी और की गलती के लिए आज की पीढ़ियां तक उसकी भरपाई कर रही होती हैं। तो ये चीजें समझने की जरूरत है कि जैसे गलती हुई तब माफ करना, सिर्फ इसलिए नहीं कि सामने वाले को माफ करने की जरूरत है, इसलिए ताकि मेरे ऊपर वो बोझ ना हो, इसलिए पे करना आवश्यक है।
0: कल्पना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे माफ करना जरूरी है ये हम समझ गए, कोई हमसे माफी मांगे या ना मांगे, और वो सिर्फ उनके लिए नहीं अपने लिए जरूरी है, मगर अब करूं कैसे? क्योंकि मुझे तो गुस्सा आ रहा है, मुझे तो बुरा लग रहा है, मुझे हर्ट हुआ है, किसी ने गलती करी है, एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने ये वो करेंगे, उनसे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वो ऐसा कर सकते हैं, बहुत विश्वास किया था, अब वो विश्वास भी डोल रहा है और बहुत सारी यादें भी है पुरानी की, लग रहा है अरे ऐसा बोला, वो भी बार बार चल रहा है मन में, ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, तो माफ करना चाहती हूँ लेकिन नहीं हो पाता, तो क्या हुआ?
2: जी बिल्कुल आपने सही कहा, मैं अक्सर अपने आप से पूछती हूँ, जब भी मेरी लाइफ में कुछ होता है तो मैं खुद के पास लौट आती हूँ और अपने आप से पूछती हूँ कि मुझे क्या करना है। तो जब कोई व्यक्ति खता करता है, गलती करता है और माफी भी नहीं मांगता, तब ऐसे लगता है कि शायद इनको रियलाइज नहीं हुआ है, या इनका मुख सॉरी कहने के लिए रेडी नहीं है, या इनका माइंड वो सॉरी शब्द कह नहीं पाता है। इसमें कई सारी भी चीजें बैकग्राउंड में काम करती है, ईगो रहता है, बॉडी कॉन्शियस है, मतलब अपने बारे में वो आदत ही नहीं है माफी मांगने की। पति पत्नी के बीच में, भाई बहन के बीच में ऐसा कई बार होता है, तब मैं क्या करती हूँ? सबसे पहले तो मैं माफी मांगना शुरू कर देती हूँ, मतलब उनसे नहीं जिनसे गलती हुई है, परंतु मैंने ये देखा है कि जब आप सॉरी कहना शुरू कर देते हैं किसी छोटी सी गलती के लिए, उस व्यक्ति के सामने जो सॉरी कहने के लिए जिनको दिक्कत हो रही है, तो उस व्यक्ति को एक लेसन अपने आप मिल जाता है कि देखो छोटी सी बात के लिए इन्होंने सॉरी किया। जैसे कल की बात है, किसी को मैंने टाइम दिया था और मैं थोड़ा 5 मिनट लेट पहुंची, तो आते ही मैंने कहा कि सॉरी मुझे 5 मिनट देर हुआ, ये कारण था। उनको रियलाइज हुआ कि वो कई बार लेट आए थे और मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा था। अब उनसे एक्सपेक्ट तो इतना तो किया जा सकता है कि वो एटलीस्ट कारण बताए या फिर लेट आने पर सॉरी कहे, तो वो कह नहीं पाए थे क्योंकि उनको वो गलती या वो कुछ गलत है ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। तो जब मैंने अपनी ये छोटी सी भूल नहीं कहेंगे, गलती नहीं कहेंगे, लेकिन एक लेट आने की बात को सॉरी कहा, तो उन्होंने रियलाइज किया कि अरे उनको तो कितनी बार कहना चाहिए था। देन उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मैं कई बार लेट आया, लेकिन आपने बहुत पेशेंटली उस चीज को हैंडल किया। ये एक छोटी सी बात है। हम कुछ करके सिखाते हैं तो वो सामने वाले को इजी लगता है कि अगर वो सॉरी कह सकते तो हम भी कह सकते हैं। तो इस तरह से सॉरी कहने के लिए पहला कदम हमें उठाना चाहिए।
3: आपने जैसे अपनी बात करी, आपने कि मैं कैसे करती हूँ, या एक ये तरीका आपने डेवलप किया जो हम लव यू जिंदगी, जो हमारा टाइटल है प्रोग्राम का, अगर हम जिंदगी से थोड़ा सा प्यार और बढ़ाना चाहें, और उसमें जरूरी है कि बोझ को कम किया जाए, वरना बोझ के साथ प्यार करना जरा मुश्किल होता है, तो हम क्या तरीका डेवलप करें और आज क्या शुरुआत करें, या कोई ऐसी चीजें हैं जो नो लिख के रख ले अपने पास या याद कर ले कि हाँ कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो अब कहाँ जाना है मुझे, क्या करना है मुझे?
2: बिल्कुल। हम अपने आप को सिखा सकते हैं, माफ करना कोई कमजोरी नहीं है, ये मेरी ताकत है। अगर मैं किसी को माफ कर पाता हूँ और कह पाता हूँ कि मैंने गलती की और मुझे माफ कीजिए, तो ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है, जिसके कारण मेरे दिल पर जो बोझ हमेशा के लिए बना रहेगा, अगर कोई व्यक्ति रियलाइज करता है अपनी मिस्टेक को, तो उसको बोझ महसूस होगा। एंड एक छोटे से सॉरी कहने से, तो आज से हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं सभी मिलकर कि ऐसा नहीं कि हर बार सॉरी सॉरी ही कहे, कुछ और तरीके भी होते हैं सॉरी कहने के, या सामने वाले को बताने के कि मैंने फील किया, मैंने रियलाइज किया। कई बार लोग बार बार सॉरी सॉरी सॉरी कहते हैं तो वो भी कई बार अच्छा नहीं लगता है। तो क्या तरीका हो सकता है कि हम सामने वाले को ये रियलाइज भी करवाए कि हमने सॉरी फील किया है? तो जाकर उनसे बात करना,

0: नॉर्मल वे में बात करना, उनके साथ मुस्कुराना, उनके किसी काम में उनको मदद करना, उनका रिस्पेक्ट रखना, सॉरी कहने के अलावा भी हम उनके पास जाकर उनके दिल की बात सुनने का प्रयास कर सकते हैं और हल्के से कभी कह सकते हैं कि अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे पता चला, रियलाइज हुआ। तो एक नहीं कई अनेक तरीके हैं कि हम अपने महसूस कराएं सामने वाले को कि हमने सॉरी फील किया है।
1: ओके, जेन्युइनली फील करें और फिर वो महसूस करवाएं। ओके, ग्रेट। श्री जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अगर माफ करना हो किसी को, मान लीजिए, कैसे, क्या थॉट्स मैं क्रिएट करूं या क्या मैं सोचूं जो मैं माफ कर पाऊं?
2: जब माफी की बात कही जाती है तो ये समझना जरूरी है कि माफ करने के तरीके, जैसे कल्पना जी कह रहे थे, बहुत सारे हैं। हम कुछ लोगों को देखते हैं और मुझे, जैसे कल्पना जी कह रही थी, मेरे सामने कुछ ऐसे लोग आए जो घड़ी घड़ी सॉरी बोलते हुए सुनाई देते हैं कि हर चीज के लिए सॉरी सॉरी सॉरी, और कभी कभार उनका सॉरी कहने का अंदाज इतना कैजुअल हो जाता है कि उनकी सॉरी का कोई मतलब नहीं हो। सॉरी लग गया तो क्या हुआ, वो मतलब बिल्कुल है, हमने सॉरी तो कह दिया, ऐसा वो बात होता है। वो चीज एक हार्टफेल्ट चीज नहीं लगती, एक अपोलोजेटिक एटीट्यूड नहीं है उसमें, वो चीज समझ में आता है। और मैं समझता हूँ यहाँ पर माफी देने या माफी मांगने के तरीके में जो दिल की गहराई है वो बहुत जरूरी है, ये समझ में आता है कि जब तक मैं उस चीज को महसूस करते हुए नहीं कह रहा हूँ तो शायद सामने वाले तक वो चीज टच भी नहीं होती, वो उनके दिल तक भी जाती नहीं है। इसलिए माफी, आजकल हम ये कहते हैं कि हम देखते हैं हवाई जहाज में, अगर आप यात्रा करते होंगे तो वहां पर गगन सखिया होते हैं या फ्लाइट का क्रू होता है, और वो लोग आप अंदर जाते ही आपको मुस्कुराते हुए वेलकम करते हैं। कई सारे होटल्स पे भी लोग स्माइल करते हुए आपको वेलकम करते हैं रिसेप्शन पर, और आपको लगता है कि आह कितना अच्छे लोग मुस्कुरा रहे हैं, इतने सारे लोग, 200 पैसेंजर अंदर चढ़े हवाई जहाज में और 200 के लिए वो मुस्कुरा रहे हैं। तो बाद में पता चलता है कि मुस्कुराहट एक्चुअल मुस्कुराहट नहीं है, ये प्लास्टिक स्माइल है, ये सिर्फ दिखाने के लिए कहा जा रहा है, उनको प्रोफेशन में जरूरी है करने के लिए इसलिए वो कर रहे हैं, मगर अंदर से वो चीज नहीं आ रही है, वो एक रूखा स्माइल होता है। तो ऐसे ही सॉरी कहने के लिए भी, ओ सॉरी ये कर देना सही नहीं है, एक्चुअल में जब वो चीज अंदर से महसूस करते हुए सॉरी मेरे से गलती हुई है, अगर वो विचार मन के अंदर आते हैं तब जो शब्द मुंह से निकलते हैं तब वो भावनाएं सामने तक पहुंचती है और सामने वाला व्यक्ति महसूस करता है कि हाँ इनको इस बात का एहसास है कि उनसे कोई गलती हुई है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मन में वो अपोलॉजी उत्पन्न होना पहले आवश्यक है, इससे पहले कि मैं शब्दों में सॉरी कहने को एक आदत मात्र बना लूं, मन के अंदर से वो चीज निकलना बहुत आवश्यक है। और एज ए कल्चर अगर आप देखेंगे तो भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत में हमारे पास क्षमा प्रार्थनाएं हैं। अगर आप देखेंगे तो व्यक्ति रात को सोने से पहले, एक कल्चर रहा है कि लोग सोने से पहले क्षमा मांगते हैं, ये कहते हैं कि कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा विहितम अभिहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्दे महादेव शंभु। ये प्रार्थना है जिसमें हम कह रहे हैं कि अगर जाने अनजाने में मेरे मन से, मेरी वाणी से, मेरे कर्म से, मेरे व्यवहार से, सोचकर या न सोचकर या जाने अनजाने की भी गलतियां हुई हो तो उन सभी के लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये सिर्फ ये नहीं है कि मतलब उस घड़ी गलती हुई और उसी घड़ी मुझे रियलाइजेशन हो जाए और मैं माफी मांगू, कभी कभार उस घड़ी रियलाइजेशन नहीं होता, देर से होता है, पर तब तक वो व्यक्ति आपके सामने नहीं है, वो आगे चला गया है। तो उस समय पर भी माफी मांगना, उस व्यक्ति के इन एब्सेंशिया आप माफी मांग रहे हैं कि वो व्यक्ति फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, तब भी आपके मन के अंदर वो क्षमा प्रार्थना का भाव उत्पन्न हो रहा है कि आप मन से उस व्यक्ति के प्रति ईश्वर को साक्षी मानकर ये कह रहे हैं कि मेरे से गलती हो गई भगवान, उनको मैंने जाने अनजाने तकलीफ पहुंचाई, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। तो ये जो मन से उठने वाली बात है वो बहुत आवश्यक है, शब्दों में सिर्फ कह देने से शायद वो काम नहीं होगी। और माफी मांगने के बारे में मैं समझता हूँ बहुत सारी चीजें हैं, एक पुराना जमाना तो नहीं कहूंगा मगर लोग बहुत थॉटफुली अपोलॉजी के लेटर्स लिखा करते थे,
1: राइट,
2: लोग सॉरी के कार्ड्स भेजते थे कि जब उनसे गलतियां होती थी तो सॉरी के लिए भी ग्रीटिंग कार्ड होता था। आप सोचिए सॉरी का ग्रीटिंग कार्ड आज लोग हैरान होंगे ये सोच, और ये जो शेर व शायरी मैंने कुछ एक के सामने प्रस्तुत किया, ऐसी कितनी चीजें हैं जो कवियों ने लिखी हैं और उनकी जुबान से हम अपने दिल के उद्गार प्रस्तुत करते हैं।
1: और सच में माफी मांगना जब दिल से होता है तो वो बात पहुंचती भी है। वो कैजुअली सॉरी बोल दिया और फिर हमने सोचा अरे हो गया सॉरी। अब बहुत सारी और भी बातें हैं, दूसरों को माफ करने के बारे में तो हमने बात करी है, खुद को माफ करने के बारे में भी बात करेंगे लेकिन अगले एपिसोड में। अभी फिलहाल जैसा आप दोनों ने बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बताया, दूसरों को माफ करना और माफी मांगना दोनों का तरीका, क्या हम कुछ 2 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं जो अभी तक हमारे जीवन में न जाने कितने किस्से हुए होंगे, हमारे अंतर मन में, हमारे सबकॉन्शियस में फिट होंगे। वो हमें आज भी कोई व्यक्ति सामने आता है तो वो गलती याद आती है, वो व्यक्ति से मिलने से पहले ही कई बार उससे मिलना होता है तब भी याद आता है वो पहले वाला इंसिडेंट, उसको लेट गो कर सके, अपनी स्लेट को क्लीन कर सके। क्या कुछ ऐसा मेडिटेशन हम कर सकते हैं कि वो भार को जो बोझ लिए हम चल रहे हैं उसको थोड़ा कम कर सके आज?
0: बिल्कुल, बहुत जरूरी है उस भार को उतारना, खत्म करना। कुछ मिनटों के लिए हम थोड़ा सा अपने भीतर की ओर चले जाएं, बाहर की दुनिया से अपने ध्यान को बटोर कर अपने भीतर की दुनिया में। एक ऐसी जगह है जहां बिल्कुल शांति है, सुकून का एहसास है। उस जगह पर जाएं और कुछ बातों को अपने आप को याद दिलाएं। क्षमा और छोड़ना, क्षमा करना और भूल जाना मेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, ये मेरी ताकत है। रिपीट करें इस बात को अपने मन में और उस शक्ति को महसूस करें। याद दिलाएं अपने आप को, मैं अपने दिल से सारी कड़वाहट को रिहा कर रही हूं, आजाद कर रही हूं। मैं दूसरों को माफ करती हूं क्योंकि मैं अपने जीवन में सुकून और शांति की अधिकारी हूं। दोहराए अपने मन में, मैं दूसरों को माफ करती हूं क्योंकि मैं सुकून और शांति की अधिकारी हूं। गहरी लंबी सांस लेते हुए महसूस करें अपने भीतर के भावों को, दिल में जो सुकून का एहसास हो रहा है क्योंकि मैंने बोझ को रिहा कर दिया, मैं आजाद हूं। याद दिलाएं अपने आप को, मैं अपने अतीत को स्वीकार करती हूं और उससे मुक्त हो रही। अतीत में मेरे से या किसी और से कोई खता हुई, मैं सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ती हूं, खुद को आजाद करते हुए। और लास्ट, मेरे दिल में अब सिर्फ हल्कापन और सुकून है। मेरे दिल में अब सिर्फ हल्कापन और सुकून है। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच कल्पना जी, बहुत ही सुंदर, बहुत पीसफुल महसूसता हुई ये करते वक्त। और मुझे लगता है ये हम रोज करेंगे तो हमारे जो बोझ है, जो हम दूसरों को माफ नहीं कर पाए हैं, खुद को माफ नहीं कर पाए हैं, उसमें जरूर बहुत बहुत बड़ी मदद मिलेगी। क्योंकि ये तो हम समझ गए हैं कि माफ दूसरों के लिए ही नहीं, खुद के लिए भी जरूरी है, दूसरों को माफ कर देना, तभी हम जिंदगी बेहतर जी पाएंगे। तो चलिए इस प्रयास को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इसलिए ये इजाजत लेना नहीं है दोस्तों, ये एक पॉजिटिव नोट पर आपको छोड़कर जा रहे हैं ताकि आपकी आपकी जिंदगी से और बेहतर मुलाकात हो पाए और प्यार थोड़ा बढ़ जाए और आप दिल से कह पाए लव यू जिंदगी। फिलहाल दोस्तों वक्त हो गया इजाजत लेने का। थैंक यू सो मच कल्पना जी, थैंक यू सो मच श्रीनिधि जी हमसे जुड़ने के लिए, समय देने के लिए और थोड़ा सा और जिंदगी से प्यार करना सिखाने के लिए।
0: धन्यवाद,
2: बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू
1: दोस्तों, लेते हैं इजाजत, मुलाकात होगी लव जिंदगी के अगले एपिसोड में। तब तक रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

सुरहीन जिंदगी में आइए सुर भर लें, सुरहीन जिंदगी में आइए सुर भर लें, अंधकार युक्त जीवन में उजाले को भर दें, अंधकार युक्त जीवन में उजाले भर दें, अस्वच्छ मलिन हृदय को स्वच्छ कर दें। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर शुरू हो चुका है आपका मनपसंद कार्यक्रम गीत जो दिल को भाए, गीत जो दिल को उड़ाए, गीत जो दिल को पसंद आ जाए और दिल में ही बस जाए। ऐसे ही गीतों को लेकर और बातों को लेकर आ गई हूँ मैं आपकी वही हम सफर स्वर्णलता। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आज आप सभी उमंग और उल्लास के साथ ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ कहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सबसे बड़ा ज्ञान स्वयं को जानना है। मन का मंथन करें, विचारों को शुद्ध करें और आत्मा की शांति का अनुभव करें। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: जैसे ही वीकेंड अप्रोच करता है, दिल में एक छोटा सा ही शब्द होता है, गुलदस्ता। और गुलदस्ता कार्यक्रम में आपके लिए मैं क्या गीत बजाऊंगी, क्या बातें करूंगी। छोटी सी बात है, एक तेरी आश है, एक तेरी ही याद है ना। आप भी हमें याद करते हैं, हम भी आपको याद करते हैं। और आज हम याद कर रहे हैं एक ऐसी आवाज की मल्लिका को, जिसे आप में से विरला ही कोई जानते हैं, क्योंकि हमने ही उनको पिछले 5 साल से जाना है और 5 साल से उन्हें हम सुन रहे हैं। आज एक अलग सी खुशी है, एक अलग सी मस्ती है दिल में, एक अलग सी खुमारी है, क्योंकि आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है इस आवाज़ की मल्लिका को आप तक पहुंचाने के लिए। आपको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज हम इनकी आवाज़ में सुनेंगे गीत, गज़ल, भजन और बहुत सारे गीत जो आपने सुने हैं कई अन्य आर्टिस्ट की आवाज़ में। तो बने रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: हमारी मन की क्वालिटी कैसे है, और अक्सर करके डॉक्टर्स कहते हैं मोर देन 85% डिजीजेस है वो साइकोसोमैटिक है, मन से आरंभ होता है। और अक्सर करके जो तनाव भी होता है इट इज देयर इन द माइंड। और अक्सर करके देखते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति इतनी शुभ भावना होती है कि जब बच्चों का एग्जाम्स होता ना तो उस समय मम्मी डैडी का प्यार बच्चों के प्रति कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। और एग्जाम के दिन में मम्मी डैडी आकर कहेंगे बच्चा आज तेरा एग्जाम है तो है ना हॉर्लिक्स भी पी, बॉर्नविटा भी खा, ये भी कर वो भी कर, है ना, उसको बहुत जबरदस्ती खिलाएंगे। शरीर को तो हमने बहुत भोजन दिया, जरूरत है उसको मन को अच्छा भोजन देने के लिए। और मन का भोजन क्या है? विचार। मन का भोजन है विचार, बहुत पुराने विचार, बासी विचार, अगर उसको बार बार हम अपने मन में लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मन जो है वो कमजोर हो जाता है, धीरे धीरे द माइंड विल ऑल्सो बिकम वीक। तो फ्रेंड्स इस बात को चेक करना है कि सारे दिन में हमने अपने मन में जो विचार आ रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। देखिए सोचने की बात है, आज हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है और हम बहुत ध्यान रखते हैं कि मोबाइल को चार्ज करना है, और जिस दिन रात को सोए और मोबाइल चार्ज करना भूल गए तो रात के 2 बजे उठेंगे और उसको चार्ज करेंगे, क्योंकि हमको ये बात महसूस होती है कि अगर हमने मोबाइल को चार्ज नहीं किया तो शायद दूसरे दिन हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगा। तो उसी तरह हमें अपने मन को भी अच्छे विचार से सुबह सुबह चार्ज करना बहुत।
2: सुरों की बारीकियों को बहुत ही आकर्षक अंदाज में आप तक पहुंचा रही हैं गायत्री अशोकन। साथियों जिंदगी एक खोज है, एक होता है सर्च, एक होता है रिसर्च। जैसे ही ढूंढते ढूंढते हमें यह आवाज मिली उसके बाद हमारा रिसर्च शुरू हो गया। सर्च से रिसर्च का सफर है कार्यक्रम गुलदस्ता। गायत्री अशोकन कौन है? इन्होंने केरला फिल्म इंडस्ट्री से अपनी शुरुआत की, उन्होंने केरला फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई और उसके बाद गजल की दुनिया में कदम रखा, और हमने सबसे पहले इनकी आवाज में गजल ही सुनी थी। और पता है कौन सी गजल हमने सुनी? हरिहरन जी का गाया हुआ वह गजल झूम लें हंस बोल लें। उस गजल को भी सुनवाऊंगी क्योंकि वो मेरा फेवरेट है, वो आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। लेकिन फिलहाल हम सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर गजल उनकी आवाज में।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो। कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा

0: पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार हैं गाड़ियां वो उनके कंट्रोल से चले।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: सागर की लहरों में तुम हो, गिरते हुए बूंदों में तुम हो, और आपकी आवाज में महीनता है, इमोशंस है, लाजवाब वैरायटी है। फ्रेंड्स, लाजवाब कॉम्पोजिशन आप सुन रहे थे पूर्वायन चटर्जी जी की, और इस गजल को लिखा है अमरभ बैनर्जी ने। गायत्री अशोकन और अमरभ बैनर्जी की आवाज में आपने सुनी यह बेहतरीन गजल। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता, और गुलदस्ता कार्यक्रम में हम एक ऐसी प्रतिभावान गजल गायिका को सुन रहे हैं जो एक प्रमुख भारतीय पार्श्व गायिका हैं, जो मुख्य रूप से मलयालम फिल्मों में अपने गायन के लिए जानी जाती हैं। इसके साथ ही उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और गजल गायन में भी गहरी पहचान बनाई है। तो इनके बारे में और भी बातें होंगी, तो अभी सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में जो गजल हमने बहुत बार सुनी है, वही गजल हम सुनेंगे, जी हाँ, गायत्री जी की आवाज में।

0: आप हो रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM होबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हम सुन रहे हैं एक ऐसी आवाज को जो दिल को दस्तक दे रही है, जो दिल को खुशी भी दे रही है और हीलिंग भी कर रही है। एक ऐसी आवाज जो जख्म को भर सकती है, है ना। मलयालम सिनेमा की आप एक प्रमुख पार्श्व गायिका हैं। आपका जन्म 1978 में 2 मार्च में हुआ था केरल राज्य में। आपके पिताजी अशोकन जी हैं और आपकी माता जी सुनिधि जी हैं। आप ने इन दोनों से प्रोत्साहित होकर गीत गाना शुरू किया। दोस्तों, आप भी सुन रहे हैं ना इस आवाज को, है ना, बहुत नवीनता। और आपने देखा कैसे जगजीत सिंह की गाई हुई गजल में इन्होंने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। इसमें उन्होंने वेरिएशन को दिखाया, है ना। इस कॉम्पोजिशन को गाना कितना मुश्किल है, पर आपने यानी गायत्री जी ने इसे बखूबी निभाया। आइए अब सुनते हैं एक ऐसी गजल को जिसे मैं बार बार सुनकर आप तक पहुंचा रही हूं। रेडियो मधुबन पर छाए रहिए और इस नवीन आवाज को सुनते रहिए।

0: दोस्तों, ये गीत तो आप लोगों ने सुना होगा।
1: क्या आप जानते हैं कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है?
0: इसीलिए अपनी बच्चे की कम उम्र में शादी ना कराएं।
1: उनके स्वास्थ्य और उनके अच्छे भविष्य के लिए उन्हें खूब पढ़ाएं। बेटी कुदरत का है उपहार, नहीं करो उसका तिरस्कार। जो बेटी को दे पहचान, माता पिता।
2: हम सब भी यही कहना चाहेंगे आपके लिए कि आपकी इस महीन आवाज को हम भी अपने दिलों में कैद कर रखने वाले हैं। रखेंगे आपकी इस आवाज को दिल में भर कर। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं गायत्री जी को, जो बहुत सारे ऐसे गीत गा चुकी हैं जिनके लिए उन्हें पुरस्कार भी मिले हैं। उन्हें 2003 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का प्रतिष्ठित केरल राज्य फिल्म पुरस्कार मिला। फिल्म संगीत के अलावा गायत्री ने उस्ताद इलैयाराजा और शंकर महादेवन जैसे दिग्गजों के साथ काम किया है। उन्होंने कई आध्यात्मिक एल्बम भी निकाले हैं और वे एक बेहतरीन गजल गायिका भी हैं, जो हमें अभी पता चल गया कि कितना खूबसूरत गाती हैं, है ना। अभी बहुत सारी गजलें सुनी, गीत सुने हम सभी ने, तो आइए ना अब उस गजल को सुनते हैं जिसे हमने कई बार हरिहरन जी की आवाज में सुनी है। वो गजल है झूम ले हंस बोल ले।

0: The Best Writer Award goes to Miss Surekha.
1: अरे ये तो देख भी नहीं सकती, फिर भी उसको अवार्ड मिल गया।
0: प्लीज।

0: कम ऑन द स्टेज मिस सुरेखा, दो शब्द हमारे बीच रखें, आपको कैसा लग रहा है?
1: मैंने मन की आंखों से देखा है इस दुनिया को, मेरी आंखों में रोशनी ना सही परंतु जीवन में उजाला ही उजाला है। दिव्यांगता मेरी पहचान नहीं, मेरी काबिलियत ही मेरी पहचान है।
2: रेडियो मधुबन की कोशिश है दिव्यांग लोगों के प्रति हो सही दृष्टिकोण, काबिलियत से बनाए अपनी पहचान, पिछड़ी सोच का खत्म करे नामो निशान।
3: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।
4: दिल की दिशा को पलटाने वाली गजल, झूम ले हंस बोल ले, प्यारी अगर है जिंदगी, दिल में एक नया जोश भर देता है ना। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता, और कार्यक्रम गुलदस्ता में अभी हम पहुंच चुके हैं अंतिम छोर पर। इस अंतिम छोर में आइए, उनके बारे में, गायत्री जी के बारे में कुछ और बातें हो जाएं। जैसा कि हमने आपको बताया कि पार्श्व गायन के अलावा गायत्री ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, भजनों और विदेशों में प्रस्तुतियों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और फिल्मी गीतों में अपनी विशेषज्ञता का अनूठा संगम प्रस्तुत किया। 2017 में गायत्री ने फिल्म संगीत उद्योग से हटकर गजलों पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति को एक नई दिशा दी। वाकई आपकी आवाज में वेरिएशन है, इमोशन है और खूबसूरत एक्सप्रेशन है। जिनकी आवाज में 3-in-1 कॉम्बिनेशन है, उनकी आवाज जरूर नई दिशा देती है सभी की लाइफ में। तो हम सब अपने जीवन को एक नया मोड़ दें इनकी आवाज को सुनकर, क्योंकि कहते हैं कि कलाकार की आवाज भी हमारे जीवन को मोड़ देती है। तो आइए हम एक सुनहरे सफर पर, फिर से एक नए सफर पर हम चल पड़े इस कार्यक्रम के माध्यम से। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जाते जाते आपके लिए आ रहे हैं दो गीत बैक टू बैक, और ये दोनों ही आध्यात्मिक गीत हैं गायत्री जी की वॉइस में। तो बने रहिए और फिर से मिलेंगे अगले सप्ताह।

0: आप हो रेडिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो.
1: So this is a beautiful bhajan which was requested and I learnt. I hope I can do a good job. If you all know it, please sing with me. हर देश में तू हर भेष में तू.

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए आज बात करते हैं 16

उनकी कुछ खास बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा आज विशेष। महमूद अली खां चौधरी, ब्रह्म प्रकाश, डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा, हेमंत कुमार, अकलक मोहम्मद खान शहर और मिथुन चक्रवर्ती, सीएम पुनाचा, सुरेश कांत, रोहित श्रीवास्तव, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही चित्तरंजन दास, प्रफुल्ल चंद राय, चास कोरिया, चंद्रशेखर वैद्य, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज के इस प्रोग्राम में कुछ खास बातें आपसे शेयर करना चाहूँ। आइए एक सुंदर विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जैसे कि हमेशा हम लोग करते हैं। सच्चे प्रेम में हमेशा समर्पण और साझेदारी रहती है। अगर सच्चा प्रेम है तो समर्पण भी होगा और साझेदारी भी रहती है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

जैसे परी, ये सुबह मस्त भरी, यूं हंसी जैसे परी। किस्मत को शायद याद आ गए हम, किस्मत को शायद

0: क्या आपको भी बैंक के नाम से SMS आ रहे हैं? इन SMS में फिशिंग लिंक मिल रहे हैं, जो एक क्लिक से .apk फाइल को आपके फोन में डाउनलोड कर देते हैं। ऐसी फाइलें आपके फोन का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों को दे देती है, यहाँ तक कि वो आपका बैंक OTP भी देख सकते हैं। याद रखें, कभी भी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और किसी भी साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पर करें। सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त को फॉलो करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए बात करते हैं आज विशेष हेमंत कुमार के बारे में। जी हाँ, हेमंत कुमार के बारे में एक खूबसूरत बताना चाहूँगा। हिंदी जगत के महान गायक और संगीतकार थे वे। हेमंत दा के नाम से बहुत ही पॉपुलर हुए थे, जिनके गीत आज भी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। बंगाल और हिंदी फिल्म संगीत की जानी मानी शख्सियत हेमंत कुमार का सिर्फ मौसिकी के माहिर थे, बल्कि बेहतरीन फिल्म निर्माता भी थे। बंगाल भाषा के अनेक गैर फिल्मी एल्बम के सुर देने वाले हेमंत कुमार ने कई मशहूर हिंदी गीतों को भी अपनी मधुर आवाज़ दी। इसके साथ ही इन्होंने एक ऐसी फिल्म का निर्माण भी किया जिसे राष्ट्रपति स्वर्ण पदक से नवाजा। फिल्म समीक्षक ज्योति वेंकटेश के मुताबिक हेमंत कुमार अपने दौर के सबसे प्रतिभाशाली फनकारों में एक थे। संगीत की नब्ज का मिजाज समझने में दक्ष इस कलाकार को रविंद्र संगीत का विशेषज्ञ भी माना जाता है। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं, हेमंत कुमार जी के बारे में। अभी आपके लिए आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कराते रहो।
2: मुली आवाज के मालिक बड़े ही हुनरमंद कलाकार हेमंत मुखर्जी की, जिन्हें हम हेमंत कुमार के नाम से जानते हैं। इनका जन्म हुआ 16 जून सन 1920 में शहर वाराणसी। हालांकि इनका परिवार दरअसल बाहरू इलाके से है, लेकिन बाद में कोलकाता चला आया। कोलकाता में इन्होंने आगे की पढ़ाई की। उसके बाद भवानीपुर के मित्र इंस्टीट्यूशन स्कूल में इन्होंने आगे की पढ़ाई की। यहीं पे इनकी मुलाकात हुई सुभाष मुखोपाध्याय से। सुभाष मुखोपाध्याय भी आगे जाकर एक बहुत बड़े बंगाली कवि बने।
3: गाना न आया, बजाना न आया, दिल भर को अपना बनाना न आया।
2: आगे जाकर हेमंत कुमार साहब ने सोचा कि ये जादवपुर के बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनेंगे और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे। लेकिन ये बात समझ में आ गई थी, है तो मन में कलाकारी, तो फिर इंजीनियरिंग कैसे पूरी होगी। लिहाजा इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और फिर संगीत में ही अपना पूरा मन लगा दिया। हालांकि इनके पिता की तरफ से जरा मुखालफत तो थी, लेकिन फिर भी इन्होंने संगीत का दामन न छोड़ा।

0: जमाना।
1: इन्होंने कुछ लघु कथाएं और भी लिखी जो कि उस जमाने की बांग्ला पत्रिका देश में प्रकाशित हुई। हेमंत कुमार ने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया ऑल इंडिया रेडियो के लिए सन 1935 में। अपने जमाने के मशहूर साजिंदे शैलेश दत्ता गुप्ता का भी असर इन पे रहा। इनके ऊपर एक बहुत बड़े गायक पंकज मलिक का भी गहरा असर था। लेकिन इस बात में भी कोई दोराय नहीं कि इन्होंने शास्त्रीय संगीत का विधिवत प्रशिक्षण लिया फणी भूषण बैनर्जी से।

एक तरफ संगीत की शिक्षा चल रही थी तो दूसरी तरफ इन्होंने कोलंबिया लेबल के लिए कुछ गाने रिकॉर्ड किए और उसके बाद ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया के लिए भी। इनका पहला हिंदी गाना था कितना दुख भुलाया तुमने और ओ प्रीत निभाने वाली, जो कि सन 1940 में दुनिया के सामने आया था।

इनकी पहली बंगाली फिल्म थी निमाई संन्यास, जिसका संगीत हरिप्रसन्ना दास ने दिया था। पर अभी भी ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि हेमंत कुमार महानतम गायकों में से एक बनेंगे और सबसे जबरदस्त संगीतकारों की फहरिस्त में इनका नाम शामिल होगा। बतौर संगीतकार इनकी पहली बांग्ला फिल्म रही अभियात्री, जो कि सन 1947 में आई। ये 40 की दहाई तक आते आते इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन का हिस्सा बन गए और जमाने में इप्टा के एक और बड़े जबरदस्त मेंबर सलिल चौधरी के साथ इनकी गहरी दोस्ती हुई और सलिल चौधरी भी आगे जाकर महानतम संगीतकारों में से एक बने। इन दोनों ने साथ में काफी काम किया, पर धीरे धीरे गायकी के साथ हेमंत कुमार साहब के संगीत निर्देशन की भी खूब चर्चा होने लगी। इनके एक डायरेक्टर मित्र रहे हेमेन गुप्ता, उन्होंने जब मुंबई की तरफ रुख किया तो हेमंत कुमार को भी बुला लिया। हेमंत मुखर्जी ने फिल्म आनंद मठ के लिए संगीत दिया। आनंद मठ का संगीत बड़ा मकबूल हुआ।

उसमें गाया लता मंगेशकर जी का गाना वंदे मातरम आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर है, पर अभी भी बतौर प्लेबैक सिंगर इन्हें बड़ी मकबूलियत हासिल नहीं हुई थी। और तब महान संगीतकार एसडी बर्मन ने इन्हें मौका दिया फिल्म जाल में। गाना था ये रात ये चांदनी फिर कहां। हाउस नंबर 44 का गाना चुप है धरती चुप है चांद सितारे और 16 साल फिल्म का है अपना दिल तो आवारा। इन गानों ने हेमंत कुमार को सबसे मुख्तलिफ प्लेबैक सिंगर बना दिया।

इन्होंने फिल्म नागिन का संगीत दिया और नागिन की बीन आज भी बड़ी मशहूर है। इसी बीच इनके असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए रविशंकर शर्मा, जो आगे जाकर बहुत बड़े संगीतकार बने, जिन्हें हम रवि के नाम से जानते हैं। नागिन फिल्म के लिए इन्हें फिल्मफेयर की तरफ से बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी दिया गया। इन्होंने गुरुदत्त के लिए प्लेबैक सिंगिंग की तो बंगाली सिनेमा के महानायक उत्तम कुमार। 50 की दहाई आते आते इन्होंने हेमंत बेला प्रोडक्शंस के नाम से एक मूवी प्रोडक्शन कंपनी शुरू की और फिल्म बनाई नील आकाशेर नीचे। इस फिल्म को प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल से नवाजा गया। उसके बाद 20 साल बाद कोहरा, बीवी और मकान, फरार, राहगीर और खामोशी बड़ी जबरदस्त फिल्में साबित हुई। एक तरफ बांग्ला सिनेमा तो दूसरी तरफ हिंदी सिनेमा, दोनों ही जगह इनका खूब नाम हुआ। प्यार की

इनके परिवार की तरफ रुख करें तो पता चलता है ये तीन भाई और एक बहन रहे। बहन का नाम नीलिमा, इनके बड़े भाई का नाम तारा ज्योति जो कि बांग्ला के लघु कथा लेखक रहे। इनके सबसे छोटे भाई अमल मुखर्जी जो गाना भी गाया करते थे और संगीत निर्देशन भी दिया करते थे। हेमंत कुमार साहब का विवाह हुआ बेला मुखर्जी से जो कि एक बड़ी जबरदस्त बंगाली गायिका रहीं। पर शादी के बाद बेला मुखर्जी ने परिवार को संभाला। इस शादी से इन्हें दो बच्चे हुए, बेटा जयंत और बेटी रानू। आगे जाकर बहुत ही जबरदस्त हीरोइन मौसमी चटर्जी इनकी बहू बनी। इन्होंने एक तरफ फिल्में प्रोड्यूस करी, फिल्मों का संगीत भी दिया और बतौर प्लेबैक सिंगर भी बड़ी ख्याति प्राप्त करी।

0: ये 80 की दहाई की शुरुआत तक गाना गाते रहे, पर 80 की दहाई की शुरुआत में ही इन्हें दिल का दौरा भी पड़ा था, जिस वजह से इनकी गायकी पे गहरा असर आया था। ये बात भी गौर करने लायक है कि इन्हें पद्मभूषण और पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जाना था, लेकिन इन्होंने ये दोनों ही अवार्ड स्वीकार न किए। इन्हें बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बुलाया गया, जहां पे माइकल मधुसूदन अवार्ड से इन्हें नवाजा गया। वहां से वापस आने के बाद हेमंत कुमार साहब को दिल का दौरा पड़ा, तारीख 26 सितंबर साल सन 1989, और तब इनका इंतकाल हो गया। इन्हें फिल्मफेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड से नवाजा गया, तो नेशनल फिल्म अवार्ड से भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में हेमंत मुखर्जी यानी कि हेमंत कुमार साहब का नाम सदैव गर्व से लिया जाएगा।
1: तो ये थी हेमंत कुमार की कहानी आपके लिए। आगे आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपके नाम सुनते रहो, मस्कराते रहो, मस्कराते रहो।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: सपोज एक स्टूडेंट है जिसका एक महीने के बाद एग्जाम्स हैं, वो आज बैठकर ना प्रिपरेशन करता है। ही इज प्लानिंग ऑल हिज लेसंस। जब प्लान करता है तो उसको समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की 10th चैप्टर इज वेरी वेरी टफ, तो कैसा प्रोग्रामिंग करेगा? हे भगवान, सारे के सारे क्वेश्चंस 9 चैप्टर में से आए। ओ गॉड, लेट नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन कम फ्रॉम द 10th चैप्टर।

0: फर्स्ट प्रोग्रामिंग, और ये एक महीने तक ये स्टूडेंट क्या प्रोग्रामिंग देता है? इफ देयर इज एनी क्वेश्चन फ्रॉम द 10th चैप्टर, आई विल बी इन ट्रबल, आई विल बी इन ट्रबल, आई विल बी इन ट्रबल. एक महीने के बाद जैसे ये विद्यार्थी एग्जामिनेशन हॉल में जाता है, एज सून एज ही गेट्स अ क्वेश्चन पेपर, ही इज लीस्ट बिट बॉदर्ड. हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव कम फ्रॉम 9 चैप्टर्स, ही इज ट्राइंग टू लुक आउट वेदर देयर इज एनी क्वेश्चन फ्रॉम द 10th चैप्टर और नॉट. और बस उनके आंखों के सामने ये क्वेश्चन फ्रॉम द 10th चैप्टर दिखाई देता है. एक महीने से क्या प्रोग्रामिंग कर रहा है? इफ देयर इज एनी क्वेश्चन फ्रॉम द 10th चैप्टर, आई विल बी इन ट्रबल, आई विल बी इन ट्रबल, आई विल बी इन ट्रबल. ऑटोमेटिकली ही इज इन ट्रबल. और इतना स्ट्रेस्ड अप हो जाता है, सारा पसीने पसीने छूटने लगते हैं, आंखों के सामने ब्लैकआउट हो जाता है, और जो 9 चैप्टर में से पढ़ा वो धीरे धीरे इवैपोरेट होकर उड़ने लगता है. व्हाई? बिकॉज इट्स द वे वी हैव प्रोग्रामड आवरसेल्व्स. थॉट्स आर द सॉफ्टवेयर. एक और उदाहरण देता हूं. जिस कॉलेज में पढ़ाता था तो वहां पे जो स्टूडेंट्स थे, राइट फ्रॉम 8:30 to 3:30, यू नो, हम प्रोफेसर्स लेक्चरर्स बम्बार्ड आवर स्टूडेंट्स विद सो मच ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन. 3:30 बजे तक बच्चे इतने थक जाते थे कि कुछ पूछो मत, दे सो डैम टायर्ड. किसी तरह वो अपना बैग बैगेज उठाता है, समहाउ ही कम्स आउट, और वो अपना घर देखता है 100 meters अवे. 100 meters सीम्स टू हिम एज 100 kilometers बिकॉज ही सो टायर्ड. और उस समय ये विद्यार्थी देखता है एक कुत्ता बहुत तेज से उसको काटने के लिए आ रहा है. क्या करेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत थक गया हूं ना, कहेगा? नो, ही विल रन एट द फास्टेस्ट ऑफ फास्ट स्पीड, इफ नॉट द 100 meters वर्ल्ड रिकॉर्ड. लेकिन 100 meters इंडियन रिकॉर्ड तो उसको तोड़ना ही था. व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट इज, ऐसा नहीं है कि उसके पास एनर्जी नहीं था, एनर्जी था, बट ही केप्ट ऑन प्रोग्रामिंग, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड. Automatically the body manifested itself in the same way. जैसे उसने उस कुत्ते को देखा तो क्या किया? एक स्विच ऑफ किया, दूसरा स्विच ऑन किया, he had energy and he could run at the fastest of fast speed. जैसे ही घर में पहुंचा, the first thing that he does it, switch on the television. Right there from 7 o'clock to late 10 o'clock, he is there in front of the television. 10 बजे वो realize करता है, oh my god, tomorrow मुझे इतने सारे assignments submit करने हैं. और 10 बजे वो लिखना आरंभ करता है. सोते सोते 12 बज जाते हैं, 6 बजे का अलार्म रखता है, और उसका मन में यही विचार आता कि मैं कैसे उठ पाऊंगा. और जैसे ही 6 बजे का अलार्म बजता, टक, 10 मिनट सोता हूं. और 10 मिनट का कितना, 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाता है. एवरी डे ही इज देयर इन द कैंपस लेट एंड ही हैज टू हियर फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द प्रोफेसर्स. 1 महीने के बाद द क्रेजी प्रोफेसर, द सेम प्रोफेसर स्वामीनाथन, एंटर्स द क्लास एंड सेज टू द स्टूडेंट, हे स्टूडेंट्स, लिसन टू माय अनाउंसमेंट वेरी केयरफुली. Tomorrow we are all going to a trip to Khandala. Please make it sure that tomorrow you are reaching the campus sharp 7 a.m. As usual, television till 10 o'clock, he's there in front of television. Suddenly at 10 o'clock he realizes, my God, tomorrow trip to Khandala. मुझे बहुत practice करनी होगी, क्या-क्या करना होगा. और 10 बजे वो practice करना आरंभ करता है. हर दिन वो 12 बजे सोता है, लेकिन उस दिन वो 1 बजे सो रहा है. He has to reach the campus 7 a.m. Every day he keeps the alarm at 6 o'clock. That day he keeps the alarm at 4 o'clock. Hardly 3 hours of sleep. Lekin, 4 baje ka alarm rakhta hai. Lekin, 3 baje bhi uthega, 3 baje bhi uthega, 3 baje bhi uthega. And before the alarm can ring, this gentleman is so fresh. It's a way we program ourselves. A sara din he's there in Khandala enjoying himself, playing in the ghats, enjoying with his friends. He had hardly had 3 to 3.5 hours of sleep, but no form of tiredness. It is the way we program ourselves. और ऐसा नहीं है कि हम छोटे या students ही program करते हैं. हम बड़े भी बहुत अक्सर करके programming कर देते हैं. Self programming. It's a kind of a programming.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर. आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है. ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ. आइए, हेमंत कुमार के बारे में सुनकर आपको बड़ा अच्छा लगा होगा. आइए, इसके साथ ही मैं एक और व्यक्ति के बारे में बात करता हूँ, चौधरी ब्रह्म प्रकाश के बारे में. जी हाँ, चौधरी ब्रह्म प्रकाश जो है एक ऐसे व्यक्ति है, आज़ादी के दीवाने, दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे, लोकसभा के सदस्य भी रहे. सन 1940 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. चौधरी ब्रह्म प्रकाश 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत नेताओं से थे. अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण वो कई बार जेल भी गए और 17 मार्च 1952 से 12 फरवरी 1955 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे. एशिया का सबसे बड़ा आयुर्वेद हॉस्पिटल जो कि नफसगढ़ के खैरा डाबर में बनाया गया था। उसका नाम चौधरी ब्रह्म प्रकाश के नाम से रखा गया था। इतना ही नहीं, विधानसभा में भी उनकी मूर्ति को लगाया गया है। चौधरी प्रकाश भाग्य से बहुत धनी थे। दरअसल दिल्ली की पहली विधानसभा में मुख्यमंत्री देशबंधु गुप्ता को बनाए जाने की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन जहाज दुर्घटना में उनकी मृत्यु होने के बाद चौधरी ब्रह्म प्रकाश सीएम बन गए। वहीं जब उन्हें सीएम गद्दी से हटाकर गुरुमुख निहाल सिंह को सीएम बनाया गया, तो उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल होने की शर्त पर डेवलपमेंट व फाइनेंस डिपार्टमेंट मांगा। बाहरी दिल्ली से गांधीवादी सी कृष्ण अय्यर 1952 में संसद रहे, जब चौधरी ब्रह्म प्रकाश को संसद के रूप में कांग्रेस ने चेहरा बनाया, तो उन्हें सबसे पहले 1997 में नवनिर्मित सीट दिल्ली सदर दी गई, क्योंकि नायर की खिलाफत करना आसान नहीं था। वही चौधरी ब्रह्म प्रकाश के सामने दिल्ली सदर से जनसंघ के कट्टरवार नेता श्यामचरण गुप्ता मैदान में थे। तीसरे लोकसभा चुनाव जो कि 1962 में हुए थे, उसमें बाहरी दिल्ली में चौधरी ब्रह्म प्रकाश को कांग्रेस ने टिकट दिया और वह जीत गए। उनका दबदबा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब दिल्ली की 7 सीटों में से 6 जनसंघ की पास चली गई थी, उस समय सिर्फ बाहरी दिल्ली की सीट पर ही विजय मिली थी, जिस पर चौधरी ब्रह्म प्रकाश आपत्तकाल के बाद 1977 में हुए छठे लोकसभा चुनाव में बंटवारे से आहत चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उन्हें जनता पार्टी ने पहली बार दिल्ली से ही बाहर से टिकट दी और वह रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते। बताया जाता है कि उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों का बड़ा सपोर्ट मिला था। तो ये थी कुछ खास बातें चौधरी वेद ब्रह्म प्रकाश के बारे में। चौधरी ब्रह्म प्रकाश की जीवन कहानी को सुनकर थोड़ा सा यूनिक लग रहा है कि नहीं? कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने दम पर कुछ काम कर जाते हैं और सरकार उसे चाहे ना चाहे, लेकिन जनता का प्यार बहुत मिलता है। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: इसे मुसीबत कहते हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहां से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की।

0: हाथ से गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया? झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
1: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशर्म, ठीक है, मेरे पास वक्त नहीं है बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
0: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है, बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
1: होता है तो होने दो।

0: आप हमरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, मंगल कामनाएं करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। और हेमंत दा की बातें सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा होगा, उनके गाने वगैरह। तो आइए एक और शख्सियत के बारे में बात करते हैं, और ये हैं सुरेश कांत। जी हाँ, सुरेश कांत, इनकी जीवन कहानी से कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूँगा। और सुरेश कांत जो है हिंदी भाषा के बहुत ही समकालीन उपन्यासकार, संपादक और कुशल लेखक रहे। सुरेश कांत विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में अब तक 500 से अधिक रचनाओं को प्रकाशित कर चुके हैं। इसके अलावा हिंदी के अग्रणी पुस्तक प्रकाशकों के द्वारा 50 से अधिक पुस्तकों की रचना भी कर चुके हैं। सुरेश कांत चर्चा करते हैं, चर्चित वक्ता है, चर्चा भी करते हैं, और विभिन्न बैंकों, कार्यालयों और संस्थाओं के माध्यम से विश्वविद्यालयों आदि द्वारा आयोजित जो सम्मेलन होते हैं, संगोष्ठियां होती हैं, कार्यशालाओं में भाग लेते हैं, वक्तव्य देते हैं, और हिंदी भाषा और साहित्य, राजभाषा, बैंकिंग, वित्त और प्रबंधन पर सैकड़ों इनके व्याख्यान उन्होंने दे चुके हैं। और आपको कहीं ना कहीं उनकी बातें जो है वीडियो के रूप में भी मिल जाएंगी। तो ये ऐसे विशेष साहित्यकार की बातें करते हैं। आज ही के दिन 16 जून 1956 को गांव कारदोल हाथी मुजफ्फरपुर जिला उत्तर प्रदेश में इनका हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय से पहली श्रेणी में बीए ऑनर्स इनको प्राप्त है, और हिंदी में एमए की ऑनर्स इनको प्राप्त है। इसके बाद वो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया, और हिंदी गद्य लेखन में व्यंग और विचार विषय पर पीएचडी किया। इसके बाद प्राचीन भारत में बैंकिंग शब्दावली का स्वरूप विषय पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की, और भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई में 20 साल तक एज ए राजभाषा के महाप्रबंधक के रूप में सहायक रहे, और भारतीय स्टेट बैंक मुंबई में 10 वर्षों तक उप महाप्रबंधक रहे। भारत के अग्रीन करियर पत्रिका कॉम्पिटिशन नई दिल्ली में 3 वर्ष तक संपादक हिंदी रहे। वर्तमान में भारत के सबसे पुराने और बड़े प्रकाशन संस्थान हिंदी पैकेट बुक्स और प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली नोएडा में मुख्य संपादक के रूप में भी काम करते हैं। उसके बाद इनके लेखन कार्य की बात करें तो अलग अलग न्यूज़पेपर प्रकाशन से जुड़े रहे, और अमर उजाला, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, ऐसे कई पेपरों में इनके लेख छपते रहे, और इनमें कहीं ना कहीं विशेष रूप से इनका जुड़ाव बना रहता था। इसके साथ ही अगर बात करें तो एनसाइक्लोपीडिक डिक्शनरी ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस टर्म्स, ये शब्दकोश का भी उनको जो है सहयोग मिला। और सम्मान और पुरस्कार की बातें तो चलती रहती हैं, अलग अलग संस्थानों से जुड़ने के कारण इन्हें काफ़ी सहयोग और खासी सम्मान जो है प्रतिष्ठा जो है मिली है सभी से। और इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सोसाइटी नई दिल्ली द्वारा अत्यंत प्रतिष्ठित भारत ज्योत अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। हिंदी अकादमी से सम्मान, साहित्य कला परिषद से इनको सम्मान, गृह मंत्रालय दिल्ली से इनको, वित्त मंत्रालय से भी इनको सम्मान मिला है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुंबई से भी इनको विशेष रूप से सम्मान प्राप्त है। तो ये थी कुछ खास बातें विशेष सुरेश कांत के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: मैं हूं श्रवण राठौर ऑफ नदीम श्रवण टीम और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हुए मैं आपको ले चलता हूं एक और लेजेंडरी सेलिब्रिटी फिल्मी स्टार के बारे में बात करते हैं। भारत के बहुत ही पॉपुलर अभिनेता, सामाजिक कार्यकर्ता और उद्यमी हैं मिथुन चक्रवर्ती। जी हां, मिथुन चक्रवर्ती ने अपने अभिनय की शुरुआत कला फिल्म मुगया से की थी और जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त था और 1980 के दशक के अपने सुनहरे दौर में एक डांसिंग स्टार के रूप में उनके बहुत सारे प्रशंसक बने और खुद को उन्होंने भारत के सबसे लोकप्रिय प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया। विशेष रूप से 1982 में बहुत बड़ी हिट फिल्म डिस्को डांसर में स्ट्रीट डांसर जिमी की भूमिका ने उन्हें लोकप्रिय बनाया। कुल मिलाकर बॉलीवुड की 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय के अलावा उन्होंने बंगाल, उड़िया और भोजपुरी में भी बहुत सारी फिल्में की। मिथुन मोनार ग्रुप के मालिक भी हैं जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर में कार्यरत है। तो आइए इनके बारे में कुछ खास बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा और आशा करूँगा कि आपको बड़ा अच्छा लगेगा इनकी कहानी सुनकर और कुछ। तो आइए डांस, ड्रामा और डायलॉग अभी आपके लिए।

0: दुनिया ने जिसके डांसिंग स्टाइल का लोहा माना। इसकी एक्टिंग ने इसे दिलाए नेशनल अवार्ड्स और बन गया ये सुपरस्टार लेजेंडरी एक्टर। नाम मिथुन चक्रवर्ती।
1: हम नहीं वो जिसे अंजाम डराने आए, मरना रब को है वो खुद ही बचाने आए।
0: मिथुनदा के जन्म का नाम गौरांग चक्रवर्ती, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री ने इन्हें मिथुन बना दिया। जन्म की तारीख 16 जून 1950।
1: तेरे नाम का कुत्ता पालो साले, भोगने को आता नहीं और काटने को आ गया।
0: मिथुन चक्रवर्ती साहब उन गिने चुने एक्टर्स में से हैं जिनकी पहली फिल्म के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। फिल्म का नाम था मृग्या, जिसे मृणाल सेन साहब ने बनाया था। इस फिल्म के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। मिथुनदा की पढ़ाई हुई स्कॉटिश चर्च कॉलेज कलकत्ता में और उसके बाद ये FTII पुणे चले गए, एक्टिंग का विधिवत प्रशिक्षण लिया और कूद गए फिल्म इंडस्ट्री के मैदान में।
1: क्यों रे शैतान की औलाद, बच्चे पर बहादुरी दिखाता है? दुकान है बे, चल चल अपना काम कर। वही तो कर रहा हूँ मैं, ऊपर आऊँ या तू नीचे आता है।
0: हालांकि पहली फिल्म के लिए ही नेशनल अवार्ड मिल गया था, लेकिन इनका संघर्ष जारी रहा। इनके पास कोई काम नहीं था, बड़ी मुश्किल से इन्हें एक पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन मिली और उस कमरे में पहले से ही दो लोग रहा करते थे। किसी तरह से मिथुन दा को भी उसमें जगह दे दी गई। मिथुन चक्रवर्ती कुछ छोटे मोटे किरदार निभाते रहे और फिल्म दो अनजाने को कौन भूल सकता है, जिसमें इन्होंने बहुत छोटे से सीन में काम किया था और अमिताभ बच्चन से दो दो हाथ किए थे। इस फिल्म की हीरोइन थी रेखा।
2: आजकल तो अमिताभ घर में देवदास बन के लौटता है और यहाँ दिन में राजलीला चलती है।
3: चुप साला, एक रपट मारेगा तुम्हारा फेस का ज्योग्राफिया बदल जाएगा, समझा?
2: अरे ओ अमिताभ, पहले अपने घर की ज्योग्राफी संभालो, समझे ना?
4: अरे यार क्यों मुंह लग रहा है, मौका देख के झाड़ देंगे एक पेड़ो, सब साला ठीक हो जाएगा। चल
2: जा जा
3: जा जा, जा, जा। पेटो फेंक देगा, माया पेटो फेंकने वाला, घर का ज्योग्राफिया संभालो। अरे घर मेरा है, ज्योग्राफिया हम संभालेगा।
0: इसके बाद ये छोटे मोटे किरदार निभाते रहे और फिर इनके पास आई फिल्म सुरक्षा। 1979 में इस फिल्म ने कमाल किया था, लेकिन फिर भी काम की भीड़ नहीं लगी थी। 1979 की फिल्म तराना को भी सराहा गया, लेकिन इंतजार था सन 1982 का, जब आई फिल्म डिस्को डांसर। डिस्को डांसर ने सब कुछ बदल के रख दिया। इस फिल्म ने मिथुन चक्रवर्ती को तो सुपरस्टार बनाया ही और साथ ही फिल्म इंडस्ट्री को दिया एक ऐसा डांसर जिसने ऐसे ट्रेंड सेट किए कि वो आज भी अमिट हैं।

0: और उसके बाद आई फिल्में डांस डांस और कसम पैदा करने वाले की।
1: तेरा संदेशा मिल गया था, मैंने सोचा तुझे चलने में तकलीफ होगी, इसलिए मैं खुद यहाँ आ गया।
2: तकलीफ? अरे तकलीफ तब तुझे होंगी, उसका सोच। मैंने कहा था ना हॉस्पिटल से निकलते तुझसे निपटूंगा।
1: हाँ वो बात तो सही है, लेकिन मैं तुझे हॉस्पिटल से निकलने दूं तब ना।
0: और साथ ही ये वो वक्त भी था जब अमिताभ बच्चन पॉलिटिक्स की तरफ रुख कर चुके थे और मिथुन दा को काफी फायदा हुआ। ये बन गए नंबर वन स्टार बॉलीवुड के। एक से बढ़कर एक फिल्में आती रहीं, मुझे इंसाफ चाहिए, स्वर्ग से सुंदर, प्यार झुकता नहीं, घर एक मंदिर, और ये फेहरिस्त बहुत लंबी है। हिंदी फिल्में इन्हें स्टारडम दे रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्ला फिल्में इन्हें दे रही थी नेशनल अवार्ड। इन्हें तहदार कथा के लिए भी नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। वक्त के बाद मिथुन चक्रवर्ती मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा को छोड़ थोड़ी लो बजट फिल्मों में काम करने लगे। यही वजह थी कि एक बरस में इनकी तकरीबन 30 फिल्में रिलीज हुई थीं। हालांकि इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं किया था, पर छोटे सेंटर्स में ये फिल्में बहुत चली थीं। प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स भी मिथुन चक्रवर्ती के ऊटी के मोनार्क होटल के पास ही शूटिंग करने को तैयार हो जाते थे, इसलिए काम भी जल्दी होता था और फिल्में भी फटाफट रिलीज हो जाती।
3: अवैध दर्जी की औलाद, लड़कियों की कमर का नाप लेने से पहले अपनी हड्डियों की नाप ले ले, जो अभी टूटने वाली है बगैर इंची टेप।
0: उसके बाद मिथुन दा ने वापसी की कैरेक्टर रोल्स में। मणिरत्नम की फिल्म गुरु को कौन भूल सकता है, लकी नो टाइम फॉर लव और कल्पना लाजमी की चिंगारी, इन सभी फिल्मों में मिथुन दा का सशक्त अभिनय सबके दिलों को जीत गया।
4: पाप और पुण्य का खेल इस संसार में जो खेला जाता है उस पे सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार है, रंडियों का नहीं।
5: अब आप भगवान को नाराज कर रहे हैं
4: महाराज। चुप साली,
5: गलती हो गई महाराज, फिर ना हो, गलती हो गई।
4: क्या फर्क है तुझ में और उसमें हा? उसके 5 पति थे और तेरे अनगिनत। तेरा काम मुझसे बहस करना नहीं है, मेरी वासना को पूरा करना है।
0: एक बार फिर इन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया और इस बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। फिल्म का नाम स्वामी विवेकानंद। मिथुन दा ने मल्टी स्टारर्स में भी कमाल किया और सोलो हीरो वाली फिल्मों में भी, रोमांटिक फिल्मों में भी और फैमिली ड्रामास में भी। फिल्म गुलामी से इनका डायलॉग कोई शक आज भी बहुत पॉपुलर है।
1: मुझे मालूम है।
0: टीवी की दुनिया में जब मिथुन दा ने कदम रखा तब इनका एक जुमला इतना मशहूर हुआ कि जब भी किसी की तारीफ करनी हो तो बस इतना कह दीजिए, क्या बात क्या बात क्या बात।

0: लिया।
1: मिथुन दा के पारिवारिक जीवन की तरफ रुख करें तो हमें पता चलता है कि इनकी शादी हुई जबरदस्त अभिनेत्री योगिता बाली से। इस शादी से इन्हें 4 बच्चे हुए, 3 बेटे और 1 बेटी। सबसे बड़ा बेटा मिमो भी एक्टर ही बना। मिथुन चक्रवर्ती उन गिने चुने एक्टर्स में से हैं जिन्होंने पैरेलल सिनेमा में भी कमाल किया और कमर्शियल फिल्मों में भी इनका लोहा माना गया।
2: मैं बस्ते में शराब की बोतल लाता था, तुमने मेरे बस्ते के अंदर शराब की बोतलें देखी थी लेकिन मेरे अंदर की मजबूरी तुमने नहीं देखी थी। तुमने मेरा बस्ता उठाकर फेंक दिया लेकिन बस्ते से बोतल निकाल कर उसमें किताबें नहीं रखी थी। तुमने मेरे लिए स्कूल का दरवाजा बंद कर दिया, तुमने तो अपन क्या करता अखा जिंदगी स्कूल के बंद गेट के बाहर गुजार देता।
3: ए मासा जी नहीं, इसलिए अपन दूसरा स्कूल चला गया। भट्टी भी बहुत बड़ा स्कूल है मासा जी, वहां आदमी को अक्षर पहचाना नहीं सिखाया जाता है लेकिन आदमी पहचाना जरूर सिखाया जाता है।
1: फिल्म अग्निपथ के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया और फिल्म जल्लाद के लिए बेस्ट विलेन। हर किरदार को मिथुन दा ने जिया। स्क्रिप्ट के अनुसार मिथुन चक्रवर्ती ने वो अभिनय दिखाया जिन्हें तो सुपरस्टार बनना ही था।
4: शिवा अपने सर पर कभी किसी का कर्ज नहीं रखता माँ, इसका जवाब उसे जरूर मिलेगा।
1: यकीनन जबरदस्त डांसर, फौलादी एक्शन सीन्स करने वाला, कमर्शियल और पैरेलल सिनेमा का अजीज मिथुन चक्रवर्ती। भारतीय सिनेमा के इतिहास में इनका नाम हमेशा

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टूडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

ओम शांति। आज 17 जून 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे सत्युग सूर्य वंश को कहेंगे एयर कंडीशनिंग क्लास, त्रेता युग को कहेंगे फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड क्लास भी है, थर्ड क्लास भी है, जो प्रजापद है। तुम बच्चों को अभी लायक बनना है एयर कंडीशनिंग क्लास में जाने के लिए। बाबा कहते स्वयं को देखो, श्री लक्ष्मी को वरने के लायक बने हो या सीता को वरने के लायक बने हो या प्रजापद में जाना है। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है एयर कंडीशनिंग टिकट के लिए। बाबा कहते उसके लिए बाप का बन करके बाप पर संपूर्ण स्वयं को न्योछावर कर दो, तन मन धन सहित संपूर्ण रीति से अर्पण करो, तब एयर कंडीशनिंग क्लास में जाने के योग्य बनेंगे। दूसरी बात महत्वपूर्ण बाबा ने आज मुरली में बताई है कि बच्चे मैं तुम्हें गुह्य गंभीर बातें बताता हूं। गुह्य से गुह्य और गंभीर बात। बाबा कहते ये विष्णु को जो अलंकार दिए हैं, वास्तव में देवताओं को ये अलंकार नहीं है, ये अलंकार तुम ब्राह्मणों के हैं। परंतु आज ब्राह्मण बच्चे पुरुषार्थ करते हैं और कल देखो तो माया जोर से थप्पड़ लगाकर मुंह ही फेर देती है और ये अलंकार भी छूट जाते हैं। जैसे दुनिया में भी कोई किसी को क्रोध में आकर कहता है, कैसी थप्पड़ मारूंगा जो मुंह फेर दूंगा, तो बाबा कहते माया भी कभी कभी ऐसी थप्पड़ मारती है जो कईयों का मुंह ही फेर देती है। कहां तो वो पुरुषार्थ कर रहे थे लक्ष्मी नारायण बनने का, बेहद बाप से बेहद वर्षा लेने का, और माया एकदम मुंह फेर देती है और फिर तमो प्रधान शूद्र कुल की ओर वापस बढ़ जाते हैं। तो बाबा कहे ये बहुत गुह्य गंभीर बातें बाबा बताते हैं पुरुषार्थ की। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करो। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशनिंग टिकट। आज की मुरली से प्रश्न है, इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुश नसीब कोई भी नहीं है, कैसे? उत्तर, तुम बच्चों के सन्मुख बेहद का बाप है ना। ये भी कितनी खुश नसीबी है कि इस अंतिम जन्म में संगम के समय पर हम बेहद के बाप के सन्मुख है और उनसे बेहद का वर्षा ले रहे हैं। भगवान के सन्मुख होना उससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है। तो तुम बच्चों के सन्मुख बेहद का बाप है, उनसे तुम्हें बेहद का वर्षा मिल रहा है। तुम इस समय बेहद बाप, टीचर और सतगुरु के बनकर उससे बेहद की प्राप्ति करते हो। दुनिया वाले तो उसे जानते भी नहीं, तो तुम्हारे जैसा खुश नसीब हो कैसे सकते? जब भगवान को जानते ही नहीं तो खुश नसीब हो कैसे सकते? आज की मुरली से पहले गीत बजा है, बड़ा खुश नसीब है। ओम शांति। ब्राह्मण कुल भूषण बच्चे जानते हैं कि अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, जबकि बेहद का बाप सन्मुख है,
और उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है, बाकी और क्या चाहिए। भक्ति मार्ग कब से चलता है ये कोई को पता नहीं है। भक्ति मार्ग वाले भक्त भगवान को अथवा ब्राइडग्रूम को याद करते हैं, परंतु वंडर है कि उनको जानते नहीं है। हाँ, सजनी अगर साजन को ही न जाने तो याद कैसे करेंगे। तो बाबा कहे ये वंडर है कि उनको जानते नहीं। ऐसा कभी देखा कि सजनी साजन को न जाने, नहीं तो याद कर ही कैसे सकती। भगवान तो सबका बाप ठहरा, बच्चे बाप को याद करते हैं, परंतु पहचान बिगर याद करना सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए याद करने से कोई फायदा नहीं निकलता। याद करते कोई भी उस एम ऑब्जेक्ट को पाते नहीं। भगवान कौन है, उससे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते। इतने सब धर्म, क्राइस्ट, बौद्ध आदि प्रिसेप्टर अथवा धर्म स्थापन करने वालों को उनके फॉलोअर्स याद करते हैं, परंतु उनको याद करने से हमको क्या मिलना है, कुछ भी पता नहीं है। इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी। बाबा कहते जहां ज्ञान ही न हो उसे तो कम से कम जिस्मानी पढ़ाई अच्छी। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में रहती है ना। बाप से क्या मिलता, टीचर से क्या मिलता है और गुरु से क्या मिलता है, यह और कोई भी नहीं समझ सकते हैं। तुम यहां बाप के, फिर टीचर के, फिर सतगुरु के बनते हो। बाप और टीचर से गुरु उच्च होता है, बाप और टीचर से गुरु उच्च होता है। अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ कि हम बाप के बने हैं। बाबा हमको 5000 वर्ष पहले मुआफिक आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं अथवा शांति धाम का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का भी मालिक बनते तो शांति धाम के भी मालिक बनते। बाप कहते लाडले बच्चे तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना। सब कहते हैं हाँ बाबा क्यों नहीं लेंगे। अच्छा तो बाबा आके पूछते चंद्रवंशी राम पद पाने में राजी होंगे, तुमको क्या चाहिए। बाप सौगात ले आए हैं तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को। तुम अपनी शक्ल तो देखो, श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को वरने लायक हो। अब कहे स्वयं को देखो, बिगर लायक बनने के वर कैसे सकते हैं। अब बाप बैठ समझाते हैं, को बहु जैसे कल्प पहले समझाया था फिर से समझा रहे हैं। तुम फिर से आकर वर्षा ले रहे हो, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने की। वह है सूर्यवंशी राज्य पद, सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी। जैसे एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होते हैं ना, तो सतयुग की पूरी राजधानी एयर कंडीशनिंग समझो। बाबा कहे सतयुग की पूरी राजधानी एयर कंडीशन समझो। एयर कंडीशन से ऊंच तो कुछ होता नहीं है, फिर है फर्स्ट क्लास। तो अब बाप कहते हैं तुम एयर कंडीशन का सूर्यवंशी राज्य लेंगे, वह चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास का, उससे भी कम तो फिर सेकंड क्लास में नंबर वार वारिस बनो। फिर तुम पीछे पीछे आकर राज्य पाएंगे, नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा, फिर तो उनमें भी टिकट रिजर्व होती है। फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकंड क्लास रिजर्व, नंबर वार दर्जे होते हैं ना।
बाकी सुख तो वहां है ही। सत्युग त्रेता दोनों युग में सुख तो है ही, अलग अलग कंपार्टमेंट तो है ना। शाहूकार आदमी टिकट लेंगे एयर कंडीशन की, तुम्हारे में शाहूकार कौन बनते हैं जो सब कुछ बाप को दे देते हैं। बाबा ये सब कुछ आपका है, भारत में ही महिमा गाई हुई है, भगवान की महिमा गाई हुई है। सौदागर रत्नागर जादूगर ये महिमा है बाप की, न किसी कृष्ण की। श्री कृष्ण ने तो वर्षा लिया, सतयुग में प्रलब्ध पाई, वह भी बाबा का बना। प्रलब्ध कहां से तो पाई होगी ना, लक्ष्मी नारायण सतयुग में प्रलब्ध भोगते हैं। बाबा कहे लक्ष्मी नारायण सतयुग में प्रलब्ध भोगते हैं। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, जरूर इन्होंने पास्ट में प्रलब्ध बनाई होगी ना। मिसाल देते बाबा, नेहरू की प्रलब्ध कितनी अच्छी थी, जरूर अच्छे कर्म किए थे। बिगर ताज भारत का बादशाह था, भारत की महिमा तो बहुत है। भारत जैसा ऊंच देश कोई हो नहीं सकता, भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। तो परमात्मा की महिमा सो फिर भारत की भी महिमा हो जाती है। यह राज कोई की बुद्धि में नहीं बैठता कि भारत की इतनी महिमा क्यों है, क्योंकि ये परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। परमात्मा ही सबको सुख शांति देते हैं आधा कल्प के लिए। भारत ही नंबर वन तीर्थ स्थान है, परंतु ड्रामा अनुसार एक बाप को भूलने से सृष्टि की हालत कैसी हो गई है। इसलिए शिव बाबा फिर से आते हैं, निमित्त तो कोई बनते हैं ना। अब बाप कहते हैं अशरीरी भव, अपने को आत्मनिश्चय करो, मैं आत्मा किसकी संतान हूं ये कोई जानते नहीं। वंडर है ना, कहते भी है ओ गॉड फादर रहम करो। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वो कब आए थे कोई को पता नहीं है। और यह है 5000 वर्ष की बात, बाप ही आकर नई दुनिया सतयुग स्थापन करते हैं। सतयुग की आयु लाखों वर्ष तो है नहीं, तो घोर अंधियारा है ना। गीता का उपदेश कितने आकर सुनते हैं, परंतु न पढ़ाने वाले न पढ़ने वाले कुछ समझते हैं। गीता का उपदेश सुनते हैं, लेकिन न पढ़ाने वाला न पढ़ने वाला कुछ समझते हैं। बाप इतना सहज कर समझाते हैं, सिर्फ बाप को याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो, विष्णु को ही सब अलंकार दिए हैं। शंख भी दिया है तो फूल भी दिया है, पद्म भी दिया है। वास्तव में देवताओं को थोड़ी दिया जाता है। ये कितनी गुह्य गंभीर बातें हैं, बाबा आकर हमें कितनी गुह्य गंभीर बातें समझाते हैं। है ब्राह्मणों के अलंकार, परंतु ब्राह्मणों को कैसे देवे। आज ब्राह्मण है कल शूद्र बन पड़ते हैं, ब्रह्मा कुमार ही शूद्र कुमार बन पड़ते। माया देरी नहीं करती है, अगर कोई गफलत की बाप की श्रीमत पर न चला, बुद्धि खराब हुई, माया अच्छी तरह चमाट मार मुंह फेर देती है। अगर कोई गफलत की श्रीमत पर न चला, बुद्धि खराब हुई, तो माया अच्छी तरह चमाट मार मुंह फेर देती है। मनुष्य गुस्से में कहते हैं ना, क्या कहते हैं, थप्पड़ मार मुंह फेर दूंगा। तो माया भी ऐसी है, बाप को भूले और माया एक सेकंड में
थप्पड़ मार मुंह फेर देती है। एक सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं, माया सेकंड में जीवन मुक्ति खत्म कर देती है। कितने अच्छे अच्छे बच्चों को माया पकड़ लेती है, देखती है, हाँ माया देखती है कहाँ गफलत में है, तो झट थप्पड़ लगा देती है। कितनी समय सूचकता होगी माया के पास, जैसे देखती है कहाँ गफलत की, बस थप्पड़ लगाकर मुंह फेर देती है। बाप तो आकर पुरानी दुनिया से मुंह फिराते हैं। लौकिक बाप कोई गरीब होता है, पुरानी झोपड़ी में रहते हैं, फिर नया बनाते हैं तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाता है, बस अब नया मकान तैयार होगा, हम जाकर बैठेंगे, ये पुराना तोड़ देंगे। अब बाप ने तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ट अथवा वैकुंठ लाया है। कहते लाडले बच्चे आत्माओं से बात करते हैं, इन आंखों द्वारा तुम बच्चों को देख रहे हैं।

बाप समझाते हैं, मैं भी ड्रामा के वश हूं, ऐसे नहीं ड्रामा के बिगर कुछ कर सकता। नहीं, बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूंगा। ये नहीं कि परमात्मा है तो आकर बच्चों को ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन करने से छुड़ा दूंगा। नहीं, कर्म भोग तो सबको भोगना ही है। तुम्हारे ऊपर तो बोझा बहुत है, क्योंकि तुम सबसे पुराने हो, सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बने हो। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो बाप से वर्षा लेना चाहिए। तुम जानते हो, कल्प कल्प ड्रामा अनुसार हम बाप से वर्षा लेते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वह अवश्य आएंगे। बाबा कहते, जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वह अवश्य आएंगे। जो देवता थे फिर शूद्र बन गए हैं, फिर वही ब्राह्मण बन दैवी संप्रदाय बनेंगे। यह बातें बाप बिगर कोई समझा न सके। बाप को तुम बच्चे कितने मीठे लगते हैं। बाबा कहते, बाप को तुम बच्चे कितने मीठे लगते हो। कहते हैं, तुम वही कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो। इतना प्यार करते बाबा। मैं कल्प कल्प तुमको आकर पढ़ाता हूं, इतनी वंडरफुल बातें हैं। निराकार भगवान वाच, शरीर से वाच करेंगे ना। शरीर बिगर तो वाच होगा नहीं। शरीर अलग हो जाता तो आत्मा वाच नहीं कर सकती, आत्मा डिटैच हो जाती है। अब बाप कहते, अशरीरी भव। ऐसे नहीं कि प्राणायाम आदि चढ़ाना है। नहीं, समझना है मैं आत्मा अविनाशी हूं। बाबा कहे, बुद्धि से समझना है मैं आत्मा अविनाशी हूं। मेरी आत्मा में 84 जन्म का पाठ भरा हुआ है। बाप खुद कहते हैं, मेरी आत्मा भी जो एक्ट करती है वह सब पाठ भरा हुआ है। भक्ति मार्ग में वहां पाठ चलता है, फिर ज्ञान मार्ग में यहां आकर ज्ञान देता है। भक्ति मार्ग में भी बाबा का पाठ चलता है, फिर ज्ञान मार्ग में जब आते हैं तो ज्ञान देता हूं। भक्ति मार्ग वालों को ज्ञान का पता ही नहीं है। कोई ने शराब पिया नहीं तो टेस्ट को कैसे पता हो। बाबा कहते, कोई ने शराब पिया नहीं तो टेस्ट का कैसे पता हो। ज्ञान भी जब लेवे तब पता पड़े। ज्ञान से सदगति होती है तो जरूर ज्ञान सागर ही सदगति कर सकते हैं। ज्ञान सागर ही ज्ञान के द्वारा हमारी सदगति कर सकते हैं। बाप कहते, मैं सर्व का सदगति दाता हूं। सर्वोदया लीडर है ना, कितने किस्म किस्म के हैं। वास्तव में तो सर्व पर दया करने वाला बाप है। बाप से कहते हैं, हे भगवान रहम करो, तो सब पर रहम वो करते हैं। बाकी सब है हद के रहम करने वाले। बाप तो सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाते हैं, उसमें तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। ये काम है ही परमपिता परमात्मा का। तत्व सहित सब कुछ सतो प्रधान बन जाना ये काम है परमात्मा का। तो सर्वोदया का अर्थ कितना बड़ा है। सर्व पर दया करते हैं, मनुष्य आत्मा तो क्या, प्रकृति क्या, सबके ऊपर एकदम सब पर दया कर लेते हैं। स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुख नहीं होता है। वहां नंबर वन फर्नीचर, वैभव आदि मिलते हैं। दुख देने वाले जानवर, मक्खी आदि कोई नहीं होते। वहां भी बड़े आदमी के घर में कितनी सफाई रहती है, कभी तुम मक्खी नहीं देखेंगे, कोई मच्छर आदि घुस न सके। स्वर्ग में तो कोई की ताकत नहीं जो आ सके।
गंध करने वाली कोई चीज होती नहीं, नेचुरल फूलों आदि की खुशबू रहती है। कितना बाबा सुंदर वर्णन करते हैं सतयुग का, कैसी प्रकृति होगी, नेचुरल फूलों आदि की खुशबू रहती है। तुमको सूक्ष्म वतन में बाबा शुभी रस पिलाते हैं। अब सूक्ष्म वतन में तो कुछ भी है नहीं, ये सब साक्षात्कार है। वैकुंठ में कितने अच्छे अच्छे फूल बगीचे आदि होते हैं, सूक्ष्म वतन में थोड़ी बगीचा रखा है, ये सब है साक्षात्कार। यहां बैठे हुए तुम साक्षात्कार करते हो। गीत भी बड़ा फर्स्ट क्लास है, तुम जानते हो हमको बाप मिला है और क्या चाहिए। आज की मुरली से पहले गीत था, बड़ा खुश नसीब हूं। तो बाबा कहते गीत भी बड़ा फर्स्ट क्लास है, तुम जानते हो हमको बाप मिला है और क्या चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं तो बाप को याद करना चाहिए। बाप की मत मशहूर है, श्रीमत से हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे, बाकी है सबकी आसुरी मत। इसलिए वह जानते नहीं कि सतयुग में सदैव सुख था, आसुरी मत पर है तो कैसे जानेंगे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, छोटेपन में वही राधे कृष्ण है, उनके चरित्र आदि कुछ है नहीं। स्वर्ग में तो सब बच्चे फर्स्ट क्लास होते हैं, स्वर्ग में तो सब बच्चे बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, चंचलता की कोई बात ही नहीं होती। बाबा कहे वहां चंचलता की कोई बात ही नहीं होती है, सब कुछ बहुत फर्स्ट क्लास होता है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, जब इस पुरानी दुनिया से मुंह फेर लिया तो फिर ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो माया अपनी तरफ मुंह फेर ले, वापस माया अपनी तरफ मुंह कर ले। श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। दूसरी पॉइंट, बाप पर अपना सब कुछ स्वाहा कर पक्का वारिस बन, सतयुगी एयर कंडीशन की टिकट लेनी है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। जब अव्यक्त स्थिति के अभ्यास की आदत बन जाएगी तब स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे और यह आदत अदालत में जाने से बचा देंगी, धर्मराज की अदालत में जाने से बचा देंगी। इसलिए इस अभ्यास को जब नेचुरल और नेचर बनाओ तब नेचुरल कैलामिटीज हो, क्योंकि जब सामना करने वाले स्वस्थिति से हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण कर लेंगे तब पर्दा खुलेगा। बाबा कहते जब सामना करने वाले स्वस्थिति से हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण कर लेंगे तब पर्दा खुलेगा। इसके लिए पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से पूरा वैराग्य चाहिए। आज का स्लोगन है, स्वयं को निमित्त करनहार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। स्वयं को निमित्त करनहार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, मनुष्य लोक देव लोक
भूत प्रेत की दुनिया।

उगने की महसूसता मनुष्य में जास्ती है, न कि जानवरों में। इस सृष्टि खेल में मुख्य पार्ट मनुष्य का है। ये जानवर पंछी आदि तो जैसे सृष्टि ड्रामा की शोभा है। सारे कल्प के अंदर सतयुग आदि से कलयुग के अंत तक मनुष्य आत्माओं के 84 जन्म है। बाकी ये 84 लाख तो जानवर पंछी आदि की वैरायटी हो सकती है। 84 लाख वैरायटी है, लेकिन मनुष्य आत्मा के जन्म 84 है। अब ये सब राज परमात्मा बिगर कोई नहीं समझा सकता। आत्माओं का निवास स्थान है ब्रह्म तत्व अर्थात निराकारी दुनिया। बाकी इन जानवरों की आत्मा ब्रह्म तत्व में नहीं जा सकती, वह इस आकाश तत्व के अंदर ही पाठ बजाती है। उन्हों का भी मर्ज इमर्ज का और सतो रजो तमो में आने का पाठ होता है। इसलिए प्रकृति के बहुत विस्तार में न जाकर पहले हम अपनी आत्मा का कल्याण करें, अर्थात मन मना भव। अब आते हैं मनुष्य आत्मा पर। तो जो आत्माएं अशुद्ध कर्म करने से विकर्म बनाती है, वो अपने अशुद्ध संस्कार अनुसार जन्म मरण के चक्कर में आए, आदि मध्य अंत अर्थात मरने के समय अपने किए हुए विकर्म का साक्षात्कार पाए, सूक्ष्म में सजा भोगती है। इस थोड़े समय में अनेक जन्मों का दुख महसूस होता है, फिर शरीर छोड़ जाकर गर्भ जेल में दुख भोगती है और फिर संस्कार अनुसार ऐसे माता पिता के पास जन्म ले, वहां भी अपने जीवन में सुख दुख भोगती है। इसको कहा जाता है आदि मध्य अंत। परंतु कोई कोई आत्मा को जल्दी शरीर नहीं मिलता है, वह आकारी रूप में इस आकाश तत्व के अंदर गोस्ट बन भटकती रहती है। यह भी एक सजा है अर्थात भोगना है। उस अशुद्ध जीवात्मा के साथ किसी का हिसाब किताब होता है तो वो उनमें प्रवेश कर उनको दुख देती है, अर्थात हिसाब किताब चुकतू कर फिर जाकर अपना शरीर धारण करती है। कोई जीवात्मा तो जिसमें प्रवेश करती है उनको बहुत मारती भी है, बहुत कष्ट देती है। परंतु ये सब हिसाब किताब के अंदर भोगना का प्रकार है। हिसाब किताब के अंदर भोगना क्या प्रकार है जो सभी मनुष्य तन में ही सुख दुख महसूस होता है। यह तो आपको समझाया गया है कि जो आत्मा मुक्ति धाम से इस साकारी खेल में आती है, वो बीच में वापस मुक्ति धाम में जा नहीं सकती, परंतु अपने किए हुए अशुद्ध शुद्ध कर्मों अनुसार संस्कार ले दुख सुख के चक्कर में आती है। सभी आत्माओं का पुनर्जन्म होता है, सिर्फ एक परमात्मा का नहीं होता। सभी आत्माओं का होता है, सिर्फ एक परमात्मा का नहीं होता। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारा है सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। बाप दादा को सबसे प्यारे साफ दिल वाले बच्चे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तक नशीन है। वे वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। सरलता की निशानी है दिल दिमाग बोल एक समान। दिल में एक, बोल में दूसरा, ये सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित, निरहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। वे सरल चित, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि वाले होते हैं। अच्छा, ओम।